मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सियासी संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की सलाह दी। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़ित के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री एस जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोले, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती समारोह में शामिल पीएम मोदी। पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या का भी कार्यक्रम। पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट जारी, तो यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका। झारखंड में भी एहतियात।

0: हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सियासी कलेश चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने देश के कोने कोने में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कई तस्वीरें आपने कल देखी होंगी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी है। अब सवाल यह भी है कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जेनजी का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है? तो आइए देखते हैं कैसे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के टारगेट पर हैं।
1: ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम, शहर शहर विरोध प्रदर्शन।
2: ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है।
1: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने उठाया एक तूफान।
3: ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
1: राहुल गांधी का वीडियो वॉर, ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती।
4: भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
1: सीईसी के खिलाफ जेन जी आंदोलन, विपक्ष का क्या है प्लान?
5: ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी भी इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी। ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी बनाम विपक्ष।
6: लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया।
7: ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। पहले राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं।
8: ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबॉडी लेस। ही वॉज चोजन बाय अमित शाह एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द chaos, फॉर द डैमेज दैट इज टेकन प्लेस टू आर।
1: और इसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग से रोकती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को बस में भरकर ले जाती है।
9: ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति जिसने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति है जो मोदी के हाथों में कठपुतली बनकर खेल रहा है।
1: विरोध प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस ने पोस्टर भी लगाए, ज्ञानेश कुमार हटाओ, चुनाव आयोग बचाओ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आयसा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
5: इलेक्शन कमीशन ये किसी लोकतंत्र की बात नहीं है, किसी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से संविधान और नियम कानून के आदेश।
1: आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आयसा के साथ साथ कई नेता भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने उतरे।
10: जवाब मांगना चाह रहे थे पूरे चुनाव आयोग से कि ये अंदर घपलेबाजी क्या हो रही है। चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इलीगल काम हो रहे हैं, तो हम तो कानून के लिए, संविधान के लिए और लोगों के मताधिकार की बात करना चाह रहे थे।
11: ज्ञानेश कुमार has to resign, the SIR process has to stop, the entire EC has to be overhauled and that the voter lists of January 2025 have to be reinstated.
1: लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं को रोका बल्कि हिरासत में भी लिया।
3: ज्ञानेश लोकतंत्र का हत्यारा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो।
6: जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, बनारस में मोदी को जिताया। मेरी मांग है बनारस का चुनाव निरस्त हो और वहाँ पे फिर से चुनाव हो। मोदी को बनारस की जनता डंके के चोट पर जिताएगी, जमानत जब्त कराएगी मोदी से बनारस।
1: कोलकाता गुवाहाटी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी तो गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए।
12: आज जिस प्रकार से लोगों को पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी ने अपराध किया है, देशद्रोही का काम किया है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
1: जबकि कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।
13: बंगाल की सरकार, बंगाल का चुनाव, उसको सवाल में आप डाल रहे हैं?
14: बिल्कुल, बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी इनवैलिड चुनाव हुआ है, बिकॉज आज जो सरकार बनी ये चोरी से बनी।
1: चंडीगढ़, शिमला में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। पटना में कांग्रेस और आरजेडी का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी।
15: बिहार में धांधली हुई है और ये लड़ाई अभी शुरुआत हुई है, आगे और लंबी लड़ाई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
0: चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हुए खुलासों पर एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका डाली गई है और इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि चुनाव आयोग को लोगों की शंकाएं दूर करनी चाहिए। जबकि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को भी रोकना चाहिए।
1: कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, उस बीच राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवा एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
4: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
1: आपको बता दें कि कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी न होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है।
16: ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध इम्पीचमेंट आना হয়েছিল এবং এটা একটা ফিট কেস ফর ইমপিচমেন্ট যেখানে সাংবিধানিক পদকে অপব্যবহার করা হয়েছে।
1: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक और दावा किया है, वो ये कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
17: ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
1: कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। और आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पड़ा है, तो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है।
18: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
19: Should immediately resign and the whole SIR process should be thoroughly revisited.
1: CEC के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर CJP ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट टू की धमकी दे दी है।
20: वे अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
21: ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
1: विपक्ष ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है, तो ज्ञानेश कुमार के बचाव में बीजेपी उतरी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी।
22: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। गणेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए। सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
1: उधर एसआईआर को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में एसआईआर के फैसलों, दिशा निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग की है। जबकि महाराष्ट्र में एसआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे। इन पर लिखा था कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इस बीच चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात यूपी की सियासत की, जहां अखिलेश यादव ने अपने मिशन की शुरुआत रायबरेली से की, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस का कर रहे रायबरेली को ही क्यों चुना, अब इस पर सियासत तेज हो गई।
1: समाजवादी लाल हरे रंग में पटा वो विशाल जन समूह, वो कतार में लगे बुलडोजरों वाला माल्यार्पण, वो बजरंग बली का मंदिर दर्शन, वो नौजवानों के बीच अखिलेश का भाषण, ये सब कुछ रायबरेली की धरती पर हो रहा था। वो धरती जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वो धरती जहां से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वो धरती जिस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश यादव ने उसी जमीन को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतार दिया, तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदर खाने महसूस की जा रही है।
2: अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
1: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? अखिलेश भी रायबरेली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं।
7: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली यहाँ पर।
1: जिस रायबरेली जिले की सीटें इस बार कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही, उसी रायबरेली की जमीन से समाजवादी पार्टी सिर्फ खुद से मुकाबले की भविष्यवाणी भी करती है और दावा भी ठोकती है।
8: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
7: देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए। इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त, और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
8: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
7: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
1: पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है, जिसके बीच अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान का आगाज करना कहीं न कहीं गठबंधन को एक बड़ा संदेश है। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच भले ही जुबानी तीर छोड़े जा रहे हों, लेकिन राहुल और अखिलेश चुप हैं, जो बताता है कि बात इतनी नहीं बिगड़ी है कि हाथ से निकल जाए। वैसे चुनावी एकता की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखे। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ की, बता दिया कि बीजेपी के लिए यूपी में योगी उपयोगी वाला कार्ड अब भी सबसे अहम है।
23: आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं।
24: मौका तो था नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन का, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की।
23: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया, और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है।
24: इस ट्रेड शो में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में बातचीत करते दिखे। दोनों नेताओं ने एक साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ट्रेड शो भी देखा। स्टॉल पर भी दोनों साथ जानकारी देते दिखे। इस दौरान शाह ने यूपी में निवेश के माहौल की बात की, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।
23: 2013 के साल में यूपी सरकार ने एक यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज कोई सोचेगा तो कॉन्फ्रेंस या तो नोएडा में होगी, काशी में होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में भी हो सकती है, मगर उस वक्त कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी दिल्ली में। जब मीडिया में विवाद चला तो बेझिझक उस वक्त के यूपी के अधिकारियों ने कह दिया, लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में कोई निवेशक आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम दिल्ली आ गए।
24: अमित शाह योगी आदित्यनाथ का एक साथ दिखना बीजेपी की तरफ से साफ साफ संदेश है कि पूरी पार्टी और सरकार एक साथ है, जो मिलकर विपक्ष का मुकाबला अपने हिसाब से करेगी।
3: राक्षस हो, दानवी शक्ति हो या कोई भी आक्रांता, इनके द्वारा भारत पर हमला करने का उद्देश्य लूटपाट करके भारत की वैभव को तो लूटना था ही, भारत की बुद्धि को भी पूरी तरह अपहरण करके उसको नष्ट करना भी था, और उन्होंने यही किया, वे यही करते रहे। आखिर मंदिरों को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मंदिर तो किसी का कुछ स्वीकार नहीं रहा था।
24: बीजेपी की तरह अखिलेश भी अपनी पिच पर चुनाव के मुद्दे सेट करने में जुटे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान बुलडोजर का स्वागत फूलों और माला से किया, वो 2027 के चुनावी मुद्दे को लेकर अखिलेश का सीधा संकेत है।
5: पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
24: 2022 की तरफ बीजेपी की सारी कोशिश समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी के आरोपों के इर्द गिर्द रहेगी। वहीं अखिलेश की तरफ से बुलडोजर पर अंबेडकर और मुलायम सिंह की तस्वीरें लगाना बताता है कि पार्टी का चुनावी आधार चुनावों में पीडीए ही रहेगा। आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्टेटहुड को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल को बल का प्रयोग करना पड़ा। ये कल कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली।
24: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
9: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
24: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
10: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इससे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसलीड।
24: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।
0: सूरत से हैरान करने वाली एक खबर आई, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक रेसिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। सूरत सिविल अस्पताल में डेढ़ महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की है।
24: जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली।
6: तो उसकी वो घर पे पता नहीं वो नहीं गया, डिसेक्शन हॉल में ही रहा। तो 4:30 बजे तक उसको सब जगह ढूंढा, सभी रेसिडेंट्स ने ढूंढा, टीचर्स ने ढूंढा, तब 4:30 बजे उसकी बॉडी डिसेक्शन हॉल में से मिली और काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो चुका था। अब वो बॉडी यहाँ आई और फिर अभी हमने थोड़े बहुत कट्स देखे हैं, लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि किस तरह से हुआ। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पीएम में हमने बॉडी भेज दी है। उसकी वाइफ को पूछा, उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था। तो अभी वाइफ ने तो इतना ही बताया है, बट बाकी का उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी उनके साथ 8 महीने से रह रहे थे, और बाकी एग्जैक्ट रीज़न तो फिर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा।
24: डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में एक महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है, और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: के विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने दावा किया है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपित विनीत मिनोचा का बेटा ही है। पहले इस हत्याकांड में कारोबारी की बहू शालू को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल ये, आखिर एक बेटे ने अपने पिता के कत्ल की साजिश क्यों रची और मामले में अपनी पत्नी को कैसे फंसाया, तो डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
11: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया ट्विस्ट आया है, जहां बहू नहीं बल्कि बेटे के पिता के कत्ल में शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
12: तो हमारे विवेचना में लग रहा था कि इसमें सुब्रत की भी भूमिका है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली थी कि सुब्रत ने ही बात की जो इंक्वायरी में, कि सुब्रत ने घर का सीसीटीवी भी बंद करा था। सुब्रत ने ही विशाल को बताया था कि हमारा टीवी काम नहीं कर रहा है। सुब्रत को ये भी हमें जानकारी कि इनके पिताजी भी पार्टी करते थे, ये भी जानकारी में आया था कि ये पिता की और बेटे की अनबन थी, पटरी निभाती थी आपस में। और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके जो पैसा इनको मिलता है वो पैसा बहुत कम मिलता है, इनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है।
11: सवाल उठता है कि क्यों। तब ये कहा गया कि ससुर विनीत मिनोचा खर्चे के लिए उतना पैसा नहीं देते थे, इसीलिए बहू ने हत्या करवाई। लेकिन अब जब उनका बेटा ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ है, तो सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने ही पिता को मरवा डाला। सुब्रत मिनोचा का दावा है कि उनके पिता विनीत मिनोचा के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उनके पिता किसी महिला को शादी करके ना ले आए, और ये भी डर था कि कहीं उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि उनके पिता उसे सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च देते थे।
13: कई जगह संबंध थे, अवैध संबंध थे कई औरतों के साथ, जिनमें से

0: ले आने का मतलब दया कह।
1: सुब्रत को अपने पिता की हत्या का कोई मलाल नहीं है, उसे बस ये अफसोस है कि पिता को चाकुओं से गोद कर मारा, क्योंकि डील तक
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: क्या है पितृपक्ष में जल अर्पित करने के नियम? कौन से समय पूर्वजों की पूजा सबसे अनुकूल होगी? क्या है पितृपक्ष की सावधानियां? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सियासी संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की सलाह दी। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़ित के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री एस जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोले, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती समारोह में शामिल पीएम मोदी। पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या का भी कार्यक्रम। पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट जारी, तो यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका। झारखंड में भी एहतियात।

0: खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहां कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। इसका असर बिहार तक भी दिख रहा है। ये बिहार के बगहा की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश का असर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दिखाई दे रहा है। लगातार पानी बरसने से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनने लगी है। कई जगहों पर सड़कें कीचड़ और पानी से भर गई हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी और जल जमाव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इधर यूपी के कई जिलों में भी बारिश हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान की अल्टीमेटम की है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख ने अमेरिका के साथ शांति समझौते के लिए 7 दिनों की डेडलाइन तय की है। डेडलाइन के मुताबिक 7 दिनों में ईरान की 7 शर्तें अमेरिका मान लेता है तो युद्ध विराम होगा, वरना 7 दिन के बाद हॉर्मुज में महायुद्ध तय है। सवाल यही है कि 7 दिनों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच डील होगी या फिर महायुद्ध होगा।

देखिए सबसे पहले बात अर्नब नाम के उस चक्रवात की करते हैं जिसकी रफ्तार अब बहुत कम हो गई है। भले ही ये तूफान अब धीमा पड़ गया हो लेकिन इसकी वजह से उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और यूपी तक बारिश हो रही है और कई कई घंटों से बारिश हो रही है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: हुर्मुज स्ट्रेट पर महायुद्ध की नई धमकी। ट्रंप के साथ आर पार की जंग का ऐलान। सात दिन में शर्तें नहीं मानी तो महायुद्ध तय। सऊदी पर फिर से हुतियों के हमले शुरू। ईरान के डबल गेम में फंसे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका को सात दिन का अल्टीमेटम। बीते 72 घंटों में ईरान और अमेरिका के बीच हालात अचानक बदल गए। यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण के बाद ईरान ने कूटनीति के मोर्चे पर और युद्ध के मैदान में आर पार की लड़ाई का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। पहले हुर्मुज के करीब तेल टैंकर को निशाना बनाया गया और फिर हुतियों की मिसाइलों ने सऊदी अरब के अलग अलग ठिकानों पर बारूदी कहर बरसाना शुरू कर दिया। इसी बीच ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अगर अमेरिका ने सात दिनों में ईरान की सात शर्तें मान ली तो ठीक, नहीं तो सात दिन बाद हुर्मुज युद्ध का एपिसेंटर बनेगा, क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान अब हुर्मुज पर पूरी तरह कब्जा करने का प्लान बना चुका है। 1989 की इस्लामी क्रांति की जीत के बाद से ईरान ने किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया और केवल अपनी रक्षा की है। ईरान इस युद्ध से और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। संघर्ष के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिसमें उन्नत अमेरिकी विमानों पर हमला करना और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को निशाना बनाया जाना शामिल है। ईरान ने एक अमेरिकी पनडुब्बी पर कब्जा कर लिया है और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। अगर अमेरिका पहले हमारी शर्तें पूरी नहीं करता है तो न तो हुर्मुज खुलेगा और न ही हम बातचीत करेंगे। ईरान की सात शर्तें हैं जिन्हें लिखित रूप से पाकिस्तान और कतर के माध्यम से भेजा गया है। हुर्मुज को फिर से खोलने से पहले तेहरान की शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। ईरान ने अमेरिका का साथ देने वाले पड़ोसी मुल्कों के नाम एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी में यही कहा गया है कि खाड़ी के देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की मदद की तो ईरान बदला लेगा। इधर ईरान ने मिडल ईस्ट को हद में रहने की धमकी दी। उधर हुतियों ने सऊदी अरब पर बारूद की बरसात कर दी। हुतियों का दावा है कि अभी ये ट्रेलर है, युद्ध की पिक्चर बाकी है।
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان.
0: हुतियों के हमले के बाद सऊदी अरब ने भी यमन में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दावा यही है कि बीते कुछ घंटों में हुतियों के कई ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। यही नहीं, सऊदी अरब के शीर्ष धार्मिक गुरु ने सैनिकों को हुतियों के खिलाफ अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहने को कहा है। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती का कहना है कि सऊदी समर्थित यमनी सरकार को पूरे देश पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। ये बयान सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच हफ्तों से चले आ रहे मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों के बढ़ने के बाद आया है। ग्रैंड मुफ्ती शेख सालेह बिन फौजान का ये संदेश देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए था। इसमें कहा गया है कि इस महान राष्ट्र के एक इंच हिस्से पर भी कब्जा करने की कोशिश करने वाले को सजा देना सबसे नेक कामों में से एक है, जिसके लिए जान तक दी जा सकती है। सऊदी अरब ने भी हुतियों के खिलाफ आर पार की जंग शुरू कर दी है। हालांकि ईरान ने सऊदी पर हुतियों के हमलों से खुद को दूर कर लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की माने तो हुतियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है।
2: The Houthis are responsible for their own actions. They don't take directions from us. As those who are resisting in the region based on the situations that have been imposed on them, we have contacts with them. There is no systematic relationship. Hezbollah in reality
0: बड़ी बात यह है कि हुतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद मांगी थी, लेकिन ट्रंप ने मदद करने से इनकार कर दिया था। ये खबरें भी सामने आई कि हुतियों के साथ पर्दे के पीछे अमेरिका ने समझौता किया था। समझौता ये कि वो सऊदी की मदद नहीं करेगा, बल्कि खाड़ी के देशों में हुती अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अब हुतियों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। अगर अमेरिका अपने बेड़े के साथ सैन्य हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है या बाब अल मंडेब पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तो ये उनके और किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। हम अमेरिका को यही बताना चाहते हैं कि अगर अमेरिका हवाई हमलों या हवाई मदद के जरिए सऊदी अरब का समर्थन करने का जोखिम उठाता है, तो हम अपने आसपास के सभी अमेरिकी हितों को निशाना मानेंगे और किसी भी चीज से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी जहाजों के लिए बाब अल मंडेब को पूरी तरह से बंद कर देंगे। हम इसके लिए लड़ेंगे। हुतियों की धमकी पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फ्रांस ने हुतियों के खिलाफ सऊदी अरब की मदद का ऐलान कर दिया है।
3: Saoudite et qui sortait en mer Rouge dans ce qu'on appelle le site de Yanbu. Bon, il a été très abîmé par une attaque des Houthis. Nous nous engageons pour le sécuriser.
4: Avec quels moyens ?
3: Et donc aujourd'hui, c'est la discussion que nous avons finalisée avec les Saoudiens. Nous allons envoyer des moyens militaires, c'est-à-dire des soldats, des radars, des systèmes de défense pour protéger ce site. Pas nous engager dans quelques conflits, mais protéger ce site.
5: Pas d'aviation, des rafales ?
3: Verra l'évolution et selon les besoins, on en a dans la région. Mais en tout cas, on se met en situation de protéger ce site parce que sortait il y a quelques semaines de là, chaque jour, plus de 5 millions de barils. Bon, donc c'est pas négligeable.
0: अब सवाल यही है कि हुती बनाम सऊदी युद्ध में फ्रांस की एंट्री से क्या हुर्मुज के बाद लाल सागर में युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है? आज तक ब्यूरो।
6: ईरान के अल्टीमेटम की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इसी बीच हुतियों ने अमेरिका की नींद उड़ाने वाली चेतावनी दी है। हुतियों ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की बात कही है। आखिर हुतियों की धमकी का मतलब क्या है, समझते हैं सुमित चौधरी से।
7: सही, इस समय हुती जो है वो मेजर कंसर्न है, ना सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। अगर आप देखें कि हुतियों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और इसराइल ने इससे पहले भी कई बार एयर स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और हाल ही में जो हुतियों के पास वेपन्स पहुंचे, जो इक्विपमेंट पहुंचे हैं, वो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कई कहा गया था, कई ऐसे वेपन रूट्स नए डेवलप किए गए थे ईरान द्वारा, जिन्होंने हुतियों को ना सिर्फ सशक्त किया है बल्कि उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज का सेटअप भी किया गया है जहां से वो लगातार लंबे समय तक ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि सऊदी के अंदर बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में, यहां तक कि इजराइल तक अटैक करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर ईरान ये बात कह रहा है, आपको याद होगा कि हाल ही में ईरान ने यह कहा कि हमारा हुतियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम उनको लगातार आदेश नहीं देते, लेकिन सच बात यह है कि सारा की सारा कंट्रोल ईरान ही करता है। लेकिन अगर ईरान हाथ पीछे खींच लेता है और ईरान ये कहता है कि आप अपने आप कंट्रोल कीजिए, तो निश्चित तौर पर यह कंसर्न सऊदी के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बनेगा। फ्रांस की तरफ से भी मदद का आग्रह किया गया, फ्रांस की तरफ से कहा गया कि हम भी अपने सैनिकों को भेजने के लिए तैयार है। वो इसलिए क्योंकि आप इसकी सीरियसनेस समझिए, हुती सिर्फ और सिर्फ आप बाब अल मंडेब तक नहीं सीमित है, वो लगातार रियाद तक कंट्रोल कर रहे हैं और रियाद तक आप कह सकते हैं कि अटैक कर रहे हैं। और जो कोस्टल लाइन 220 किलोमीटर की उन्होंने अपने हाथ में ली है, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ऐसा ही करते रहे तो फिर स्विस कनाल तक भी वो अपने अटैक्स को इनिशिएट कर सकेंगे। आप मान के चलिए कि इन पूरे इलाकों के अंदर उनकी मौजूदगी एक ऐसे नोटोरियस कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, एक ऐसे मिलिशिया के तौर पर है जो कहीं पर भी कभी भी अटैक कर सकते हैं। और शायद ये अमेरिका सऊदी के साथ मिडल ईस्ट के तमाम देशों में, इसी वजह से अगर आप देखें कि सऊदी के साथ सारे मिडल ईस्ट के देश खड़े हैं, अमेरिका लगातार सपोर्ट करने की बात कर रहा है और यहां तक कि यूरोप के देश यानी फ्रांस भी अब इस मदद के लिए आगे बढ़ रहा है।
6: और अब आपको दिखाते हैं कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल उनकी बेइज्जती हुई। जी हां, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के लिए जैसे ही नेतन्याहू मंच पर आए, 77 देशों ने भरी सभा में पहले नेतन्याहू की हूटिंग करके विरोध किया और फिर बॉयकॉट करके बाहर चले गए। अब इस इंटरनेशनल बेइज्जती पर पहले तो नेतन्याहू करीब 3 मिनट तक चुप्पी साधकर खड़े रहे, फिर भाषण में उन्होंने कहा कि अगर यहां कोई और कायर है तो वो भी बाहर चला जाए। हालांकि इस दौरान गैलरी में नेतन्याहू के समर्थक मौजूद थे, उन्होंने तालियां बजाकर नेतन्याहू का स्वागत किया और इसराइल की जनता जिंदा है नारे भी लगाए। इसके बाद नेतन्याहू ने अपने भाषण में गाजा, ईरान, लेबनान और इजरायली कार्रवाई का जिक्र किया तो ट्रंप की तारीफ की, जबकि न्यूयॉर्क मेयर ममदानी और यूरोप के नेताओं की आलोचना की।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर नेतन्याहू की इंटरनेशनल बेइज्जती। सतहत्तर देशों ने किया बहिष्कार, 3 मिनट तक खामोश खड़े रहे नेतन्याहू। हॉल छोड़कर बाहर निकले 77 देशों के प्रतिनिधि, खिसिया गए नेतन्याहू। भाषण में निकाली नेतन्याहू ने भड़ास, बोले कायर बाहर चले जाएं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी पर बरसे नेतन्याहू, ईरान लेबनान पर गरजे। वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस के अंदर भले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेम और दुलार मिलता हो, लेकिन जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पहुंचते हैं तो वहां उनकी घोर बेइज्जती हो जाती है। जी हां, कुल 77 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़े, इन देशों के प्रतिनिधि मंडल हॉल से बाहर निकल गए। इसके बाद पहले नेतन्याहू करीब 3 मिनट तक खामोश खड़े रहे और इस बेइज्जती का घूंट पीते रहे। और जब नेतन्याहू ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कोई और कायर हो तो बाहर चला जाए।
4: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much. Seven fronts.
0: इजरायली पीएम ने दावा किया कि बहिष्कार करने वाले कई देशों की मदद इजरायल ने की है, लेकिन उनमें इजरायल के साथ खड़े रहने का नैतिक साहस नहीं है। बहिष्कार करने वालों में वो सऊदी अरब भी था, जो आज ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले छेड़ रहा है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू कुल मिलाकर 7 से 8 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। गाजा में अक्टूबर 2023 से इजरायली सेना हमास के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई और संघर्ष में फंसी है। लेबनन में उत्तरी सीमा पर ईरान समर्थित हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल के जमीनी और हवाई हमले जारी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। 28 फरवरी को जिस तरह से इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, ईरान के साथ आज भी युद्ध जारी है। यमन से हूती विद्रोही इजरायली क्षेत्र और लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। सीरियाई क्षेत्र में सक्रिय मिलिशिया और सैन्य ठिकानों पर इजरायल लगातार हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इराक में मौजूद शिया मिलिशिया और ईरान समर्थकों के साथ इजरायल की लड़ाई चल रही है। वेस्ट बैंक के अंदरूनी हिस्से में भी इजरायली सेना को लगातार मोर्चा संभालना पड़ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से नेतन्याहू इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि इजरायल अकेले 7 मोर्चों पर लड़ रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ईरान समर्थित इन शक्तियों को कमजोर करके इजरायल ने अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी वैश्विक और अफ्रीकी देशों की रक्षा की है जो आतंकवाद की रडार पर हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो देश आज हॉल छोड़कर भाग रहे हैं वो भी जानते हैं कि इजरायल की इस लड़ाई से उनका अपना देश सुरक्षित हुआ है। आज की तारीख में नेतन्याहू अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती पर भड़क रहे हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही ईरान ने अमेरिका और इजरायल को आईना दिखाया। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पोस्टर दिखाए, दुनिया के सामने कहा कि कैसे अमेरिका और इजरायल ने मासूम बच्चों को मारा।
5: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा, हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
0: ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में कई तस्वीरें दिखाई थी तो नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में
8: children perished under bombs.
0: Starlink internet access device dikhaya. इसराइल के पीएम ने स्टारलिंक के डिवाइस को दिखाते हुए कहा कि ईरान के लोगों को इसकी जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान इंटरनेट को सेंसर करने पर करोड़ों और अरबों डॉलर खर्च करता है। अगर ईरान के लोगों को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट एक्सेस मिल गई, तो वो सच को जान पाएंगे और अपनी आवाज उठा पाएंगे।
4: This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet.
0: इजरायली पीएम की स्पीच के बाद यूएन में उनके स्थायी राजदूत डेनी डेनन ईरान के राजनयिक के पास उसी स्टारलिंक डिवाइस को लेकर पहुंचे। उनसे कहा कि वो इसे तेहरान में ईरान के लोगों को सौंप दें। उन्होंने कहा कि इससे ईरान का भला होगा, क्योंकि वहां सत्ता परिवर्तन में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट तक लोगों की पहुंच होगी। हालांकि इस दौरान ईरान के राजनयिक ने इजरायली राजदूत को अनसुना कर दिया और उनकी ओर देखा तक नहीं।
9: If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day.
0: यूएन के मंच से नेतन्याहू ने हिजबुल्ला और उसके समर्थकों के जख्मों पर भी जमकर नमक छिड़का। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में पेजर दिखाया और हिजबुल्ला को याद दिलाया कि ये पेजर 2 साल पहले कैसे फटने लगे थे। नेतन्याहू ने पेजर दिखाकर पूछा कि क्या यूएन में बैठे लोगों को ये याद है। उन्होंने कहा कि किसी और को याद हो ना हो, हिजबुल्ला को अच्छी तरह से याद होगा।
4: Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of war?
0: 17 सितंबर 2024 की शाम लेबनन में हिजबुल्ला समर्थकों और उसके आतंकियों के पास मौजूद पेजर एक के बाद एक फटने लगे। बाद में पता चला कि जिस कंपनी से हिजबुल्ला ने पेजर खरीदे थे, वो इसराइल की ही एक कंपनी थी जिसका लिंक मोसाद से जुड़ा था। मोसाद यानी इसराइल की बेहद तेज तर्रार खुफिया एजेंसी। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस समय न्यूयॉर्क के मेयर है जोहरान ममदानी, वो जोहरान ममदानी जिन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, वो ममदानी जिन्होंने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी हैं।
10: बेंजामिन नेतन्याहू इज ए वॉर क्रिमिनल, द आर्किटेक्ट ऑफ ए हॉरिफिक जेनोसाइड अगेंस्ट द पैलेस्टिनियन पीपल। He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia.
0: नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से उन्हें भी करारा जवाब दिया। नेतन्याहू ने ममदानी को हमास और आतंकियों
6: और कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या है पितृपक्ष में जल अर्पित करने के नियम? कौन से समय पूर्वजों की पूजा सबसे अनुकूल होगी? क्या है पितृपक्ष की सावधानियां? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सियासी संग्राम तेज। बीजेपी के सहयोगी चिराग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी आयोग को हर शंका दूर करने की सलाह दी। शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार में जमुई पीड़ित के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर एक्शन। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री एस जयशंकर का करारा जवाब। भारत को आतंकवाद का पैरोकार कहने पर बोले, एक आतंकी देश कैसे पूछ सकता है ये सवाल। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती समारोह में शामिल पीएम मोदी। पेश की श्रद्धांजलि, भजन संध्या का भी कार्यक्रम। पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट जारी, तो यूपी के 32 जिलों में बाढ़ की आशंका। झारखंड में भी एहतियात। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांगो में किकविट से राजधानी किशांता लौट रहा एक प्लेन क्रैश हो गया। यह हादसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसमें दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में लेफ्टिनेंट जनरल मुतोम्बो कातालई तियेंदे और लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकोलिया शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आने की बात सामने आई है। 14 लोगों की मौत हुई है, दो सैन्य अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल मुतोम्बो बताए जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकोलिया शामिल हैं। तकनीकी खराबी की वजह बताई जा रही है, और ये जो प्लेन है ये बताया जा रहा है कि कांगो में किकविट से राजधानी किशांसा की ओर लौट रहा था, उसी वक्त इस प्लेन में तकनीकी खराबी आती है और उसके बाद ये प्लेन क्रैश कर जाता है। 14 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, दो लेफ्टिनेंट जनरल समेत जो कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे रिपब्लिक ऑफ कांगो के। जैसे ही प्लेन क्रैश की खबर मिली, तुरंत जो आसपास के लोग थे वो मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन प्लेन उस वक्त कैसे धड़कता हुआ शोला बन गया ये आप देख सकते हैं। प्लेन में पूरी तरह से आग लगी हुई है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, और लोग वहां मौजूद हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं भाग्य चक्र।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। क्या होता है पितृपक्ष, पितृपक्ष के नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और ये पितृपक्ष होता क्या है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, सामान्यतः हम उनको पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि सूक्ष्म लोक से इन पितरों का आशीर्वाद परिवार जनों को, परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृ पक्ष के 15 दिनों में जो पितृ होते हैं वो सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं, अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृ पक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान और धर्म का पालन करते हैं। पितृ पक्ष जो होता है वो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को कहा जाता है। इस बार पितृ पक्ष 26 सितंबर से आरंभ हो रहा है, यानी पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 26 सितंबर को होगा और 10 अक्टूबर तक पितृ पक्ष रहेगा, यानी अमावस्या का श्राद्ध 10 अक्टूबर को किया जाएगा। तो कुल मिला के 26 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलता रहेगा। पितृपक्ष पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, धन के इन्वेस्टमेंट में निवेश में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, अनाज का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जो पितृपक्ष चलेगा इसमें कौन से काम किए जाएंगे, किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा वो भी जानते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जो जल है ये दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दिया जाता है दोपहर के समय में, लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का मध्य दोपहर का समय होता है जब पितरों को जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है, कुश घास ले करके जल पितरों को दिया जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है, और पूर्वज के देहांत की तिथि पर दान के अलावा किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। जब आप पितृ की मृत्यु के दिन आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, उनका श्राद्ध कर लेते हैं, तो आपके लिए पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। यानी जब तक आप पूर्वज के देहांत की तिथि तक श्राद्ध नहीं कर लेते तब तक रोज दोपहर के समय में जल में काला तिल डाल करके ये जल पूर्वजों को अर्पित करना चाहिए, इसको तर्पण करना कहा जाता है। पितृपक्ष पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

परीक्षाएं समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे। अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

लोग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कोमल ने हमें लिखा है और कोमल हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1993, शाम के 4:15, अमृतसर, पंजाब। कोमल कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कोमल, अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा विवाह होने में। 2027 के जून से दिसंबर वाले समय में आपके विवाह की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा लग रहा है। विवाह के बाद चंडीगढ़ से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। शीघ्र विवाह हो, बेहतर विवाह हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, काफी बेहतर होगा। तो पितृपक्ष में नियमित रूप से अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जल अर्पित किया जाता है और उनके देहांत की तिथि पर उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। आखिर परिवार का कौन सा व्यक्ति पितरों के लिए जल अर्पित करेगा या श्राद्ध करेगा, क्या नियम है? घर का जो वरिष्ठ सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है वो रोज तर्पण कर सकता है पूर्वजों के लिए। अगर घर में कोई बड़ा पुरुष सदस्य नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष तर्पण कर सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को और नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में जिन परिवारों में पुरुष नहीं हैं, वहां पर महिलाएं, बालिकाएं तर्पण और श्राद्ध करती हैं, श्रद्धा पूर्वक वो भी कर सकती हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पूर्वजों के लिए जल देगा, उनका तर्पण करेगा या उनका श्राद्ध करेगा, वो पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करेगा। इसके नियमों का पालन करने के साथ अगर आप पूर्वजों को जल देंगे तो अवश्य कल्याण होगा। पितृपक्ष पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। तो पितृपक्ष का तर्पण क्या है, कौन तर्पण करेगा, किस समय करेगा, ये आपने समझा। अब आप अगर पितृपक्ष में तर्पण करते हैं या आपके परिवार में पितृपक्ष का पालन किया जाता है तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करना चाहिए। शाम के समय आप चाहें तो उनके चित्र के सामने दीपक और धूप बत्ती जलाकर प्रार्थना कर सकते हैं। कुतप वेला में यानी मध्य दोपहर के समय में लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में पितरों को तर्पण दें और इसी समय में तर्पण देने का महत्व होता है मध्य दोपहर में। जब आप पितरों को जल देंगे, तर्पण करेंगे तो कुश हाथ में ले लेंगे या कुश की अंगूठी पहन लेंगे और जल में काला तिल मिलाकर पितरों को जल देंगे, तब जाकर तर्पण पूर्ण होगा, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। जो कोई नियमित रूप से पितरों को जल दे रहा है, रोज प्रार्थना कर रहा है यानी पितृपक्ष का पालन कर रहा है, उसको इस अवधि में पितृपक्ष में एक समय सुबह या शाम सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और पितृपक्ष में सामान्यतः सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। और पितृपक्ष आता है आश्विन के महीने में, आयुर्वेद कहता है कि आश्विन में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, तो जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। जब आप अपने पितरों को फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तो हल्की सुगंध वाले सफेद फूल आप पितरों को अर्पित करें, तीखी और तेज सुगंध वाले फूल अर्पित ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके
दोपहर के समय में आप तर्पण करेंगे। अगर पूर्वजों का पिंडदान करना है या श्राद्ध करना है तो वो भी दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके किया जाएगा। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। पूरी गीता ना भी पढ़ पाए तो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का या गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। शास्त्र ये नहीं कहता है कि कर्जा लेकर दबाव में आके आप बेवजह के दान करें जिसमें आप खुद ही कर्ज में आ जाएं, वो उचित नहीं है। कर्ज लेकर या दबाव में प्रेशर में आकर श्राद्ध का कर्म नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

के योग हैं। घर में शुभ कार्य हो सकता है, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों के ऊपर पितृपक्ष की सावधानियां और नियम लागू नहीं होते। कौन हैं वो लोग? देखिए, जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष की सावधानियां और नियम लागू नहीं होंगे, और जिन विवाहिता कन्याओं के स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं उनके ऊपर भी पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। अब मान लिया किसी पुरुष के दादाजी नहीं हैं तो उनका तर्पण श्राद्ध उनके पिताजी करेंगे, पुत्र के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह से जो सुहागन महिला है अगर उसके सास ससुर हैं तो पितृपक्ष का पालन सास ससुर करेंगे, उस महिला को किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 5,

यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रूपाली ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। रूपाली की जन्म की तारीख है 26 मई 1982। जन्म का समय सुबह के 8:55, हुगली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्या मेरे स्वास्थ्य में लगी रहती है, तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ कब तक हो पाऊंगी। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अप्रैल 2027 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट चपेट, दुर्घटना से और पेट की समस्या से आपको बचना है, सावधानी रखनी है। अप्रैल 2027 के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत खराब मामला दिखाई नहीं दे रहा है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रख करके ले जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर चिकित्सा के लिए जाना है, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीले रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

सिंह राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पूर्णिमा तिथि है और आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से जीवन का तनाव, जीवन की अशुभता कम हो जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

मीन राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा।

0: एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर का राग छिड़ा, भारत ने उसी मंच से पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों पर भारत की प्रतिनिधि पेचल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर दिया और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की प्रीमियर मिलिट्री एकेडमी के ठीक दरवाजे पर रह रहा था। भारत ने पाकिस्तान के बयानों को बेतुका करार देते हुए उसके रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। पेचल गहलोत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जिस सरकार को खुद पाकिस्तानी फॉर्म 47 सरकार कहते हैं, उससे ऐसे बयान की उम्मीद ही की जा सकती है। भारत के इस पलटवार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूएन में दिया भाषण भी चर्चा में आ गया। शहबाज ने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगलर वैन बताया और कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों को राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देता रहेगा। इतना ही नहीं, सिंधु नदी के पानी को लेकर भी शहबाज ने गीदड़ भपकी दी। पाक पीएम शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने, बाधित करने या मोड़ने की कोई भी कोशिश एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। तो भारत की तरफ से जोरदार जवाब दिया जाता है और उसके बाद ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही है और इसकी चर्चा भी अब जगह जगह हो रही है।
1: They claim to uphold security during the day. They actually carry out terrorism at night. This assembly was subjected to remarks about religious intolerance from the very regime whose mainstay is blasphemy laws. The world knows how minorities are treated in Pakistan. No pious platitude can mislead it. References were made to the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This is an integral and inalienable part of my country and will always remain so. But if we must talk about Kashmir, let us turn our attention to the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Ask the people of Rawalkot about the wanton killings, the brutal violence, and the denial of basic rights that they have long experienced. At the heart of the issue, Mr. President, is the long-standing practice of cross-border terrorism by Pakistan. We demonstrated last year that terrorists will have nowhere to run and nowhere to hide. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised, and continued terrorism by Pakistan will have consequences.
0: बहुत स्पष्ट बोल दिया कि पाकिस्तान को नतीजे भुगतने होंगे अगर ऐसे ही वो आतंक का समर्थन करता रहा। देखिए, सबसे बड़ा पलटवार सीमा पार आतंकवाद पर। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार भारत इस्तेमाल करता रहेगा। जो अभी आप सुन रहे थे पेज, आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे और आतंकियों के लिए ना भागने की जगह होगी ना छिपने की जगह होगी। यानी शहबाज शरीफ ने यूएन में भारत के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाई, लेकिन भारत ने जवाब में पाकिस्तान के आतंकवाद, सेना के प्रभाव और अल्पसंख्यकों के सवालों को दुनिया के सामने रख दिया और साफ संदेश दिया, हर साल झूठ दोहराने से झूठ सच नहीं बन जाता।
1: दिस आफ्टरनून द जनरल असेंबली हर्ड सम बिजार रिमार्क्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। दिस हैपन्स जस्ट अ फोर्टनाइट आफ्टर न्यूयॉर्क सिटी एंड द वर्ल्ड marked the 25th anniversary of the horrendous 9/11 terrorist attack. This context, Mr. President, is important to keep in mind because its mastermind, Osama bin Laden, was living right on the doorstep of Pakistani Army's Premier Academy. And this was the very entity which was the subject of such deep genuflection before us today by the representative of Pakistan. But all this is only to be expected from what Pakistanis themselves call a Form 47 government. We heard some hypocritical homilies about democratic rights and human values from a regime whose capital at this very moment is being fortified against its own people. And that, Mr. President, is happening because this is a regime of the army by the army and for the army. Their puppets may come and go, but let us have no illusion who calls the shots. The reality of Pakistan is expressed in its 27th Amendment and the lifelong immunity granted to its real ruler.
0: शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शिवानी, एक बार फिर से यूएन के मंच का दुरुपयोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से किया जाता है, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से पैटल गहलोत ने जवाब दिया है उसकी चर्चा जरूर होगी पाकिस्तान में भी।
2: बिल्कुल, देखिए, आतंकवाद को जो पनाह देने वाला पाकिस्तान है वो एक मुखौटा पहनकर यूएनजीए की जो ये जनरल असेंबली है वहां पर पहुंचता है और कोशिश करता है एक दिखावा करने की कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि भारत ने एक बार फिर उस मुखौटे को हटाया है और पटेल गहलोत जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं यूएन में भारत की, उन्होंने सीधे तौर पर खरी खरी सुनाई है कि किस तरह से दिन में नाटक करने वाला पाकिस्तान रात को आतंकवादियों को पनाह देता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने जब हाल ही में एक बरसी मनाई 9/11 की, उसके कुछ दिन बाद इस तरह की बातचीत वहां पर हो रही है, तो इन सब बातों को उन्होंने उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री एक कठपुतली की तरह है और सारी साजिश वहां पर पाकिस्तान की सेना, आसिम मुनीर और तमाम दूसरे लोग जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स वहां पर चलाते हैं, आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं, वो वहां पर चला रहे हैं। और एक बार फिर इस मंच पर पूरी दुनिया को दिख गया कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराता है। और तमाम जो सवाल वहां पर किए गए पटेल गहलोत के द्वारा, वो साफ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इन सभी बातों का कोई जवाब नहीं था और इस इंटरनेशनल फोरम को इस्तेमाल करने की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा था उसकी ये कोशिश, उसकी ये साजिश नाकाम हुई है। हिमांशु,
0: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बड़ी बड़ी बात शहबाज शरीफ कर रहे थे, लेकिन बहुत स्पष्ट जवाब दिया गया कि अगर नष्ट रनवे और जले हैंगर जीत लगते हैं तो पाकिस्तान उनका आनंद ले। जिस तरह से जवाब पटेल गहलोत की तरफ से दिया गया है, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान को इससे कुछ सबक मिलेगा या कुछ सुधार आने वाले वक्त में पाकिस्तान में होगा, क्योंकि लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कभी कुछ सुधार हो पाएगा?
2: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने यूएनजीए में इस बात को उठाया है। लगातार जब भी यूएनजीए की असेंबली होती है वहां पर बार बार इस बात को उठाया जाता है। और आप देखिए, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद लगातार तमाम देशों ने भारत का साथ दिया और इस बात को माना कि ये जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के जरिए भारत में घुसे थे और पाकिस्तान को इस पर बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह अपनी जीत का जश्न मनाते हुए दिख रहे थे आसिम मुनीर भी, और तमगे पहनते हुए दिखाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ जो ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने साफ तस्वीर रखी और जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई उन्होंने भी बताया कि किस कदर नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। तो भारत ने प्रिसिजन स्ट्राइक्स आतंक के ठिकानों पर भी की और उसके बाद जब कोशिश की गई ड्रोन हमलों के, तो तमाम एयर बेसिस जिन्हें वो अब तक ठीक नहीं कर पाए हैं वो सब वहां पर तबाह कर दिए, नष्ट कर दिए। तो भारत की ताकत, भारत का एक नपातुला रिटेलिएशन इन स्ट्राइक्स के खिलाफ और जिस तरह से ड्रोन अटैक्स किए गए थे उसके खिलाफ भी साफ दिखाई दिया, और कैसे सिविलियंस को बचाने के लिए ये प्रेसिजन स्ट्राइक्स भारत ने की और आतंकवादियों का खात्मा यहां पर किया। लेकिन उसके बाद आप देखिए जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके जरिए ये दिख रहा है कि पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है। वहां पर अब भी आतंकवाद के ठिकाने चल रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि दोबारा से नए सिरे से अलग अलग संगठन अपने आप को खड़ा करें जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट कर दिया गया था। तो जाहिर तौर पर ये सारी बातें बार बार भारत सामने लाया है, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकवाद का पनाहगार है, स्पॉन्सरर है, वो बाज आने से नहीं दिखाई देता।
0: और शिवानी, हमने देखा कि दो जिस तरह से टीआरएफ को यूएनएससी में पाकिस्तान ने बचाने की कोशिश की, वो टीआरएफ जिसने पहलगाम आतंकी हमले में जिसका स्पष्ट नाम है, जिसके स्पष्ट सबूत हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से हर बार आतंक को लेकर भारत का घेराव करने की जो कोशिश की जाती है, असफल कोशिश की जाती है, और भारत हर बार ऐसी सभाओं में पाकिस्तान को आईना दिखाता है और ये बताता है कि एक देश जो आतंकियों को पनाह देता है वो खुद आतंकवाद की बात करता है, इससे बड़ा नाटक क्या हो सकता है? और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि जो पेटल है उनकी तरफ से ये कहा गया एब्सर्ड थिएट्रिक्स, यानी नाटक इसको पूरा बताया गया यूएन जीए में।
2: बिल्कुल, देखिए, पटेल गहलोत ने साफ कह दिया कि जो रात में आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो दिन में नाटक करते हैं शांति दूत बनने की बात करते हैं, आतंक के खिलाफ बात करते हैं, तो ये जाहिर तौर पर एक नाटक है। हर कोई जानता है, चाहे वो हाफिज सईद हो जिन पर अब भी मुकदमा चलाया जा रहा है और जिसे लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, सिर्फ उनके देश में ही नहीं, भारत द्वारा ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय यूएनजीए में उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो वहां से दुम दबा के निकलते हुए दिखाई देते हैं, एकदम अपने आप को बचाते हुए निकलते हुए दिखाई देते हैं। और पटेल गहलोत ने यही बात दोहराई है कि हर कोई जानता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की इन आतंकवादियों के खिलाफ, और लगातार जो 9/11 का गुनहगार था वो पाकिस्तान में शरण लेके बैठा हुआ था, किस तरह से फिर अमेरिका ने एक्शन किया और वहां पर ओसामा को वहां पर मार गिराया। लेकिन आप देखिए कि अब भी लगातार हर बार जब पाकिस्तान इस तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होता है तो वो कोशिश करता है एक मुखौटा लेकर जाने की, लेकिन मुखौटा उतर जाता
0: नहीं। लेकिन शिवानी, इस प्रोपेगेंडा के पीछे की क्या तस्वीर आपको समझ में आती है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रीफिंग में एक पाकिस्तानी पत्रकार आके बदतमीजी ही करते हैं और आतंकवाद को लेकर जो बात करते हैं उसको एस जयशंकर ही बहुत करारा जवाब देते हैं, बहुत करारा जवाब वहां पर दिया गया। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से जो झूठ फैलाने की असफल कोशिश की गई है, ये किस तरह का प्रोपेगेंडा पर इस वक्त पाकिस्तान काम कर रहा है?
2: देखिए, पाकिस्तान बस प्रोपेगेंडा ही करता है, झूठ को की तस्वीर लेकर आगे बढ़ता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा हो कि उसने कोशिश की दुनिया को ये दिखाने की कि उसकी बड़ी जीत हुई है वहां पर, लेकिन जो सैटेलाइट पिक्चर्स थी, हम लोग की तस्वीरें थी, क्रिएटर्स थे जो उसके रनवे पर बने, जो उसके तमाम फाइटर्स वहां पर गिराए गए, उन सबके सबूत भारत ने दुनिया को दिखाए, और यही सबूत बार बार दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान।
0: ये बहुत स्पष्ट संदेश पटेल गहलोत की तरफ से दिया गया है कि अगर जले हुए हैंगर और नष्ट रनवे अगर आपको जीत लगते हैं तो जीत, ऐसी जीत का आप आनंद लीजिए। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: यहां पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है।
6: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे हम, भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
7: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से

0: चाची है
1: वायरल है
2: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर
3: मैं हूँ ना मेरे पास एक आइडिया है
1: क्या
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आया वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता नो सर
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
2: ओ नादान परिंदे बैठ
0: बैठ जा बैठ जा
2: सर मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा तो कौन सी बनानी है

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार
4: साधा। एक दो विश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट
1: तो देते।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
5: पापा
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
7: तो भरोसा है।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
14: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
3: पापा,
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ,
5: ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट।
13: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
16: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
15: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
17: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार। सर एक बार दो थमका लगाने, बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
18: क्या चीज है?
17: वायरल है? थैंक यू।
19: आप पे वो DMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
17: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
6: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
16: आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
6: नो सर,
16: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
19: उनादान परिंदे, बैठ
7: बैठ बैठ।
19: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: बात एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: देश भर में SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB संधू जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं इट्स डन ब्रो, हो गया, मान जाओ, राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ। नहीं तो नाज़ी युग जब खत्म हुआ था, आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि बेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान का आतंकवाद झूठ और दोहरा रवैया दुनिया से छिपा नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी के बाद एनडीए के तीन दलों ने भी किए सवाल। चिराग, कुशवाहा और टीडीपी ने आयोग को शंका दूर करने की सलाह दी। बिहार में जमुई पीड़ित के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट पर गरमाई सियासत। सीएम स्टाफ के स्टाफ पर एक्शन, एफआईआर दर्ज। मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश। उत्तराखंड में अलर्ट जारी, तो यूपी के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। स्कूल भी बंद, झारखंड में भी एहतियात। और कांगो में बड़ा विमान हादसा, दो बड़े सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत। किकविट से राजधानी किनशासा लौट रहा था विमान, तकनीकी खराबी की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशो दीक्षित। आपको रूबरू कराते हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरों से। सबसे पहले मुंबई में आस्था के सबसे बड़े उत्सव के बीच अब लालबाग चौराहे के विसर्जन की यात्रा चल रही है, जहां श्रद्धालु बप्पा को अंतिम विदाई देने उमड़े हैं। वो तस्वीरें दिखाएंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री की भजन संध्या से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां भक्ति के रंग में पीएम नजर आए। इन सबके बीच विदेश नीति के मोर्चे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी भी सुर्खियों में है। इसी सियासी गर्मी के बीच तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। बिहार के समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत गर्माई हुई है, वो भी डिटेल आपको बताएंगे। ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष का जबरदस्त घेराव है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और झांसी से एक तेज रफ्तार ट्रक का खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, बताएंगे आपको। उधर देश के कई राज्यों में बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में जलभराव, बाढ़ के हालात हैं, सावधानी बरतने को कहा गया है। तो सबसे पहले बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई के जाने माने लालबाग चौराहा की, पूरे मुंबई में मानो लालबाग चौराहा और बाकी गणेश मंडलों के विसर्जन यात्रा में उमड़ पड़ी है। कई घंटों से बप्पा मुंबई करो को आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे विसर्जन स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। अब बप्पा के विसर्जन का वक्त करीब आ गया है। मुंबई की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब है और हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। कुछ ही देर में लालबाग चौराहा का विसर्जन होगा। इस दौरान श्रद्धालु बप्पा को नम आंखों से विदाई देंगे और अगले बरस उनके जल्दी आने की कामना करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, यही हर जगह सुनने को मिल रहा है इस वक्त। तस्वीरें देखिए, लोगों की भीड़ देखिए, जनसैलाब देखिए, आस्था का रंग गया यहाँ। श्रद्धा लोगों की दिखाई दे रही है, लालबाग चौराहा आपको दिखाई दे रहे हैं और लोगों की भीड़। अब से कुछ ही देर में विसर्जन होगा। मुंबई की सड़कों पर इस वक्त आम जनता साफ देखी जा सकती है। एजाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, जरा तस्वीरों के जरिए समझाइए कि कितना वक्त है विसर्जन में, क्या खास तैयारियां की गई हैं और कैसे भक्तों में उत्साह दिख रहा है। एजाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार जरा माइक चेक कीजिए। दोबारा जुड़ेंगे एजाज से हम, लेकिन तब तक ये तस्वीरें आप देखिए, आप भी आनंद लीजिए लालबाग चौराहा की भक्ति का। देखिए, नम आंखों से विदाई दी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो आम लोग हैं, जनता है, वो बहुत धूमधाम से इन 9-10 दिनों को मनाते हैं। उसके बाद जब विसर्जन होता है तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं और वो यही कहते हैं कि अगले साल जल्दी से आइए गणपति। ये देखिए, फिर से जुड़ गया एजाज हमारे सहयोगी। एजाज बताइए, क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है वहां?
1: ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के गिरगांव इलाके में, जहां से जो ये लालबाग के राजा हैं उनका काफिला गुजर रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो काफिला है वो लालबाग के जो राजा है वो धीरे धीरे जो गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रहे हैं। हर जो भक्त हैं सभी जो भक्त है वो सभी जो है एक ही लोगों के मन में नारा गूंज रहा है
0: जी। हाँ
1: तो ये पूरा का पूरा तस्वीर देख सकते हैं, ये गिरगांव चौपाटी का यहाँ से जो लालबाग के राजा का जो है अभी अभी जो यहाँ से आगे जो गुजरे हैं भक्त जो है उनको जो नम आंखों से है विदाई देने के लिए आगे गिरगांव चौपाटी की तरफ जो जा रहे हैं। हर किसी का जुबान पर एक ही नारा है, गणपति बप्पा मौर्या पूर्चे बरसे लौकर गया, जो है सभी का जुबान पर है एक ही नारा दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा जो काफिला है लालबाग के राजा का है। आपको बता दें भारी संख्या में जो है पुलिस बल को तैनात किया गया था, लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर जो है जो मुंबई पुलिस के जवान मौजूद है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सभी यहां पर मौजूद हैं और पूरे इस पूरे जो काफिले को है नियंत्रित करते हुए आगे की
0: तरफ। अजाज एक बात बताइए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पर, तो पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक पहुंचने में लगभग कितना वक्त लग जाता है और अभी विसर्जन स्थल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा?
1: जी देखिए कल जी देखिए जो विसर्जन स्थल के करीब तक जो है लालबाग के राजा पहुंच चुके हैं। अब वहां पर जो पूजा जो होगा उसके बाद ही आगे जो है विसर्जन का कार्यक्रम होगा। करीब इसमें भी कम से कम एक से डेढ़ घंटे का वक्त और लग सकता है जी।
0: और क्योंकि इतनी भीड़ है तो जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए लोगों की, कैसे वहां लोगों का जन समूह इस वक्त देखा जा रहा है। इतनी भीड़ को नियंत्रित करना ये भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
1: जी बिल्कुल, चूंकि काफी भीड़ होती है इसी के लिए जो है जितने भी पुलिस जो अलग अलग होते हैं, चाहे फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रॉयल कंट्रोल पुलिस को भी यहाँ पर लाया गया है, अलग से मुंबई पुलिस की टीम है, आरएएफ की टीम है अलग से, ट्रैफिक कंट्रोल की पुलिस जो टीम है, इन सभी को मुंबई की जो अलग अलग सभी सड़कों पर लगाया गया है। खासकर हम इस रूट की बात करें, क्योंकि जितने भी जो गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन के लिए जितने भी जो प्रतिमाएं जा रही है, जो मूर्ति जा रही है, वो सभी इसी रास्ते से जाती है। इसी का कारण जो होता है काफी भीड़ हो जाता है और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस के जो है आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और हर एक चीज को जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर जो है सीसीटीवी कैमरे को भी लगाया गया।
0: ठीक है अजाज, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, अब दोबारा हम आपके पास आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको अनंत अंबानी भी दिख रहे हैं और आपको अब ये देखिए अजय देवगन भी वहां पर पहुंचे थे, बीच उन्होंने साफ किया है। इससे पहले भी वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, अब देखिए बीच साफ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो बहुत 6 फीट से जो ऊपर के जो गणेश जी हैं बप्पा हैं तो उनका विसर्जन किया जाता है और बाकी कृत्रिम एक व्यवस्था की जाती है पानी की, जहां पर 6 फीट से नीचे वाले जो गणेश जी हैं उनकी विसर्जन उनका किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पीएम मोदी की करते हैं। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पीएम मोदी भजन संध्या में शामिल हुए, जेन जी के साथ पीएम ने जमकर भजन गाए, राम नाम की धुन में पीएम मग्न नजर आए। ये देखिए

0: दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम, और आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है और युवाओं को खासा आनंद आता है जब भजन इस तरह से होते हैं। और अलग अलग जगह पर तो अब तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैमिंग जिसे कहा जाता है, भजन में लगभग सब इकट्ठे होते हैं और बाकायदा जो आधुनिक करण होते हैं म्यूजिक के, वो म्यूजिशियन यहाँ पर आते हैं और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। हाथ में झपली होती है, धान मजीरे, सबके साथ राम नाम की धुन। अब बारिश की बात कर लेते हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। यूपी से लेकर बिहार तक भारी बारिश का असर दिख रहा है। यूपी में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं बिहार में बगहा, सुपौल, सहरसा में बारिश और बाढ़ का असर देखने को मिलने लगा। नेपाल के कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, गरियाबंद में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो अगर आपको लग रहा था कि बारिश की वजह से अब सब नॉर्मल हो गया है, तो जरा एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए। बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, नेपाल, देखिए पांच राज्य और नेपाल अभी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा जो झेल चुका है। अब जोरदार बारिश और तूफान अर्नब की बात यहां पर की जा रही है। धीमा पड़ गया है लेकिन उसकी वजह से कई जगहों पर बारिश अच्छी खासी हो रही है। कई जगह तो चेतावनी जारी कर दी है, कई जगह नदियां उफान पर हैं, कई जगह भूस्खलन हो रहा है, झारखंड में भी जैसे आप देख रहे हैं। तो जिसका जिक्र किया जा रहा था अर्नब नाम के उस चक्रवात की बात करते हैं। रफ्तार अब बहुत कम हो गई, भले ही तूफान अब धीमा पड़ गया लेकिन इसकी वजह से उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और यूपी तक बारिश हो रही है और कई घंटों से बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड भी हो रहा है, कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। इसका असर बिहार तक भी दिख रहा है। ये बिहार के बगहा की तस्वीरें हैं जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश का असर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दिखाई दे रहा है। लगातार पानी बरसने से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनने लगी है। कई जगहों पर सड़कें कीचड़ और पानी से भर गई हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी और जलजमाव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इधर यूपी के कई जिलों में भी बारिश हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी बीच रिपब्लिक ऑफ कांगो से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी किनशासा में एक विमान हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। कांगो की सेना के मुताबिक मरने वालों में सेना के दो वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल मुतोम्बो कातालिए टियंदे और लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया के नाम सामने आए हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। विमान हादसे की वजह को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी का भी इंतजार है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज भी मौके पर पहुंच गई हैं। 14 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने तीखा प्रहार बोला। विदेश मंत्री ने कहा कि अब आतंकवादी देश मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, मतलब आप समझिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई थी हंसते मुस्कुराते हुए। मतलब आप सोचिए कि जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है जयशंकर से, विदेश मंत्री से, वो खुद हंस रहा है किस तरह का सवाल वो पूछ रहा है, और उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया एस जयशंकर। मतलब सोचिए पत्रकार सवाल पूछते खुद हंस रहा था, तो आप समझिए कि वो बखूबी जानता है कि वो क्या पूछ रहा है और क्या जवाब उसे मिलने वाला है। चलिए अब बात यूएन में पाकिस्तान को मिले करारा जवाब की। पाकिस्तान को अपनी फजीहत कराने का एक आदत सी हो गई है। पाकिस्तान ने जैसे ही यूएनजीए में कश्मीर का राग छेड़ा, भारत ने उसी मंच से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों पर भारत की प्रतिनिधि पेचल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर लिया। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Wish it on.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
3: जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: पापा
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया
10: है।
12: ला भाई मेरा बैट।
13: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
14: चार्ज हुआ यार।
15: बैट किसका है?
16: टाटा AIG है तो भरोसा है।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
18: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
19: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: बिजली का बिल, पेंट
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
6: अब पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
8: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
11: तो कौन सी बनानी है?
12: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
13: Actually, सर आपकी बेस्ट थी।
6: I like this only.
14: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
15: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
14: असली शहद, असली स्वाद।
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
18: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
19: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
20: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
21: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
18: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
22: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 प्लान रोकने के लिए।
23: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर।
18: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है।
5: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे हम, भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
6: नो वीआईपी दर्शन, नो। एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: माही वे।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: अब वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
8: आया वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
11: तो कौन सी बनानी है?
12: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
13: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
4: आई लाइक दिस ओनली।
14: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
14: अब मैं आराम से चल पाता हूं। कपीवा डायबिटीज जूस।
16: आज उत्तर प्रदेश का विकास सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, करीब करीब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी है, विपुल जल संपदा है, भूमि है, मेहनती कारीगर है और अब उद्योग के लिए अच्छा वातावरण भी बना है। उद्योग के लिए अच्छे वातावरण से मेरे मतलब है एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। निवेश के माहौल की प्राथमिक शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, दूसरा इसके लिए अनुकूल औद्योगिक नीति बने, तीसरा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हो और चौथा फैसिलिटेट करने के उत्साह हो। आज मुझे लगता है कि चारों चीजें उत्तर प्रदेश में मौजूद है इसलिए यहां पर निवेश का माहौल बना है।

जोधपुर एम्स में ड्यूटी के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर ने की आत्महत्या और अब सूरत गवर्नमेंट अस्पताल में एक और रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। दूसरों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हैं? क्या वजह है कि सालों साल मेडिकल की पढ़ाई के बाद जब डॉक्टर बने तो जिंदगी जवाब देने लगी? जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली। डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के

0: रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
1: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
2: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
5: थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूं। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: आज उत्तर प्रदेश का विकास सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, करीब करीब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी है, विपुल जल संपदा है, भूमि है, मेहनती कारीगर है और अब उद्योग के लिए अच्छा वातावरण भी बना है। उद्योग के लिए अच्छे वातावरण से मेरे मतलब है, एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। निवेश के माहौल की प्राथमिक शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, दूसरा इसके लिए अनुकूल औद्योगिक नीति बने, तीसरा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हो और चौथा फैसिलिटेट करने के उत्साह हो। आज मुझे लगता है कि चारों चीजें उत्तर प्रदेश में मौजूद है, इसलिए यहां पर निवेश का माहौल बना है।

जोधपुर एम्स में ड्यूटी के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर ने की आत्महत्या और अब सूरत गवर्नमेंट अस्पताल में एक और रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। दूसरों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हैं? क्या वजह है कि सालों साल मेडिकल की पढ़ाई के बाद जब डॉक्टर बने तो जिंदगी जवाब देने लगी? जोधपुर एम्स में डॉक्टर सुसाइड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सूरत में एक और डॉक्टर ने हाथ की नस काट ली। मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति ने ड्यूटी पर ही आत्महत्या कर ली। डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति 3 साल से सिविल अस्पताल के रेजिडेंट थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी पत्नी होम्योपैथ की डॉक्टर है। योगेंद्र प्रजापति गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म करके लंच के लिए गए तो वापस नहीं लौटे। बाद में लोगों ने देखा कि एनाटॉमी विभाग के डिसेक्शन हॉल में बेहोश पड़े थे, हाथ की नस कटी हुई थी। जब तक डॉक्टर योगेंद्र का उपचार किया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में सनसनी मची है। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका। सूरत के सिविल अस्पताल में 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब डॉक्टर ने आत्महत्या की। डॉक्टर योगेंद्र का 3 महीने का एक बच्चा भी है। 22 सितंबर को जोधपुर एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में भी ऐसी ही घटना हुई थी। ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जोधपुर एम्स में काफी बवाल हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। एम्स मैनेजमेंट पर आरोप लगा कि अनियमित ड्यूटी आवर्स की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर तनाव में है और राज नरेश यादव ने स्ट्रेस की वजह से ही आत्महत्या की। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।

यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ की कश्मीरी डाक पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी के बाद एनडीए के तीन दलों ने भी किए सवाल। चिराग कुशवाहा और टीडीपी ने आयोग को शंका दूर करने की सलाह दी।

पहाड़ों से लेकर मैदानों में मुसीबत बनी बारिश, उत्तराखंड में अलर्ट जारी, तो यूपी के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल भी बंद, झारखंड में भी एहतियात। टोंगो में बड़ा विमान हादसा, दो बड़े सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत। किकविक से राजधानी किनशासा लौट रहा था विमान, तकनीकी खराबी की आशंका। पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर का राग छेड़ा, जैसे पाकिस्तान की फितरत है, भारत ने उसी मंच से पाकिस्तान को आईना दिखाया, खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों पर भारत के प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर लिया और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की प्रीमियर मिलिट्री अकेडमी के ठीक दरवाजे पर रह रहा था। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार भारत इस्तेमाल करता रहेगा। आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे और आतंकियों के लिए न भागने की जगह होगी न छिपने की जगह होगी, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ही साबित किया। इतना ही नहीं, सिंधु नदी के पानी को लेकर भी शहबाज की गीदड़ बप्पी पर भारत ने करारा जवाब दिया। पाक पीएम शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने, बाधित करने या मोड़ने की कोई भी कोशिश एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, जिसका जवाब भारत की तरफ से मुंहतोड़ तरीके से दिया गया।

0: काबू में, बड़ा दर्दनाक हादसा, एक विमान क्रैश में 14 लोगों की मौत, 2 सैन्य अधिकारी भी शामिल। 2 सीनियर मिलिट्री अधिकारियों में मिलिट्री कोर्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल और आर्म्ड फोर्सेस के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट शामिल। कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा, 2 जनरल अधिकारियों के अलावा डेलीगेशन के 12 सदस्य और क्रू मेंबर्स की मौत। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये प्लेन दक्षिण पश्चिमी किकविट से राजधानी किनशासा लौट रहा था, तभी इसमें तकनीकी खराबी आई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि क्रैश की वजह अभी पता नहीं चल पाई। सीसी ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम तेज, विपक्ष ने खुला मोर्चा, इस्तीफे से लेकर इम्पीचमेंट और मुकदमे तक की मांग। एसआईआर विवाद में गिरे सीसी ज्ञानेश कुमार, कांग्रेस समेत विपक्ष के तीखे हमले, बीजेपी बोली बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने का श्रेय। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का ऑल आउट वॉर, कांग्रेस ने कहा इस्तीफा देकर अप्रूवर बने, अधीर ने इम्पीचमेंट की मांग। सीसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष गंभीर आरोप, महुआ मोहित्राणे की कार्रवाई की मांग, बीजेपी ने कहा उन्हें पद्म भूषण मिलना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवालों के बीच चिराग पासवान की नसीहत, बोले ईसीआई को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का हमला तेज, अधीर रंजन बोले इम्पीचमेंट का यह सही मामला, आपराधिक केस भी दर्ज। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, पवन खेड़ा बोले अब वक्त आ गया है ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। ज्ञानेश कुमार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप, बोले 2 चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा, मनमानी का आरोप। सिरमपुर में ममता बनर्जी की बड़ी रैली पर सियासी घमासान, हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी लेकिन राज्य की अपील के बाद कार्यक्रम चला। एसआईआर वोटर लिस्ट में मुद्दे पर सिरमपुर में टीएमसी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार पर साधेंगे निशाना और आगे की रणनीति का ऐलान करेंगी। बिहार में पीड़िता की तस्वीर पोस्ट करने पर मचा बवाल, सीएमओ कर्मचारी पर एफआईआर, तेजस्वी ने सीएम पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की तस्वीर पर बीजेपी का मीसा भारती पर पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा बोले मीसा भारती को तस्वीर दोबारा सार्वजनिक करने का अधिकार किसने दिया। समस्तीपुर में आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन, 3 आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मुख्य आरोपी को 2 दिन की मोहलत। समस्तीपुर केस पर एडीजी का बड़ा बयान, बोले दोषियों को जल्द सजा दिलाना प्राथमिकता, स्पीडी ट्रायल पर जोर। यूपी में भारी बारिश को लेकर सीएम योगी अलर्ट पर, 32 जिलों में बाढ़ का खतरा, 9 जिलों में रेड अलर्ट, 24 घंटे में नुकसान का आकलन और मुआवजे के निर्देश। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, अब आतंकवादी देश मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी में नजरअंदाज किए जाने से कैप्टन अमरिंदर नाराज, बोले पंजाब की राजनीति में 60 साल दिए, हमें सलाह मशवरे में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर का जवाब, बोले पार्टी बदलना अलग बात है, मैं अभी अपनी पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहा। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड पर सियासी संग्राम, विधानसभा में प्रस्ताव पर बीजेपी का हंगामा, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले स्टेटहुड की मांग राष्ट्र विरोधी नहीं, ये जम्मू कश्मीर की पहचान का सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्टेटहुड पर घमासान, बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच उमर का हमला, बोले बीजेपी वोटिंग से भागना चाहती है। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों को फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर एक्शन, सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज। समस्तीपुर में छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्त, 4 आरोपियों को ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन, पहले भी कोर्ट में पेशी हुई थी। अयोध्या राम मंदिर छड़ावा प्रकरण में 8 आरोपियों पर चार्जशीट, सीसीटीवी में रकम हटाने की 200 से अधिक गतिविधियों का दावा। सीसीटीवी मोबाइल चैट और बैंक खातों में कथित साजिश की कड़ियां जोड़ी, नकदी डॉलर आभूषण की बरामदगी और जमीन खरीद वाहन खरीद भी जांच, अब अदालत में होगी साक्ष्यों की परीक्षा। दिल्ली के उत्तरी रिज स्थित बौंचा पार्क का एलजी ने किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा और लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। बिहार में फिर से बाढ़ की स्थिति, नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से पिछले 12 घंटे में कोसी नदी और गंडक नदी में जलस्तर बढ़ा, कोसी में फिलहाल 2.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, कई इलाकों में जलभराव। नेपाल में भारी बारिश से कोसी का जलस्तर बढ़ा, सहरसा में प्रशासन हाई अलर्ट पर, डीएम ने तटबंध का किया निरीक्षण, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। जमशेदपुर में चक्रवात अर्थव का असर, लगातार बारिश से कोल्हान में जलभराव, कई घरों में पानी घुसा। प्रयागराज में बदला मौसम, मौसम का मिजाज, 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने राहत दी है लोगों को। बाढ़ बारिश को लेकर सीएम योगी का सख्त एक्शन, 24 घंटे में नुकसान का आकलन कर मुआवजे के निर्देश। बाढ़ बारिश के अलर्ट के बीच सीएम योगी का अफसरों को फील्ड पर उतरने के निर्देश, प्रभावित परिवारों तक तत्काल मदद पहुंचाने पर जोर। रांची में खराब मौसम का असर, इंडिगो ने 12 फ्लाइट रोटेशन रद्द किए, 24 विमान संचालित प्रभावित। भारी बारिश में अलर्ट के बीच नैनीताल में आज से स्कूल बंद, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। चमोली में आज ऑरेंज और कल येलो अलर्ट, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, आज से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। दुर्गापुर में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। बारामूला के सोपोर में तेज ओलावृष्टि से फसलों पर कहर, धान और फलों की बागों को भारी नुकसान, मुआवजे की मांग। बेगूसराय में पुल से गंगा में गिरा युवक 500 मीटर तक बहता रहा, गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। लखनऊ में खराब मौसम और भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए फैसला। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भजन क्लबिंग इवेंट का आयोजन, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आनंद लेते हुए देखे पीएम। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति का आयोजन, अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं ताकत दिखाई। कश्मीर में तंगधार बॉर्डर पर अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर, दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी इलाज की सुविधा, ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी सर्जरी। वहीं रूस के विदेशी पर्यटकों ने भी उठाया सफाई का बीड़ा, जोशीमठ में 3 दिनों में चला स्वच्छता अभियान। गुजरात के अंबाजी मंदिर में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब, 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा सब। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव, रोशनी सजावट और भक्तों की भीड़ ने माहौल को किया भक्तिमय, 22 से ज्यादा झांकियों में सजा शहर। काठमांडू में नई जीवित देवी कुमारी की पहली नगर यात्रा, आर्या तारा शाक्य ने इंद्र यात्रा में किया नगर भ्रमण, सदियों पुरानी परंपरा के बीच श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। मथुरा में गिरजा महाराज को लगा 21,000 किलो का 56 भोग, अनंत चतुर्दशी पर अर्पित किया गया भव्य भोग। दिल्ली में भी श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और भक्ति के साथ दी पप्पा को बधाई, आस्था कुंज पार्क में बने कृत्रिम तालाब में किया मूर्तियों का विसर्जन। प्रयागराज में धूमधाम से दी गई बप्पा को विदाई, ढोल की थाप पर बप्पा के जयकारों से गूंजा इलाका। राजस्थान के कोटा में भी लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को विदाई दी, कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बप्पा को धूमधाम से दी गई विदाई, विसर्जन जुलूस में बप्पा की 70 विशाल प्रतिमाएं शामिल। हैदराबाद में धूमधाम से दी गई बप्पा को विदाई, हुसैन सागर झील में क्रेन की मदद से किया गया 59 फीट ऊंचे खैरताबाद के पंचमुखी महागणपति का विसर्जन। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने ढोल ताशों की गूंज के बीच बप्पा को विदाई दी, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आके जयघोष। भोजपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे खेसारी लाल यादव, बांटी राहत सामग्री। दिल्ली में कुख्यात नार्को किंग पिंग पार्वती गिरफ्तार, घर से चरस डाइल्यूटेड ड्रग्स बरामद। दिल्ली के मुखर्जी नगर में डीयू छात्रा से अभद्रता गाली गलौज मामला, पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए। छत्तीसगढ़ के बालोद में पिकअप और तहान से भरे ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 7 घायल। भीलवाड़ा में 5,000 के रिफंड को लेकर बवाल, कई युवकों ने दुकान में घुसकर मालिक को पीटा। दिल्ली के मॉडल टाउन में हल्दीराम की दुकान में लगी आग, 25 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लगी, किसी जनहानि की खबर नहीं। धौलपुर में एक दुकान में लगी भीषण आग, तेल के डब्बों की वजह से तेजी से फैली लपटें, घंटों मशक्कत के बाद काबू पाया। गुजरात के भावनगर में पेट्रोल पंप के पास स्कूटी में लगी आग, कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। अहमदाबाद में स्पा सेंटर में लगी आग, मौके पर 8 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, 4 रेस्क्यू। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, केशव चुलांगा एक गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार हुए। जमशेदपुर में ऑटो हटाने को लेकर बवाल, किन्नरों ने ट्रैफिक पुलिस से की हाथापाई, हंगामे पर यातायात प्रभावित। असम के डिब्रुगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, नियंत्रित पिकअप वैन पलटकर स्कूटर सवार पर गिरी, 2 की हालत गंभीर। मेरठ में शॉपिंग करने आई युवतियों से छेड़छाड़, विरोध पर गाली गलौज, सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए 2 आरोपी। बदायूं में सुनसान जगह युवक युवती से मारपीट और छेड़छाड़, वीडियो वायरल करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। वाराणसी में गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का मामला आया सामने, सीसीटीवी वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक का शोरूम के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को रौंदा, कांच के शीशे टूटे, लाखों का नुकसान। चरखी दादरी में 20,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, एसीबी ने दबोच लिया। कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बमबाजी का वीडियो सामने आया, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, परेड निकाली। रांची में बारिश के बीच बड़ा हादसा टला, 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पर पेड़ गिर गया, सभी सुरक्षित। इंदौर में अवैध दवा कारोबार पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 लाख की दवाएं जब्त। बूंदी में धार्मिक जुलूस के दौरान बवाल, रूट को लेकर भिड़े दो पक्ष, नारेबाजी के बाद पुलिस बल तैनात। मंदिर में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी कराई, गुस्से में दूल्हे ने वरमाला और सिंदूर फेंका। मध्य प्रदेश के धार में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 3 की मौत। भिंड में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, सिंध नदी में डूबे 3 बच्चे लापता, रेस्क्यू जारी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वान सिनेमाघरों में रिलीज हुई फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की कहानी पर आधारित पौराणिक ड्रामा श्री रामायण कथा भी थिएटर्स में रिलीज। फिल्म में रामायण से जुड़े प्रसंगों को बड़े पर्दे पर पेश किया गया। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित लव लॉटरी की बॉक्स ऑफिस पर होगी एंट्री। कहानी में कानूनी दाव पेज के साथ रिश्तों का पहलू भी देखने को मिलेगा। एवेंजर्स एंड गेम एनकोर की फिर बड़े पर्दे पर वापसी। मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म दोबारा भारत समेत दुनिया भर में दस्तक देगी। नीम करौली बाबा पर बनी हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई जारी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 377 करोड़ के पार। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत ओडिशा और जैपोरेजिया पर रूस का बड़ा हमला। रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। 14 साल के बच्चे की मौत, 22 घायल। जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अमेरिका ने यूक्रेन रूस के बीच शांति वार्ता के लिए 3 देशों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया सफल, कहा बहुत चीजें होने वाली हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने हूती लड़ाकों को लेकर बड़ी बात कही, बोले हूती किसी से कोई आदेश नहीं लेते और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा ऐलान, कहा हूतियों से निपटने के लिए फ्रांस लाल सागर में भेजेगा अपने सैनिक। यूएन महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन पर भारत ने करारा जवाब दिया। फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। पेटल गहलोत ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। 9/11 हमले के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को घेरा। इसके साथ चेतावनी दी कि सीमा पार आतंकवाद के गंभीर नतीजे होंगे, कहा पाकिस्तान के लोग जिस खुद फॉर्म 47 सरकार कहते हैं उससे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। पेटल गहलोत ने कहा कि यह मेरे देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड़।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। क्या होता है पितृपक्ष, पितृपक्ष के नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

नवंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और ये पितृपक्ष होता क्या है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत तो हो चुका है, सामान्यतः हम उनको पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि सूक्ष्म लोक से इन पितरों का आशीर्वाद परिवार जनों को, परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृ पक्ष के 15 दिनों में जो पितृ होते हैं वो सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं, अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृ पक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान और धर्म का पालन करते हैं। पितृ पक्ष जो होता है वो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को कहा जाता है। इस बार पितृ पक्ष 26 सितंबर से आरंभ हो रहा है, यानी पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 26 सितंबर को होगा और 10 अक्टूबर तक पितृ पक्ष रहेगा, यानी अमावस्या का श्राद्ध 10 अक्टूबर को किया जाएगा। तो कुल मिला के 26 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलता रहेगा। पितृपक्ष पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, धन के इन्वेस्टमेंट में, निवेश में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, अनाज का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जो पितृपक्ष चलेगा इसमें

मानते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जो जल है ये दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दिया जाता है दोपहर के समय में, लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का मध्य दोपहर का समय होता है जब पितरों को जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है, कुश घास लेकर के जल पितरों को दिया जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है, और पूर्वज के देहांत की तिथि पर दान के अलावा किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। जब आप पितृ की मृत्यु के दिन आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, उनका श्राद्ध कर लेते हैं, तो आपके लिए पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। यानी जब तक आप पूर्वज के देहांत की तिथि तक श्राद्ध नहीं कर लेते तब तक रोज दोपहर के समय में जल में काला तिल डाल करके ये जल पूर्वजों को अर्पित करना चाहिए, इसको तर्पण करना कहा जाता है। पितृपक्ष पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कोमल ने हमें लिखा है और कोमल हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1993, शाम के 4:15, अमृतसर, पंजाब। कोमल कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कोमल, अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा विवाह होने में। 2027 के जून से दिसंबर वाले समय में आपके विवाह की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा लग रहा है। विवाह के बाद चंडीगढ़ से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। शीघ्र विवाह हो, बेहतर विवाह हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, काफी बेहतर होगा। तो पितृ पक्ष में नियमित रूप से अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जल अर्पित किया जाता है और उनके देहांत की तिथि पर उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। आखिर परिवार का कौन सा व्यक्ति पितरों के लिए जल अर्पित करेगा या श्राद्ध करेगा, क्या नियम है? घर का जो वरिष्ठ सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है वो रोज तर्पण कर सकता है पूर्वजों के लिए। अगर घर में कोई बड़ा पुरुष सदस्य नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष तर्पण कर सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को और नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में जिन परिवारों में पुरुष नहीं हैं, वहां पर महिलाएं, बालिकाएं तर्पण और श्राद्ध करती हैं, श्रद्धा पूर्वक वो भी कर सकती हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पूर्वजों के लिए जल देगा, उनका तर्पण करेगा या उनका श्राद्ध करेगा, वो पितृ पक्ष की सावधानियों का पालन करेगा, इसके नियमों का पालन करने के साथ अगर आप पूर्वजों को जल देंगे तो अवश्य कल्याण होगा। पितृ पक्ष पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त तो होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। तो पितृपक्ष का तर्पण क्या है, कौन तर्पण करेगा, किस समय करेगा, ये आपने समझा। अब आप अगर पितृपक्ष में तर्पण करते हैं या आपके परिवार में पितृपक्ष का पालन किया जाता है तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करना चाहिए। शाम के समय आप चाहें तो उनके चित्र के सामने दीपक और धूप बत्ती जलाकर प्रार्थना कर सकते हैं। कुतप वेला में यानी मध्य दोपहर के समय में लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में पितरों को तर्पण दें और इसी समय में तर्पण देने का महत्व होता है मध्य दोपहर में। जब आप पितरों को जल देंगे, तर्पण करेंगे तो कुश हाथ में ले लेंगे या कुश की अंगूठी पहन लेंगे और जल में काला तिल मिलाकर पितरों को जल देंगे, तब जाकर तर्पण पूर्ण होगा, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। जो कोई नियमित रूप से पितरों को जल दे रहा है, रोज प्रार्थना कर रहा है यानी पितृपक्ष का पालन कर रहा है, उसको इस अवधि में पितृपक्ष में एक समय सुबह या शाम सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और पितृपक्ष में सामान्यतः सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। और पितृपक्ष आता है आश्विन के महीने में, आयुर्वेद कहता है कि आश्विन में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, तो जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। जब आप अपने पितरों को फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तो हल्की सुगंध वाले सफेद फूल आप पितरों को अर्पित करें, तीखी और तेज सुगंध वाले फूल अर्पित ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके
दोपहर के समय में आप तर्पण करेंगे। अगर पूर्वजों का पिंडदान करना है या श्राद्ध करना है तो वो भी दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके किया जाएगा। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। पूरी गीता ना भी पढ़ पाए तो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का या गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। शास्त्र ये नहीं कहता है कि कर्जा लेकर दबाव में आके आप बेवजह के दान करें जिसमें आप खुद ही कर्ज में आ जाएं, वो उचित नहीं है। कर्ज लेकर या दबाव में प्रेशर में आकर श्राद्ध का कर्म नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

के योग हैं। घर में शुभ कार्य हो सकता है। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों के ऊपर पितृपक्ष की सावधानियां और नियम लागू नहीं होते। कौन हैं वो लोग? देखिए, जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष की सावधानियां और नियम लागू नहीं होंगे। और जिन विवाहिता कन्याओं के स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं उनके ऊपर भी पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। अब मान लिया किसी पुरुष के दादाजी नहीं हैं, तो उनका तर्पण श्राद्ध उनके पिताजी करेंगे। पुत्र के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह से जो सुहागन महिला है, अगर उसके सास ससुर हैं तो पितृपक्ष का पालन सास ससुर करेंगे। उस महिला को किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर एक से लेके नंबर नौ तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर एक, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर दो, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर तीन, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर चार, करियर की समस्या हल होगी। नंबर पांच, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर छह, रिश्तों की समस्या दूर होगी। नंबर सात, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर आठ, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर नौ, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर।
अगला प्रश्न रूपाली ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। रूपाली की जन्म की तारीख है 26 मई 1982। जन्म का समय सुबह के 8:55, हुगली कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्या मेरे स्वास्थ्य में लगी रहती है, तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ कब तक हो पाऊंगी। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अप्रैल 2027 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट चपेट दुर्घटना से और पेट की समस्या से आपको बचना है, सावधानी रखनी है। अप्रैल 2027 के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत खराब मामला दिखाई नहीं दे रहा है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रख करके ले जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर चिकित्सा के लिए जाना है, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीले रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत

राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पूर्णिमा तिथि है और आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से जीवन का तनाव, जीवन की अशुभता कम हो जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों की लामबंदी तेज होकर दिख रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस मुद्दे पर अब सियासी दूरियां भी कुछ कम होती नजर आ रही है। सीपीएम महासचिव एमए बेबी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बीच बताया जा रहा है कि फोन पर लंबी बातचीत हुई है, यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बातचीत में ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर चर्चा हुई। जो सूत्र बता रहे हैं, खास बात यह है कि सीपीएम ने इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की पहल की है और सीसी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ चुनाव सुधारों को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने की जरूरत बताई है। आम आदमी पार्टी, डीएमके, बीजू जनता दल, बीआरएस और विजय की टीवी के समेत कई गैर बीजेपी दलों से भी संपर्क किया गया है। यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद अब तेज हो गई है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब विपक्ष लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, एकजुटता की बात कही जा रही है। विपक्षी सीपीएम महासचिव एम ए बेबी से ममता बनर्जी ने बात की है फोन पर। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब आगे की क्या तस्वीर देखते हैं आप? ये जो बातचीत हुई है, बातचीत होने के साथ सीईसी के खिलाफ सबको जो लामबंद किया जा रहा है विपक्षी दलों को, क्या खबर है आपके पास?
4: हिमांशु, देखिए, ज्ञानेश कुमार जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने एक राजनीतिक इम्पॉसिबल घटनाक्रम को ट्रिगर किया है। ममता बनर्जी और एमए बेबी जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके बीच फोन पर बातचीत होना जिसमें कोई तीसरा पक्ष इन्वॉल्व ना हो, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, ये अपने आप पे बहुत बड़ी घटनाक्रम है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और जो सीपीएम है, इन दोनों के बीच कितनी तीखी राजनीतिक लड़ाई रही है, उसका इतिहास रहा है, हम सबको पता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर और जो इलेक्शन इररेगुलरिटीज जो लगता है, जो विपक्षी दलों को लगता है कि चुनावों में फ्रॉड हो रहा है उनके हिसाब से, इस मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, एमए बेबी ने सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी ने पत्र लिखे थे इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों को, जिसमें ममता बनर्जी शामिल थी, और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन से बाहर नॉन बीजेपी नॉन एनडीए पार्टियों को भी ये पत्र भेजा गया था। इसी पत्र के जवाब में ममता बनर्जी ने कल दिन में एमए बेबी को फोन किया, ये बातचीत लंबी रही। मेरे सूत्र मुझे ये भी बता रहे हैं कि दोनों नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने ये तय किया कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है, जिसमें ना केवल इंडिया गठबंधन की पार्टियां हों बल्कि बाकी पार्टियों को भी शामिल किया जाए। अहम घटनाक्रम हिमांशु ये है कि अरविंद केजरीवाल, बीजेडी बीजू जनता दल, बीआरएस को और विजय की पार्टी टीवीके को भी ये कम्युनिकेशंस भेजे जा रहे हैं ताकि एक बड़ा फोरम बनाया जाए। और क्या दिल्ली में ये प्रोटेस्ट लॉन्च होगा या राष्ट्रव्यापी किस तरह का ये आंदोलन खड़ा होगा, ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन बेहद ही अहम घटनाक्रम हुआ है इस वक्त।
3: अच्छा, एक बात बताइए, कल जो हमने कुछ तस्वीरें देखी, जैसे लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से अलग प्रदर्शन किया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग, ऐसा ही हमने देखा पटना में आरजेडी की तरफ से अलग किया गया, कांग्रेस की तरफ से अलग, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में भी हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तो अभी जो अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, अब इस बातचीत के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द सब एक मंच पर आकर एक साथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे?
4: हिमांशु, कोशिश तो यही हो रही है, चाहे वो आप बात करें ममता बनर्जी की या एमए बेबी की या फिर कांग्रेस पार्टी के भी की भी जो अपील रही है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 29 सितंबर को जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी होने वाली है, उसके आसपास और जिस तरह से बातचीत चल रही है अलग अलग दलों के बीच में, कई सारे कम्युनिकेशंस हो रहे हैं जिनके बारे में लेयर्स में हमें जानकारी मिल रही है, हमारे सूत्र भी कन्फर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि व्यापक स्तर पर पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। हुई है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक भी हो सकती है और इसी बैठक में तय होगा कि किस तरह से सीसी ज्ञानेश कुमार को घेरना है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना है। और अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी आप देखेंगे कि ये जो नैरेटिव है एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करने का, ये नैरेटिव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हमें आमतौर पर दिखता है कि कोई एक मुद्दा आता है और
3: आपके जो सूत्र बता रहे हैं तो ये

यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन में लामबंदी तेज। टीएमसी और लेफ्ट में जमी बर्फ पिघली। ममता सीपीएम आज अच्छे वे में भी बात हुई। आप डीएमके बीजेडी बीआरएस और टीवीके को जोड़ने की कोशिश। जानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी के बाद एनडीए के तीन दलों ने भी किए सवाल। चिराग कुशवाहा और टीडीपी ने आयोग को शंका दूर करने की सलाह। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट पर गरमाई सियासत। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एक्शन, एफआईआर दर्ज। मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। और कांगो में पड़ा विमान हादसा, दो बड़े सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत हुई। किकविट से राजधानी किनशासा लौट रहा था विमान, तकनीकी खराबी की आशंका। और अब वक्त उछला है 100 शहर 100 खबर का। मुंबई में लालबाग चौराहे की भव्य विदाई। विसर्जन के लिए चिरगांव चौपाटी पहुंची गणपति प्रतिमा। अनंत अंबानी भी मौजूद दिखे। पुणे में श्री संत भाऊ साहेब रंगारी गणपति का विसर्जन। पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित की गई प्रतिमा। मुंबई की जुहू चौपाटी पर गणपति विसर्जन। आरती के बाद बप्पा को दी गई भावुक विदाई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। हरियाणा के बहादुरगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा। एनसीआर नहर में डूबने से 3 युवक, 2 के शव बरामद हो गए हैं। तीसरे की तलाश जारी है। मध्यप्रदेश की खंडवा में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। गिट्टी खदान के गहरे पानी में डूबे 2 सगे भाई, 3 युवकों को सुरक्षित बचाया गया। बगहा में 24 घंटे से ज्यादा बारिश। टेस्ट इलाकों में जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बस्तर में 5 दिनों से लगातार बारिश, कई गांव और शहर डूबे। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जमशेदपुर में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हुई। बाढ़ के पानी में बच्चे ने फुटबॉल खेला। प्रयागराज में 2 दिन से बारिश, बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत। दुर्गापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित। सुपौल में कोसी का रौद्र रूप। कोसी बैराज से इस साल का सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया। सुकमा में अर्नब तूफान का असर, भारी बारिश से शबरी नदी उफनी, स्कूल बंद। रांची में बारिश का कहर, 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पर गिरा पेड़, सभी सुरक्षित। गरियाबंद में भारी बारिश से आफत, बाढ़ के पानी में NH-130C बंद। नेपाल में कोसी बैराज के जलस्तर बढ़ गया, 31 गेट खोले गए, रेड अलर्ट जारी। सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बड़ा भूस्खलन। पश्चिम सिक्किम के रिम्बी गांव में भूस्खलन से भारी नुकसान। मिट्टी और मलबे की चपेट में आने से 7 घर, बिजली विभाग के 6 क्वार्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कुछ घर मलबे में बह गए। भूस्खलन के बाद प्रशासन स्थानीय टीमों ने प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया। 128 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। डीडीएमए ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। यूपी के कई जिलों में प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूल बंद करने के आदेश। खराब मौसम के कारण फैसला। यूएन महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन पर भारत ने तीखा पलटवार किया। फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। पेटल गहलोत ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। इस दौरान उन्होंने

9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को घेरा। इसके साथ चेतावनी दी कि सीमा पार आतंकवाद के गंभीर नतीजे होंगे। कहा पाकिस्तान के लोग जिसे खुद फॉर्म 47 सरकार कहते हैं उससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। पेचल गहलोत ने कहा कि यह मेरे देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। कांगो में बड़ा दर्दनाक हादसा, एक विमान क्रैश में 14 लोगों की मौत, जिनमें सेना के 2 सीनियर अधिकारी भी शामिल। 2 सीनियर मिलिट्री अधिकारियों में मिलिट्री कोर्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल और आर्म्ड फोर्सेज और ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट शामिल। कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा 2 जनरल अधिकारियों के अलावा डेलीगेशन के 12 सदस्य और क्रू मेंबर्स की भी मौत। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह प्लेन दक्षिणी पश्चिम के क्विट से राजधानी किनशासा लौट रहा था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि क्रैश की वजह का भी पता नहीं है, जांच जारी है। सीसी ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम तेज, विपक्ष ने मोर्चा खोला, इस्तीफे से लेकर इंपीचमेंट तक मुकदमे की मांग। एसआईआर विवाद में गिरे सीसी ज्ञानेश कुमार, कांग्रेस समेत विपक्ष के तीखे हमले, बीजेपी बोली बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने का श्रेय। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का ऑल आउट वॉर, कांग्रेस ने कहा इस्तीफा देकर अप्रूवर बने, अधीर ने इंपीचमेंट की मांग की। सीसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के गंभीर आरोप, महुआ मोहतराने की कार्रवाई की मांग, बीजेपी ने कहा उन्हें पद्म भूषण मिलना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवालों के बीच चिराग पासवान की नसीहत, बोले ईसीआई को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का हमला तेज, अधीर रंजन बोले इंपीचमेंट का ये सही मामला, आपराधिक केस भी दर्ज हो। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, पवन खेड़ा बोले अब वक्त आ गया है ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे। ज्ञानेश कुमार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप, बोले 2 चुनाव आयुक्त ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा, मनमानी का आरोप। सेरमपुर में ममता बनर्जी की बड़ी रैली पर सियासी घमासान, हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी लेकिन राज्य की अपील के बाद कार्यक्रम चला। एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सेरमपुर में टीएमसी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार पर साधेंगे निशाना और आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। बिहार में पीड़िता की तस्वीर पोस्ट करने पर मचा बवाल, सीएमओ कर्मचारी पर एफआईआर, तेजस्वी ने सीएम पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की तस्वीर पर बीजेपी का मीसा भारती पर पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा बोले मीसा भारती को तस्वीर दोबारा सार्वजनिक करने का अधिकार किसने दिया। समस्तीपुर में आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन, 3 आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मुख्य आरोपी को 2 दिन की मोहलत। समस्तीपुर केस पर एडीजी का बड़ा बयान, बोले दोषियों को जल्द सजा दिलाना प्राथमिकता, स्पीडी ट्रायल पर जोर। यूपी में भारी बारिश को लेकर सीएम योगी अलर्ट, 32 जिलों में बाढ़ का खतरा, 9 जिलों में रेड अलर्ट, 24 घंटे में नुकसान के आकलन और मुआवजे के निर्देश। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने टीका प्रहार करते हुए कहा अब आतंकवादी देश मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी में नजरअंदाज किए जाने से कैप्टन अमरिंदर नाराज, बोले पंजाब की राजनीति में 60 साल दिया, हमें सलाह मशवरे में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर का जवाब, बोले पार्टी बदलना अलग बात है, मैं अपनी पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहा। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड पर सियासी संग्राम, विधानसभा में प्रस्ताव पर बीजेपी का हंगामा, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले स्टेटहुड की मांग राष्ट्र विरोधी नहीं, ये जम्मू कश्मीर की पहचान का सवाल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्टेटहुड पर घमासान, बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच उमर का हमला, बोले बीजेपी वोटिंग से भागना चाहती है, राज्य का दर्जा मेरा नहीं जनता का हक है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भजन क्लबिंग इवेंट का आयोजन, पीएम मोदी शामिल हुए। भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आनंद लेते देखे पीएम ने ढपली भी बजाई। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति का आयोजन, अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। कश्मीर के तंगधार बॉर्डर पर अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर, दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी इलाज की सुविधा, ऑपरेशन सिंदूर में सर्जरी हुई थी। रूस के विदेशी पर्यटकों ने भी उठाया सफाई का बीड़ा, जोशीमठ में 3 दिनों से चला आ रहे हैं स्वच्छता अभियान। गुजरात के अंबाजी मंदिर में उमड़ा आस्था का और भक्ति का सैलाब, 400 किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी पहुंचा राजकोट का अनोखा संघ। इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा का भव्य उत्सव, रोशनी सजावट, भक्तों की भीड़ ने माहौल को किया भक्तिमय। नॉर्वे की संसद में खेलों को लेकर चर्चा, पैरालंपिक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के चेयरमैन शुभम चौधरी की सांसद हिमांशु से मुलाकात। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगा 21,000 किलो का 56 भोग, अन्न चतुर्दशी पर अर्पित किया गया भव्य भोग। गली मोहल्लों की क्रिकेट प्रतिभाओं को बड़ा मंच, यमुना खेल कॉम्प्लेक्स में 26 सितंबर को NCR T20 लीग 8 टीमें आमने सामने होंगी।
भोजपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे खेसारी लाल यादव, बांटी राहत सामग्री, विस्थापितों परिवारों की मदद का भरोसा। दिल्ली में कुख्यात नार्को किंगपिन पार्वती गिरफ्तार, घर से चरस और जलिटेड ट्रक्स बरामद। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ड्यू छात्रा से अभद्रता गाली गलौज के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद में पिकअप और धान से भरे ट्रक में जबरदस्त पड़न, 6 की मौत, 7 घायल। भीलवाड़ा में 5,000 के रिफंड को लेकर बवाल, कई युवकों ने दुकान में घुसकर मालिक को पीटा। दिल्ली के मॉडल टाउन में हल्दीराम की दुकान में लगी आग, 25 दमकल की गाड़ियों ने स्थिति पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में भरी भयंकर आग लगी, जानहानि नहीं हुई कोई। धौलपुर में एक दुकान में लगी आग, तेल के डिब्बों की वजह से तेजी से फैली, कई घंटों बाद काबू पाया। देर रात की भावनगर में पेट्रोल पंप के पास स्कूटी में आग लगी, कर्मचारियों ने हादसा टाला। अहमदाबाद में स्पा सेंटर में लगी आग, मौके पर 8 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, 4 लोगों का रेस्क्यू। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, केशव सुबाला गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम। जमशेदपुर में ऑटो हटाने को लेकर बवाल, किन्नरों ने ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई की, यातायात प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, नियंत्रण पिकअप वैन पलटकर स्कूटर सवार पर गिरी, 2 की हालत गंभीर। मेरठ में शॉपिंग करने आई युवतियों से छेड़छाड़, विरोध पर गाली गलौज, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 गिरफ्तार। बदायूं में सुनसान जगह युवक युवती से मारपीट और छेड़छाड़, वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। वाराणसी में गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का मामला आया सामने, सीसीटीवी वायरल होते ही पुलिस ने आरोपित को धर दबोचा। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, शोरूम के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को रौंदा, कांच के शीशे टूटे, लाखों का नुकसान। चरखी दादरी में 20,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बमबाजी का वीडियो सामने आया, 4 आरोपित गिरफ्तार। रांची में बारिश के बीच बड़ा हादसा चला, 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पर पेड़ गिरा, सभी सुरक्षित। इंदौर में अवैध दवा कारोबारी पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 लाख की दवा जब्त। बूंदी में धार्मिक जुलूस के दौरान बवाल, रूट को लेकर बड़े 2 पक्ष, नारेबाजी के बाद पुलिस बल तैनात। मुंगेर में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी, गुस्से में दूल्हे ने वरमाला और सिंदूर फेंक दिया। मध्य प्रदेश के धार में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के बिंड में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ, सिंध नदी में 3 लोग डूब गए। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म दवान सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की कहानी। पौराणिक ड्रामा श्री रामायण कथा भी थिएटर्स में रिलीज हुई, फिल्म में रामायण से जुड़े प्रसंगों को बड़े पर्दे पर पेश किया गया। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित लव लॉटरी की बॉक्स ऑफिस पर होगी एंट्री, कहानी में कानूनी दावपेच के साथ रिश्तों का पहलू भी देखने को मिलेगा। एवेंजर्स एंडगेम एनकोर की फिर बड़े पर्दे पर वापसी, मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म दोबारा भारत समेत दुनिया भर के थिएटर्स में दस्तक दी। नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी, 377 करोड़ के पार।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: एक दो, एक श्राम।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ,
3: ला भाई मेरा बैट।
1: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
16: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
18: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो तीन झुमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
19: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया।
18: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
8: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
13: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
1: तो कौन सी बनानी है?
16: TMT बार एकदम सॉलिड।
0: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
14: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
20: आई लाइक दिस ओनली।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है।
1: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
2: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: अब पर वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
5: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉक स्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे बैठ। मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
8: तो कौन सी बनानी है?
9: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
10: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।
11: देश भर में SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB संधू जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं इट्स डन ब्रो, हो गया, मान जाओ, राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, नहीं तो नाज़ी युग जब खत्म हुआ था आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।
12: आई हैव कम टुडे टू द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन एंड गिवन अ कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन हियर अगेंस्ट चोर ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश चोर कुमार, द सॉरी फिगर हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दिस कंट्री एंड apparently he enjoys immunity under the CEC and EC Act of 2023 section 16 which says that the election commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
13: ye log chunav aayog mein nirvachan sadan mein loktantra ka slaughter house chala rahe hain, democracy ka slaughter house, katal khana bolte hamare yahan, aur uska mukhya hai Nanesh Kumar, ye humne nahi kaha। और दो चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है, अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है,

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन में लामबंदी तेज। टीएमसी और लेफ्ट में जमी बर्फ पिघली। ममता सीपीएम महासचिव एमएबीबी में बात। आप डीएमके बीजेडी बीआरएस और टीवीके को जोड़ने की कोशिश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। पुलिस ने चार्जशीट में बनाया सरकारी गवाह। आरोपियों की लिस्ट में 8 नाम। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट पर गरमाई सियासत। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एक्शन, एफआईआर दर्ज। मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। और कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 बड़े सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत। किकविट से राजधानी किंशासा लौट रहा था विमान, तकनीकी खराबी की आशंका।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 10 बज गए हैं। बुलेटिन में चार बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों से जुड़ी, जिसे लेकर अब एनडीए के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। सहयोगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और टीडीपी की ओर से विवाद पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण देने की मांग की है कि जो शंकाएं हैं उनको दूर कीजिए। दूसरी ओर आयोग पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों से सियासत गरमाई हुई है। इसके साथ ही बुलेटिन में बात होगी जमुई बदसुलूकी मामले की पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर अब जो सियासी विवाद छिड़ा हुआ है उसकी पहचान उजागर करने के विवाद के बीच मुख्यमंत्री दफ्तर के एक अधिकारी के खिलाफ FIR हुई। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNGA वहां पर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, जब पाकिस्तान ने दी तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले बात चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद और एसआईआर प्रक्रिया पर आरोपों को लेकर विवाद की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी हमलों के बीच अब एनडीए के बीजेपी के जो सहयोगी हैं, सहयोगी दलों की ओर से भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। तीन तस्वीरें देख रहे हैं आप। मांग की जा रही है कि पूरे विवाद पर चुनाव आयोग सफाई दे ताकि चुनाव प्रक्रिया पर देश के लोगों का भरोसा कायम रहे। अब इसमें LJP वो भी इसमें शामिल है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा RLM और TDP।
1: ज्ञानेश कुमार मस्ट रिजाइन इमीडिएटली।
2: राहुल गांधी जी ने आपके सामने एक बार फिर एक PPT का प्रदर्शन किया।
3: ये भाजपा की इलेक्शन कमेटी SIR के जरिए लोगों को वोट काट रही है।
4: कमीशन डज नॉट विशेस इटसेल्फ एंगेज।
5: इतना मर्जी झूठ बोले, लोग जागरूक हैं, इनके झूठे बातों में भ्रम फैलाने वालों में नहीं आने वाले।
6: SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों का मुद्दा इन दिनों देश की सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस का रुख आक्रामक है, विपक्षी हमले तेज है, सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। सीधा हमला PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हो रहा है।
1: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री। This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens.
7: और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति।
6: और अब इन सवालों का सीधा असर NDA में भी दिखने लगा है। BJP के सहयोगी दलों की ओर से चुनाव आयोग से विवाद पर सफाई मांगी जा रही है।
8: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे CEC की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए CEC को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
1: उससे पहले के इलेक्शंस फेक थे।
6: ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने चुनाव को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो, लेकिन नई बात ज्ञानेश कुमार को लेकर NDA के सहयोगी दलों का जवाब मांगना है। विवाद के बीच BJP के एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लिखा, SIR से संबंधित विवाद पर जनता में काफी उलझन की स्थिति पैदा हो गई है, विषय को एड्रेस करने की जरूरत है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या NDA के साथी दल चुनाव आयोग के जरिए सरकार को ये बता रहे हैं कि वो इस मामले को बेहद गंभीरता से ले, क्योंकि मामला चुनाव से जुड़े संदेह का है। गौर करने वाली बात ये है कि BJP की तरफ से वोट चोरी के आरोपों को लगातार खारिज किया जाता रहा है। ताजा आरोपों के तुरंत बाद भी पार्टी का जवाब ऐसा ही रहा।
2: पहली बात, उस न्यूज रिपोर्ट में किसी भी इलेक्शन कमीशन का कोट है हां या नहीं? नहीं तो किस आधार के ऊपर कोई बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह बोला है? किसी भी न्यूज के बारे में मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कहता हूं, बाकायदा संबंधित व्यक्ति को क्वेश्चन पूछा जाता है और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। वो स्टेटमेंट कोटेड है? नहीं। एक भी क्या कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट है कि सर्वसम्मत से निर्णय ना हुआ हो? नहीं।
6: लेकिन एनडीए में उठ रहे सवालों की झड़ी बढ़ती जा रही है। टीडीपी के देवरायालू ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए जब भी कोई सवाल उठाया जाता है तो उचित स्पष्टीकरण देना और पारदर्शिता बनाए रखना संस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगा। गठबंधन के भीतर से उठ रहे इन सवाल सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं। आने वाले दिनों में चुनावी प्रक्रिया के सवालों पर हमले और तेज हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: चुनाव आयोग पर आरोपों के बीच एनडीए से सवाल उठने के बाद विपक्षी दलों का हमला अब और तेज हो गया है।
9: तो उनके तोते उड़ रहे हैं ऐसा उनको महसूस हो रहा है, उनको यह आभास हो रहा है कि अब जो है उनके पॉलिटिकली विनाश की घड़ी आ गई है। अब उनका दिखाई पड़ रहा है, दी एंड का टाइटल दिखाई पड़ रहा है। रील 18 जितना कर सकते थे जितना किया उन्होंने, जैसे किया उन्होंने, क्या नहीं किया उन्होंने, हर तरह से किया उन्होंने, भरपूर लाभ उठाया, भरपूर फायदा उठाया हमारे इलेक्शन कमीशन का और खासकर हमारे ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व का।
10: संविधान ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाया है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने चुनाव आयोग को मोदी सरकार का एक सरकारी विभाग बना दिया है। दूसरी बात की ज्ञाने जो जिसकी ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति ही अगर निष्पक्ष नहीं है तो निष्पक्ष चुनाव की आशा करना मैं समझता हूं, तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग का काम है लोगों के वोट को बचाना और ज्ञानेश कुमार का काम हो गया है सवालों से बचना।
0: देखिए विपक्ष के जो लोग हैं वो तो सवाल उठा रहे हैं और अपने कह रहे हैं कि भाई जो शंकाएं हैं आम वोटर्स की वो दूर करिए और ये काम है चुनाव आयोग का। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब इस मामले में आगे क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आगे इस मामले में क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है, विपक्ष की तरफ से आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी?
11: देखिए विपक्ष की तरफ से जो घेराबंदी है वो मजबूत होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी और सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी बात करते हैं फोन पे, तो इसका मतलब ये है कि जो जिनके भी सबसे तीखी राजनीतिक लड़ाइयां रही हैं वो लोग भी एक साथ आ रहे हैं सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। अब किस तरह की मोर्चाबंदी हो रही है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले सड़क की मोर्चाबंदी, यानी कि जो मैसेज राहुल गांधी या विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने ट्विटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके दिए हैं, अब उसको ग्राउंड तक ले जाने की कोशिश शुरू हो रही है और यही वजह है कि अलग अलग विपक्षी दलों को फोन जा रहा है, अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पे ममता बनर्जी ये रोल प्ले कर रही हैं तो कहीं सीपीएम की तरफ से ये घटनाक्रम किया जा रहा है, कहीं कांग्रेस पार्टी कंसल्टेशन में। तो जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, आने वाले दिनों में या यूं कहे तो अक्टूबर के महीने में एक साथ एक मोर्चा बनाकर भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकती है। विपक्ष को अब लग रहा है कि बीते कई महीनों से अलग अलग राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, जो सवाल उन्होंने उठाए वो तमाम सवाल कम्युनिकेशंस के थ्रू ईसी के अंदर ही उठ रहे थे और इस बात का खुलासा रिपोर्ट में हुआ है। जो रिपोर्ट में दावे किए गए हैं, विपक्ष को लगता है कि उनका स्टैंड अब विंडिकेट हुआ है, वो सच कह रहे थे, सही कह रहे थे, ये बात इस रिपोर्ट के हवाले से विपक्ष अब कहने की कोशिश कर रही है।
0: हमारे साथ बने रहिए। देखिए आपने क्योंकि एक खबर का जिक्र किया कि अब बहुत से लोगों की बात हो रही है, आपस में बात हो रही है, तो जरा उसके बारे में भी बता देते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी मोर्चाबंदी तेज होती जा रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जैसा भी अमित भी बता रहे थे कि इस विवाद को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सीपीएम महासचिव एमए बेबी की फोन पर बातचीत हुई। दरअसल एमए बेबी ने 23 सितंबर को लिखे अपने पत्र में इंडिया ब्लॉक के दलों को एक मंच पर लाने की जरूरत पर जोर दिया था ताकि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा सके और चुनावी सुधारों के लिए अभियान शुरू किए जा सके। ममता बनर्जी की ओर से इस पत्र का जवाब दिया गया और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि टीएमसी और सीपीएम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सीईसी ज्ञानेश कुमार और देश में हो रही चुनावी धांधली जैसा विपक्ष कहता आया है, दावा करता आया है, इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाना चाहिए। अमित बने हुए हमारे साथ। अमित, राष्ट्रव्यापी अभियान की तो बात की जा रही है और आपने भी बताया कि आपके सूत्र भी कह रहे हैं सब एक मंच पर आकर एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का क्या? क्योंकि एनडीए के भी कुछ साथी ये कह रहे हैं कि आपको आम वोटर्स की शंकाएं दूर करनी चाहिए, तो क्या ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पर कुछ रिएक्शन आए?
11: मानसो, देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पहले सूत्रों के हवाले से जवाब दिया, फिर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया जिसमें तीनों कमिश्नर्स की तरफ से वो एंडोर्समेंट था, और उसके बाद फिर कल सूत्रों के हवाले से एक बार फिर खबरें आई और वो कह रहा है कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जिसमें इलेक्शन कमीशन के तीनों कमिश्नर्स का एंडोर्समेंट ना हो, यानी कि तीनों कमिश्नर्स ऑन बोर्ड थे। लेकिन वो सवाल एक तरह से उसका जवाब नहीं आ रहा है जो दो प्रमुख सवाल है। पहला सवाल कि उन बातों का क्या जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया कि चार महीने तक डिसीजंस लिए जा रहे थे जिसमें दो इलेक्शन कमिश्नर्स को उसकी सूचना ही नहीं थी, फॉर्म 6 में जो तब्दीली की गई जिसके बारे में नाराजगी बताई गई है, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रवैये की बात का हवाला दिया जा रहा है या दावा किया जा रहा है उस रिपोर्ट में, तो ये सारे सवाल बने हुए हैं। अहम बात क्या है, आप सही कह रहे थे कि टीडीपी और चिराग पासवान और बीजेपी के अलायंस सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी के स्ट्रैटेजिक अलायंस भी अब सवाल उठा रहे हैं। एक तरह अलाय तो नहीं कहेंगे लेकिन इशू बेस्ड मुद्दों पे जिनका समर्थन मिलता है, जैसे वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश से कई मामलों में बीजेपी का समर्थन कर चुकी है। वाईएसआरसीपी खुद कह रही है, जिसने पहले समर्थन किया था, कि रिविजिट कीजिए एलओपी सीजीआई और पीएम का पैनल बनाइए इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने के लिए।
0: देखिए, वोटर सर्वोपरि रहता है और अगर वोटर के मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल है, तो उसके जवाब देने तो बनते हैं और यही बात अब उठ रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जुबानी जंग के साथ साथ अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है जो आमतौर पर हमेशा देखा जाता है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक तस्वीर जारी किया, ये देखिए, ये वो तस्वीर है, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। तस्वीर पर तब और अब टाइटल के साथ बीजेपी के शासनकाल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अंतर दर्शाने की कोशिश की गई है। अब इसमें देखिए, एक तरफ आपको तब दिख रहा है जहां पर आप देखिए लाल टोपी, अब पीठ से अगर आप पहचान सकें तो शायद अखिलेश यादव को उसमें दर्शाया गया है और वहां पर आप देखेंगे कि भेंट वगैरह दी जा रही है। तो दूसरी तरफ अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसुनवाई करते हैं तो वो तस्वीरें यहां पर दिखाई जा रही है। अब बात पीएम मोदी की, दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर सामने आई। भव्य तस्वीर थी, अलग तस्वीर थी, क्योंकि वहां पर भजन क्लबिंग हो रही और पीएम मोदी भी भजन संध्या में शामिल हुए। जेन जी के साथ पीएम ने जमकर भजन गाए, राम नाम की धुन में पीएम अंतर्मुग्ध नजर आए। दर्शकों के बीच पहली पंक्ति में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे भजन गायक के रूप में नजर आए। देखिए, जब भजन मंच से गाया जा रहा है तो वो भी ताली बजा रहे हैं।

0: बात अब जुमई केस की करेंगे। जुमई कांड की पीड़ित की पहचान उजागर करने का मामला गर्मा गया। आरजेडी ने इसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री के हैंडल से पीड़ित की तस्वीर शेयर की गई थी, हालांकि कुछ देर बाद उसको डिलीट कर दिया गया था और इसीलिए सीएम पर FIR की मांग अब की जा रही है।
1: जमुई में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सख्त एक्शन और मैसेजिंग के चक्कर में कुछ ऐसा कर गए कि बिहार में विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। हुआ ये कि सम्राट चौधरी जमुई पीड़िता और उसके परिजनों से मिलते हैं और मुलाकात की फोटो मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की जाती है, जिसमें पीड़िता और उसके परिजनों का चेहरा साफ साफ दिखाया जाता है। बस इसी बात को लेकर विपक्ष अड़ गया।
2: ये जो था ये तो सम्राट चौधरी है ना, उनके हैंडल से आया ना। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, और आपको समझ में नहीं है कि बिना आपसे पूछे बिना आपकी जानकारी के एक्स पे कुछ भी लिख देगा कोई। हम भी एक्स पे हैं तो बिना हमसे पूछे अगर कोई चलाता है तो कोई बिना हमको दिखाए बिना हमसे पूछे देश दुनिया की खबर ऐसे ही लिख देगा फेसबुक पे एक्स पे।
1: हालांकि पोस्ट शेयर करने के कुछ ही देर बाद डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन आरजेडी इसको लेकर सीएम सम्राट पर हमलावर है। आरजेडी सांसद मीसा भारती मुख्यमंत्री पर FIR की मांग कर रही हैं। सीएम पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि सीएम ऑफिस के कर्मचारी पर।
2: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
1: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गईं, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो सीएम पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए।
3: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इनको तो इनके ऊपर बिहार पुलिस तुरंत पॉक्सो एक्ट लगाए। जमुई में या और कहीं भी घटना हुई है तो पुलिस ने कई लोगों पर 80-90 लोगों पर जो है पॉक्सो एक्ट लगाया है। अगर मुख्यमंत्री पर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा, कौन मानेगा पॉक्सो एक्ट को?
1: सम्राट चौधरी पर FIR तो नहीं हुई, लेकिन मीसा भारती का जिक्र FIR में जरूर है कि बिना जांच के किसी व्यक्ति को दोषी ना ठहराया जाए। आज तक ब्यूरो।
0: रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। रोहित, बिहार में अपराध बढ़ रहा था, छेड़खानी के मामले सामने आ रहे थे, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था ही, लेकिन अब जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है पीड़ित की पहचान उजागर करने पर, ये किस ओर जाती हुई दिख रही है?
4: देखिए, पूरा मामला जो 2 दिन पहले सामने आया यानी परसों शाम में, जमुई की जो पीड़िता थी उसके परिवार वालों ने मुलाकात की सम्राट चौधरी से, मुख्यमंत्री से, और उसके बाद फोटो जो है साझा किया गया सीएम के हैंडल से, लेकिन इसके बाद ही तूल पकड़ने लगा ये पूरा मुद्दा। तेजस्वी से लेकर मीसा भारती तक ने भी सम्राट चौधरी पर पॉक्सो एक्ट लगाने का मामला जो है उठाया। मीसा भारती कल खुद सचिवालय थाना पहुंचकर FIR दर्ज कराने के लिए वहां लंबे समय तक वहां बैठी रही, लेकिन देर शाम होते होते जो जानकारी आई कि जिस स्टेनोग्राफर ने यानी सीएम ऑफिस में जिस स्टेनोग्राफर ने ये तस्वीर अपलोड कर दिया था सीएम के हैंडल से, उसको चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसके खिलाफ कल देर शाम जो है FIR भी दर्ज कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि इस पूरे प्रकरण से मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस स्टेनोग्राफर की गलती है जो मुख्यमंत्री के बिहाफ पर कह सकते हैं उनके जो फोटोज या कुछ खबर जो है वो अपलोड करता है उनके हैंडल से, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर लिया गया है। लेकिन विपक्ष इससे मानने को तैयार नहीं है और लगातार मांग कर रहा है कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया जाएगा तो फिर किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा।
0: और इसीलिए अब मामले पर काफी राजनीति भी हो रही है, वो अब देख भी रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें, UN के मंच पर भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया, आईना दिखा दिया। पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर का राग छेड़ा, भारत ने उसी मंच से पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों पर भारत की प्रतिनिधि पेचल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर लिया और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र कर दिया। कहा कि वो पाकिस्तान की प्रीमियर मिलिट्री अकेडमी के ठीक दरवाजे पर रह रहा था। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार भारत इस्तेमाल करता रहेगा, आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे, और चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकियों के लिए ना भागने की जगह होगी और ना छिपने की जगह होगी।
5: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised and continued terrorism by Pakistan will have consequences. It will understandably call into question what were premised on friendship and goodwill. We are confident that this assembly will recognize Pakistan and its policies for what they really are, not what its representative mendaciously projects it to be. Reiterating falsehoods year after year does not make them true. Pakistan's terrorism, deceit, and duplicity will neither benefit it nor the world. I thank you, Mr. President.
0: दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा था और साथ ही शहबाज ने इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौते को लेकर भी जमकर जहर उगला और भारत को गीदड़ भभकी दी, जिसका भारत ने तुरंत पलटवार किया।
6: आई अश्योर माय कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद फुलेस्ट अथॉरिटी एट माय कमांड दैट वी शैल कंटिन्यू टू एक्सटेंड our full diplomatic, political and moral support to them till they are granted their inalienable right to self-determination. Kashmir has and always will be Pakistan's jugular vein. Our legitimate stand that the treaty remains valid, binding and fully operative has been vindicated beyond any ray of doubt. Ladies and gentlemen, water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of the waters will be treated as an act of war.
0: हालांकि भारत की तरफ से पेचल गहलोत ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान को बताया कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था और अविभाज्य अंग रहेगा। इससे पहले यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने टीका प्रहार बोला। विदेश मंत्री ने कहा कि अब आतंकवादी देश मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और उसी वक्त लताड़ दिया।
7: When your government stops sponsoring terrorism in Pakistan?
8: A terrorist country is asking me that question?
7: They are rude.
8: Come on.
7: Can you just tell us when your government stops sponsoring terrorism in Pakistan?
8: A terrorist country is asking me that question?
7: They are rude.
8: Come on.
0: रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
11: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पीटी नहीं दिख रही है।
12: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
13: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
4: इत्ता माही वे।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
17: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट।
17: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
19: इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिजली का बिल,
1: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: वे।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
12: JK Maxx Paints.
11: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
4: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन में लामबंदी तेज, टीएमसी और लेफ्ट में जमी बर्फ पिघली, ममता सीपीएम महासचिव, एमएबीबी में हुई बात, आम आदमी पार्टी डीएमके बीजेडी बीआरएस और टीवीके को जोड़ने की कोशिश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट, पुलिस ने चार्जशीट में बनाया सरकारी गवाह, आरोपियों की लिस्ट में 8 नाम। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट पर गरमाई सियासत, सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एक्शन, एफआईआर दर्ज, मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। में बड़ा विमान हादसा, दो बड़े सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत, किकविट से राजधानी किनशासा लौट रहा था विमान, तकनीकी खराबी की आशंका।

0: अभिजीत, 2 अक्टूबर से आपने घोषणा की है कि आप आंदोलन की शुरुआत करेंगे। क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आपकी स्पेसिफिक मांग है इस पूरे मामले को लेकर, और आपका ये कहना है कि किसी भी हालत में ज्ञानेश कुमार को जाना होगा, और अगर ज्ञानेश कुमार 48 घंटे में नहीं जाएंगे तो आप सड़क पर उतरेंगे?
1: जी सर बिल्कुल, अगर ज्ञानेश कुमार रिजाइन नहीं करते तो हम एक मास एजिटेशन शुरू करेंगे जो कंट्री वाइड होगा। उसकी शुरुआत हम मुंबई से करेंगे। और ज्ञानेश कुमार को क्यों जाना चाहिए? लोकसभा इलेक्शन में जैसे ही बीजेपी मेजोरिटी के नीचे आ जाती है, एक पैनिक बटन प्रेस होता है। उस पैनिक बटन के बाद देश भर में 13 करोड़ वोट डिलीट हो जाते हैं। अगर हम याद करेंगे लोकसभा इलेक्शन, तो वहां पर बीजेपी और अपोजिशन का जो डिफरेंस था वो बस 2% का था। अब ये 13 करोड़ वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स में से लगभग 13 से 14% वोटर्स बनते हैं। तो ये 13-14% वोट अगर हट जाएंगे तो इससे फायदा किसको होगा? और हम देख रहे हैं जहां जहां वोट डिलीट हो रहे हैं वहां फायदा किसको हो रहा है? वहां फायदा क्लियरली बीजेपी को हो रहा है। अगर हम ये मानकर भी चले कि बीजेपी का और वोट डिलीशन का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंडिपेंडेंटली, बहुत न्यूट्रल तरीके से काम कर रहा है, तो फिर भी उसके बाद जहां जहां वोट डिलीट होता है वहां पर बीजेपी को ही फायदा क्यों होता है? और इसके पीछे एक पैटर्न भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कोई डेटा देता है नहीं। जो वो डेटा रिलीज करते हैं वो मशीन रीडेबल डेटा भी नहीं है। अगर हम पैटर्न नोटिस करेंगे कि 2024 में क्या हुआ था, 2024 में 4-5 बड़े चीफ मिनिस्टर्स ने साथ में आकर कैंपेन करा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उनमें से थे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, पिनाराई विजयन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे। इन लोगों के साथ हुआ क्या है? उद्धव ठाकरे की पहले पार्टी तोड़ी गई, उनके पार्टी का सिंबल किसी और को दिया गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट पर 40,000 वोट डिलीट हो जाते हैं, वो कुछ 4-5,000 वोट से हार जाते हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सीट पर वोट डिलीट होते हैं, वो चुनाव हार जाती है। एमके स्टालिन की सीट पर वोट डिलीट होते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। केरला में वोट डिलीट होते हैं, पिनाराई विजयन अब सीएम नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या ये एक वेल थॉट प्लान था सारे बड़े चीफ मिनिस्टर्स को हराने का? क्योंकि ऐसा तो नहीं मान सकते कि ये एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर मान लिया हम एंटी इनकम्बेंसी थी, तो ये एंटी इनकम्बेंसी बस वहीं पर क्यों दिखती है जहां पर अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर थे? गुजरात में बीजेपी पिछले 20-25 साल से सत्ता में, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं वेल थॉट प्लान लग रहा है। और इसमें बस इलेक्शन कमीशन नहीं है सर, ये मतलब एक पूरा स्टेप बाय स्टेप जाते ही है। पहली शुरुआत हुई थी एमएलए और एमपी पोच करने से, ईडी सीबीआई को भेजकर एमएलए तोड़ो, एमपी तोड़ो, उसके बाद पार्टी तोड़ो, पार्टी तोड़ने के बाद इलेक्शन।
0: लेकिन अभिजीत, आज की स्थिति में आप जो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं दिखती, ऐसे कई उदाहरण आपको दिखाई देंगे कि जहां पर एंटी इनकम्बेंसी के वजह से, जैसे कर्नाटक का उदाहरण अगर हम देखें कि जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक जो मैंडेट मिला वो इससे पहले उनको नहीं मिला था, कभी बिहार में कभी ऐसा मैंडेट नहीं मिला था। उसी तरीके से कर्नाटक में भी कभी इस तरीके के मैंडेट कांग्रेस पार्टी को पहले नहीं मिला था जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर जीती है। या माने केरल के भीतर हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी वर्क कर पाई, तमिलनाडु के भीतर हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी वर्क कर गई, झारखंड में हमने देखा उसी तरीके से कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते एंटी इनकम्बेंसी नहीं वर्क किया और वहां पर सरकार रिपीट एक तरीके से हुई। तो ये सारे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। आप किस इंफरेंस के आधार पर, क्योंकि फिलहाल तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में बिना ज्ञानेश कुमार का पक्ष जाने या वो अपनी भूमिका रखे बिना

0: उनका इस्तीफा मांगना या सीधे उनको पद से हटाना, क्योंकि आसान नहीं है उनको हटाना, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है, उनके खिलाफ महाभियोग लाना पड़ेगा। आपको भी पता है कि यह अधिकार पार्लियामेंट के पास है, सरकार डायरेक्टली उनको नहीं हटा सकती।
1: नहीं सर, बिल्कुल ज्ञानेश कुमार जी का पक्ष हम जानना चाहेंगे। ज्ञानेश कुमार अपना पक्ष रखे तो उनका पक्ष कौन रख रहे हैं? संबित पात्रा रख रहे, सुधांशु त्रिवेदी रख रहे। मतलब ये बहुत ही वियर्ड चीज है कि सवाल किए जा रहे ज्ञानेश कुमार से, जवाब दे रही है बीजेपी। तो यहाँ तो हैंड इन ग्लव्स आप यहीं पर हो गए। और दूसरा चीज, सही बात है आपकी, कुछ स्टेट से जहां पर अपोजिशन जीता है, लेकिन देखिए अगर हम फिक्सिंग की बात करें, अगर कोई क्रिकेट मैच फिक्स होता है तो उसमें सारे कैचेस ड्रॉप नहीं किए जाते हैं। नो बॉल डालनी तो हर एक बॉल नो बॉल नहीं डाली जाती है। कुछ कैचेस आपको पकड़ने भी पड़ते हैं, कुछ गेंदे आपको अच्छी भी डालनी पड़ती है ताकि मैच लास्ट ओवर तक चला जाए, ताकि लोगों को लगे कि मैच जेन्युइन हो रहा है। तो वो तो इल्यूजन मेंटेन करने के लिए थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना, बस वही चल रहा है।
0: दूसरा एक अहम सवाल यह है, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि विपक्ष को अब चुनाव पर बहिष्कार डालना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इस बात को मानने को तैयार है, क्योंकि जब राहुल गांधी को कल स्पेसिफिकली पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि यह ध्यान भटकाने के लिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप बहिष्कार करेंगे चुनाव का। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी देखिए पूरे जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है कि किस तरीके से चुनाव हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। क्या आपको लगता है कि बहिष्कार यही एक माध्यम है कि इसके खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, या डटकर साथ में चुनाव लड़े तो शायद उसका असर एक तरीके से अलग तरीके से दिखाई देगा?
1: सर, अपोजिशन को जो करना है वो तो अपोजिशन फाइनली वही डिसाइड करेंगे। हमें जो ऐसा लगता है कि अगर चुनाव रिग हो रहे हैं, जो बहुत ही एविडेंटली रिग हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो कहीं ना कहीं आप लेजिटिमाइज कर रहे हो उस रिगिंग को, क्योंकि जनता को लगेगा नहीं यार इलेक्शन अपोजिशन लड़ रहा है और देखो क्लोज मैच हो रहा है, 2% का ही गैप था, देखो यार मतलब लास्ट ओवर तक तो मैच जा रहा है तो मैच देख लेते हैं ना पूरा। तो वो कहीं ना कहीं वो इल्यूजन मेंटेन कर रहा है। वो एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि हाँ हमारे देश में चुनाव रिग हो रहे हैं और उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा।
0: नहीं तो क्या होना चाहिए? अगर ज्ञानेश कुमार हट जाते हैं तो आपको लगता है कि चुनाव ठीक तरीके से हो जाएंगे? स्पेसिफिक आपकी डिमांड क्या रहेगी कि क्या चुनाव सीईसी का इस्तीफा कराए?
1: ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन वुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि क्लियरली ज्ञानेश कुमार ये अपने मन से तो नहीं कर रहे, उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे, वो ऑर्डर्स किससे मिल रहे वो हम सबको पता है, वो अमित शाह और मोदी जी के इशारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जो एसआईआर का लिस्ट है वो फ्रीज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस लिस्ट के बाद ही हम देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी उतनी सारी सीटें जीत रही है जितने वो पीक मोदी वेव में भी नहीं जीती थी। इतनी सारी सीटें, इतने सारे स्टेट्स वो जीत रहे जितना पीक मोदी वेव में भी नहीं जीते थे वो। तो कहीं ना कहीं एसआईआर का जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वो फ्रीज होना चाहिए, जो पुरानी वोटर लिस्ट थी उस पर करा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि 13 करोड़ वोटर्स इललेजिटिमेट थे, तो क्या इसका मतलब नरेंद्र मोदी आज जो प्रधानमंत्री बने हैं 2024 के इलेक्शन की जीत पर, तो क्या वो भी इललेजिटिमेट वोटर्स से जीते?
0: ठीक, आखिर में आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि आपने कहा है कि 2 अक्टूबर से आपका आंदोलन शुरू होगा, 48 घंटे की आपकी डेडलाइन थी, तो ये आंदोलन किस तरीके से आप करने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि मुंबई में इस बार आप सोच रहे हैं कि आंदोलन करेंगे 2 अक्टूबर से, यानी गांधी जयंती से आप ये आंदोलन शुरू करने की सोच रहे हैं, किस तरीके से ये आंदोलन होगा?
1: जी बिल्कुल, गांधी जयंती के अवसर पर ही हम शुरू करेंगे, बिकॉज गांधी जी का एक सिग्निफिकेंस रहा इस देश में, इज द सोल ऑफ दिस नेशन, और उस दिन से हम इस देश का लोकतंत्र, इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू करेंगे फॉर फ्री फेयर एंड फेयर इलेक्शन। और जब तक वो अचीव नहीं होता, जब तक ज्ञानेश कुमार रिजाइन नहीं करते हैं, जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं इंश्योर किए जाते हैं, वो आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज्ञानेश कुमार का रेजिग्नेशन हो गया तो उसके बाद हम ये मानकर चले कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रेजिग्नेशन तो उनका बनता है, क्योंकि उन्होंने जो करा है उसमें अब बस लोगों का ही वोट नहीं चुराया जा रहा है, जो दो और कमिश्नर से इलेक्शन कमीशन,
0: लेकिन अभी जी देखिए ये लंबी प्रक्रिया होती है, आपको भी पता है कि कुछ डिमांड्स इमीडिएट डिमांड्स होती है, ये लंबी प्रक्रिया है, रिफॉर्म की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, चलती रहती है। और चुनाव आयोग में आपको भी पता है कि सालों से बदलाव होते आए, तब जाकर कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाने की कोशिश हुई है, उसमें भी हालांकि बदलाव की गुंजाइश अब नजर आ रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अपॉइंटमेंट को लेकर मामला चलेगा अभी, लेकिन ये तो लंबी प्रक्रिया है ना। क्या तब तक कोई चुनाव नहीं होने चाहिए इस देश में, जब तक वो रिफॉर्म की आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक?
1: सर, सरकारें रातों रात गिराई जाती है, पार्टियों के सिंबल रातों रात यहाँ के वहां किए जाते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छी चीज करनी होती है तब लंबी प्रक्रिया आती है। लेकिन जैसे ही सरकारें गिरानी है, एमएलए को यहाँ से वहां लेकर जाना है, तब तुरंत हो जाता है। सुबह 5 बजे उठकर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम की शपथ ले लेते हैं तब लंबी प्रक्रिया तब प्रोसीजर याद नहीं आते, लेकिन जब भी इस देश में कोई अच्छा काम करना होता है तब हमें प्रक्रिया लंबी हो जाती है हमारे देश में।
0: तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक चुनाव का कोई मतलब नहीं है और पार्टियां चुनाव में हिस्सा ना ले, विपक्षी पार्टियां कोई
1: मतलब हम तो यही चाहेंगे
0: भरोसा नहीं है कि चुनाव की प्रक्रिया पर आपको
1: एक वेकअप कॉल होना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लोगे तो वेकअप कॉल नहीं होगा, लोगों को भी लगेगा नहीं यार चुनाव में वोट करने जाते हैं, और पार्टियों को भी ये लगेगा नहीं यार एक फाइट तो दे देते, फाइट देने का पॉइंट क्या है जब मैच पहले से डिसाइड हो चुका है।
0: ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत दिपके, आपने आज तक से और मुझसे बात की इसके लिए। उम्मीद है कि इस पर चुनाव आयोग किसी ना किसी तरीके से अपनी भूमिका स्पष्ट तरीके से सामने रखे, क्योंकि अब एनडीए के भीतर से भी आवाज आना शुरू हो चुका है। चिराग पासवान कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी इस बारे में कह रहे हैं कि अब उनको अपनी भूमिका रखनी चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल की जरूरत है, ये अब एनडीए के भीतर से भी आवाज उठना शुरू हो चुका है।
1: अभी इसके बाद ये लोग चला देंगे कि नहीं ये लोग तो मतलब एनआरकी फैलाने के मूड से, ये हम एनआरकी नहीं फैलाना चाहते, हम डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं। चुनाव देश में होने चाहिए, लोकतंत्र वही है जो जनता चाहती है ना कि जो सरकार चाहती है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोग सरकार चुने ना कि सरकार चुने कौन वोट करेगा कौन वोट नहीं करेगा। चुनाव होने चाहिए, चुनाव एक डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है, लेकिन वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, आज जैसे हो रहे वैसे। थैंक यू।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपने हमसे बात की इसके लिए।
2: और अब बात जीवन रक्षण दवाओं पर लूट वाले खेल की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बहुत सख्त टिप्पणी की। ये कहा है कि कैंसर की जिस दवा की एमआरपी 27,000 है वही दवा रिटेलर को 2700 में कैसे मिलती है। एमआरपी और रिटेलर प्राइस के मार्जिन में इतना बड़ा अंतर क्यों है, यानी इतने बड़े मार्जिन की वजह से रिटेलर और निजी अस्पताल मरीजों को मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। अब इस मामले में 29 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन जीवन रक्षक दवाओं पर जारी बहुत बड़ी लूट के खेल का सच क्या है, आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए।
3: आज तक की टीम दिल्ली के सबसे बड़े दवा बाजार में पहुंची ताकि दवाओं के थोक विक्रेताओं से जीवन रक्षक दवाओं की एमआरपी और रिटेल कीमत के बीच हजारों के मार्जिन का खेल समझ सके। थोक विक्रेताओं ने हमें इस खेल की पूरी एबीसीडी बता दी।
4: ये कैंसर में काम आती है ट्रस्टुजुमैब, इसकी एमआरपी आप देखिएगा, इसकी एमआरपी 39,124 रुपए। जो कंपनी से कॉस्ट हम लोगों को आती है वो इसकी अराउंड आती है 6,500-6,800 रुपए की, और जब ये रिटेलर तक पहुंचती है और रिटेलर अपना मार्जिन रख के इसमें मात्र 10% 5% जो भी घटा के पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, देख लीजिए कितना डिफरेंस जाता है इस चीज के अंदर। तो वो जो मेनली बेनिफिट मिलना चाहिए कंज्यूमर को वो इसमें नहीं मिल पाता है।
3: 39,124 रुपए की एमआरपी वाली कैंसर की दवा थोक विक्रेता की कंपनी 6,500 में देती है, मतलब एमआरपी और होलसेलर की तरफ से चुकाई गई कीमत में 32,624 का अंतर है। ऐसा ही अंतर तमाम दूसरी दवाओं में है। होलसेलर का आरोप है कि मरीजों की जेब पर डकैती के पीछे दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। दवा कंपनियां अपनी लागत से कई गुना ज्यादा एमआरपी तय करती हैं। यही वजह है कि जीवन रक्षक दवाओं के लिए मरीजों की जेब पर सीधी चोट पड़ रही है।
5: तो इस तरह का ये जो अंतर है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्या वजह?
4: मेनली इसका अंतर का जिम्मेदार है ही कंपनी। अगर कंपनी इसकी एमआरपी ही रिड्यूस कर देगी तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को ही जाएगा। तो अगर कंज्यूमर को बेनिफिट देना है तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे, सरकार से चाहेंगे, कंपनी पे प्रेशर डाल के इसकी एमआरपी ही कम करवाई जाए, तभी डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचेगा।
5: ये तमाम वो दवाइयां हैं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, कैंसर से लेकर लिवर की बीमारियां हो, तमाम दूसरी बीमारियां हो, जिनसे लोग जिन्हें खरीदने के लिए जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं और जो लोग ऐसे हैं जो जिनकी आय उतनी नहीं है उनके लिए खास तौर पे ये बहुत बड़ा सवाल बनता है।
3: अब सवाल यही है कि लूट का खेल रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, ये समझने के लिए हमने दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष ग्रोवर का रुख किया। बातचीत के दौरान ग्रोवर ने हमें बताया कि दवा के थोक कारोबारी लंबे अरसे से यही मांग कर रहे हैं कि ज्यादा एमआरपी का खेल बंद होना चाहिए, क्योंकि थोक कारोबारी दवाओं को 5-7% के मुनाफे पर मेडिकल स्टोर को बेचते हैं।
6: ये जो प्राइस फैक्टर मैटर है ये काफी पुराना है और ये पॉलिसी मैटर है, इसको ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और ड्रग पॉलिसीज जो फिक्स करते हैं प्राइसेस वो देखते हैं। तो पॉलिसीज के अंदर किस तरह से चल रहा है हर एक दवाई, ये नहीं कि आप खाली कैंसर पे जाएंगे, अब आप जो भी मेडिसिन देखेंगे जेनरिक जो मेडिसिन है उस पर एमआरपी काफी ज्यादा होता है। अब क्या रीजन है ये तो सरकार ही बताएगी।
3: ग्रोवर के मुताबिक जीवन रक्षक दवाओं की एमआरपी तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्था राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण दवाओं की कीमतों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है, मतलब मरीजों के जेब पर पड़ रही डकैती को सरकार रोक सकती है।
6: देखिए इशू उठा है तो कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ वजह है, और जो सरकार उसके ऊपर नीति अपनाएगी तो उसको कहीं ना कहीं इन द बेनिफिट ऑफ पेशेंट कंज्यूमर होना चाहिए। हम लोग ट्रेडर हैं, हमारा जो मार्जिन है वो हमारे को फिक्स होता है, तो उसमें जो कोई ज्यादा हमारे कोई फर्क नहीं है कि एमआरपी से को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जो पॉलिसीज हैं या ड्रग कंट्रोल प्राइस है वो होना चाहिए। अब तो काफी टाइम से इसकी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब कब होगा कैसे होगा ये सरकार बताएगी।
3: बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की रिटेल कीमत यानी खरीदार से वसूली जाने वाली रकम और एमआरपी के बीच के मार्जिन पर सवाल उठाए। कोर्ट का यही मानना है कि जीवन रक्षक दवाओं की मनमानी एमआरपी पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट से याचिकाकर्ता ने यही मांग की है कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत सख्त नियम लागू किए जाएं ताकि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में होने वाली लूट को रोका जा सके।
7: एक तो बीमारी ऊपर से महंगी दवाओं की मारा मारी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमियों के दर्द को समझा और ये कहा कि कंपनियों को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, अस्पतालों को और दवा एजेंसियों को इस तरह से बाज आना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिसके हाथ में कार्रवाई करने की क्षमता है वह है सरकार। सरकार फिलहाल अभी तक चुप बैठी है, इसलिए ये देखना चाहिए कि सरकार को भी वो जूता पहनना चाहिए जो जूता आम आदमी को सबसे ज्यादा काटता है, क्योंकि जूता किधर से काटता है ये आम आदमी को ही पता है, पहनने वाले को ही पता चलता है। एक बार सरकार भी पहने तो पता चल जाएगा कि जूता किधर से काट रहा है और कितना। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
2: और अब बात उस खबर की जिसने एक साथ जनता, डॉक्टर, कर्मचारियों, छात्रों तीनों के चेहरों पर खुशी ला दी है। 21 तारीख को हमने मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले के बारे में बताया था जिसके जरिए 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल पर प्राइवेट हाथों में दिया जाना है। हमने इस मुद्दे को उठाया, आपने समर्थन दिया और सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सस्ते इलाज से लेकर सस्ती पढ़ाई के हक से जुड़ी चिंता खत्म हो गई।
8: आज तक की खबर का बड़ा असर, MP में प्राइवेट नहीं होंगे सरकारी अस्पताल।
9: मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज तक का कि उन्होंने अपने माध्यम से हमारी जो नीमत से लेके सरकार तक उन्होंने हमारी बात पहुंचाई और हमें मतलब इस चीज में हेल्प किया कि हम अपनी बात जो है उच्च स्तर पर पहुंचा सके।
8: आज तक की खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पलटा फैसला।
10: आज तक न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जो हमारी आवाज है वो एक बड़े माध्यम पर एक नेशनल न्यूज उसको बनाकर सरकार तक पहुँचाई।
8: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी ये सरकारी मेडिकल कॉलेजों के PPP बोर्ड का टेंडर रद्द करने के आदेश से जुड़ा है जिसने एक साथ आम लोग, छात्र और कर्मचारियों को राहत की सांस दी है। 21 तारीख को खबरदार शो में हमने मध्य प्रदेश के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने के फैसले से जुड़ी खबर दिखाई। आज तक ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेजों के डीन, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और MBBS के छात्रों की चिंता सामने रखी थी।
11: अत्यंत गरीब फैमिली से अधिकतर लोग बिलोंग करते हैं, कई लोगों को सरकार स्कॉलरशिप देती है, तो अगर ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट कंपनी को ये हस्तांतरण होता है कॉलेज, तो इन विद्यार्थियों का किस सिस्टम के द्वारा इनका आगे का भविष्य तय होगा।
8: मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से जुड़ी छात्रों और डॉक्टरों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हाथों में चले गए तो गरीब और आम मरीजों को मिलने वाले सस्ते इलाज का क्या होगा। जिस मेडिकल की पढ़ाई के लिए अभी छात्र साल भर में 1,00,000 रुपए फीस दे रहे थे, वो निजी हाथों में जाने के बाद बढ़कर 20,00,000 और उससे ज्यादा हो गए, तो फिर प्रतिभावान और गरीब छात्र डॉक्टर बनने के सपने को कैसे पूरा करेंगे।
9: मैं उसके लिए आज तक का धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमारी बात सुनी। हम मेडिकल छात्र हैं, अगर ऐसा कुछ होता कि प्राइवेटाइजेशन होता तो उसका इफेक्ट हम पे सबसे ज्यादा पड़ता, हमारी जो एजुकेशन है उस पे पड़ता, तो मैं सरकार का भी इसमें धन्यवाद करना चाहूंगी।
8: इसके अलावा सवाल इन मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे कर्मचारियों और नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर भी था कि वो पीपीपी मॉडल में किन शर्तों पर काम करेंगे। आज तक ने जब खबरदार शो में इन चिंताओं को देश के सामने रखा तो इसका असर ये हुआ कि पूरे प्रदेश में इस नीति के खिलाफ माहौल बन गया। चौतरफा घिरी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। 21 दिसंबर की देर रात राज्य शासन ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जिन सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सरकार ने बनाया है या जो अभी बनाए जा रहे हैं उनका संचालन सरकार ही करेगी, इन्हें पीपीपी मॉडल पर नहीं दिया जाएगा। इस तरह नीमच के सकलेचा मेडिकल कॉलेज की तरह एमपी के कुल 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज में आम आदमी को न सिर्फ सस्ता इलाज मिलता रहेगा बल्कि छात्रों को किफायती पढ़ाई के अधिकार की भी सुरक्षा होगी।
12: आज तक की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर सरकार ने फिलहाल ब्रेक लगा दिए हैं, यानी आज तक ने सवाल उठाए, आवाजें सामने आई और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन आज तक जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर ऐसे ही आगे भी खबरदार करता रहेगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बार बार बार तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: कैची है वायरल है
0: चाहिए
2: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना रहा है
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठ
1: बैठ बैठ।
2: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
1: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पीटी नहीं दिख रही है।
3: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
4: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित।
5: मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
6: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
7: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
8: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
9: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चुनाव आयोग, ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे CEC की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए CEC को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है। ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी बातों को और मजबूती से रखना चाहिए, राहुल गांधी जी या किसी विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं, जनता के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना आए इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ की कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन में लामबंदी तेज। टीएमसी और लेफ्ट में जमी बर्फ पिघली। ममता सीपीएम महासचिव एमएबीबी के बीच हुई बात। आप जीएमके और बीजेडी पीआरएस और टीवीके को जोड़ने की कोशिश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। पुलिस ने चार्जशीट में बनाया सरकारी गवाह। आरोपियों की लिस्ट में 8 नाम। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट पर गरमाई सियासत। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एक्शन, एफआईआर दर्ज। मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। और कांगो में बड़ा विमान हादसा, दो बड़े सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत। किकविट से राजधानी किनशासा लौट रहा था विमान, तकनीकी खराबी की आशंका। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और अच्छी खबर। एशियन गेम्स में भारत का तिरंगा एक बार फिर सबसे ऊंचा लहराया। एक बार फिर बेटियों ने गोल्ड की चमक बढ़ाई। महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर भारत की झोली में तीसरा गोल्ड डाल दिया। भारत ने 37-34 अंकों से ईरान की टीम को फाइनल में हराया और पोडियम में पहला स्थान बनाया। इससे पहले देखिए, हरमन ब्रिगेड यानी महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता, उसके बाद अब भारतीय महिला खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता। नितिन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, एक और उपलब्धि भारत के खाते में, एक और गोल्ड बेटियां लेकर आई।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एशियन गेम्स में जिस तरीके से डोमिनेंस रहा है कबड्डी टीम का, हमारे विमेंस और मेंस दोनों का ही, उसी का ये नतीजा रहा कि यहाँ पर ईरान को हराकर एक बार फिर से हमारी जो विमेंस प्लेयर है, कबड्डी विमेंस प्लेयर, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और देखिए, लगातार ये तीसरा गोल्ड मेडल हो गया भारत के लिए एशियन गेम्स के अंदर में, जहां पहला जो गोल्ड मेडल आया था वो विमेंस क्रिकेट टीम के थ्रू आया था, उसके बाद इन्होंने शूटिंग में एक गोल्ड मेडल जीता और आज फिर से एक बार हमारे खाते में एक और गोल्ड मेडल आया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे पूरे मुकाबले में तो पूरा दबदबा था, एक पकड़ मजबूत बनाई हुई थी भारतीय टीम ने। और इस अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे एशियन गेम्स में विमेंस कबड्डी टीम का इतिहास, तो 5 बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ओवरऑल उनका 4th मेडल है। यहाँ की आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से ओवर द इयर्स कबड्डी में हमारी जो टीम है वो लगातार बेहतर करती आई है और एशियन गेम्स में एक और गोल्ड मेडल हासिल करना ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन लगातार मेहनत, अच्छी तैयारी, उसी का नतीजा है कि ईरान जैसी मजबूत टीम को एक बार फिर से भारतीय जो विमेंस टीम है वो हराने में कामयाब हुई और एक और गोल्ड मेडल भारत के खाते में आया।
0: उम्मीद यही करते हैं नितिन, ये गोल्ड मेडल की जो टैली है उसमें भारत और आगे तक पहुंचे, और भी कई गोल्ड मेडल्स आए भारत के खाते में। शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त हो चला आज तक का।

यूएन महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन। कबड्डी में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड मेडल, ईरान को हराया।

रेचल गहलोत ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। इस दौरान उन्होंने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को घेरा। इसके साथ ही चेतावनी दी कि सीमा पर आतंकवाद के गंभीर नतीजे होंगे। कहा पाकिस्तान के लोग जिसे खुद फॉर्म 47 सरकार कहते हैं उससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिक्र किया पेटल गहलोत ने कहा कि ये मेरे देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भजन क्लबिंग इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आनंद लेते हुए दिखे प्रधानमंत्री, छात्रों के बीच बैठे। जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर किया गया भजन क्लबिंग संध्या का आयोजन, युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने न सिर्फ भजन में रमते दिखे बल्कि कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया।

0: सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चे की तैयारी, सीपीएम ने सीजेपी से साधा संपर्क, चुनावी अनियमितताओं पर साझा मंच की मांग। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर आंदोलन तेज, सीजेपी को विपक्षी दलों के समर्थन, 2 अक्टूबर से मुंबई में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। 700 करोड़ के मेडिकल उपकरण घोटाले में बड़ा एक्शन, राजीव रंगीला गिरफ्तार, एसीबी के सामने सरेंडर। मेडिकल खरीद घोटाले में एसीबी की कार्रवाई तेज, कथित मुख्य लाभार्थी राजीव रंगीला गिरफ्तार। जमुई पीड़िता के माता पिता का बयान, मां बोली सीएम ने अभिभावक की तरह मिलकर बेटी को हिम्मत दी, कार्रवाई से संतुष्ट है। सीसी ज्ञानेश कुमार पर सियासी संग्राम तेज, विपक्ष ने खुला मोर्चा, इस्तीफे से लेकर इंपीचमेंट और मुकदमे तक की मांग। एसआईआर विवाद में घिरे सीसी ज्ञानेश कुमार, कांग्रेस समेत विपक्ष के तीखे हमले, बीजेपी बोली बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने का श्रेय। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का ऑल आउट वॉर, कांग्रेस ने कहा इस्तीफा देकर अप्रूवर बने, अधीर रंजन ने इंपीचमेंट की मांग की। सीसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष गंभीर आरोप, महुआ मोहित्राणी की कार्रवाई की मांग, बीजेपी ने कहा उन्हें पद्म भूषण मिलना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवालों के बीच चिराग पासवान की नसीहत, बोले ईसीआई को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का हमला तेज, अधीर रंजन बोले इंपीचमेंट का यह सही मामला, आपराधिक केस भी दर्ज हो। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, पवन खेड़ा बोले अब वक्त आ गया है ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। ज्ञानेश कुमार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप, बोले 2 चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा, मनमानी का आरोप। सेरमपुर में ममता बनर्जी की बड़ी रैली पर सियासी घमासान, हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी लेकिन राज्य की अपील के बाद कार्यक्रम टला। एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सेरमपुर में टीएमसी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार पर साधेंगे निशाना, आगे की रणनीति का ऐलान करेंगी। बिहार में पीड़ित की तस्वीर पोस्ट करने पर मचा बवाल, सीएमओ कर्मचारी पर एफआईआर, तेजस्वी ने सीएम पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की तस्वीर पर बीजेपी का मीसा भारती पर पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा बोले मीसा भारती को तस्वीर दोबारा सार्वजनिक करने का अधिकार किसने दिया। समस्तीपुर में आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन, 3 आरोपियों पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मुख्य आरोपी को 2 दिन की मोहलत। समस्तीपुर केस पर एडीजी का बड़ा बयान, बोले दोषियों को जल्द सजा दिलाना प्राथमिकता, स्पीडी ट्रायल पर जोर। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने तीखा प्रहार करते हुए कहा अब आतंकवादी देश मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी में नजरअंदाज किए जाने से कैप्टन अमरिंदर नाराज, बोले पंजाब की राजनीति में 60 साल दिए, सलाह मशवरे में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर का जवाब, बोले पार्टी बदलना अलग बात है, मैंने अभी पार्टी छोड़ने की बात नहीं की है। जम्मू कश्मीर में स्टेट रोड पर सियासी संग्राम, विधानसभा में प्रस्ताव पर बीजेपी का हंगामा, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले स्टेट रोड की मांग राष्ट्र विरोधी नहीं, ये जम्मू कश्मीर की पहचान का सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्टेट रोड पर घमासान, बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच उमर का हमला, बोले बीजेपी वोटिंग से भागना चाहती है, राज्य का दर्जा मेरा नहीं जनता का हक है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से गढ़चिरौली में बाढ़, 100 से अधिक गांव का संपर्क टूटा, 525 लोग सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट। बाढ़ के बाद भयावह माहौल में एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, छात्राओं की जान बचाई, पुलिस भी लोगों की मदद कर रही है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण उड़ीसा के कोरापुट में बाढ़ और कई गांव का संपर्क टूट गया। इंद्रावती जलाशय से पानी छोड़ने के लिए 3 गेट खोले जाने के बाद कोटपाड़ के कुछ हिस्सों में स्थिति और खराब। गरियाबंद में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिले की सभी प्रमुख नदियां और छोटे नदी नाले उफान पर हैं। बगहा में 24 घंटे से ज्यादा बारिश, टेस्ट इलाके में जल भराव, लोगों की बड़ी मुश्किलें। बस्तर में 5 दिन से लगातार बारिश, कई गांव और शहर डूब गए, जनजीवन प्रभावित हुआ। जमशेदपुर में जारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई, बाढ़ के पानी के बीच बच्चों ने फुटबॉल खेला। प्रयागराज में 2 दिन से बारिश, बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत। दुर्गापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित। सुपौल में कोसी का रौद्र रूप, कोसी बैराज से इस साल का सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया। सुकमा में अर्नब तूफान का असर, भारी बारिश से शबरी नदी उफान पर, स्कूल बंद। कराची में बारिश के कहर, 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पर गिरा पेड़, सभी सुरक्षित। गरियाबंद में भारी बारिश से आफत, बाढ़ के पानी में नेशनल हाईवे 130 सी बंद। नेपाल में कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ा, 31 गेट खोले गए, रेड अलर्ट जारी। सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश से भूस्खलन भी हुआ, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी इलाके में गांव में भूस्खलन। मिट्टी और मलबे की चपेट में आने से 7 घर, बिजली विभाग के 6 क्वार्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त, कई और घर बह गए। भूस्खलन के बाद प्रशासन और स्थानीय टीम ने प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया, अब तक 128 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया। डीडीएमए ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी। यूपी में कई जिलों में प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूल बंद करने के आदेश, खराब मौसम के कारण फैसला। मुंबई में लालबाग चौराजा की भव्य विदाई, विसर्जन के लिए चिरगांव चौपाटी पहुंची गणपति प्रतिमा, अनंत अंबानी मौजूद रहे। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहिब रंगारी गणपति का विसर्जन, पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित की गई प्रतिमा। मुंबई की जुहू चौपाटी पर गणपति विसर्जन, आरती के बाद बप्पा को दी गई भावुक विदाई। हरियाणा के भादुरगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, एनसीआर नहर में डूबने से 3 युवक डूब गए, 2 के शव बरामद हो गए, तीसरे की तलाश जारी है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गूंजा डाउनिंग टाउन चौराजा का जय घोष, चिंताले परिवार ने स्ट्रेंजर थिंग्स विद बप्पा थीम पर मनाया गणेश उत्सव। भोजपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे केसारी लाल यादव, बांटी राहत सामग्री, विस्थापित परिवारों की मदद का भरोसा। दिल्ली का कुख्यात नार्को किंग पिन पार्वती गिरफ्तार, घर से चरस और डाइल्यूटेड ड्रग्स बरामद। दिल्ली के मुखर्जी नगर डीयू छात्रा से अभद्रता, गाली गलौज के मामले में 2 आरोपित गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद में पिकअप और धान से भरे ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, 6 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा में 5,000 के रिफंड को लेकर बवाल, कई युवकों ने दुकान में घुसकर मालिक को पीटा। पंजाब की चिटकारी यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, कैंपस में तोड़फोड़। भूत और 2 छात्राओं के लापता होने की अफवाहों के बाद बिगड़ा माहौल, पुलिस ने कहा किसी छात्रा की पहचान या गुमशुदगी की पुष्टि नहीं हुई। राजस्थान के झालवाड़ में अनंत चतुर्दशी पर शोभा यात्रा में कर्तव्य दिखाते समय भड़की आग, 4 युवक झुलस गए। मौके पर चीख पुकार मचाने से शोभा यात्रा का माहौल बदल गया। दिल्ली के सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो और ई रिक्शा को टक्कर मारी, 1 की मौत, 1 घायल। दिल्ली के मॉडल टाउन में हल्दीराम की दुकान में लगी आग, 25 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, काफी नुकसान हुआ। धौलपुर में एक दुकान में लगी भीषण आग, तेल के डिब्बों की वजह से आग और तेजी के साथ फैली। गुजरात के भावनगर में पेट्रोल पंप के पास स्कूटी में आग लगी, कर्मचारियों ने आग बुझा दी। अहमदाबाद में स्पा सेंटर में लगी आग, मौके पर 8 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, 4 लोगों का रेस्क्यू। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, केशव शिवाला गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम। जमशेदपुर में ऑटो हटाने को लेकर बवाल हुआ, किन्नरों ने ट्रैफिक पुलिस से की हाथापाई, सड़क पर हंगामे से यातायात प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, नियंत्रक का वैन पलटकर स्कूटर पर गिरा, 2 गंभीर। मेरठ में शॉपिंग करने गई युवतियों से छेड़छाड़, विरोध पर गाली गलौज, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपित गिरफ्तार हुए। बदायूं में सुनसान जगह युवक युवती से मारपीट और छेड़छाड़, वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। वाराणसी में गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का मामला आया सामने, सीसीटीवी वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, शोरूम के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को रौंदा, कांच के शीशे टूटे, लाखों का नुकसान। चरखी दादरी में 20,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बमबाजी का वीडियो आया सामने, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, परेड निकाली। रांची में बारिश के बीच बड़ा हादसा, 40 बच्चों से भरी स्कूली बस पर पेड़ गिर गया, सभी सुरक्षित हैं। इंदौर में अवैध दवा कारोबार पर ट्रक विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 लाख की दवाएं जब्त। बूंदी में धार्मिक जुलूस के दौरान बवाल, रूट को लेकर भिड़े 2 छात्र नाराज, 2 पक्ष नारेबाजी के बाद पुलिस बल तैनात। मुंगेर में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी, गुस्से में दूल्हे ने बरमाला और सिंदूर फेंक दिया। मध्य प्रदेश के धार में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हुआ, सिंधु नदी में 3 बच्चे लापता हो गए। भारत ने एशियन गेम्स 2026 में तीसरा गोल्ड जीता, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हरा दिया। भारत को एशियन गेम्स के पुरुष मैराथन इवेंट में 44 साल बाद मिला मेडल, सावन बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड की टाइमिंग के साथ जीता सिल्वर। महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन कैटेगरी में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही, इस टीम ने आशी चौक से तिलोत्तमा सेन और विधार शाह विनोद के नाम शामिल रहे। भारत की तिलोत्तमा सेन और विदारशा विनोद ने विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में जगह बना ली, तिलोत्तमा तीसरे और विदारशा छठे स्थान पर रहे। भारत के मेडल की संख्या 27 पहुंची, इसमें 3 गोल्ड 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। कांगो में बड़ा दर्दनाक हादसे, एक विमान क्रैश, 14 लोगों की मौत, दो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे इसमें। दो सीनियर मिलिट्री अधिकारियों में मिलिट्री कोर्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल और आर्म्ड फोर्सेस के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट शामिल। कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा, दो जनरल अधिकारियों के अलावा डेलीगेशन के 12 सदस्य और क्रू मेंबर्स भी इसमें जान गंवा बैठे हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये प्लेन दक्षिणी पश्चिमी किकविक से राजधानी किनशासा जा रहा था, तभी तकनीकी खराबी आई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि क्रैश की वजह अभी पता नहीं लगी है, जांच जारी है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएट।
0: तो देखिए आज की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, आतंकी देश पाकिस्तान को यूएन में करारा जवाब दिया है, भारत ने दिया है, सबके सामने दिया है। यूएन के मंच से जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छोड़ा, सिंधु के पानी पर गीदड़ भपकी दी, भारत ने उसी मंच से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के आरोपों पर भारत की प्रतिनिधि पेचल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा और कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार भारत इस्तेमाल करता रहेगा, आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे और आतंकियों के लिए कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ना भागने की जगह उनको मिलेगी। वहीं आतंकवाद पर सवाल को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तानी पत्रकार को ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी बोलती बंद हो गई।
2: Water must never be weaponized.
3: यूएन में पाकिस्तान के झूठ की उड़ी धज्जियां। भारत ने शहबाज शरीफ को दिया करारा जवाब। लादेन से लेकर आतंकवाद तक पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हुआ। आतंकी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान की सरकार को सेना के हाथों की कठपुतली करार दिया।
4: दिस इज अ रेजिम ऑफ द आर्मी बाय द आर्मी एंड फॉर द आर्मी। देयर पपेट्स मे कम एंड गो बट लेट अस हैव नो इल्यूजन हु कॉल्स द शॉट्स।
3: यूएन के मंच का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापते हुए कश्मीर को जुगलर वेन यानी जीवन रेखा बताया था।
2: कश्मीर हैज एंड ऑलवेज विल बी पाकिस्तान्स जुगलर वेन।
3: शहबाज शरीफ पर पलटवार करते हुए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया और कहा कि अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा।
4: दिस is an integral and inalienable part of my country and will always remain so. But if we must talk about Kashmir, let us turn our attention to the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Ask the people of Rawalkot about the wanton killings, the brutal violence and the denial of basic rights that they have long experienced.
3: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिंधु के पानी को तरसते आतंकी देश पाकिस्तान के पीएम ने यूएन के मंच से भारत को गीदड़ भपकी देते हुए जंग की बात कही।
2: वाटर मस्ट नेवर बी वेपनाइज्ड, रिवर्स शुड नरिश नेशंस नॉट डिवाइड देम, देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप इम्पीड और डाइवर्ट पाकिस्तान्स शेयर ऑफ द वाटर्स विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर।
3: जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जंग की गीदड़ भपकी देता दिखा, वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ कह दिया कि अगर आतंकवाद का इस्तेमाल हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे और आतंकियों के लिए न भागने की जगह होगी न छिपने की।
4: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised and continued terrorism by Pakistan will have consequences. It will understandably call into question what were premised on friendship and goodwill.
3: वहीं भारत ने यूएन के मंच से दुनिया को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान की बार बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाएगा और इससे दुनिया को भी फायदा नहीं मिलने वाला।
4: We are confident that this assembly will recognize Pakistan and its policies for what they really are, not what its representative mendaciously projects it to be. reiterating falsehoods year after year does not make them true. Pakistan's terrorism, deceit, and duplicity will neither benefit it nor the world. I thank you, Mr. President.
3: यही नहीं, भारत ने दुनिया को यह बताया कि कैसे पाकिस्तान ने 9/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। साथ ही यूएन के सामने भारत ने पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया। आज तक ब्यूरो।
5: तो यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने तीखा प्रहार बोला, वहीं जवाब दे दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि अब आतंकवादी देश मुझसे सवाल पूछेगा।
6: रुकेंगे
5: छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने, भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: अब वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
8: तो कौन सी बनानी है?
9: थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
10: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।
11: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
6: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
7: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
8: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेचल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन में लामबंदी तेज। टीएमसी और लेफ्ट में जमी बर्फ पिघली। ममता सीपीएम महासचिव एमए बेबी के बीच बात। आम आदमी पार्टी डीएमके बीजेडी बीआरएस और टीवीके को जोड़ने की कोशिश। सीजेपी को भी चिट्ठी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। पुलिस ने चार्जशीट में बनाया सरकारी गवाह। आरोपियों की लिस्ट में 8 नाम। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट पर गरमाई सियासत। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एक्शन। एफआईआर दर्ज। मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। और एशियन गेम्स में बीटीयू का दम। कबड्डी महिला टीम ने लहराया तिरंगा।

देखिए सुबह के 11:30 बज गए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और इस बुलेटिन में बात होगी राजनीतिक खबरों की। सबसे पहले बुलेटिन की एक झलकी आपको दिखा देते हैं। हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की और चार्जशीट की। आरोप पत्र में कौन बचा कौन बरी, डिटेल में आपको बता देंगे। इसके अलावा बात होगी बिहार के जमुई कांड की, पीड़िता की पहचान उजागर किसने की, अगर आम लोगों पर FIR हुई तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं हुई। इसी बात पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। इन दोनों खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की करेंगे, जहां चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट में चंपत राय अनिल मिश्रा को आरोपित नहीं बनाया गया है। बड़ी खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई, चंपत राय अनिल मिश्रा को पुलिस ने गवाह बना दिया है। 70,000 पन्नों की चार्जशीट अयोध्या पुलिस ने फैजाबाद की अदालत में दाखिल की है, जिसमें विस्तार से सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा इस पूरे मामले में बच गए हैं। अनुकल्प मिश्रा समेत 8 आरोपित बनाए गए हैं जो CCTV में कैद हुए हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है। 73,480 पन्नों के आरोप पत्र में पुलिस ने चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी बयां की है। करीब 3 महीने की लंबी जांच, आरोपियों से पूछताछ, कई सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद अयोध्या पुलिस ने ये चार्जशीट बनाई है। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। जिस चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव थे और अनिल मिश्रा सदस्य थे। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती से लेकर कर्मचारियों की भर्ती तक सब इन्हीं की देखरेख में हुआ, लेकिन चढ़ावा चोरी में ये आरोपी नहीं बनाए गए हैं। जो अनिल मिश्रा और चंपत राय चढ़ावा चोरी के पहले दिन से निशाने पर थे, उन्हें पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बाइज्जत बरी कर दिया है। इन दोनों को मुख्य गवाह बना दिया गया है। विपक्ष इसी बात को मुद्दा बना रहा है कि 70,000 पन्नों की चार्जशीट में वो पन्ना कहाँ है जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम है।
1: 70,000 पन्नों में एक नाम लिखने की जगह नहीं थी, जो सब लेके चंपत हो गया। उस चंपत राय की, राव की, गोपाल अनिल मिश्रा की, ये थोक वाले, ये होलसेल वाले हैं। इन्हीं की मिली भगत से तो भाजपा सरकारों ने किया है। ये सिर्फ चंदा चढ़ावा नहीं है, चढ़ावा चोरी नहीं है। प्रसाद का करोड़ों करोड़ रुपए जो आए थे, उसकी चोरी करने वालों का आरोप तो इन्हीं पे है। मैं तो रहने वाला हूँ अयोध्या, कमिश्नरी जो पहले होती थी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ अवध का। वहां हर आदमी की जुबान पे है। और ये इतने दिन रहा, पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा आरोपी नहीं है तो फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किसने की? पुलिस ने चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी जिक्र किया है कि किस आरोपी के पास से क्या क्या बरामद हुआ है, किसने किस स्तर पर चोरी की, सब कुछ चार्जशीट के पन्नों में दर्ज है। अविनाश शुक्ला के पास 20 लाख रुपए, 1121 अमेरिकी डॉलर, सोने और चांदी के गहने मिले। अनुकल्प मिश्रा ने अपने पिता के नाम 55 लाख का मकान खरीदा, एक कार खरीदी, बड़े बड़े इवेंट किए। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम 20 लाख की जमीन खरीदी और उस पर 23 लाख खर्च करके मकान बनवाया। रमाशंकर मिश्रा ने बैंक खातों में करीब 20,92,000 नकद जमा किए, 12 लाख रुपए का प्लॉट, कैमरा और आभूषण खरीदा। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से करीब 8,48,000 रुपए नकद, बुलेट मोटरसाइकिल, अर्टिगा कार, आभूषण और उसके बेटे के नाम करीब 9.5 लाख रुपए की संपत्ति खरीद का दावा किया गया है। पुलिस ने अपनी तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा साफ साफ

0: बच गए हैं। अब पुलिस के दावों को फैजाबाद की अदालत में गवाहों और सबूतों के आधार पर परखा जाएगा। उसके बाद न्यायालय तय करेगा कि चोरी किसने की, किसके सानिध्य में की। अयोध्या से मयंक के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
1: संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष, जरा डिटेल में बताइए कि चार्जशीट जो दायर की गई है, इस चार्जशीट में अहम बिंदु क्या है और किस दिशा में अब ये मामला जा रहा है?
2: देखिए, चार्जशीट का जो लबोलुआब वो यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव थे, उनको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि चोरी की जानकारी चंपत राय को ट्रस्ट के लोगों को 3 जून को हो गई थी। एक मत जो गणना कर्मी था उसको 3 जून को उसने सबसे पहले अनुकल्प मिश्रा को चोरी करते देखा, फिर 4 जून को उसने पकड़ा भी और 4 जून को ही चंपत राय को उससे बरामदगी जो हुई 2.25 लाख रुपए की बाथरूम से, उसका वीडियो बना करके भेजा गया। 5 जून को, 3 जून को पकड़े गए, 4 जून को वीडियो भेजा गया, 5 जून को चंपत राय ने खुद चोरी का सीसीटीवी देखा और अनिल मिश्रा, गोविंद राव के साथ बैठक की। लेकिन एफआईआर होती है 25 जून को, जब उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाती है। पूरे 20 दिन के बाद एफआईआर होती है। यानी कि 5 जून को जब चंपत राय इस बात के मुतमईन हो गए थे कि चोरी की है, भले ही वो एक आदमी दिखाई पड़ा लेकिन एफआईआर नहीं कराई गई। 7 जून को चंपत राय कहते हैं कि नहीं नहीं राम मंदिर ट्रस्ट में सब भला है, सब चंगा है, वहां पे तो ऑडिट चल रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात सामने नहीं आई है। ये बात चंपत राय ने लिखित तौर पर जब सवाल किए गए उनसे इस चोरी की बात को लेकर के, पहला बयान यही आया। तो 7 जून को जब चंपत राय कह रहे थे कि सब कुछ है, उनको 5 जून को उस सीसीटीवी में देख रहे थे, तो आखिर झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? और 20 दिन बाद चंपत राय जब एसआईटी की रिपोर्ट आई उसके बाद एफआईआर हुई, तो उसमें भी चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम नहीं था। लेकिन जो पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, 133 गवाह बनाए गए, जिसमें सबसे पहले कृष्ण मोहन जो वादी मुकदमा है, उसके बाद चंपत राय, गोविंद, अनिल मिश्रा, गोविंद राव, ये तमाम लोग गवाह बनाए गए हैं। और इस गवाही में ही चंपत राय ने कहा कि मुझे 4 जून को जब मैं दिल्ली से अयोध्या आ रहा था तो ट्रेन में रात के समय पर उनके ही एक राम मंदिर से जुड़े हुए शख्स ने वीडियो भेजा और कहा कि देखिए चोरी करते ये लोग पकड़े गए और 2.25 लाख रुपए मिला, वीडियो एविडेंस के साथ। 5 जून को मीटिंग कर रहे हैं और आप एफआईआर नहीं करा रहे हैं, तो कैसे इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों की चंपत राय ने? अनिल मिश्रा ने इस मामले में क्यों नहीं मुंह खोला? गोविंद राव क्यों चुपचाप रहे? चंपत राय ने क्यों एफआईआर नहीं कराई? क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित किया और उसके बाद जब प्रारंभिक रिपोर्ट 23 जून को आ गई तब 25 जून पे एफआईआर हुई? तो ये एक बड़ा
1: संवेदनशील अभी मामला अभी है। बहुत ये कहा जा सकता है कि 8 आरोपित बनाए गए हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय को यहाँ पर बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन हो सकता है कि जरूर इस मामले में सवाल उठे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तनातनी बढ़ गई। पहले अजय राय और अब शिवपाल ने पलटवार किया। शिवपाल यादव ने कहा कि मैनपुरी सैफई में कांग्रेस को एक वोट नहीं मिलेगा, रैली शुरू करके देख लें। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव ने रायबरेली से रथ यात्रा शुरू की। रायबरेली को कांग्रेस अपना गढ़ मानती है, राहुल गांधी वहां से सांसद हैं। इसको लेकर अजय राय ने कहा था कि हम भी अगर चाहें तो कन्नौज और मैनपुरी में रैली कर सकते हैं। अब शिवपाल यादव कह रहे हैं पलटवार करके मामला आगे बढ़ाते हुए कि एक वोट नहीं मिलेगा, करके देख लो।
3: ये कांग्रेस के यूपी प्रभारी हैं राजन गौतम जी, वो कह रहे हैं आपने, कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रभारी हैं राजन गौतम जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रायबरेली से शुरुआत की है तो मैं सैफई से करूंगा, उनके गढ़ से करूंगा, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस प्रभारी, यूपी प्रभारी कांग्रेस प्रभारी, आज ही बयान दिया उन्होंने, आज बयान दिया।
4: तो जाने क्या छूट है करें और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर है और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी और इसलिए होगी, इन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोला है, भ्रष्टाचार किया है और आप देख ही रहे हो,
5: अच्छा
4: आप देख ही रहे हो, बताओ बड़े पदों पर रहकर जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, पूरे जनता के होता है और ये तो अधिकतर फा किसी की सुना ही नहीं रहे हैं,
5: जैसा नहीं रहे हैं। प्रकाश राजभर आप लोगों को घेरते रहते हैं, उनका अभी भी यही कहना है कि
6: अखिलेश यादव टोपी पहनते हैं कई छेदों वाली।
4: अच्छा, के बारे में तो सब लोग जानते हैं और हम बहुत बोल चुके हैं, अब उनका सवाल मत पूछा करो।
7: चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी आज जिस तरीके की बात आम आदमी को उठा रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने पहले दिन से जिस तरीके से सीरीज के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताई चुनाव आयोग की सत्यता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
1: तो अजय राय की तरफ से पहले कहा गया, उसके बाद फिर शिवपाल यादव का बयान आया, अब ये मामला और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए बात बिहार की करते हैं, जमुई कांड की करते हैं। जमुई का पीड़ित परिवार सीएम सम्राट चौधरी से मिला, मुख्यमंत्री ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया, हालांकि उसको लेकर एक विवाद हुआ, उसे आगे बताएंगे। लेकिन पहले पीड़िता के परिवार से आज तक की खास बातचीत सुनिए।
8: कॉल आया था आप लोग आए मिलने के लिए, क्या बात हुई और क्या कहेंगे?
9: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना, चाहे पढ़ाई हो या सुरक्षा हो, हर चीज के लिए वो आश्वासन दिए है।
8: 19 तारीख की ये घटना है, आपको कब जानकारी हुई कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा सब हुआ?
9: इसकी शाम 7-8 बजे को मालूम हुआ सर, कुछ बाहर से जानकारी मिला तो पूछने के बाद फिर बेटी मेरी सारी बात बताई हमको सर।
8: अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है इस मामले में, उससे कितना संतुष्ट है आप?
9: हम पूरी तरह से संतुष्ट है सर, प्रशासन बहुत साथ दिया हम लोग को सर। हाँ, तुरंत कार्रवाई भी हुई है, 24 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई भी हुई है, और जो मेन अपराधी था उसका एनकाउंटर भी हुआ है सर।
8: लोग कह रहे हैं कि उसका हाफ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, फुल इनकाउंटर होना चाहिए, इसको लेके आपकी क्या राय है?
9: वो तो जनता का जो है सर, बस हम उसी के साथ चलेंगे, जनता से बढ़ के तो अभी वही है, जनता ही बढ़ गए हैं सर। होना चाहिए सर, लेकिन फिर भी नहीं, हम प्रशासन के काम से बहुत संतुष्ट है सर।
8: फुल इनकाउंटर होना चाहिए
9: इसका तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन जो भी किए हैं सर, हम उनसे संतुष्ट हैं, और बाकी उनको जो अच्छा लगेगा वो लोग तो कर ही रहे हैं, बाकी तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से मेरे केस में मेरा समाज, मेरा जमुई वासी, बिहार वासी और पूरा हिंदुस्तान एक साथ थे, बस चाहेंगे कि इसी तरह हमेशा साथ रहे, ताकि अपराधी भी डरे कि नहीं अब हिंदुस्तान भी और पूरा बिहार जमुई वासी सब एक है अपराधी के खिलाफ।
8: लड़की के पिता भी मेरे साथ हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है, कैसे जानकारी हुई कि ये इस तरह की घटना हुई है?
10: हमें 20 तारीख के रात में जानकारी हुई, वो भी 8 बजे रात में, उस समय तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, 19 को भी पता नहीं चला, 20 को रात में पता चला, पता चलने बाद हम लोग प्रशासन के पास गए, से बातचीत हुई, उसके बाद 21 तारीख को उस पर कार्रवाई, केस मुकदमा हुआ।
8: इसका मतलब बच्ची के जो घूम के आई वो डर से, हमको लगता है कि आपको?
10: मेरी बच्ची डर गई थी, और इस तरह का घटना किसी भी बच्ची साथ होगा, कोई भी बच्ची डर जाएगी, मेरी बच्ची का अभी बहुत छोटी है, अब बहुत डर गई थी।
8: पुलिस ने जो कार्रवाई की है अभी तक, उसको किस रूप में देख रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं या और कुछ होना चाहिए इसमें?
10: पुलिस की कार्रवाई से हम बहुत संतुष्ट हैं, माननीय SP साहब से भी संतुष्ट हैं, DM साहब से भी संतुष्ट हैं, पूरे प्रशासन से संतुष्ट हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम संतुष्ट हैं, उनकी कार्रवाई से हम बहुत संतुष्ट हैं।
8: जो अपराधी पकड़े गए नंदन और हरिराम, उसको लेके क्या कहेंगे और क्या चाहेंगे, कैसी सजा उसको मिले?
10: उसको सख्त से सख्त सजा मिले, न्यायाधीश जो सजा दे, लेकिन जो मिले जल्द मिले और सख्त से सख्त सजा मिले।
1: जमुई केस की बात यहां की जा रही है, पीड़िता की पहचान उजागर करने का मामला गर्मा गया है। RJD ने इसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मुख्यमंत्री के हैंडल से पीड़ित की तस्वीर शेयर की गई थी, इसीलिए सीएम पर FIR की मांग की जा रही है।
11: जमुई में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सख्त एक्शन और मैसेजिंग के चक्कर में कुछ ऐसा कर गए कि बिहार में विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। हुआ ये कि सम्राट चौधरी जमुई पीड़िता और उसके परिजनों से मिलते हैं और मुलाकात की फोटो मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की जाती है, जिस पर पीड़िता और उसके परिजनों का चेहरा साफ साफ दिखाया जाता है। बस इसी बात को लेकर विपक्ष अड़ गया।
12: तो ये जो था ये तो सम्राट चौधरी है ना, उनके हैंडल से आया ना। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, और आपको समझ में नहीं है कि बिना आपसे पूछे बिना आपकी जानकारी के एक्स पे कुछ भी लिख देगा कोई। हम भी एक्स पे हैं, तो बिना हमसे पूछे अगर कोई चलाता है तो कोई बिना हमको दिखाए बिना हमसे पूछे देश दुनिया की खबर ऐसे ही लिख देगा फेसबुक पे एक्स पे।
11: हालांकि पोस्ट शेयर करने के कुछ ही देर बाद डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन आरजेडी इसको लेकर सीएम सम्राट पर हमलावर है। आरजेडी सांसद मीसा भारती मुख्यमंत्री पर एफआईआर की मांग कर रही हैं। सीएम पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि सीएम ऑफिस के कर्मचारी पर।
12: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में एफआईआर किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप एफआईआर नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से एफआईआर हटाया जाए।
11: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गईं, एफआईआर उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर एफआईआर हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो सीएम पर एफआईआर करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए।
13: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इनको तो इनके ऊपर बिहार पुलिस तुरंत पॉक्सो एक्ट लगाए। जमुई में या और कहीं भी घटना हुई है तो पुलिस ने कई लोगों पर 80-90 लोगों पर जो है पॉक्सो एक्ट लगाया है। अगर मुख्यमंत्री पर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा, कौन मानेगा पॉक्सो एक्ट को?
11: सम्राट चौधरी पर एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन मीसा भारती का जिक्र एफआईआर में जरूर है कि बिना जांच के किसी व्यक्ति को दोषी ना ठहराया जाए। आज तक ब्यूरो।
1: रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, पहचान को लेकर जो मामला अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, अब इस मामले में किस तरह की सियासत हो रही है बिहार में?
14: देखिए, जाहिर सी बात है पहचान जो है वो सामने लाने का आरोप लगा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, क्योंकि वो जो तस्वीरें वायरल हुई थी जमुई पीड़ित के पीड़िता की परिवार वालों की, वो उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया गया था। तो इसीलिए विपक्ष अब उन पर हमलावर है और कह रहा है कि अगर किसी और ने कैसे कर दिया होगा। उनका कहना है, जिस स्टेनोग्राफर पर जो है एफआईआर अब दर्ज किया गया है, तो उनका कहना है कि भाई अगर कोई भी नेता हो तो कोई भी उनका जो कर्मचारी उनके कार्यालय में होता है वो ज़रूर एक बार नेता से पूछ लेता है कि भाई मैं ये पोस्ट करने जा रहा हूँ या ट्वीट करने जा रहा हूँ, जो भी है। तो इसको लेकर आधार बनाकर जो है मीसा भारती हो या तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पर हमलावर है। हालांकि सरकार की तरफ से जो है उस स्टेनोग्राफर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है जिस पर आरोप है।
1: तो मतलब ये बात स्पष्ट कही जा सकती है कि अभी ये मामला दूर तक जाता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से सुबह सुबह सियासी हिंसा की खबर सामने आई। चाय पीने गए बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक बीजेपी सोशल मीडिया कार्यकर्ता की मौत हो गई। घटना पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के हाथी हाल का इलाके की है, जहां कदमतला मार्केट में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता चाय पीने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर हमला हो गया। 40 साल के शमशेर बिस्वास गंभीर रूप से घायल हो गए, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, ऐसी खबर आ रही है। ये बीजेपी का आरोप है कि पार्टी से जुड़े या राजनीतिक रूप से पाला बदल कर आए थे। अभी हाल ही में पार्टी से जुड़े। बंगाल में जमकर चाकूबाजी और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। और ये देखिए कैसे मारपीट यहां पर की जा रही है। पटियाला की चितकारा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भारी हंगामा किया। कैंपस में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, तोड़फोड़ की। पुलिस जब छात्रों को समझाने पहुंची तो विरोध कर रहे छात्र पुलिस जवानों से ही भिड़ गए। हंगामे के दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। चौकी इंचार्ज से भी छात्रों की हाथापाई हुई। भूत और दो छात्राओं की लापता होने की अफवाहों के बाद कैंपस का माहौल बिगड़ गया। पुलिस कह रही है कि किसी छात्रा की पहचान या गुमशुदगी की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। अब यूनिवर्सिटी कैंपस की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन भूत की खबरों को अफवाह बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि कुछ शरारती तत्व रात के समय दूसरे छात्रों के कमरों में दरवाजे खटखटाकर भाग जाते हैं और इसी वजह से यह अफवाह फैली है कि भूत है भूत है। तो ये जो आप हंगामे की तस्वीरें देख रहे हैं ये चितकारा यूनिवर्सिटी से।
15: पेरेंट्स दी ते सारेयां दी जानना चाहना कि अज साडे ध्यान विच इक मसला आया सी कि चितकारा यूनिवर्सिटी च बच्चे कह रहे ने कि दो लड़कियां मिसिंग ने। ता उत्ते सोशल मीडिया ते भी पोस्ट पाई गई सी इहदे रिगार्डिंग। अज असीं हुण इत्थे लोकल SHO गुरसेवक, मैं DSP बनोड़ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
1: ਔਰ ਕਹਿੰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਲਈ, ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਆਜ ਤੱਕ।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
19: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
20: मेरे पास एक आइडिया।
18: क्या?
20: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है, ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
19: ओ नादान परिंदे, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
20: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
21: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
19: आई लाइक दिस ओनली।
22: देश भर में SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना Extra 2AB, चुनाव आयोग में Extra 2AB संधू जी और जोशी जी आ गए। अब वो Extra 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं इट्स डन ब्रो, हो गया, मान जाओ, राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, नहीं तो नाज़ी युग जब खत्म हुआ था आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।

0: प्यार प्यार उल्टा बात सर एक दो तो छुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो टीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉक स्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
5: एकदम सॉलिड।
6: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
7: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली। आई हैव कम टुडे टू द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन एंड गिवन अ कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन हियर अगेंस्ट चोर ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश चोर कुमार द सॉरी फिगर हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दिस कंट्री एंड अपेरेंटली ही एंजॉयज इम्यूनिटी under the CEC and EC Act of 2023, Section 16, which says that the election commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
8: ये लोग चुनाव आयोग में निर्वाचन सदन में लोकतंत्र का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार। ये हमने नहीं कहा, और दो चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है। अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ की कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेचल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन में लामबंदी तेज। टीएमसी और लेफ्ट में जमी बर्फ पिघली। ममता सीपीएम महासचिव एमएबीबी में हुई बात। आप जेएमके बीजेडी बीआरएस और टीवीके को जोड़ने की कोशिश। सीजेपी को भी चिट्ठी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपतरा अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। पुलिस ने चार्जशीट में बनाया सरकारी गवाह। आरोपियों की लिस्ट में 8 नाम। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट पर गरमाई सियासत। सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एक्शन, एफआईआर दर्ज। मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। और एशियन गेम्स में बेटियों का गेम, कबड्डी महिला टीम ने लहराया तिरंगा। ईरान 37-34 अंकों से ईरान को हराकर जीता गोल्ड। महिला क्रिकेट और मिक्स्ड शूटिंग के बाद तीसरा स्वर्ण।

0: आका, एक अकेला सब पे भारी वाला आका, हर संस्थान को जैसे उन्होंने तहस नहस कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक उसी तरह से ज्ञानेश बाबू चुनाव आयोग को अकेले हांक रहे थे। अब तानाशाह का दूत तो आधा तानाशाह तो खुद भी होता है।
1: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं। आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं, गणेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए।
2: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे।
3: आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज चर्चा एक बार फिर से चुनाव आयोग के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई एक कदम आगे बढ़ गई है। कांग्रेस ने आज देश के हर कोने में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के बड़े नेता भी सड़क पर उतरे। राहुल गांधी ने एक नया वीडियो पोस्ट कर दिया है और सीधी चुनौती दी है कि भारत के युवा आपको एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के मसले पर जेंजी का आंदोलन भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आज कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि 18 साल पूरा करने वाले जेंजी को वोटर बनाने वाली स्पेशल समरी रिविजन SSR यानी कि जो प्रक्रिया है SSR की, वो जनवरी 2024 के बाद नहीं हुई है। इसे पार्टी जेंजी के खिलाफ युद्ध कह रही है। BLO ऐप में VIP कैटेगरी जोड़ने का दावा भी कांग्रेस की ओर से हुआ। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के हंगामे के बीच आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहकर पूरे मुद्दे को और बढ़ा दिया है, दबाव बढ़ा दिया कि चुनाव आयोग के लोगों को शंकाएं दूर करनी ही चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार के नाम पर मचा सियासी तूफान बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे आज बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग उठा दी है, ये लीजिए। तो इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार पर यह लड़ाई कहां तक जाएगी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा संग्राम हल्ला बोल में इसी पर बहस करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता RJD के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हैं। और LJPR की तरफ से हमने प्रोफेसर विनीत सिंह को जोड़ा है ताकि हम ये समझ तो सकें कि चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, देश भर में आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, देखिए ये रिपोर्ट।
2: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
3: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के इन तेवरों के बीच कांग्रेस उनके खिलाफ सड़कों पर उतरी। उत्तर हो, पूर्वोत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूरब हो, देश के हर कोने में CEC के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। असम में गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते देखे गए। पटना और चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें फेंकी गई। चंडीगढ़, हैदराबाद और गुवाहाटी में पुतला दहन किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश व्यापी माहौल बना सके। कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी ना होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है। इस बीच आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नए आरोपों की झड़ी लगा दी। पार्टी ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया कि BLO ऐप में VIP वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
4: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब रचना की संविधान की, तब एक बात बहुत स्पष्ट थी, उस पर बड़ा जोर दिया गया था कि बाकी सब कुछ भले छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वोट की कीमत सबकी एक जैसी होगी। सत्ता पर अब ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं, क्यों उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
3: कांग्रेस ने आज ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो सके हैं। पार्टी ने आज चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ किया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी SSR प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। आज चुनाव आयोग पर दबाव NDA सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से भी पड़ा है।
5: मुझे लगता है ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग खासतौर पर CEC की बनती है कि वो अपनी तरफ से पक्षों को मजबूती से रखें ताकि देश के एक भी नागरिक के मन में, मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
3: CEC के खिलाफ मचे हंगामे के बीच VIP के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर CJP भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट 2 की धमकी देने लगी है।
6: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
3: ज्ञानेश कुमार के बहाने विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है। पलटवार में BJP राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठा चुकी है।
1: अरे राहुल गांधी का कोई बात कांग्रेस ही नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म भूषण देना चाहिए। सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है।
3: वैसे जब से ज्ञानेश कुमार के नाम पर राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है तब शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदर्शन में लखनऊ से पटना और कोलकाता तक इंडिया गठबंधन के साथ ही नजर नहीं आए। आज तक ब्यूरो सामिक भट्टाचार्य, तो पद्म भूषण की मांग कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी की क्या भी क्या ऐसी राय में है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी प्रशंसा कर दी लेकिन देश के अंदर तो प्रश्न उठ रहा है, और आखिर ये चुप्पी क्यों है, ये प्रेस नोट जारी कर देना, ये सोर्सेस के हवाले से चुनाव आयोग ये कह रहा है वो कह रहा है, सामने क्यों नहीं आते हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त आ जाएं सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
7: जिस खबर की ये बात कर रहे हैं हाँ। उस खबर में किसी चुनाव आयुक्त अथवा चुनाव आयोग के किसी कर्मचारी का कोट है नहीं है, किसी का सोर्सेस के थ्रू भी रेफरेंस है नहीं है, कोई पेपर दिखाया गया है नहीं दिखाया गया है, तो जिस चीज को केवल छाप दिया गया, चुनाव आयोग ने छाप के उत्तर दे दिया स्टेटमेंट में, इससे ज्यादा क्या अपेक्षा हो सकती है एक अनसब्सटेंशिएटेड न्यूज की। क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, अगर कोई कोर्ट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई सोर्सेस का भी कोई ऑफ द रिकॉर्ड रेफरेंस भी नहीं है तो उसे अनसब्सटेंशिएटेड न्यूज ही
3: कहा जाएगा। आंदोलन खड़ा हो रहा है सर, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे ही उस वक्त भी हुआ था नीट के बाद।
7: नहीं नहीं, आंदोलन तो कुछ भी ना हो तब भी विपक्ष और कांग्रेस आंदोलन ही खड़ा करते रह रहे हैं। कब से आंदोलन नहीं हो रहा है? वैसे 12 साल में लोकतंत्र की हत्या 1200 बार तो हो ही चुकी होगी। हर दूसरे दिन लोकतंत्र की हत्या होती है, हर तीसरे दिन अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोला जाता है, और आंदोलन के लिए तो कहे कि आंदोलन जीवी है, ये बहाना नहीं तो वो बहाना नहीं। और एक और बात समझ लीजिए, यह आंदोलन इसलिए हो रहा है, कल जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी जी ने, तो चुनाव आयोग के खिलाफ बोला कि वो अमित शाह जी की फोटो दिखा रहे थे और एक दर्जन लोगों की दिखा रहे थे, पत्रकारों की भी दिखा रहे थे। भाई साहब आप करना क्या चाह रहे थे ये तो बता दिए, बहुत साफ है। इसका अर्थ यह है कि आपको बहाना ढूंढना था और आप अमित शाह जी का नाम ले रहे थे और मोदी जी का, दोनों का एक एक सिर्फ जवाब देता हूं। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिसने 25 साल में 25 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है, और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो 25 हफ्ते कभी ऐसे नहीं गुजरे हैं संसद का सत्र शुरू होने के बाद जो वो विदेश न चले जाते हों। तो मोदी जी जमीन से जुड़े नेता हैं और ये जमीन से उड़े हुए नेता हैं, उड़ के विदेश चले जाते हैं। दूसरा जो अमित शाह जी के लिए कहा, मैं कहना चाहता हूं देखिए, कोई ये कहे कि मुझे रिजल्ट सही नहीं आया तो मेहनत करता दिखाई तो पड़े। अमित शाह जी ने कहा कि मैं 25 दिन बंगाल में रहूंगा और रहे, चुनाव परिणाम बदला। मैं पूछना चाहता हूं 2004 से अब तक राहुल गांधी जी कितने चुनाव ऐसे हुए जिसमें 25 दिन रहे हों? चलो 25 दिन बहुत बड़ी चीज है, 15 दिन रहे हो, 15 दिन बहुत बड़ी चीज है, 10 दिन रहे हो, जो व्यक्ति मैदान में उतरता ही नहीं है, मेहनत करता ही नहीं है, वही व्यक्ति आकर ये कहने लगते साहब सब गलत हो रहा है, सब खराब हो रहा है, सब फलाना हो रहा है, ये धमाका हो रहा है। वो तो कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अब मैं एक बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं, केरल का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, वो तो राज्य का चुनाव आयुक्त कराता है, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में स्पष्ट बहुमत नगर निगम में पाया और 30 साल का कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा समाप्त किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो वोट चोरी थी क्या? और दूसरी बात, क्या केरल में नगर निगम के चुनावों में जो इलेक्टोरल रोल्स बने और लोकसभा के इलेक्टोरल रोल्स में कोई अंतर था क्या? यदि नहीं तो ये बताएं। एंड पॉइंट नंबर 3, कह रहे ना चुनाव आयुक्त की उसमें केंद्र सरकार में तो नेता प्रतिपक्ष है, हाँ, कमेटी में कितनी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के चयन में नेता प्रतिपक्ष है बताइए, जहां ना विपक्षी सरकार है। चुनौती से पूछो भाई, सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, बताओ भाई कितने राज्यों में किया है? खुद भी यहां फजीहत, दूसरों को नसीहत।
3: चलिए, खुद फजीहत और दूसरों को नसीहत पर भी बोलिएगा। और एक सेकंड, क्या राजनीतिक हार की हताशा है ये कि 12 साल तक हम सत्ता से दूर रहे तो हम कह दें कि एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? भाई नवीन पटनायक भी इतने सालों तक रहे, ममता बनर्जी, लालू जी इतने सालों तक रहे, नीतीश कुमार इतने सालों तक रहे, कम्युनिस्ट पार्टी दशकों तक शासन करती रही, तब कहां था ये थ्योरी?
8: आपके प्रश्न का उत्तर के साथ में भाई साहब के प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहली बात कि आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी पहले नहीं होती थी, अब नहीं हो रही है और पहले होती थी, तो सच्चाई तो है कि वाजपेयी जी के समय में भी हुई थी, उससे पहले भी बहुत सारी सरकारें गठबंधन की संबित सरकारें बनती रहती थी, चेंज होते रहते थे। जहां तक बात है उस समय चुनाव आयोग पर इस तरह के कोई प्रश्न नहीं आते थे, भाजपा की तरफ से भी नहीं और बाकी लोगों के तरफ से भी नहीं, सरकारें आई और जाती रहती थी, क्योंकि किसी को भी इतने व्यापक स्तर पर चुनाव से वोट से वंचित करने का काम किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया।
3: एक चीज बताइए कि आपके आंदोलन का मकसद क्या है? ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा,
8: देखिए आंदोलन का मकसद है, हाँ, चुनाव में जो धांधली हो रही है, चुनाव की विश्वसनीयता पर जिस तरह इतना बड़ा प्रश्न आया है, इस पर यदि सरकार आकर के ईमानदारी से निष्पक्ष जो संस्था है उस पर बात नहीं रखेगी, चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन आकर के यदि वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जिस रिपोर्ट की बात अभी की जा रही है और हमारे भाजपा प्रवक्ता ने सिरे से नकारा, भाई जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबको पता है कि वो रिपोर्ट ऐसे नहीं आई है, वो कहीं ना कहीं लिखित तौर पर औपचारिक तौर पर प्रक्रिया का पार्ट है। ज्ञानेश कुमार क्या अकेला चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही कमिश्नर है या बाकी भी दो सहयोगी उसी राइट के साथ है? ये तो अस्पष्ट है कि ये सभी इक्वल है, इक्वल अमाउंट्स वो उसमें वो चीफ है, तो डिसीजन सर्वसम्मति से होना चाहिए या डिसीजन मेजोरिटी से होना चाहिए। अभी तक जो भी डिसीजन हुए, जिसको ऑलरेडी दोनों चुनाव आयुक्तों ने स्पष्ट कह दिया कि भाई पिछले एक साल से तो फाइल ही नहीं दिखा रहे हैं, और तब तो जाकर के कैबिनेट सेक्रेटरी के पास उनको जाना पड़ा।
3: आपको चाहिए क्या, इस्तीफा चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, चाहिए क्या?
8: देखिए पूरी इस्तीफा तो, देखिए इस्तीफा तो चाहिए क्या, इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, ज्ञानेश कुमार को नहीं, उनको देना ही पड़ेगा, यदि उनमें नैतिकता होगी तो देंगे, नहीं तो बहुत सारी उन्होंने कर दी है, तो या तो इस्तीफा वो देंगे, नहीं तो इस्तीफा देश की जनता उनसे लेगी। ये आप स्पष्ट मानिए कि लोकतंत्र के बुनियाद पर प्रश्न लगाने का कोई काम करेगा उसको कोई नहीं बर्दाश्त करेगा।
3: वो तो दूसरी बात, इस्तीफा लेगी।
8: दूसरी बात, राहुल गांधी जी से आपत्ति भाई साहब को जितनी हो करना चाहिए, विपक्ष के लोग हैं और मैंने वो सत्ता पक्ष के हैं तो उनको विपक्ष से आपत्ति हो सकती है, यदि कोई हम वैलिड प्रश्न करेंगे तो उनको उसका जवाब देना चाहिए, यही जवाब चुनाव आयोग ने मांगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं आया, वो 14 आपत्तियां क्या क्या है जनता के बीच नहीं आया, ये आम जनमानस का सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग यदि विश्वसनीय नहीं रहेगा तो इस लोकतंत्र में लोगों का अधिकार कैसे सुरक्षित?
3: ठीक है, इस पर एक जवाब दीजिए आप सर, ये जनवरी 2024 से, ये ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए, जनवरी 2024 से SSR की जो प्रक्रिया है वो क्यों नहीं हुई है, जो स्पेशल समरी रिविजन होता है जिसमें 18+ युवाओं को वोटर बनाने का अभियान होता है?
8: एक प्रश्न और ले लीजिए, गोवा में 97 वोटर का जो है अधिकार वंचित किया गया, गोवा का जो चीफ इलेक्शन अधिकारी है वो सेंट्रल को लगभग 7-8 बार पिछले एक सप्ताह में लिख चुका और वो उसके बावजूद भी ऐड क्यों नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज किया गया, क्या ये सेंट्रलाइज सही है, क्या ईआरओ को इसका राइट क्यों नहीं रहना चाहिए, लोकल आदमी जो समझता है वो व्यक्ति को पहचानता है,
3: ईआरओ से उनका अधिकार लिया जा रहा था, इस मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा है इंडियन एक्सप्रेस के कि ईआरओ से जो उनका ईसीआई नेट में जो उनका अधिकार था वो उनसे कई दिनों के लिए विड्रॉ हो गया,
9: वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और 97 वोट गोवा के उस पर भी जवाब, एसएसआर नहीं होना 24 से क्यों?
10: देखिए ऐसा है, जहां तक सवाल इस बात का है कि पहले तो मैं गोवा का जवाब दूंगा, 97 वोट्स की बात कर रहे हैं, शायद ये इस बात को भूल जाते हैं, कोई आज की बात नहीं ज्ञानेश जी के हाथ जिन्होंने सेंट्रलाइज किया है, ये हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू से है। उसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि संजय सिंह मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में हैं, उनकी वाइफ का वोट सुल्तानपुर में भी कटा और दिल्ली के साउथ यूनियन में भी कटा गया, और बाद में कहा कि हमारी वाइफ का दिल्ली से डिलीट कर दिया गया है, बहुत शोर मचाया था संजय सिंह ने। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो सर्वर है बहुत पहले से लगा हुआ है, अगर दो जगह से मैच कर जाएगा तो ऑटोमेटिक दोनों जगह से उड़ जाता है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप देखिए हर वोटर लिस्ट के लिए जब रजिस्ट्रेशन होता है एक टाइम खोल दिया जाता है हर स्टेट में, और उसके बाद जो हमारी ड्राफ्ट लिस्ट आती है उसका भी टाइमिंग है, और उसके बाद हमारी फाइनल लिस्ट आती है।
9: पर बार बार इंटीमेशन आ रहा है जब 97 वोट्स का तो हाँ। कुछ नहीं करेंगे, हाथ धरे धरे बैठे रहेंगे?
10: नहीं नहीं, हर चीज का
9: तो टाइम लिमिट जवाब ही नहीं आया।
10: नहीं टाइम लिमिट है, इनको क्या पता कि इंटरनल क्या बातें हो रही है, टाइम लिमिट है। हाँ हमारे सीईओ ने कहा टाइम लिमिट को कैसे उसको कर लेंगे, अब साल भर तो नहीं चलेगा रजिस्ट्रेशन, जैसे पार्टियां चाहती कि साल भर उनके साथ काम करें हम, हमारा हर चीज का टाइम, एसआईआर का भी टाइम आप देख लीजिए, और आईटी में ये एक सिस्टम है।
9: नहीं एसएसआर क्यों नहीं हो रहा है
10: जी,
9: एसएसआर क्यों नहीं हो रहा है,
10: क्यों नहीं
9: जो ये स्पेशल समरी रिवीजन है?
10: देखिए हमने पहले
7: दिन थोड़ी होता रहे,
10: हमने पहले कहा ना हर चीज का टाइम लिमिट है, अब हम जनता के हिसाब से नहीं चलेंगे, इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से चलता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 324 में इंडोर्स किया है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी आजादी है कि वो किस तरह अपने काम करता है। और
7: बिल्कुल इनकी बातों पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, स्टेट्स में सबके वोट जो नए वोटर से ऐड किए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे जब नेशनल इलेक्शन होगा उस समय होगा, क्या नए वोटर्स नहीं बने बंगाल में, नए वोटर नहीं बने बिहार में, 2024 के बाद नए वोटर नहीं बने महाराष्ट्र में, इसलिए यह बात पूरी तरह तर्कसंगत। अब मैं एक बार पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे दूं जो इन्होंने कहा। देखिए राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, आपने देखा प्रश्न पूछा गया उनसे कि एंटी इनकम्बेंसी होती आपको कब पता चला, उन्होंने कहा 7 साल की उम्र में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने कहा तब मुझे पता चला कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब पहली बात तो समझिए 7 साल की उम्र में किसी को एंटी इनकम्बेंसी पता हो, दूसरा राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970, वो 7 साल के पूरे हुए 19 जून 1977, इंदिरा गांधी जी मार्च 1977 में चुनाव हार चुकी थी, तो जब वो 7 साल के हुए तब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है तब तक उन्हें एहसास हो गया होगा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है। फैक्ट नंबर वन, फैक्ट नंबर वन, हार गई थी ना, अगर समय रहते होता तो इमरजेंसी लगी थी तो चुनाव ही ना करवाती, मतलब इंदिरा गांधी को यह पता था कि मैं चुनाव हारने वाली हूं और इमरजेंसी को रिवोक करके संसद की लाइफ 6 साल की जा चुकी थी, उसके बाद वो चुनाव करा रही थी, ऐसी अप्रतिम बुद्धि 6 साल के ही किसी अद्भुत मेधा संपन्न व्यक्ति में हो सकती है जो यह कहे कि मुझे एंटी इनकम्बेंसी के बारे में पता था। अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, इस देश में एक इलेक्शन कमिश्नर थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे सरकार के खिलाफ, कौन थे? टीएन सेशन, जब ये दो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था, किसकी सरकार में हुआ था? एक इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने राष्ट्रपति को लिखा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी ने, कि इलेक्शन कमिश्नर को बर्खास्त कर दिया जाए, और 12 पॉइंट दिए थे कि ये कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं नवीन चावला जी, मगर कांग्रेस ने उल्टा उनको बना दिया। अब देखिए कितना निष्पक्ष था, 1985 विधानसभा चुनाव, मैं लोगों से कहता हूं जाके चेक करिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश में शायद 37% या 38-40% कुल वोटिंग हुई थी, अमेठी विधानसभा में कितनी वोटिंग हुई थी पता है आपको? 91%, और कुछ पोलिंग बूथ पे अखबारों में आया था 100% से ज्यादा हुई थी, मगर चुनाव आयोग ने उसे देखा ही नहीं संदेह की दृष्टि से कि पूरे उत्तर प्रदेश में 37-38-40% वोटिंग हो रही है और एक विधानसभा में 91%। और सुनिए ये संजय सिंह जिनका इन्होंने नाम लिया, ये कांग्रेस के टिकट पे 1,00,000+ से विधानसभा जीते थे, और उसके बाद वो जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो क्या बने? गुजरात के राज्यपाल, जो 82 से 85 तक बने थे।
9: इन सब का क्या करना है सर, अब तो हम 26 में आ गए हैं।
7: अगले पॉइंट, पहले तो मैंने
9: इनको तो जनता ने नकार दिया, इनको जनता ने बाहर कर दिया,
7: जो बोला ना एक समय ऐसा था जब इलेक्शन कमीशन, अब आइए जो आपने बात कही एसआईआर के मुद्दे के ऊपर, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो हो रहा है वो बिल्कुल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से पावर है। हाँ एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के भी पक्ष में 40 साल तक नहीं रही है, कब? जब कोई सीसीटीवी नहीं था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं थे, बूथ लूटे जाते थे, सुनिए बूथ कैप्चरिंग होती थी और बूथ जो है वो बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, और इतना ही नहीं फायरिंग होती थी, 1989 में अमेठी में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पक्ष में बूथ कैप्चरिंग की गई, संजय सिंह को गोली लगी, 21 लोगों पे एफआईआर दर्ज।
8: अंजना जी, मैं
7: तब होता था तभी हमेशा
9: डायरेक्ट जवाब,
7: एक मिनट सेंटेंस पूरा कर दिया। जब से पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए, वोटर आईडी कार्ड हो गया है, सीसीटीवी लग गए हैं, मीडिया निष्पक्ष हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल आ गए हैं, जुडिशरी निष्पक्ष है, तब से इनके लिए सत्ता दूर की कौड़ी हो गई, इसलिए बिलबिलाहट है।
9: ठीक है,
8: अच्छा ये चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है तीनों की, ये तो आप ही लोगों ने किया है ना, मोदी जी, अमित शाह जी ने।
7: मैंने पूछा था राज्य चुनाव आयोग कैसे अपॉइंट होते हैं, राज्यों के चुनाव आयोग कैसे अपॉइंट होते हैं, अब बता
8: दीजिए, मैं बोलता हूं, मेरी आदत नहीं। तो ये तीनों लोगों की नियुक्ति का तो आप ही को है, आप ही ने नियुक्त किया, यदि उनके अंदर कोई डिसेंट बात आ रही है तो क्या ये दायित्व नहीं बनता है कि पब्लिकली आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। सुनिए ना, बीच में नहीं, चुनाव आयोग के
10: अगर कोई ऐसी बात है, सुनिए,
8: आपको बीच में
10: अगर कोई ऐसी बात है तो आपको राष्ट्रपति को लिखना चाहिए।
9: अरे तो कहीं नहीं सामने आ रहे हैं, सामने आए ना,
8: ये तो बहुत ठीक है, लेट हिम कंप्लीट, सामने आ
10: के कहना चाहिए,
8: ये तो अच्छा कर दिया कि आप दोनों लोगों को
10: प्रेसिडेंट के सामने जाना चाहिए थी।
8: अरे भैया चुप रहिए, आप दोनों लोगों के बात से स्पष्ट हो गया कि ये दोनों चुनाव आयोग पर आप लोगों को ही भरोसा नहीं है, ये तो स्पष्ट और क्लियर हो गया कि ये जो बात रख रहे हैं इसका मतलब ये दोनों गलत रख रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न, अब इसके बाद क्या बचता है, पहली बात।
7: अब जवाब
8: हम कांग्रेस पार्टी
9: ने दूसरा पॉइंट वो बोलेंगे,
8: उसके बाद आपने राहुल जी के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, अब हम नहीं कहेंगे, हम
7: तो नहीं कहते
8: गटर के गैस से जो है वो बन जाता है क्या क्या, रडार में बादल मेरा डार छुप जाता है, ये सब ज्ञान हमको भी नहीं पता है, यदि होता होगा तो होता होगा, मैं किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञान पर प्रश्न नहीं लगाऊंगा, आप वाकई सबसे ज्ञानी प्रवक्ता हैं और आपको इस तरह के चीजों पर भी इतना सफाई के साथ ज्ञान देने के लिए बुला रही है भाजपा, क्योंकि
9: प्रोफेसर साहब
8: और चुनाव आयोग दोनों के पास कोई तथ्य नहीं रहा।
9: प्रोफेसर साहब एक सिंपल सवाल है, अल्टीमेटली
8: एकदम लास्ट बोल लो, हमने उन्होंने कहा कि जनता जनता के हिसाब से नहीं होगा, अरे भाई ये चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग को दी गई और जनता के भरोसे यदि नहीं उस चुनाव आयोग में रहेगा तो फिर उस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और चुनाव का क्या होगा, फिर लोकतंत्र का क्या होगा।
9: बिल्कुल,
8: चुनाव आयोग जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस पार्टी
9: ये से सवाल मैं भी उनसे पूछूंगी। बिल्कुल सही बात कही आपने,
8: चुनाव आयुक्तों ने भी अभी पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न लगाया और रायता फैलाया किसने, चुनाव आयोग ने रायता फैलाया है, ज्ञानेश जी का गुप्त ज्ञान अब सार्वजनिक हो गया कि वो ज्ञान कहां से ले रहे हैं,
7: गुप्त ज्ञान का मतलब पता है आपको,
8: चुप्पी चुप्पी जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी की बनी हुई है, वाह मोदी जी वाह,
9: पर डिनाई तो खुद चुनाव आयोग नहीं कर रहा ना सुधांशु जी, एक सेकंड,
8: वोट का अधिकार काटा जा रहा है
9: सुधांशु जी, चुनाव आयोग ही डिनाई नहीं कर रहा, प्रेस नोट पूरा निकाला है,
7: प्रेस नोट में
9: एक जगह भी डिनाइल नहीं है,
7: प्रेस नोट में डिनाइल नहीं है, ऑल रिजल्ट्स पर यूनानिमस। अब मैं एक बात कहता हूं,
11: डिनाइल तो कर ही रहे हैं ना
7: चुनाव आयोग के, अब मैं रिटर्न में
9: छोटा सा जवाब,
7: एक लाइन का जवाब, जैसे राहुल गांधी जी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया, वैसे उन्होंने विवेक जोशी जी के लिए भी दिया था जिनके लिए आज वो
8: एकदम ठीक
7: है, ठीक है, तो वो नोट ऑफ डिसेंट रिकॉर्ड पे है, राहुल गांधी जी ने भी कहा हाँ मैंने दिया था, ये चुनाव आयुक्तों का कहा है नोट ऑफ डिसेंट,
8: ये आ जाएगा
7: और प्रक्रिया
8: में दिखाइए ना,
7: अरे भाई बगैर इसका मतलब बगैर आए बोल रहे हैं, बस
8: बगैर नहीं,
9: चलिए ठीक है, ठीक है प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब
8: डिनाई किया,
9: प्रोफेसर साहब
8: आयोग ने डिनाई किया, इसको डिनाई नहीं किया,
7: डिनाई किया
8: नहीं,
7: सारे निर्णय यूनानिमस थे,
9: ठीक है, वही सवाल पूछ रही हूं नवल किशोर जी, ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्रोफेसर नवल किशोर, अल्टीमेटली जो प्रेस नोट है उसमें ये कहा गया है कि लिखित मौखिक और भी कई आधार पर ड्राफ्ट के स्टेज में कई सारी आपत्तियां आई थी, लेकिन जो अंततः फैसले लिए गए हैं वो यूनानिमस फैसले हैं, यानी सहमति से लिए गए फैसले हैं। अब अगर नहीं है तो ये कैसे सच सामने आएगा, ये तो उन दोनों को आना चाहिए सामने। ओपी रावत ने मुझे कहा मेरे इंटरव्यू में, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि इन दोनों को तुरंत राष्ट्रपति, अरे रुकिए साहब, उनको तुरंत जाना चाहिए सीईसी के पास, राष्ट्रपति के पास, तो वो ये अधूरा गेम क्यों खेल रहे हैं।
11: नहीं नहीं देखिए, ये जो भी चीज आ रहा है वो तो फ्रंट न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से आ रहा है, अगर वो गलत है तो सुशांत सिंह जी काबिल हैं, शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, रिपोर्टर जिसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के आधार पर ये रिपोर्ट छापा है उसको जेल भेज देना चाहिए, नंबर एक। देखिए सवाल विपक्ष का बहुत सिंपल है कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र नहीं निष्पक्ष होना चाहिए और दिखना भी चाहिए, ये पूरे तौर पे आप देखेंगे कि ज्ञानेश जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, विपक्ष हैं, समकक्ष हैं, ये तो पता चल गया कि भाई चुनाव आयोग पे उंगली उठता है और सत्ता पक्ष आकर जवाब देता है और लड़ने को तैयार है, सारे लोगों के ज्ञान पे एकदम सवाल उठाते लगते हैं यहाँ पे, इसलिए पूरे देश में यह संदेश चला गया है कि ज्ञानेश जी ने अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जी के काम कर रहे हैं और किसी के लिए काम नहीं किए। लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल यह सबके सामने आ गया है और देश भर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में गुस्सा है। बिहार के हर जिला में आरजेडी ने भी आज ज्ञानेश जी के पुतला जलाए हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि आपने एक सत्ताधारी पार्टी के लिए काम किया है चुनाव आयोग रहते हुए, जबकि आप स्वतंत्र भी हैं और निष्पक्ष भी होना आपका दायित्व है, जो आपने नहीं दिखाया है। जो रिपोर्ट के आधार पर सारी बातें सामने आई है उसमें एक एक बात हम सच मानेंगे कि न्यूज़पेपर के सामने पेपर पे है, और उसको अगर आप सवाल करते हैं तो आप ये तो बताना पड़ेगा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो क्यों
10: इलेक्शन कमीशन का कोई भी ऑर्डर बाहर नहीं जा सकता। टू टू वन होना चाहिए।
9: अरे तो लिखे ना रिपोर्ट में, तो लिखे ना रिपोर्ट में, वो जो प्रेस नोट जारी करा रहे हैं किसी और के नाम से उसमें वो लिख के दे। अरे सुनिए ना साहब, सुनिए ना, हमें भी पता है कि दो का सिग्नेचर जरूर है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट साफ साफ दावा कर रहा है कि दोनों चुनाव आयुक्त फॉर्म 6 में बदलाव के मुद्दे पर उसको इलीगल अनऑथराइज कह रहे थे
7: बगैर किसी रिपोर्ट या कोर्ट के द्वारा, बगैर किसी दस्तावेज
11: कंट्रोल में भी करें,
7: बगैर दस्तावेज।
9: तो ज्ञानेश कुमार केस क्यों नहीं करते हैं, इस पर केस करें अगर गलत जानकारी दी जा रही है? वो भी तो नहीं कर रहे हैं सर,
11: वो भी कर सकते हैं, उनके पास ज्यादा पावर है।
7: अखबार में लिखा है ना भाई साहब, कितने अखबार है भारत में रजिस्टर्ड?
8: नहीं अखबार
11: उससे क्या मतलब है आपको? हाँ। जो रिपोर्ट है वो गलत
7: बता रहा हूँ
11: या सही?
7: अगर अखबार की लिखी बात पे आप कहेंगे,
11: आप देखिए आप
7: इलेक्शन कमीशन आपने रिटर्न
11: आप तथ्य से भटका रहे,
7: तथ्य से बिल्कुल तथ्य पे बात कर रहा हूँ।
11: चुनाव आयोग के यहाँ पे बोल रहे हैं तो बोलिए।
7: नहीं मैं आप एक और बात बता दूं, ये सरासर झूठ बोलते हैं। हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई परसों, जो अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में संबित जी ने की, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मैंने की, और मैंने शुरू में ही बोला कि
11: पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्ट कर रहा हूं। चुनाव आयोग सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं?
9: आप पूरा क्यों
11: मैंने कांग्रेस की आप क्यों करते हैं? आप उनके प्रवक्ता हैं
10: क्या? देखिए पत्रकार,
7: अरे भाई कांग्रेस का जवाब दिया है,
11: चुनाव आयोग का जवाब मैंने बोला है, ठीक है? चुनाव आयोग का जवाब
7: सुनिए भाई साहब। अच्छा चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ और दर्शकों से कि मैंने एक बार सेंटेंस बोला हो कि मैं चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए, मैंने कहा मैं राहुल गांधी
11: जो बात तरीका है
9: भाई,
7: मैंने ये कहा मैं राहुल गांधी जी की प्रेस का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल कर रहा हूँ।
9: ठीक है अमीन साहब, मेरा सवाल सुनिए। आपने अभी कहा कि जनता के हिसाब से थोड़ी कहा, तो चुनाव आयोग है किसके लिए? जनता के लिए नहीं तो भगवान थोड़ी बैठा रखे हमने, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये SSR नहीं होना, विपक्ष कह रहा है कि जेंजी को, चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ है इसलिए आपने ये ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह की भ्रांतियां क्यों हो रही हैं? एक भी वोटर, आप कहते हैं कि हम जा रहे हैं भाई, हम मेघालय पूर्वोत्तर के राज्यों तक जा के वोटर इकट्ठा करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर पूल हमारा बने, है ना? है, और आप कह रहे हैं कि 97 वोट पर इनको सुध लेने का टाइम नहीं था, बार बार लिखा जा रहा है वहां से, ये कैसे होगा? बंगाल में आप सोचिए कि कितने लाख वोट, चूंकि मामला पेंडिंग रहा वो वोट नहीं दे पाए, ऐसे थोड़ी चलता है।
10: देखिए कंप्यूटर की वजह से मैचिंग की, मैंने अभी संजय सिंह का मैंने जवाब दिया था,
9: दूसरी बात लिखी थी चिट्ठी फिर
10: कोई भी पत्रकार, सुनिए सेशन के टाइम से कोई भी पत्रकार हमारे इलेक्शन कमीशन में नहीं एंट्री कर सकता, गृह मंत्रालय में जा सकता है, सभी जगह जा सकता है, इलेक्शन कमीशन में बिना परमिशन के कोई एंट्री नहीं कर सकता। नंबर एक, वो अभी तक सर्टिफाई नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट यहाँ की गई है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से चाहिए था कमिश्नर्स को, जिनका प्रोटोकॉल बनता है, जिनकी सर्वे सर्वा है राष्ट्रपति, उसके बाद बनना चाहिए।
9: आपने प्रेस नोट पढ़ा है?
10: कैबिनेट से
9: आपने प्रेस नोट पढ़ा है?
10: नहीं मैंने नहीं पढ़ा
9: है। पढ़िए उसको, दूसरे ही लाइन में लिखा है कि मतभेद किसी भी संस्था में होते हैं और लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी,
7: खुद ही मान रहे हैं। डिसेंट वर्ड लिखा है,
9: मतभेद तो लिखा है,
7: डिसेंट और मतभेद तो अलग बात है, सबका अलग अलग होता है, मगर उसके बाद भी जब
9: ये पॉइंट है अजय जी, ये पॉइंट है, उनका कहना है कि ड्राफ्ट के स्टेज में जब हम लोग इस पर अंतिम फैसला ले रहे थे तब ये किया जा रहा था जितना भी था, तो ड्राफ्ट के वक्त पर अगर उनके मतभेद थे, क्योंकि वो सुनिए ना, वो बाहर आके खुल के कह भी तो नहीं रहे हैं कि हाँ भाई हमको ये दिक्कत थी।
8: देखिए ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, ड्राफ्ट के स्तर पर यदि ये बात होती और ये प्रक्रिया में कहीं क्वेश्चन नहीं होता, तो दोनों चुनाव आयोग अलग अलग डेट में कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाकर के अपना पत्र नहीं,
10: कैबिनेट प्रेसिडेंट को लिखना चाहिए।
8: सुनिए ना,
10: प्रोटोकॉल जो है
8: बीच में मैं नहीं बोलता,
10: प्रोटोकॉल के नाते बता रहा
8: हूं, मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूं, बीच में नहीं बोलता, आपकी बात बारी आएगी। तो दूसरी बात, यदि कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाना पड़ रहा है तो समझिए उनकी सुनवाई और प्रक्रिया में कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, वो मीटिंग जब हो रही है तो मीटिंग

0: गए, ठीक है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए एक अलग प्रश्न है, लेकिन ये गए इसका मतलब ना वो सर्वसहमति से कोई फैसले थे और ना ही वो मेजोरिटी से फैसले थे। और चुनाव आयोग का मतलब है जो टीएन सेशन के बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की बात आप कर रहे थे उसमें स्पष्ट तौर पे है कि तीनों इक्वल है, कोई सर्वे सर्वा वहां नहीं है। तो जब तीनों इक्वल है तो तीनों की सहमति से या बहुमत से जो फैसला नहीं हुआ वो गैर कानूनी है, और जितने फैसले पिछले इन आपत्तियों के कारण हुई है वो सारे फैसले रद्द होने चाहिए। और निश्चित तौर पे इसके लिए कोई
1: सुधांशु जी, चिराग पासवान भी तो कह रहे हैं ना, देखिए एक भ्रांति तो पूरे देश में फैली रही है, एक भ्रम फैला है। और इस बार कोई विपक्ष का नेता ये खबर इतनी तूल क्यों पकड़ी? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विपक्ष का कोई नेता कोई हवा हवाई आरोप नहीं लगा रहा है, ये चुनाव आयोग के अंदर से आई हुई खबर है जिसको ऑफिशियल, आप सोचिए ना, प्रेस नोट में एक लाइन लिख सकता था चुनाव आयोग दैट वी डिनाई द एंटायर रिपोर्ट, लेकिन वो डिनाई नहीं कर रहे हैं।
2: ठीक है,
1: चिराग
2: रिपोर्ट है
1: क्या?
2: एक मिनट, रिपोर्ट
1: पासवान भी कह रहे हैं ना।
2: चिराग पासवान का स्टेटमेंट दिखाइए, मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट है क्या? देयर इज नो रिपोर्ट, देयर इज नो डॉक्यूमेंट, देयर इज नो स्टेटमेंट।
3: अब इमेजिन वही डॉक्यूमेंट दिखाइए
2: सर, जब डॉक्यूमेंट थी। अब आपको बताता हूं इनको समस्या क्या है।
1: इसके बाद
2: सुनिए, चुनाव आयोग पहले कितना अच्छा काम करता था। 1985 बिहार इलेक्शन, कितनी मौतें हुई? 63। 1990 बिहार इलेक्शन, कितनी मौतें हुई? 87। 1995 बिहार इलेक्शन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वायलेंस चार बार इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा। और
3: बता दो तुझे किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब है,
2: बता रहे
3: उस पर डिबेट हो रहा है।
2: बता रहे
3: टीएन सेशन ने जब पहली बार इस तरह का बात
2: बोलिए, इस तरह की बात। अब सुनिए, पूरा बिहार से जवाब दे रहा हूं। यानी तब चुनाव बहुत अच्छा लोकतंत्र होता था, 63-87 लोग मरते थे, चार चार बार वायलेंस होने के बाद स्थगित होता था। अब आइए, अब बिहार का जवाब दे रहा हूं भाई साहब, आपकी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं। सुनिए, 2010 का चुनाव, कांग्रेस की कितनी सीटें आई? 4 परसेंटेज ऑफ वोट, 3.5 जमानत जब्त 234। 2010 में तो इनकी सरकार थी, सब कुछ इनका था, वोट चोरी किसने की? 1995, 90, 2000 लालू यादव जी की सरकार। अब आप ये बताइए, जिस पार्टी के बाद कुछ था ही नहीं, अब ये बताइए, सुनिए, 1989 से यूपी से बाहर है, 91 में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, 95-96 में कुछ नहीं कर पाई यूपी में, उसके बाद 93 का चुनाव, 96 का चुनाव, 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, कुछ नहीं, खत्म। और यहां आके कह रहे हैं आप वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। समस्या क्या है कि हकीकत इन लोगों की यह है कि ये लोग किसी भी चीज के ऊपर सच नहीं स्वीकार करना चाहते। और एक टेक्निकल बात यह भी कह दूं, जो सेंट्रलाइज सर्वर को कनेक्ट किया जाता है उसमें यह है कि अगर किसी ने एंट्री करने के लिए समस्या नहीं है, डिलीट कर, एक बार आपने एंट्री या डिलीट कर दिया, अब उसके बाद वो सेंट्रलाइज सर्वर सही होगा। कारण क्या है? साइबर सिक्योरिटी के लिए चाहिए।
3: नहीं लिया।
2: सुनिए, उन्होंने साफ किया,
3: नहीं एक्सेस कर सकता है।
2: मेरी बात सुनिए,
3: जैसे आप जो बोल रहे हैं सिर्फ वही सही है, तो हम लोग
2: एक मिनट मैं सदन का बयान अपना कोट करता हूं। बिहार का चुनाव हुआ उससे पहले लोग कहते थे कि महाराष्ट्र का हरियाणा का सीसीटीवी फुटेज नहीं देते, इन्होंने 45 दिन का बार लगा रखा है। मैंने राज्यसभा में खड़े होकर बोला था बिहार चुनाव बाद, अभी 45 दिन के अंदर का समय है, मांगो सीसीटीवी फुटेज। नहीं मांगा, यानी साफ बात है कि तथ्य पे इनको पता है सीसीटीवी फुटेज आएगा तो कुछ नहीं करने
0: वाला। एक
1: छोटा सा जवाब दीजिए फिर आप।
0: सुधांशु जी ने जो
2: ये मैंने राज्यसभा में बोला था 45 दिन के अंदर का वक्त है, अभी जाके
0: दोनों का जवाब दे देता हूँ। बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट, यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट, देश के इलेक्शन का रिजल्ट सब आपने गिना दिया, यही खूबसूरती थी कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता थी। सुनिए, इसलिए परिवर्तन होता था, कोई क्वेश्चन आज तक नहीं उस पर लगाता था, आप भी नहीं लगाते थे, लेकिन अब इतना क्वेश्चन क्यों लग रहा है? क्योंकि लोगों के मताधिकार छीन लिए गए बंगाल में, क्या बताइए, जस्टिफाई कीजिएगा। 33-36 लाख लोगों का वोट आप छीन लेते हैं, 1,26,000 मात्र वोट जो है ट्रिब्यूनल में फैसला हो रहा है उसमें 93% लोगों का वोट सही पाया गया। दिल्ली में 33,13,000 को जो है अपने क्वेश्चन के दायरे में ला दिया, और कितने समय लगेंगे जब इस पर आएगा, बात ये नहीं है। दूसरी बात, आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की है,
2: क्यों नहीं मांगा 45 दिन?
0: मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 45 दिन क्यों, आप 45 दिन में क्यों चाह रहे हैं उसको खत्म कर दें?
2: उसका भी जवाब
0: कानून क्यों बना दिया आपने? हमने मांगा था, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में जब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको निर्णय दिया एक सप्ताह के अंदर, कहा कि आपने 45 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी बात, आपने जो है चुनाव आयोग को इम्यूनिटी सिविल और फौजदारी केस से जो बिल लाए थे उस बिल में नहीं था, 2023 के बिल में, दिसंबर में,

0: अलग से आपने जो एक संशोधन किया और धारा 16 में आपने उसको जोड़ने का काम किया ताकि ये चुनाव आयुक्त जो हैं जो आपके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे वो कम से कम जो अनर्थ कर ले लेकिन उन पर कोई जो है इम्यूनिटी रहेगी उन पर कोई फौजदारी और सिविल केसेस नहीं होंगे। ये कहां का न्याय है? कोई भी गल्ती करे उसको कोई भी नहीं अपराध आप दे सकते।
1: चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आकर सफाई दे, अरे सामने आना चाहिए ना उनको। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास
0: जो खिलवाड़ करेगा वो
1: सुधांशु जी जल्दी से
0: उस पर राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा, जनता सब देख रही है।
1: सर जो चिराग पासवान कह रहे हैं, आप लोग भी कहिए ना कि चुनाव आयोग सामने आए।
2: उपाध्याय जी जवाब नहीं दे पाए कि जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ चुनाव आयुक्त कैसे अपॉइंट होते हैं राज्य के चुनाव आयुक्त। अरे बोलो ना, कोई विपक्ष का नेता नहीं, मैं तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर
0: ये बताइए 23 से पहले जो आप लोगों ने जो चेंज किया है 10 सेकंड
3: 23 से पहले कैसे होता था?
0: जो अभी जो आपने चेंज किया
3: पहले कैसे होता?
0: सुप्रीम कोर्ट
3: के सिंगल प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर होता था।
0: चीफ अरे भाई एक रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत दिन रहे ना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा के आप अपने मंत्री को
1: दिखाइए। विवेक विनीत जी हमारे साथ हैं, एक बार विनीत जी से मैं एक बार भी नहीं ले पाई। विनीत जी क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, क्या सरकार से कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को सामने लाए, या चुनाव आयोग से ज्ञानेश कुमार से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान? अनम्यूट कीजिए।
4: अच्छा नेहा जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे आदरणीय नेता ने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कह दिया है कि कोई भी संवैधानिक संस्था हो और विशेष करके आपका जो उत्तरदायित्व है वो जनता के प्रति बनता है, और मेरी पार्टी 2022 के बाद बड़ी मेहनत से बनाई गई इस पार्टी को, इस पार्टी में जो भी जनता की आवाज होगी हम उसको मुखरता से प्रमुखता से उठाएंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे मेरे हैं जो कि मेरे माध्यम से जनता जो है आपके जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहते हैं, कृपया करके मुझे 30 सेकंड दे दीजिए।
1: विनीत जी वो चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या चाहते हैं वो?
4: हम वही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस बात को क्लियरिटी देनी चाहिए।
1: देखिए चीजें क्या है सुधांशु जी, वो तो चाह रहे हैं आपको भी यही बात बोलनी चाहिए,
4: क्योंकि मुझे खत्म कर लीजिए।
1: अच्छा पूरा कीजिए,
4: क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अगर जनता में कोई भी अगर गलत मैसेज जाता है तो मुझे लगता है कि उसको क्लियर करना उनका उत्तरदायित्व है। दो चीजें मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आर्टिकल जो आया है ऐसा ही कुछ आर्टिकल नहीं राफेल के बारे में आया था हिंदू में, उसके बाद से ये चीजें गढ़ी गई थी, नैरेटिव गढ़ी गई थी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं 14 डिसेंट पॉइंट देख रहा था अंजना जी, एंड बी श्योर जो मेरी छोटी बुद्धि है मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसमें वोट चोरी कहां लिखा हुआ है, कहां मेंशन किया हुआ है। तीसरी बात, क्या विपक्ष जो है इस मुद्दे पे एकमत है, क्योंकि लखनऊ में तो कुछ अलग दिखता है, यहाँ पे कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है और जो सपा जो है अपना रथ यात्रा निकालती है, तो ये सब की क्लैरिटी देनी जरूरी है। और ज्ञानेश कुमार,
1: मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ विनीत जी, अगर थोड़ा सा आपने अध्ययन किया होता आने से पहले तो आप समझ जाते इसमें डायरेक्ट दावा है कि ईसीआई नेट जो कि 40 पोर्टल्स को बंद करके एक डिजिटल बैकबोन इलेक्शन कमीशन का बनाया गया, उसमें आरोप है कि ये दावा था संधू साहब का कि ईआरओज
3: का आधार क्या है, कोई कागज नहीं, कोई
1: ठीक है नहीं, ठीक है,
3: कोई स्टेटमेंट नहीं,
1: एक्सेप्टेड,
3: ये पत्रकार की कल्पना है।
1: तो मीडिया रिपोर्ट में ये लिखा है कि ईआरओ से, अरे सुनिए तो साहब, ईआरओ से उनका अधिकार लेकर सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा था सिस्टम को। अब समझे आप, अगर सेंट्रलाइज हो रहा था, ईआरओ जिसको अधिकार है एडिशन डिलीशन का उससे हटाकर सेंट्रलाइज किया जा रहा था, तो वोट की हेराफेरी थी।
4: इलेक्शन कमीशन का रिमार्क नहीं सुना है, उन्होंने कहा है सब ईआरओ के पास यूनिक आईडी पासवर्ड है, दे कैन एक्सेस इट। अब मुझे ब्लेम कर रही है, एसएसआर क्यों नहीं हो रहा है 2 साल से जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो एसएसआर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब याद कीजिए कि बिहार में 65 लाख वोट जो कटे थे मात्र 30,000 वोट लोग जुड़वाने के लिए पहुंचे थे, और यही विपक्ष की बिहार में पहली बार हुआ था। मैं पटना में बैठा हुआ हूं, विपक्ष से कोई भी कंप्लेन नहीं आया था एक्सेप्ट CPI ML। तो थोड़ा सा ये देखिए ना और फिर उस पर जवाब दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बाहर आना चाहिए और इसके बारे में
1: नवल जी,
5: बार बार डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। SIR का अभी RTI के रिस्पॉन्स में ये कहा गया है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ उसका जवाब। SIR के कॉन्टेक्स्ट में जो इलेक्शन कमीशन के TC कॉम है उनका ये है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नो रिकॉर्ड। आप सुन लीजिए, देयर एग्जिस्ट नो डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट एंड एंडोर्समेंट ऑफ SIR। एट द इलेक्शन कमीशन ऑफिस द टाइमिंग ऑफ डिसीजन टू इम्प्लीमेंट SIR रिमेन्स अनवेरिफाइड इट रेजेस सिग्निफिकेंट क्वेश्चन कि जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो फर्स्ट ये आपको मालूम है
3: इसी को तो सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल कर देना चाहिए था फिर क्यों नहीं कैंसिल किया
5: बिल्कुल
3: कौन सा डॉक्यूमेंट कोट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर देना चाहिए था तो नहीं हुआ इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए
5: आप कोई चीज सुनने को तैयार नहीं है इससे पता चलता है कि चोर चोर मौसेरा भाई है सुधांशु जी जितना भी आप जवाब देंगे जवाब जनता को नहीं दे पाएंगे कि चोरी हुई है डकैती हुई है और उसमें आप
1: सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ना ये तो एक सच्चाई है फैक्ट है
5: सुप्रीम कोर्ट
1: SIR को अपहेल्ड किया ये सारी बातें वहां बताई गई थी
5: सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को भी माना जो हमने रेज किया बिहार से
1: हाँ लेकिन अपहोल्ड किया ना अपहोल्ड किया लेकिन अपहोल्ड किया कि नहीं SIR
5: उसके बैकग्राउंड में ये है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एजेंसी है ऑटोनोमस है वो डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर सकती है केवल सलाह दे सकती है आप इस चीज को
1: तो देखिए विपक्ष कह रहा है हमको ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहिए
3: मैं बता रहा हूं सुनिए BLO अपॉइंट होते हैं चुनाव आयोग के द्वारा ठीक BLA अपॉइंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा 160,000 थे बिहार में कितने ने आपत्ति की है हेलो तुम्हारी पार्टी है कितने बीएलओ ने आपत्ति की दो डाटा आप कितने लोगों ने आपत्ति की कोई आपत्ति नहीं
5: और यहां के किसी के साथ बात मत कीजिए ना आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बात कीजिए
3: अरे पॉलिटिकल पार्टी
5: आपके भी तो
3: बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं राजद के आप प्रतिनिधि हैं राजद के कितने बूथ लेवल एजेंटों ने लिखित शिकायत की आइए बताइए दस्तावेज
5: आधार हो सकता है वोट चोरी का
3: अरे इसका मतलब वोट चोरी नहीं
5: करेंगे
6: चिराग पासवान जी के उस मक्तव्य को प्रशंसा भी कर रहा हूं कम से कम उन्होंने इस बात को तो रखा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ेगी तो देश के लोगों का भरोसा इस लोकतंत्र पे और मजबूत होगा और हर व्यक्ति के चुनाव वोट के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा इस बात को लेकर के भाजपा के लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है भाजपा के लोगों को भी आगे आना चाहिए कि यदि बढ़ेगा दूसरी बात अब उन्होंने कहा है कि बाकी चलिए राफेल ओफेल की बात क्यों सबको पता है कि अनिल अंबानी को मेंटेनेंस का दिया गया था अनिल अंबानी का कितना मेंटेनेंस राफेल का उन्होंने किया वो ठेका कहां चला गया
1: इसकी भी चर्चा हो रही है कि अंबानी जी की फोटो आप लोगों ने कल हटा दी थी
3: ये सुनिए कहा दिया गया अनिल अंबानी को राफेल का भाई बताइए के डील में जवाब दीजिए राफेल के डील में दसाल्ट और अंबानी के ही टीम को दिए थे
5: कोई मेंटेनेंस
3: का उसका 10,000 करोड़ का ठेका था आपको याद ही नहीं है भूल गए छोड़िए पुराना बात हो गया
5: बताइए
3: अरे भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ की कोई कंपनी कहाँ गई वो कंपनी कहाँ गई लेकिन अभी चुनाव आयोग मैं भटकूंगा नहीं मैं मुद्दे पर आऊंगा चुनाव आयोग की बात अभी हो रही है मैं कह रहा हूँ चुनाव दो चुनाव आयुक्तों ने जो आपत्ति दर्ज की है या तो आप उसके साथ हैं या आप ज्ञानेश कुमार के साथ हैं तीनों के साथ नहीं है ये
1: कंक्लूडिंग जवाब
3: चाहती है और चुनाव आयोग तीनों
1: प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते क्यों नहीं तीनों सामने आते
7: हैं अंजना जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ देखिए अब हो गया ना हमारे
1: राहुल गांधी को जवाब देने के लिए अगर वो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो यहाँ तो लोगों के मन में शंका
7: है एग्री करता हूँ कि आज की जो सिचुएशन हो गई है अपोजिशन को देश को और पत्रकारों को सबको चाहिए और इंटरनेशनल स्तर पे जो इस तरह से चर्चा हो रही है और हमारे हमारे उसकी बदनामी हो रही है संविधान की बॉडी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिसकी चारों तरफ दुनिया में गूंज है इसलिए मैं समझता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंटली करना चाहिए या जिनको कोई आपत्ति उनको
1: कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से
3: बिल्कुल देखिए लोकतंत्र में सभी बराबर है हर नागरिक बराबर है हर मीडिया संस्थान बराबर है ठीक है हर पॉलिटिकल पार्टी बराबर है हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार बराबर है अधिकार नहीं अधिकार अब प्रश्न पूछने का अधिकार हर पॉलिटिकल पार्टी को है भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
5: पूछ रहे हैं
3: 2000 अब सुनिए
5: उससे
1: इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
2: कैची है, वायरल है।
1: थैंक यू।
3: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: वो नादान परिंदे, बैठ
2: बैठ बैठ।
3: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है।
1: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
2: नो वीआईपी दर्शन, नो। एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: पे। इत्ता माही वे।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
5: In association with
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो वह मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इत्ता माही वे।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार सर एक बार दो थमका लगाने बस बाई गॉड मजा आ जाएगा।
4: क्या चीज है वायरल है?
3: थैंक यू।
5: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: ओ नादान परिंदे बैठ
4: बैठ बैठ।
5: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: 25
1: एकदम सॉलिड। वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
1: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
2: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
3: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
0: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
4: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
5: इतना कॉन्फिडेंस होके कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कह।
0: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
6: चुनाव आयोग, ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है। ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी बातों को और मजबूती से रखना चाहिए, राहुल गांधी जी या किसी विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं, जनता के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना आए इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: यहां पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है।
2: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
3: नो वीआईपी दर्शन, नो। एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनावी तैयारियों पर बातचीत संभव। सीईसी के खिलाफ विपक्ष में लामबंदी तेज, ममता बनर्जी की सीपीएम महासचिव एमएबीबी से बात, आप डीएमके, बीजेडी, बीआरएस और टीवीके को जोड़ने की कोशिश, सीजेपी को भी चिट्ठी। बिहार में जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट पर गरमाई सियासत, सीएम ऑफिस के स्टाफ पर एक्शन, एफआईआर दर्ज, मीसा भारती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब, शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारत प्रतिनिधि पेचल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। एशियन गेम्स में बेटियों का दबदबा, कबड्डी महिला टीम ने लहराया तिरंगा, ईरान को 37-34 अंकों से हराकर जीता गोल्ड मेडल, महिला क्रिकेट और मिक्स्ड शूटिंग के बाद तीसरा स्वर्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले एक बड़ी खबर, यूपी में चुनावी एक्शन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। इस मुलाकात को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 2027 के चुनाव बेहद नजदीक है, उत्तर प्रदेश में तैयारियां हो रही है, कांग्रेस की भी तैयारी शुरू हो गई, समाजवादी पार्टी की भी तैयारी शुरू हो गई है, तो ऐसे में इस मुलाकात को, पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इस मुलाकात को आगामी 2027 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस मुलाकात से जुड़ी क्या जानकारी और इसके पीछे का उद्देश्य क्या आया अभी तक?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी योगी आदित्यनाथ जो है हर महीने जो है दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी आला कमान के जो नेता है जिनमें अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करते हैं और जो भी उनकी सरकार का फीडबैक है वो सब वो देते हैं। इसके साथ साथ इस बार की जो मुलाकात है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यूपी विधानसभा चुनाव जो है वो उसमें बहुत कम समय बचा है और इसीलिए किस तरीके की कैंपेन स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या संगठन की दृष्टि से और आगे करना है, सरकार के इस तरीके के फैसले ने फ्यूचर में वो सारी चीजें जरूर प्रधानमंत्री के साथ डिस्कशन होंगे। और राज्यसभा चुनाव होने हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक के पास 9 सीटें हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री और नितिन नवीन जो है पार्टी के अध्यक्ष उनके साथ चर्चा हो सकती है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, क्योंकि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात जो है वो चल रही है और ऐसी भी जानकारी है कि पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी वो जो है योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं।
0: शुक्रिया मानशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो चला है डॉन स्टॉप 100 का।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, चाय की दुकान पर लाठी चाकू से हमला, अस्पताल में दम तोड़ा। मिदनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, भतीजे की चाकू घोप कर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वार्ता। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर सियासत गर्म, बीजेपी नेता का आरोप, हमलावर टीएमसी या नियो बीजेपी से जुड़े हो सकते हैं। बिहार के किशनगंज में 4 से 5 महीने पुराना वीडियो वायरल, युवती से मारपीट और पूछताछ का मामला, अब दर्ज हुई एफआईआर। पुराने वीडियो पर पुलिस का एक्शन, एक आरोपित गिरफ्तार, 4 अन्य की तलाश में एसआईटी की छापेमारी। यूएन महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन पर भारत ने तीखा पलटवार किया, फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। पेटल गहलोत ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। इस दौरान उन्होंने 9/11 हमलों में मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को घेरा। इसके साथ ही चेतावनी दी कि सीमा पार आतंकवाद के गंभीर नतीजे होंगे, कहा पाकिस्तान के लोग जिससे खुद फॉर्म 47 सरकार कहते हैं उससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। पेटल गहलोत ने कहा कि यह मेरे देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भजन क्लबिंग इवेंट का आयोजन, पीएम मोदी शामिल हुए। भजन क्लबिंग कार्यक्रम का आनंद लेते हुए दिखे पीएम, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डपली भी बजाई। जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर किया गया भजन क्लबिंग संध्या का आयोजन। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया।

0: सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चे की तैयारी, सीपीएम ने सीजेपी से साधा संपर्क, चुनावी अनियमितताओं पर साझा मंच की मांग। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर आंदोलन तेज, सीजेपी को विपक्षी दलों का समर्थन, 2 अक्टूबर से मुंबई में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। 700 करोड़ के मेडिकल उपकरण घोटाले में बड़ा एक्शन, राजीव रंगीला गिरफ्तार, एसीबी के सामने सरेंडर। मेडिकल खरीद घोटाले में एसीबी की कार्रवाई तेज, कथित मुख्य लाभार्थी राजीव रंगीला गिरफ्तार। जमुई पीड़िता के माता पिता का बयान, मां बोली सीएम ने अभिभावक की तरह मिलकर बेटी को हिम्मत दी, कार्रवाई से संतुष्ट। यूएन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब आतंकवादी देश मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी में नजरअंदाज किए जाने से कैप्टन अमरिंदर नाराज, बोले पंजाब की राजनीति में 60 साल दिए, सलाह मशवरा में शामिल हो किया जाना चाहिए। कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर का जवाब, बोले पार्टी बदलना अलग बात है, मैं अभी अपनी पार्टी में ही हूं। जम्मू कश्मीर में स्टेट रोड पर सियासी संग्राम, विधानसभा में प्रस्ताव पर बीजेपी का हंगामा, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले स्टेट रोड की मांग राष्ट्र विरोधी नहीं, ये जम्मू कश्मीर की पहचान के सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्टेट रोड पर घमासान, बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच उमर का हमला, बोले बीजेपी वोटिंग से भागना चाहती है, राज्य का दर्जा मेरा नहीं जनता का हक है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सेना का ऑपरेशन दृष्टि, 220 लोगों को मिली नई रोशनी, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भी पहुंचकर लाभार्थियों का हाल जाना। भंडार में मेगा आई सर्जिकल शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मोतियाबिंद के अलावा रेटिना और ग्लूकोमा से जुड़ी चुनिंदा जटिल सर्जरी भी की, लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड में 9 मौतों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जनहित याचिका पर राज्य सरकार को दिए कड़े निर्देश, जवाब मांगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अहम फैसला, एडीजी से लेकर डीआईजी स्तर के 36 सीनियर पुलिस अधिकारियों को प्रभारी और नोडल पदाधिकारी के रूप में तैनात किया। सभी को 27 सितंबर तक निरीक्षण पूरा करने और डीजीपी को रिपोर्ट सौंपने को निर्देश दिए हैं। सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बड़ा भूस्खलन, पश्चिम सिक्किम के रिम्बी गांव में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ, मिट्टी और मलबे की चपेट में आने से 7 घर और बिजली विभाग के 6 क्वार्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ घर और क्वार्टर मलबे के साथ बह गए। भूस्खलन के बाद प्रशासन और स्थानीय टीमों ने प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया, अब तक 128 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। डीडीएमए ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। यूपी में कई जिलों में प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूल बंद करने के आदेश, खराब मौसम के कारण फैसला। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से गढ़चिरौली में बाढ़, 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा, 525 लोग सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट। बाढ़ के इस भयावह माहौल में एनडीआरएफ जवानों ने मोर्चा संभाला, बीमार छात्राओं की जान बचाई। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण ओडिशा के कोरापुट में बाढ़, कई गांवों का संपर्क टूट गया। इंद्रावती जलाशय में पानी छोड़ने के लिए 3 गेट खोले जाने के बाद कोटापाट के कई हिस्सों में और हालात खराब। गरियाबंद में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिले की सभी प्रमुख नदियों के साथ साथ छोटे नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन प्रभावित। सुपौल में कोसी का रौद्र रूप, कोसी बैराज से इस साल सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया। सुकमा में अर्धव तूफान का असर, भारी बारिश से शबरी नदी उफान पर, स्कूल बंद। रांची में बारिश का कहर, 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पर पेड़ गिरा, सभी सुरक्षित। गरियाबंद में भारी बारिश से आफत, बाढ़ में पानी बढ़ गया और नेशनल हाईवे 130 बंद करना पड़ा। नेपाल में कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ा, 31 गेट खोले गए, रेड अलर्ट जारी। बगहा में 24 घंटे से ज्यादा बारिश, निचले इलाकों में जलभराव, लोगों की बड़ी मुश्किलें। बस्तर में 5 दिन से लगातार बारिश, कई गांव और शहर डूबे, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुए। जमशेदपुर में भारी बारिश में सड़कें जलमग्न, बाढ़ के पानी के बीच बच्चों ने खेला फुटबॉल। प्रयागराज में 2 दिन से बारिश, बदले मौसम से लोगों को राहत मिली। दुर्गापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, मुख्य सचिव ने 17 जिलों के डीएम के साथ की समीक्षा। गंडक, बागमती और कोसी नदी तंत्र से जुड़े संवेदनशील जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश, नदी किनारे के गांव, पुल और संपर्क मार्गों की लगातार निगरानी के भी ऑर्डर। हरदोई में बारिश बनी आफत, पेड़ दीवार गिरने से बच्चे की मौत, 4 भैंसे भी मरी। हेमकुट साहिब में फिर शुरू हुई बर्फबारी, जबरदस्त ठंडे के बीच सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट। मुंबई में लालबागचा राजा की भव्य विदाई, जुहू चौपाटी पर गणपति प्रतिमा विसर्जन, आरती के बाद बप्पा को दी गई भावुक विदाई। विदाई यात्रा में बप्पा की प्रतिमा के साथ अनंत अंबानी भी दिखाई दिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहिब रंगारी गणपति का विसर्जन, पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित। बप्पा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, अभिनेता अजय देवगन और अमृता फडणवीस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी हस्तियों के साथ हजारों स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक भी इस मुहिम में हुए शामिल, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पश्चिम मेदिनीपुर में सवंग में सड़क हादसे से हड़कंप, दो बाइक आमने सामने टक्कर, तीन लोगों गंभीर रूप से घायल। टक्कर की तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाया। रात के दमों में युवक की मौत पर बवाल, स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल पर ग्रामीणों ने हमला किया, घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तेलंगाना के कोठा गुडेम में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान तलवारें लहराने के आरोप में चार लोग गिरफ्तार, डर फैलाने के उद्देश्य से लहराई गई थी तलवार। दिल्ली के लखनंदा इलाके में नशे में धुत कार ड्राइवर का आतंक, सोसाइटी के गेट और पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जान से मारने की धमकी दी। दिल्ली के मॉडल टाउन में हल्दीराम की दुकान में लगी आग, 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग, किसी की जनहानि नहीं। धौलपुर में एक दुकान में लगी भीषण आग, तेल के डब्बों की वजह से आग तेजी से फैली, काबू पा लिया गया। गुजरात के भावनगर में पेट्रोल पंप के पास स्कूटी में आग लगी, कर्मचारियों की सूझबूझ से हादसा टला। अहमदाबाद में स्पा सेंटर में लगी आग, 8 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, 4 लोग रेस्क्यू। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, केशव शिवाला गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम। जमशेदपुर में ऑटो अचानक लेकर बवाल, किन्नर और ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई की, सड़क पर हंगामा। असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, नियंत्रित पिकअप वैन पलटकर स्कूटर सवार पर गिरी 2 की हालत गंभीर। मेरठ में शॉपिंग करने आई युवतियों से छेड़छाड़, विरोध पर गाली गलौज की, सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए 2 आरोपी। बदायूं में सुनसान जगह, युवक युवती से मारपीट और छेड़छाड़, वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। वाराणसी में गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का मामला आया सामने, सीसीटीवी वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, शोरूम के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को रौंदा, कांच के शीशे के लाखों का नुकसान। चरखी दादरी में 20,000 की रिश्वत देते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, ईसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बमबाजी का वीडियो सामने आया, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, परेड भी निकाली। रांची में बारिश के बीच बड़ा हादसा टला, 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पर पेड़ गिरा, सभी सुरक्षित। इंदौर में अवैध दवा कारोबारी पर ट्रक विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 लाख की दवाएं जब्त। बूंदी में धार्मिक जुलूस के दौरान बवाल, रूट को लेकर भिड़े 2 पक्ष, नारेबाजी के बाद पुलिस तनाव। मुंगेर में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी कराई, गुस्से में दूल्हे ने वरमाला और सिंदूर फेंक दिया। मध्य प्रदेश के धार में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हुआ, सिंध नदी में डूबे 3 बच्चे लापता, रेस्क्यू जारी है। भारत ने एशियन गेम्स 2026 में 3रा गोल्ड मेडल जीता, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को 37-34 से हराया। भारत को एशियन गेम्स के पुरुष मैराथन इवेंट में 44 साल बाद मेडल मिला, सावन बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड की टाइमिंग के साथ सिल्वर जीता। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कैटेगरी में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही, इस टीम में आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन, विदार्शा विनोद के नाम शामिल। तिलोत्तमा सेन और विदार्शा विनोद ने विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में जगह बना ली, तिलोत्तमा तीसरे और विदार्शा 6 नंबर पर। भारत के मेडल की संख्या 27 पहुंची, इसमें 3 गोल्ड 11 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज। कांगो में बड़ा दर्दनाक हादसे, एक विमान क्रैश, 14 लोगों की मौत, 2 सैन्य अधिकारी शामिल। 2 सीनियर मिलिट्री अधिकारियों में मिलिट्री कोर्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल और आर्म्ड फोर्सेस के ऑडिट जनरल लेफ्टिनेंट शामिल। कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल ने हादसे की जानकारी देते हुए 2 जनरल अधिकारियों के अलावा डेलीगेशन के 12 सदस्य और क्रू मेंबर्स की भी मौत। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक ये प्लेन दक्षिणी पश्चिमी किटविट से राजधानी किनशासा लौट रहा था, तभी तकनीकी खराबी आई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि क्रैश की वजह पता लगाई जा रही है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
0: और देखिए अब जो खबर है वो बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर से, जहां दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर चीख पकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को खून से लथपथ हालत में सांबंग ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। खैरियत यह रही कि किसी की जान नहीं गई, तीन लोग जख्मी हुए, लेकिन जिस तरह से भिड़ंत हुई सवाल भी बहुत खड़े होते हैं, क्योंकि रोड बहुत चौड़ी है और दोनों बाइकें जो तेज रफ्तार से आ रही हैं वो बीचों बीच एक दूसरे से टकरा जाती है, जबकि पूरी रोड खाली पड़ी है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, लेकिन दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होती है और जोरदार भिड़ंत होती है। देखिए तस्वीर। बीच सड़क पर चलने के ना, पूरी रोड खाली है लेकिन उसके बावजूद बीच सड़क पर चलना, ये देखिए। और उसके बाद जो जोरदार टक्कर होती है, दूर जाकर गिरते हैं, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं लेकिन जान तीनों की बच गई, और किसी ने हेलमेट भी नहीं पहनी है। अब ये देखिए, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहनी है। ये पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बीच सड़क बाइक से ये आ रहे हैं और अचानक एक दूसरे से टकराते हैं, और फिर हादसा देखिए कैसा होता है। और अगर इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको साफ पता चलता है कि दोनों बाइक सवार डिस्ट्रैक्ट हैं और उनका ध्यान कहीं और है। हालांकि कई लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि ये शख्स हाथों में मोबाइल चला रहा था, एक किसी का ध्यान कहीं और था और इस वजह से इनकी टक्कर हुई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से सुबह सुबह सियासी हिंसा की खबर सामने आई। चाय पीने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें बीजेपी सोशल मीडिया कार्यकर्ता की मौत हो गई। घटना कदमतला मार्केट की है, जहां बीजेपी नेता कार्यकर्ता चाय पीने पहुंचे थे, इसी दौरान उन पर हमला हो गया। 40 साल के शमशेर बिस्वास गंभीर रूप से घायल हो गए, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीजेपी का आरोप है कि आरोपी हाल में ही पार्टी से जुड़े थे और फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। अब ये सीसीटीवी काफी वायरल हो रहा है और इसी से अब जांच की जा रही है। देखिए कहीं पर पत्थर चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, हथियार चल रहे हैं, डंडों से मारा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है। महासंग्राम महाभारत बना दिया है रोड को, कहां से कौन पत्थर फेंक रहा पता ही नहीं चल रहा। और ये देखिए कितने हमले किए गए यहां पर, और इसी वक्त ये बताया जा रहा है कि चाकू से हमला किया गया, जिसमें घायल हुए थे बीजेपी कार्यकर्ता और फिर अस्पताल में दम तोड़ दिया।

0: पटियाला की चितकारे यूनिवर्सिटी में छात्रों ने भारी हंगामा किया। कैंपस में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, तोड़फोड़ की। पुलिस जब छात्रों को समझाने पहुंची तो विरोध कर रहे छात्र पुलिस जवानों से भिड़ गए। हंगामे के दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। चौकी इंचार्ज से भी छात्रों की हाथापाई हुई। अब देखिए, यहां पर किसी ने कह दिया कि भूत है यूनिवर्सिटी में। अब किसी ने बोला कि यूनिवर्सिटी में भूत है तो उससे और माहौल बिगड़ गया। फिर कहा गया कि दो छात्र लापता हो गए। अफवाह फैल गई, कैंपस का माहौल बिगड़ गया। पुलिस कह रही है कि कोई छात्र लापता नहीं हुआ, किसी की गुमशुद्धि की पुष्टि नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी कैंपस के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, भूत की कोई खबर नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि कुछ अराजक छात्रों की तरफ से, शरारती तत्वों की तरफ से रात के समय दूसरे छात्रों के कमरे खटखटा दिए जाते हैं, तो लोगों को लगता है भूत है, भूत है। और उसके बाद जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई तो फिर उसमें जमकर हंगामा हुआ।
1: पेरेंट्स की सारे की जानकारी वास्ते मैं दसना चाहना कि अज साडे ध्यान में एक मसला आया सी कि चितकारा यूनिवर्सिटी च बच्चे कह रहे ने कि दो लड़कियां मिसिंग ने, ता उत्ते सोशल मीडिया ते भी पोस्ट पाई गई सी इहदे रिगार्डिंग। अज असी हुण इत्थे लोकल SHO गुरसेवक, मैं DSP बनोड ते कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, असी सारे इत्थे बच्चियां नूं मिल लिया। बच्चियां तो उहनां दी शिकायत लै ली है, लेकिन किसी नूं ये नहीं पता कि कौन मिसिंग है। किसी बच्चे का नाम, किसी लड़की का नाम उन्होंने नहीं पता, लेकिन एक अफवाह के तौर पर गल चल रही है कि दो लड़कियां मिसिंग ने, लेकिन कौन लड़कियां मिसिंग ने किसी नूं कुछ पता नहीं है।
0: छोटा सा ब्रेक, जल लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पीटी नहीं दिख रही है।
5: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे हम, भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
6: नो VIP दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: और वही कहां गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
9: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
11: अब पे वो PMT बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
12: मेरे पास एक आइडिया।
10: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है
13: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
14: आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
17: तो कौन सी बनानी है?
18: एकदम
19: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
20: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
11: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनावी तैयारियों पर बातचीत संभव। सीसी के खिलाफ विपक्ष में लामबंदी तेज, ममता बनर्जी की सीपीएम महासचिव एमए बेबी से हुई बात, अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की भी बात, आज कोलकाता में ममता की रैली। बिहार में बेटी से बदसलूकी की एक और वायरल वीडियो पर संग्राम, किशनगंज में 6 महीने पुराने मामले का वीडियो सामने आया, एफआईआर दर्ज, चमोई वाले पोस्ट पर एक्शन, एफआईआर दर्ज। यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे का दिया करारा जवाब, शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। और एशियन गेम्स में बेटियों का दम, कबड्डी महिला टीम ने लहराया तिरंगा, ईरान को 37-34 अंकों से हराकर जीता गोल्ड, महिला क्रिकेट और मिक्स्ड शूटिंग के बाद तीसरा स्वर्ण पदक।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी लामबंदी अब और तेज होती दिख रही है। जल्द ही इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाने की तैयारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्लान सामने आया है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की नेता विपक्ष राहुल गांधी से ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर बातचीत हुई है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उस मुद्दे पर चुनावी अनियमितताओं को लेकर फोन पर चर्चा हुई। वहीं ममता बनर्जी की सीपीएम महासचिव से भी बातचीत हुई है। आज ममता बनर्जी कोलकाता में रैली भी करने वाली है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, विपक्षी मोर्चा बंदी से जुड़ी और क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि पहले ममता बनर्जी सीपीएम, अब ये समझ में आ रहा है कि ये सुनाई दे रहा है कि अभिषेक बनर्जी की भी राहुल गांधी से मुलाकात हुई और भी कई मुलाकातें हो रही हैं।
1: हिमांशु, देखिए, जब से रिपोर्ट सामने आई है तब से ही विपक्षी दलों के बीच लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, ताकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सके सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, उनको उनके पद से हटाने की मांग को लेकर। और मेरे सूत्रों ने मुझे ये बात बताई है कि तृणमूल कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत हुई, जिसमें बीते दिनों में अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच भी बातचीत हुई है। अहम बात क्या है कि जो हैदराबाद में प्रपोज मीटिंग थी इंडिया गठबंधन की, उस मीटिंग को प्रीपोन या जल्द से जल्द कराने की भी बातचीत शुरू हो चुकी है। सूत्र

0: हफ्ते में ही इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली जाए तो ये बहुत ही जरूरी फैसला होगा और अहम डेवलपमेंट होगा। इस बैठक में दो चीजों पर चर्चा करने की बात हो रही है, सीसी ज्ञानेश कुमार को कैसे उनके पद से हटाया जाए नंबर एक, और नंबर दो जो इलेक्शन इरेगुलरिटीज के तमाम आरोप विपक्षी दल लगा रहे थे उसको लेकर एक फोरम तैयार किया जाए और एक आंदोलन देशव्यापी।
1: यही खास बिंदु है जो विपक्ष एकजुट हो रहा है और मोर्चा खोला। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे बाढ़, बारिश और रसोई बर्बादी की।

देखिए, अब समझ गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं सितंबर में आए सैलाब की। देश के कई राज्य इस बारिश के और बाढ़ की चपेट में हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा होता दिख नहीं रहा। पूर्वी यूपी, अवध का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, रायपुर, बस्तर, सुकमा, झारखंड, रांची, जमशेदपुर, बिहार का सुपौल, बगहा, हर जगह हालात खराब है। यूपी के कई शहरों में तो लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से परेशानी आम लोगों की बढ़ती जा रही है। नदियां उफान पर हैं, नाले भी उफान पर हैं, रपटे उफान पर हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़, जमशेदपुर, कहीं पर बच्चे खेल रहे हैं, कहीं पर गाड़ियां मध्यम मध्यम चल रही हैं, कहीं पर गाड़ियां फंस रही हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ आ गई। बस्तर संभाग के जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। सुकमा, जगदलपुर तो पानी के उफान की वजह से और ज्यादा परेशान है। बस्तर में हालात खराब हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। महादेव घाट पर खारो नदी का पुल पूरी तरह पानी पानी हो गया, डूब गया। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। ये देखिए, लोगों को लग रहा है कि कोई पिकनिक स्पॉट है या फिर कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है। ऐसा अचानक कैसे हो गया, तो लोगों की भीड़ यहां पर आ गई है। अब ऐसे में जो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल चाहिए था, वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इतनी बाढ़, बारिश, इतना पानी कहां से आ गया।

0: सितंबर समाप्त होने वाला है, लेकिन आसमानी आफत अभी बाकी है। सितंबर महीने में देश के कई राज्यों में सैलाब आ गया है। छत्तीसगढ़ से झारखंड, बिहार, यूपी तक अलर्ट है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों में लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर है। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
1: सुकमा में लगातार 2 दिनों से बारिश है, जिसका देख सकते हैं कि सबरी जो है काफी उफान पर है। ये NH30 से पूरी यहाँ 3 जगह पर NH30 पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पे ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे

0: घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं सबरी उफान के कारण चिनगढ़ कोंटा मुख्यालय से 100 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट चुका है।
1: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है।
0: NH है यहाँ पर, भारत जवान भी लगे हुए हैं अपने लिखकर, ये लोग यहाँ काफी तरह में जो ट्रके हैं यहाँ पर फंसी हुई है।
1: सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जलस्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा भी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जलस्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
2: देखिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सत्यजीत और संतोष, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सिर्फ रायपुर की नहीं है, ये तस्वीरें सिर्फ रायपुर की नहीं है, छत्तीसगढ़ के कई और जिले भी पानी में हैं। सुकमा, बस्तर, जगदलपुर में तो बाढ़ आ ही गई है, इंद्रावती समेत कई नदियां, हर जगह कुछ ऐसे ही यहां पर हालात हो गए हैं। लेकिन अब बात थोड़ा बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार में एक बार फिर से नदियां डराने लगी हैं। कोशी नदी का पानी फिर से बढ़ सकता है क्योंकि कोशी बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, तो वहीं नेपाल से भी पानी आ रहा है और ये पानी बिहार को डरा रहा है। सुपौल में काशी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी बिहार की नदियों में जा रहा है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। सुपौल में लगातार प्रशासन की टीमें ग्राउंड पर है, स्थितियों का जायजा ले रही है। कोशी बैराज के 40 गेट अभी खोल दिए गए हैं, आगे और कितने खोलेंगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और यहां पर आप देखिए ये बहाव कितना तेज है और इसी वजह से सभी अधिकारियों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, हालात पर नजर बनाए रखने के लिए। रोहित भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रोहित, नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, 2.5 लाख क्यूसेक पानी की बात की जा रही थी छोड़े जाने की और उसके बाद अब अलर्ट है, खतरा मंडरा रहा है, क्या सावधानी बरतने को कहा गया है?
3: जी बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है, इस बात का शंका है कि बिहार में राउंड टू ऑफ जो बाढ़ है वो आ सकता है क्योंकि दो नदियां उफान पर इस वक्त हैं। कोसी नदी इस वक्त उफान पर है, वहां भी तकरीबन 3 लाख के आसपास जो है क्यूसेक के पानी डिस्चार्ज लगातार हो रहा है और दूसरी तरफ गंडक नदी में भी जो है तकरीबन 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी का डिस्चार्ज किया गया है, जो बहुत ज़्यादा है और जाहिर सी बात है डेंजर लेवल से भी मतलब की स्थिति वहाँ बनी हुई है। और इसी वजह से क्यों हो रहा है ये, नेपाल में पिछले 4-5 दिनों से ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है और बिहार में भी पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से ये दोनों नदियाँ खासकर जो है जो नेपाल से आती हैं उसमें जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए खासकर सहरसा, कोसी की बात करें तो सहरसा जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां 15 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी है। हाई अलर्ट पर इस वक्त राज्य के 17-18 ज़िले हैं और आज सुबह ही मुख्य सचिव ने भी 17-18 ज़िलों के DM से जो है पूरी एक समीक्षा बैठक की है और अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है क्योंकि बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है और बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं गंडक की वजह से जो है वाल्मीकि नगर बघा में तो पहले पानी आ चुका है, घुटना भर पानी जो है वहाँ आ चुका है और कोसी में भी जो है जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। मानशु,
2: तो लोगों को तो सावधानी यहां पर बरतनी होगी और यही प्रशासन अपील भी कर रहा है, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब गंडक नदी पर दिखाई देने लगा है, जैसा कि अभी रोहित बता भी रहे थे। बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो गई है। वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से इस साल अब तक का सबसे अधिक पानी नदी में छोड़ा गया है, जिसका असर अब निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। हकीकत आपके सामने है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, सड़क यहां पर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही, सड़कें तो डूब गई हैं। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों को नदी के आसपास जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। यहां देखिए, ये बच्चों का मनोरंजन हो रहा है, और परेशानी आम लोगों की।
4: जो प्रेडिक्शन आया था हम लोगों को कि 25 तारीख को लगभग 5 लाख क्यूसेक्स पानी का था डिस्चार्ज होगा अप्रॉक्स, और 26 को 6,30,000 का, लेकिन कल रिवाइज प्रेडिक्शन आया है उसमें है कि 3 से 3.5 लाख के आसपास रहेगा 25 और 26 को। लेकिन अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं करीब 4 बजे 2,62,000 क्यूसेक्स पानी है और बड़ा क्षेत्र में अब स्टेडी हो गया है, कांस्टेंट डिस्चार्ज हो गया, तो हमें नहीं लगता है कि 3 लाख से ज़्यादा पानी आज रात में क्रॉस करेगा। फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स पर हम लोगों ने बाढ़ की सारी तैयारियां कर ली हैं।
2: झारखंड की अब बात कर लेते हैं और यहां भी भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। जमशेदपुर में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। आपको लग रहा है ये कार तैर रही है, नहीं, ये कार चल रही है, लेकिन पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों की परेशानियों को बढ़ गई हैं लोगों की परेशानियां। जमशेदपुर की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। रांची में कई जगह पेड़ गिरने की भी खबर है। एक स्कूल बस पर पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। और देखिए बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मस्ती बच्चों की अलग चल रही है। सत्यजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, क्या हालात है, क्या सावधानी बरतने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है?
5: देखिए बंगाल के खाड़ी में बने लो डिप्रेशन यानी डीप डिप्रेशन के वजह से झारखंड में भी उसका असर साफ तौर से दिखा। बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और 25 तारीख को हेवी टू हेवी रेन का प्रेडिक्शन था। गस्टी विंड 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के रफ्तार में चली, जिसके कारण कई जगह पेड़ गिर गए और स्कूली बस जो है वो वहां पे जो बच्चे थे उनको उनका प्रोविडेंशियल स्केप हुआ, नैरो स्केप हुआ, बाल बाल बच गए। वो पेड़ गिरी तो सही लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा बच्चों को। कई जगह रास्ते जो है वो बंद हो गए तो ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल जो है आउट ऑफ गियर था। आम जनजीवन जो है वो आउट ऑफ गियर था और लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई थी। आज तो एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि आज भी बारिश का प्रेडिक्शन था, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सुबह से ही बारिश जो है वो बंद हो गई है। स्पेल में आ रही है, बीच बीच में आ रही है, फिर चली जा रही है। तो खास बात यह है झारखंड के साथ कि यहाँ पे पठारी इलाका है, जैसी बारिश होती है नदियों का जलस्तर बढ़ता है, लेकिन जैसी बारिश कम होती है तो आप देखिएगा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो गया, सड़कों पे जो जल जमाव है वो निकल गया। तो ये इस तरह का नजारा यहाँ देखा गया है और अभी भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन IMD के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आज तक को साफ तौर से बताया कि सिस्टम अब मूव कर रहा है मध्य प्रदेश के तरफ, लेकिन पलामू प्रमंडल जो है उस पर आज भी जो है सेकेंड हाफ में बारिश के आसार हैं और हेवी टू हेवी रेन का वहां आसार है। तो पलामू में भी नदियां हैं, कोयल नदी है, इसके अलावा सोन नदी है जो बिहार से सटती है, जो इलाका बिहार से सटता है, जपला का इलाका हुआ, छतरपुर का इलाका हुआ, या फिर गढ़वा जो है सोन नदी है, वहां पे इसका असर दिख सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि आज के बाद अगर सिस्टम कमजोर पड़ता है मध्य प्रदेश के तरफ,
2: मतलब ये कहा जा रहा है कि छाता कभी भी खुल सकता है, बारिश इतनी तेजी के साथ आने वाली है ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बात अब उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रयागराज समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। यूपी में सितंबर के आखिरी दिन मूसलाधार प्रहार ने अस्त व्यस्त कर दिया है लोगों का हाल। प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, देहात समेत कई जिले हैं जहां स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट है, तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, बिहार के हालात जान लिए, झारखंड के हालात जान लिए, उत्तर प्रदेश के हालात बताइए, कितनी बारिश वहां पर हो सकती है और अभी क्या हालात है?
6: उत्तर प्रदेश में सितंबर के आखिरी जो सप्ताह है उसमें सितंबर बारिश का सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 10 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है, 32 जिलों को अलर्ट भेजा है कि अचानक से बाढ़ आने के लिए तैयार रहें। ये वो जिले हैं, चाहे वो गंगा, यमुना, गोमती के किनारे के तटीय क्षेत्र हैं, बलिया से लेकर बुंदेलखंड के जालौन तक, पूर्वांचल अवध का क्षेत्र और बुंदेलखंड के जालौन तक लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। पुराने जो मकान है वो गिर रहे हैं, तेज हवाएं आ रही हैं, हर 3 घंटे पर एक तरीके से अलर्ट है। बीते 48 घंटों से अगर कहा जाए तो लगातार पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पर कोई भी अगर इस तरीके से कैलेमिटी आती है तो राहत तुरंत शुरू किया जाए, 24 घंटे में पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाई जाए, राहत राशि दी जाए, और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी हाई अलर्ट किया गया है। वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इधर बलिया, लखनऊ, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, ये वो जिले हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। करीब एक दर्जन से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां पर आज डिक्लेयर्ड हॉलीडे है। अचानक से जिला प्रशासन ने अलर्ट को देखते हुए,
2: और ये देखिए प्रशासन अगर कह रहा है हम लोगों से कि अलर्ट पर रहिए, सावधानी बरतिए, तो सावधानी बरतिए। सत्यजीत, संतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए संतोष अभी बता रहे थे प्रयागराज में भी हालात ठीक नहीं, वहां पर भी जोरदार बारिश हो रही है। तो प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
7: प्रयागराज में लगातार दो दिनों से हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहां पर मौसम अब सुहाना हो गया है क्योंकि पिछले दिनों काफी भीषण गर्मी पड़ रही थी। अब इस मौसम ने लोगों को राहत दी है। अब लगातार यहां पर दो दिनों से हल्की बारिश और ये ठंडा मौसम लोगों को राहत पहुंचा रहा है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
2: और अब पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। वहां भी मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव देखा गया। ये देखिए, ये घर का बरामदा है और यहां पर अब पानी ही पानी है। अब इधर देखिए, बहाव देखिए कितना तेज है। अगर आप यहां से गाड़ी लेके निकलेंगे तो अगर आगे कुछ गड्ढा हुआ तो कोई भरोसा नहीं, आप कब उस गड्ढे में डब से गिर सकते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। ये गलियों में ये बहाव आप देखिए, गलियों में इतना तेज बहाव है जैसे कोई नहर निकल रही हो। हालांकि छोटे बच्चों को मस्ती करने का एक मौका मिल जाता है, बचपन, कुछ यादें ये बच्चे सजो रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानी थोड़ी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की भी बात कर लेते हैं और यहां भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से कई लोग निचले इलाकों में फंस गए। हालात आप देख रहे हैं, दूर दूर तक आपको सिर्फ मटमैला पानी दिखाई दे रहा है, सड़क आपको कहीं दूर तक दिखाई नहीं देगी। करीब 535 लोगों का रेस्क्यू यहां पर करना पड़ा है। 535 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, क्यों? क्योंकि आप कुछ बचा ही नहीं है यहां, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हर जगह पानी है, सड़कें सब बंद हो गई हैं। तो ऐसे में इनको मदद पहुंचाई जा रही है, सहायता पहुंचाई जा रही है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
11: गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
13: अब पर वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
14: मेरे पास एक आइडिया।
12: क्या?
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
15: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
16: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
17: ओ नादान परिंदे बैठो, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
18: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
19: तो कौन सी बनानी है?
20: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
21: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
22: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
23: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
24: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
25: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
20: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
26: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
20: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पीटी नहीं दिख रही है।
5: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे हम, भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
6: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।
7: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
8: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: देश भर में SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना Extra 2AB, चुनाव आयोग में Extra 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए और वो Extra 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं इट्स डन ब्रो, हो गया, मान जाओ, राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, नहीं तो नाज़ी युग जब खत्म हुआ था आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: I have come today to the Parliament Street Police Station and given a complaint to the police station here against Chor Gyanesh Kumar, Gyanesh Chor Kumar, the sorry figure who is the Chief Election Commissioner of this country, and apparently he enjoys immunity under the CEC and EC Act of 2023, Section 16, which says that the Election Commissioners enjoy immunity from civil and criminal prosecution.
3: ये लोग चुनाव आयोग में, निर्वाचन सदन में लोकतंत्र का स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार। ये हमने नहीं कहा, और दो चुनाव आयुक्त है, सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी, ये दो जो लोग हैं, देश उनका आभारी रहेगा हमेशा, ये बात सामने लाई है और हमारी बातों को पुष्टि मिले उससे। ये स्लॉटर हाउस चला रहा है, ये माफिया है, अभी का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो माफिया है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनावी तैयारियों पर बातचीत। सीईसी के खिलाफ विपक्ष में लामबंदी तेज, ममता बनर्जी की सीपीएम महासचिव एम ए बेबी से बात, अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की भी बात, आज कोलकाता में ममता की रैली। बिहार में बेटी से बदसलूकी के एक और वायरल वीडियो पर संग्राम, किशनगंज में 6 महीने पुराने मामले का वीडियो सामने आया, एफआईआर दर्ज, जमुई वाले पोस्ट पर एक्शन, एफआईआर दर्ज। यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब, शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। एशियन गेम्स में बेटियों का दम, कबड्डी महिला टीम ने लहराया तिरंगा, ईरान 37-34 अंकों से हराकर जीता गोल्ड, महिला क्रिकेट और मिक्स शूटिंग के बाद तीसरा स्वर्ण पदक।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर के 2 बजे हैं और 4 बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे। पहली खबर बिहार से, जहां अब किशनगंज से लड़की से बदसलूकी का मामला सामने आया है। मतलब जमुई के बाद समस्तीपुर, फिर बांका, अब किशनगंज। बुलेटिन में दूसरी खबर होगी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। रायबरेली से अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा शुरू की, तो अब यही यात्रा दोनों पार्टियों के बीच तनातनी की वजह बनती जा रही है। साथ ही बात एसआईआर प्रक्रिया पर बढ़ते सियासी विवाद की भी करेंगे, जिसे लेकर विपक्षी मोर्चाबंदी अब तेज हो गई है। बात पंजाब की सियासत की भी होगी, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान ने सूबे की सियासी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि अगले साल पंजाब में भी चुनाव है। लेकिन सबसे पहले बिहार के किशनगंज से आई तस्वीरों के बारे में बात करेंगे, जहां एक लड़की से बदसलूकी का मामला सामने आया। घटना किशनगंज के दिगल बैंक थाना इलाके की है, जहां तुलसिया हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास युवती को घेर कर पूछताछ की गई, फिर उससे मारपीट की गई। यह घटना 6 महीने पुरानी बताई जा रही है। हालांकि अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को एक आरोपित को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 6 महीने पुराना मामला बताया जा रहा है और अब ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अब पुलिस अब एक्शन भी ले रही है। तो बिहार से लगातार महिलाओं से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले जमुई की घटना पर भारी बवाल मचा, फिर समस्तीपुर से ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई, इसके बाद बांका में तस्वीरों ने बिहार को शर्मसार किया और अब किशनगंज से घटना सामने आई। कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सबसे बाद में जो जमुई का मामला सामने आया, उसके बाद जो दोनों मामले थे वो उससे पहले थे, वीडियो बाद में आया, और ऐसा ही किशनगंज। अब जमुई केस की बात कर लेते हैं। जमुई कांड की पीड़िता की पहचान उजागर करने का मामला गर्मा गया। आरजेडी ने इसको लेकर सीधे सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री के हैंडल से पीड़िता की तस्वीर शेयर की गई थी, हालांकि कुछ वक्त बाद डिलीट हो गई थी। अब विपक्ष कह रहा है इसीलिए सीएम के खिलाफ FIR होनी चाहिए।
1: जमुई में छात्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सख्त एक्शन और मैसेजिंग के चक्कर में कुछ ऐसा कर गए कि बिहार में विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। हुआ यह कि सम्राट चौधरी जमुई पीड़िता और उसके परिजनों से मिलते हैं और मुलाकात की फोटो मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की जाती है, जिस पर पीड़िता और उसके परिजनों का चेहरा साफ साफ दिखाया जाता है। बस इसी बात को लेकर विपक्ष अड़ गया।
2: ये जो था ये तो सम्राट चौधरी है ना, उनके हैंडल से आया ना। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, और आपको समझ में नहीं है कि बिना आपसे पूछे, बिना आपकी जानकारी के एक्स पे कुछ भी लिख देगा कोई। हम भी एक्स पे हैं, तो बिना हमसे पूछे अगर कोई चलाता है तो कोई बिना हमको दिखाए, बिना हमसे पूछे देश दुनिया की खबर ऐसे ही लिख देगा फेसबुक पे, एक्स पे।
1: हालांकि पोस्ट शेयर करने के कुछ ही देर बाद डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन आरजेडी इसको लेकर सीएम सम्राट पर हमलावर है। आरजेडी सांसद मीसा भारती मुख्यमंत्री पर FIR की मांग कर रही हैं। सीएम पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि सीएम ऑफिस के कर्मचारी पर।
2: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
1: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गईं, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो सीएम पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए।
3: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इनको तो इनके ऊपर बिहार पुलिस तुरंत पॉक्सो एक्ट लगाए। जमुई में या और कहीं भी घटना हुई है तो पुलिस ने कई लोगों पर 80-90 लोगों पर जो है पॉक्सो एक्ट लगाया है। अगर मुख्यमंत्री पर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा, कौन मानेगा पॉक्सो एक्ट को?
1: सम्राट चौधरी पर एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन मीसा भारती का जिक्र एफआईआर में जरूर है कि बिना जांच के किसी व्यक्ति को दोषी ना ठहराया जाए। आज तक ब्यूरो।
0: जमुई का पीड़ित परिवार सीएम सम्राट चौधरी से मिला, मुख्यमंत्री ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया।
4: तो कॉल आया था, आप लोग गए मिलने के लिए, क्या बात हुई और क्या कहेंगे?
5: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना, चाहे पढ़ाई हो या सुरक्षा हो, हर चीज़ के लिए वो आश्वासन दिए।
4: 19 तारीख की ये घटना है, आपको कब जानकारी हुई कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा सब हुआ?
5: 19 की शाम 7-8 बजे हमको मालूम हुआ सर, कुछ बाहर से जानकारी मिला तो पूछने के बाद फिर बेटी मेरी सारी बात बताई हमको सर।
4: अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है इस मामले में, उससे कितना संतुष्ट हैं आप?
5: हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं सर, प्रशासन बहुत साथ दिया हम लोग को सर। हाँ, तुरंत कार्रवाई भी हुई है, 24 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई भी हुई है, और जो मेन अपराधी था उसका एनकाउंटर भी हुआ है सर।
4: लोग कह रहे हैं कि उसका हाफ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, फुल इनकाउंटर होना चाहिए, इसको लेके आपकी क्या राय है?
5: वो तो जनता का जो है सर, बस हम उसी के साथ चलेंगे, जनता से बढ़ के तो अभी वही है, जनता ही बढ़ के है सर।
4: क्या
5: होना चाहिए सर, लेकिन फिर भी नहीं, हम प्रशासन के काम से बहुत संतुष्ट है सर।
4: फुल इनकाउंटर होना चाहिए
5: इसका तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन जो भी किए हैं सर, हम उनसे संतुष्ट हैं, और बाकी उनको जो अच्छा लगेगा वो लोग तो कर ही रहे हैं, बाकी तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से मेरे केस में मेरा समाज, मेरा जमुई वासी, बिहार वासी और पूरा हिंदुस्तान एक साथ थे, बस चाहेंगे कि इसी तरह हमेशा साथ रहे, ताकि अपराधी भी डरे कि नहीं अब हिंदुस्तान भी और पूरा बिहार जमुई वासी सब एक है अपराधी के खिलाफ।
4: लड़की के पिता भी मेरे साथ हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है, कैसे जानकारी हुई कि ये इस तरह की घटना हुई है?
6: हमें 20 तारीख रात में जानकारी हुई, वो भी 8 बजे रात में, उस समय तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, 19 को भी पता नहीं चला, 20 को रात में पता चला, पता चलने बाद हम लोग प्रशासन के पास गए, से बातचीत हुई, उसके बाद 21 तारीख को उस पर कार्रवाई, केस मुकदमा हुआ।
4: इसका मतलब बच्ची के जो घूम के आई वो डर से, हमको लगता है कि आपको?
6: मेरी बच्ची डर गई थी, और इस तरह का घटना किसी भी बच्ची साथ होगा, कोई भी बच्ची डर जाएगी, मेरी बच्ची का अभी बहुत छोटी है, अब बहुत डर गई थी।
4: पुलिस ने जो कार्रवाई की है अभी तक, उसको किस रूप में देख रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं या और कुछ होना चाहिए इसमें?
6: पुलिस की कार्रवाई से हम बहुत संतुष्ट हैं, माननीय SP साहब से भी संतुष्ट हैं, DM साहब से भी संतुष्ट हैं, पूरे प्रशासन से संतुष्ट हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम संतुष्ट हैं, उनकी कार्रवाई से हम बहुत संतुष्ट हैं।
4: जो अपराधी पकड़े गए नंदन और हरिराम, उसको लेके क्या क्या कहेंगे और क्या चाहेंगे, कैसी सजा उसको मिले?
6: उसको सख्त से सख्त सजा मिले, न्यायाधीश जो सजा दे, लेकिन जो मिले जल्द मिले और सख्त से सख्त सजा मिले।
0: उत्तर प्रदेश में चुनावी एक्शन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री की मुलाकात खत्म हो गई है। ये मुलाकात करीब 1 घंटे से ज्यादा चली, इस मुलाकात को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दोपहर 3 बजे सीएम योगी केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मिल सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और बताया जा रहा है ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली है। देखिए, चुनाव भी हैं आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में, उससे पहले तैयारियां भी करनी है, रणनीति भी बनानी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी लगभग हर एक महीने में जब दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से मिलते हैं, अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होती है, BJP अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात होती है, अभी JP नड्डा से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात रही, और अब यह मुलाकात आगे भी होगी। ये बताया जा रहा है कि अभी JP नड्डा से मुलाकात होगी, फिर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। चुनाव है तो ऐसे में रणनीति बनानी है, प्रचार से जुड़ी हर एक पहलू पर। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, बीजेपी भी अपनी तैयारियों को और मुकम्मल करना चाहती है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, एक घंटे तक मुलाकात हुई ऐसा जानकारी अभी तक सामने आ रही है, आपके पास और क्या जानकारी है?
7: देखिए बिल्कुल, एक घंटा प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है मीटिंग चली है योगी आदित्यनाथ की, और अब 3 बजे जो है उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और संगठन और सरकार को लेकर, और क्योंकि 2027 में जो चुनाव है विधानसभा के उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी, इन सब विषयों के ऊपर जो है वो पूरी चर्चा होगी और चर्चा के होने के बाद ही आगे का जो भी कार्यक्रम रहेंगे वो तय किए जाएंगे। लेकिन जरूर है प्रधानमंत्री के साथ एक घंटे की चर्चा, जिसमें संगठन के साथ साथ जो है विधानसभा चुनाव और राज्यसभा के जो चुनाव होने हैं जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का क्लेम बनता है, तो उनमें क्या किन किन उम्मीदवारों के नाम को लेकर सजेशन हो सकते थे योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो दिए गए।
0: कौन से नाम, वो 9 नाम होंगे जो राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ से जा सकते हैं, उस पर बात जरूर हुई। योगी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानशु, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार मामले पर विपक्ष की लामबंदी तेज हो गई है। 20 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और इससे पहले ममता बनर्जी ने सीपीएम महासचिव से फोन पर बात की, तो अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से बात हुई। आज कोलकाता में ममता बनर्जी की भी रैली है, तो मजबूत करने के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए सब तैयारियां की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से बात की, ममता बनर्जी ने एमए बेबी से बात की, सीपीएम सचिव से। अमित भारद्वाज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, अब ये बताया जा रहा है कि एक बैठक होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सितंबर में, 30 सितंबर को दिल्ली में, क्या जानकारी?
8: हिमांशु, देखिए सुबह से आज तक पे हम इससे जुड़ी हर बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं और अब एजेंडा और डेट दोनों लॉक हो चुका है और ये खबर आज तक पे इस वक्त ब्रेक हो रही है एक्सक्लूसिव कि 30 सितंबर की तारीख तय हो गई है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बैठक होने जा रही है। 30 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के शामिल होंगे और एजेंडा वही है जो हम सुबह से बता रहे हैं, सीईसी ज्ञानेश कुमार। तो लगातार हम देख रहे थे कि कैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि चाहे ममता बनर्जी हो वो एमए बेबी से बात कर रही है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आ गया एक एजेंडे पे बिना किसी थर्ड पार्टी के, और उसके साथ साथ कांग्रेस की लीडरशिप से भी तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की बात हो रही थी। इसके अलावा हमने अपने दर्शकों को बताया आज सुबह से कि कैसे मल्टीपल लेयर्स में ये बातचीत चल रही है अलग अलग गठबंधन के साथियों से, और कोशिश ये भी हो रही है कि इंडिया गठबंधन से अलग भी जो अपोजिशन के दल हैं चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीआरएस हो या बीजेडी हो, उनको कैसे इसमें शामिल किया जाए, इसके लिए अलग से रणनीति पे काम हो रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है, 30 सितंबर की डेट तय हो गई है, एजेंडा ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए तमाम सवाल जो बीते दिनों में उठे हैं और जो विपक्ष बीते महीनों में उठा रहा था उस पर फिर चर्चा होगी और एक बड़े आंदोलन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हिमांशु,
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित, और से एक बार उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी के चुनावी रण की तैयारियां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर नेताओं की बयानबाजी के बाद अब नया मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा शुरू हुई, सबने देखा, अब बात आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कन्नौज मैनपुरी सैफई से यात्रा शुरू करने की बात कही तो एसपी नेता शिवपाल यादव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया, एक वोट नहीं मिलेगा करके देख लें।

0: एक और चर्चाएं हैं यूपी चुनाव में कांग्रेस एसपी के साथ लड़ने की, लेकिन बीते कुछ दिनों में दोनों दलों में तल्खी बढ़ती जा रही है। पहले सीटों के बंटवारे को लेकर बयानबाजी हुई, दोनों ओर से तीखे हमले हुए, लेकिन रायबरेली से शुरू हुई अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा के बाद ये लड़ाई अगले मुकाम पर पहुंच गई। कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के गढ़ से यात्रा शुरू करने की बात कही तो हमले और तेज हो गए।
1: ध्वजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं। पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर है। और जसवंत नगर में अब देखने रिकॉर्ड फिर होती रही है और फिर
2: शिवपाल यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहे रथ यात्रा कहीं से शुरू करे उसको उनको एक वोट जो है वो नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर?
3: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता हैं हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: दरअसल अखिलेश यादव ने जब गांधी परिवार के इस गढ़ को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतारा तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदरखाने महसूस की जा रही है।
4: चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
0: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान क्यों आया ये समझना भी जरूरी है। उसके पीछे की कहानी समझने के लिए रायबरेली में अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए जिसमें उन्होंने चुनाव को लोधी बनाम योगी चुनाव बता दिया।
5: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
0: तो जिस रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा शुरू किया जाना कांग्रेस को रास नहीं आता दिखा, रायबरेली जिले की जिन सीटों पर इस बार कांग्रेस अपना दावा मजबूती से रखने का मन बना रही थी उसी रायबरेली की जमीन से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का नाम बताकर खेल कर दिया। रही सही कसर आशु मलिक जैसे अखिलेश यादव के करीबियों ने ये कहकर पूरी कर दी कि रायबरेली समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है।
6: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई? राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
5: देखिए समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए, इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
6: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
5: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
0: दोनों ओर से बयानों का दौर तेज हो गया है। यूपी में चुनाव समर से पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच नया सियासी झगड़ा शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 70,000 पन्नों की चार्जशीट अयोध्या पुलिस ने फैजाबाद की अदालत में दाखिल की जिसमें विस्तार से सारी बातें लिखी गई हैं। चंपत राय अनिल मिश्रा इस मामले में गवाह बने हैं, क्लीन चिट दी गई है, उसमें उनका नाम नहीं है लेकिन गवाहों में 8 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है। 73,480 पन्नों के आरोप पत्र में पुलिस ने चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी बयां की है। करीब 3 महीने की लंबी जांच, आरोपियों से पूछताछ, कई सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद अयोध्या पुलिस ने ये चार्जशीट बनाई है।
1: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट में चंपत राय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है और उनको प्रमुख गवाह बनाया है। चंपत राय ने पुलिस को दिए बयान में साफ कहा कि 3 जून को जब पहली बार चोरी पकड़ी गई, 4 जून को अविनाश शुक्ला के पास से गणना में लगे कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मदद से 2.25 लाख रुपए बरामद हुए, तो उनको उनके ही एक तीर्थ क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी ने एक वीडियो भेजा। उस समय चंपत राय दिल्ली से अयोध्या ट्रेन में सफर कर रहे थे। 4 जून की रात में भेजे गए इस वीडियो को देखने के बाद चंपत राय ने अयोध्या पहुंचकर अगले दिन 5 जून को अनिल मिश्रा और गोविंद राव के साथ बैठक की, जिसमें चोरी के तमाम दूसरे सीसीटीवी भी दिखाए गए।
0: अयोध्या पुलिस ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। जिस चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव थे और अनिल मिश्रा सदस्य थे। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती से लेकर कर्मचारियों की भर्ती तक सब इन्हीं की देखरेख में हुआ, लेकिन चढ़ावा चोरी में ये आरोपी नहीं बनाए गए हैं। जो अनिल मिश्रा और चंपत राय चढ़ावा चोरी के पहले दिन से निशाने पर थे, उन्हें पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बाइज्जत बरी कर दिया है। इन दोनों को मुख्य गवाह बना दिया गया है। विपक्ष इसी बात को मुद्दा बना रहा है कि 70,000 पन्नों की चार्जशीट में वो पन्ना कहाँ है जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम है।
2: 70,000 पन्नों में एक नाम लिखने की जगह नहीं थी, जो सब लेके चंपत हो गया। उस चंपत राय की, राव की, गोपाल अनिल मिश्रा की, ये थोक वाले, ये होलसेल वाले हैं। इन्हीं की मिली भगत से तो भाजपा सरकारों ने किया है। ये सिर्फ चंदा चढ़ावा नहीं है, चढ़ावा चोरी नहीं है प्रसाद का। करोड़ों करोड़ रुपए जो आए थे, उसकी चोरी करने वालों का आरोप तो इन्हीं पे है। मैं तो रहने वाला हूँ अयोध्या, कमिश्नरी जो पहले होती थी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ अवध का। वहां हर आदमी की जुबान पे है। और ये इतने दिन रहा, पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया।
0: चंपत राय और अनिल मिश्रा आरोपी नहीं है तो फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किसने की? पुलिस ने चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, लवकुश मिश्रा, रमा शंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी जिक्र किया है कि किस आरोपी के पास से क्या क्या बरामद हुआ है, किसने किस स्तर पर चोरी की, सब कुछ चार्जशीट के पन्नों में दर्ज है। अविनाश शुक्ला के पास 20 लाख रुपए, 1121 अमेरिकी डॉलर, सोने और चांदी के गहने मिले। अनुकल्प मिश्रा ने अपने पिता के नाम 55 लाख का मकान खरीदा, एक कार खरीदी, बड़े बड़े इवेंट किए। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम 20 लाख की जमीन खरीदी और उस पर 23 लाख खर्च करके मकान बनवाया। रमाशंकर मिश्रा ने बैंक खातों में करीब 20,92,000 नकद जमा किए, 12 लाख रुपए का प्लॉट, कैमरा और आभूषण खरीदा। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से करीब 8,48,000 रुपए नकद, बुलेट मोटरसाइकिल, अर्टिगा कार, आभूषण और उसके बेटे के नाम करीब 9.5 लाख रुपए की संपत्ति खरीद का दावा किया गया है।
3: वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
7: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
8: मेरे पास एक आइडिया।
6: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
9: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
12: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
13: तो
12: कौन सी बनानी है?
13: एकदम
12: सॉलिड। थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
14: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
15: आई लाइक दिस ओनली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: बिजली का बिल पेड, तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
3: पे। इत्ता माही वे।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार, सर एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
7: अब पे वो टीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
9: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: ओ नादान परिंदे, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
11: तो कौन सी बनानी है?
12: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
13: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
7: आई लाइक दिस ओनली।
1: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
15: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
16: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
17: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
18: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
15: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
19: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
20: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कर।
15: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करीब डेढ़ घंटे बातचीत, कुछ देर में जेपी नड्डा से भी मुलाकात। सीसी गणेश कुमार पर विपक्षी मोर्चाबंदी तेज, 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, ममता बनर्जी की सीपीएम महासचिव एमए बेबी से बात, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को मिलाया फोन। बिहार में बेटी से बदसलूकी के एक और वायरल वीडियो पर संग्राम, किशनगंज में 6 महीने पुराने मामले का वीडियो सामने आया, एफआईआर दर्ज, जमुई वाले पोस्ट पर एक्शन, एफआईआर दर्ज। यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब, शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पैचल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। एशियन गेम्स में बेटियों का दम, कबड्डी महिला टीम ने लहराया तिरंगा, ईरान को 37-34 अंकों से हराकर जीता गोल्ड मेडल, महिला क्रिकेट और मिक्स्ड शूटिंग के बाद तीसरा स्वर्ण,

देखिए, सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब मुलाकात हुई तो फिर कुछ भेंट भी

0: और प्रधानमंत्री मोदी के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत चली पीएम आवास पर। अब इस बातचीत को लेकर जो खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर तो तैयारी करनी ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 9 राज्यसभा सांसद भी जाने हैं तो उसको लेकर भी तैयारियां चली हैं, उसको लेकर भी बात जरूर हुई कि कौन से वो नाम होंगे जो आगे जा सकते हैं। हैट्रिक भी लगानी है उत्तर प्रदेश में, तो उसकी भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। क्या रणनीति बनानी है, कैसे प्रचार को आगे बढ़ाना है, कैसे दिग्गजों को किन सीटों पर फोकस करना है, किन सीटों पर विशेष ध्यान देना है, कांग्रेस के गढ़ में कैसे सैन लगानी है और समाजवादी पार्टी के किले को कैसे ध्वस्त करना है, ये सारी तैयारियां को ध्यान में रखते हुए ये बैठक हुई पीएम मोदी और सीएम योगी की ये खास मुलाकात। 1.5 घंटे तक ये बातचीत चली है पीएम आवास पर, और जब मुलाकात हुई तो उस वक्त ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेंट दी गई है, तो उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जेपी नड्डा से मुलाकात है और ये बताया जा रहा है करीब 1.5 घंटे बाद जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला हुआ है। कुणाल घोष कोलकाता से हुगली श्रीरामपुर जा रहे थे, ममता बनर्जी की आज रैली है। कुणाल घोष का आरोप है कि लोगों ने कार को घेरा और फिर अंडे फेंक दिए। ये देखिए गाड़ी के ऊपर आपको दिख रहा होगा, गाड़ी के शीशे पर अंडे फेंक दिए, गाड़ी का शीशा भी टूट गया ऐसा कहा जा रहा है। कोलकाता से हुगली जाते वक्त बता रहे हैं कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला हुआ, और ये देखिए गाड़ी के बाहर वापस जाने को भी कहा जा रहा है, इशारा भी यहां पर हो रहा है। गाड़ी के अंदर से वीडियो बनाया गया है और ये देखिए पीछे वाला शीशा टूट चुका है, पीछे वाला कांच टूट चुका है। तापस सेन गुप्ता जुड़े हुए हमारे साथ, तापस क्या जानकारी है आपके पास?
1: जी देखिए, आज कुणाल घोष तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी के एक सभा में पहुंचने के लिए कोलकाता से निकले और जब वो उत्तरपाड़ा इलाके में पहुंचे हुगली में, तभी ये बताया जा रहा है कि उनके गाड़ी को कुछ लोगों ने घेरा, अपने काले झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे थे और उन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा था। जब उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से घेरा गया, उसके बाद लगातार नारेबाजी, साथ में अंडे फेंके गए और उसी के साथ उनके गाड़ी के जो पिछला शीशा है उसे भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। और तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है, हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। और ये ममता बनर्जी आज चुनाव के बाद पहली दफे कोलकाता के बाहर हुगली में अब एक सभा को संबोधित करेंगे और इस सभा तक लोग ना पहुंच पाए, इसीलिए ये साजिश किया जा रहा है, इस तरीके का आरोप तृणमूल कांग्रेस के तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल कुणाल घोष इस समय श्रीरामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां जाकर ममता बनर्जी भी कुछ ही देर में पहुंचेगी और एक बड़े सभा को संबोधित करेगी।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे पीएम मोदी की भक्ति और जेंजी की शक्ति की।
2: हमारे जेंजी के फेवरेट श्री नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं एंड आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपने हाथ ऊपर करके सब बोलो जय श्री राम। कैन वी ऑल क्लैप टू दिस बीट, कम ऑन।

दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में भजन जो क्लबिंग है उसका कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक रूप से भक्ति भाव में डूबे दिखे। कार्यक्रम के दौरान खंजरी बजाते हुए ताल से ताल मिलाते दिखे। पीएम मोदी के साथ साथ वहां मौजूद जेंजी भी भजन जो हो रहे थे उस पर नाचते गाते दिखे। इस कार्यक्रम में सिंगर्स के साथ साथ हनुमान अंश की टीम ने भी फिल्म के गाने गाकर जो भजन है हनुमान जी का वो भी गाया और समा बांध दिया।

जिनजी के साथ पीएम मोदी की भजन क्लबिंग। हाथ में खंजरी और जुबां पर भगवान का नाम। युवाओं के साथ ताल से ताल मिलाते दिखे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने अनूठे अंदाज से सोशल मीडिया पर छा गए और देश के युवाओं को सीधा आकर्षित कर रहे हैं। मौका था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम का, जहां पीएम मोदी ने युवाओं के साथ खंजरी और ढपली बजाकर गहरी छाप छोड़ी।

0: पीएम मोदी जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे वहां मौजूद जेंजी का जोश देखने के लायक था।
1: मांगूंगा हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जेंजी के फेवरेट श्री नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं एंड आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपने हाथ ऊपर करके सब बोलो जय श्री राम।
0: जय श्री राम के उद्घोष से शुरू हुआ भजन क्लबिंग के कार्यक्रम में मानो दीनदयाल पार्क में भक्ति की करों की लहर फैल गई और हर किसी की जुबा पर बस एक ही नाम था, भगवान राम का।

भजन क्लबिंग में पीएम मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। भगवा रंग की जैकेट पहने और हाथों में खंजरी से बजाते हुए ताल से ताल मिलाते देखे पीएम। यही नहीं, पीएम मोदी के साथ बैठे युवा भी भजनों में झूमते नाचते नजर आए। और जैसे ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भजन शुरू हुआ, पीएम मोदी के चेहरे पर अलग ही भक्ति भाव दिखा।

भजन क्लबिंग में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे भाई बहन की युवा सिंगर जोड़ी प्राची और राघव अग्रवाल ने भगवान हनुमान का भजन शुरू किया, वैसे ही वहाँ एक अलग ही समा बन गया।

0: अपनी आवाज से भजन क्लबिंग में लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले भाई बहन की जोड़ी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
1: पता है हमें कोई पूछता है कि हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है तो हम क्या बोलते हैं? मोदी जी।
2: थैंक यू सो मच सर फॉर इंस्पायरिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल।
0: आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम भजन क्लबिंग में जैसे ही शिव तांडव स्रोत हुआ वैसे ही पीएम मोदी समेत सभी युवा भक्ति भाव में डूब गए और पीएम मोदी खुद शिव तांडव का स्रोत गुनगुनाते दिखे।

0: जेंजी के बीच काफी पॉपुलर युवा सिंगर की जोड़ी ने अपनी गायकी से सबका ध्यान खींचा। पीएम मोदी भी इनकी गायकी के मुरीद दिखे।
1: कैसी लगी आपको आज की ये शानदार और एनर्जेटिक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस?
0: वहीं भजन क्लबिंग में मौजूद युवाओं में पीएम मोदी को लेकर अलग ही उत्साह दिखा। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से देश दुनिया को संदेश दे दिया तो कुछ युवा पीएम मोदी से बात करते भी दिखे। आज तक ब्यूरो।
2: और भजन क्लबिंग के कार्यक्रम में फिल्म हनुमान अंश के गायकों ने भी अलग भक्तिमय माहौल बना दिया, जहां फिल्म के मशहूर गाने जब इज्जत पर आ गई पार्वती गाना गाया गया। उस दौरान पीएम मोदी भी भक्तिमय भाव में नजर आए, साथ ही देशभक्ति के गानों से कार्यक्रम का समापन किया गया।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती, पार्वती।
4: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर आयोजित भजन क्लबिंग में फिल्म हनुमान अंश के मशहूर गानों ने अलग ही समा बांधा। मोदी के सामने फिल्म के सिंगर साधु तिवारी ने जब जिद पर आई पार्वती गाना गाया तो वहां मौजूद सभी लोग झूम उठे।

इस दौरान पीएम मोदी भी भजन गुनगुनाते और खंजरी बजाकर ताल से ताल मिलाते नजर आए। सिंगर साधु तिवारी ने सिर्फ जब जिद पर आई पार्वती गाना ही नहीं गाया, उन्होंने भगवान शिव का भी मशहूर गाना गाकर पूरे कार्यक्रम के माहौल को भक्तिमय कर दिया।

0: दासहरू जपत निरंतर चंद संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा
1: राम लखन सीता सहित
0: बोलो भाई सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की
2: सब मिलके बोलो भारत।
3: जहां एक तरफ हनुमान अंश के भक्तिमय गानों से भजन क्लबिंग का पूरा कार्यक्रम भक्तिमय रहा, वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति भरे गानों ने अलग माहौल बना दिया।

दिल्ली के दीनदयाल पार्क में चल रहे भजन क्लबिंग का समापन भगवान कृष्ण के गानों और रघुपति राघव राजा राम के गानों से हुआ और पीएम मोदी खुद युवाओं के साथ ताल से ताल मिलाते दिखे।

0: वक्त चलाए बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: बिजली का बिल पेड
6: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
7: इतना माही वे।
8: चुनाव आयोग, ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है। ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी बातों को और मजबूती से रखना चाहिए, राहुल गांधी जी या किसी विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं, जनता के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना आए इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से सुबह सुबह सियासी हिंसा की खबर सामने आई। चाय पीने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक बीजेपी सोशल मीडिया कार्यकर्ता की मौत हो गई। घटना करमतला मार्केट की है, जहां बीजेपी नेता कार्यकर्ता चाय पीने पहुंचे थे, इसी दौरान उन पर हमला हो गया।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

त्योहार आते ही बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। घर की सजावट से लेकर कपड़ों, गिफ्ट, ज्वेलरी और नई गाड़ियों तक हर तरफ खरीदारी का माहौल बन जाता है। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन को देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े बूस्टर में से एक माना जाता है। इस बार भी कारोबारियों को त्योहारों से बड़ी उम्मीद है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेजर्स यानी CAIT के मुताबिक दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक के 29 दिनों के दौरान बाजारों में रिकॉर्ड कारोबार देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि दुर्गा पूजा से दिवाली तक 29 दिनों में 6.20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा और दिवाली इस पूरे सीजन का सबसे बड़ा कारोबारी मौका बन सकती है। दरअसल त्योहारों का असर केवल एक शहर या एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहता। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहार बाजार को रफ्तार देते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और कई राज्यों में गणेश उत्सव के दौरान भी कारोबार में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अनुमान है कि दुर्गा पूजा के दौरान करीब 65,000 करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि होंगी। वहीं गणेश उत्सव के दौरान भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार का अनुमान लगाया गया है। खरीदारी का ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते धनतेरस और दिवाली तक पहुंचता है। यही वो दौर होता है जब बाजार में सबसे ज्यादा पैसा आता है और कारोबार अपने पीक पर पहुंच जाता है। त्योहारों में होने वाली खरीदारी का फायदा छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगों तक को मिलता है। कपड़े, किराना, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स में मांग बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में कपड़े और गिफ्ट आइटम्स की मांग बढ़ेगी। वहीं किराना और FMCG सेक्टर में खरीदारी में तेजी आ सकती है, जबकि ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। धनतेरस और दिवाली पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा आज भी बरकरार है। वहीं नई कार, टीवी, फ्रिज और दूसरे घरेलू सामान खरीदने को भी लोग शुभ मानते हैं। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन को कारोबारियों के लिए साल का सबसे अहम दौर माना जाता है। कुल मिलाकर त्योहार सिर्फ खुशियां ही नहीं लाते, बाजार में भी नई जान भी फूंकते हैं। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन की खरीदारी को देश की खपत और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा संकेत माना जाता है। आदित्य राणा, आज तक।

यूपीआई पेमेंट पर चार्ज की खबर आते ही सीधे सवाल उठता है कि क्या हर पेमेंट पर जेब ढीली होगी। सरकार ने 14 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी करके इस सवाल का एक हिस्सा साफ कर दिया है। इस निर्देश के मुताबिक 2000 तक की यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस रकम तक बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकेंगे। ये फैसला उस कानून में बदलाव के बाद आया है जिसे संसद ने अगस्त में पास किया था। 17 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद टैक्सेशन और अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2026 कानून बना। इसमें पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा 10A में बदलाव किया गया। इसके बाद सरकार को यह तय करने का अधिकार मिला है कि किन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता। 14 सितंबर की अधिसूचना में सरकार ने 2000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट को इसे नो चार्ज दायरे में रखा है, यानी छोटी रकम के यूपीआई पेमेंट को लेकर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर कोई MDR रेट लागू नहीं किया है और बड़े पेमेंट पहले की तरह किए जा सकते हैं, लेकिन संभव है कि आगे चलकर MDR की सीमा और रेट अलग नियमों से तय किए जा सकते हैं। MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो चार्ज है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के बदले मर्चेंट से लिया जाता है। UPI पर ऐसा चार्ज लगाने की चर्चा खासतौर पर बड़े मर्चेंट पेमेंट को लेकर हो रही है। 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक 2000 से ज्यादा के P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट UPI पेमेंट सिर्फ करीब 4% थे, लेकिन रकम के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी करीब 2/3 थी, यानी संख्या कम है लेकिन बड़ी रकम इन्हीं पेमेंट के जरिए जाती है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी के छोटे UPI पेमेंट पर फिलहाल कोई नई फीस नहीं लगी है। दोस्त या परिवार को पैसे भेजने वाले P2P पेमेंट भी अभी किसी नए चार्ज के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन बड़े मर्चेंट पेमेंट को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सरकार ने कानून में ऐसा रास्ता जरूर बनाया है जिसके जरिए आगे चुनिंदा बड़े मर्चेंट पेमेंट पर MDR तय किया जा सकता है। इसकी सीमा किन कारोबारियों पर लागू होगा और रेट कितना होगा, ये बातें अभी तय होना बाकी है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगभग डेढ़ घंटे बातचीत, कुछ देर में जेपी नड्डा से भी मुलाकात। सीसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष की मोर्चाबंदी लगातार जारी, अब 30 सितंबर को दिल्ली में गठबंधन इंडिया की बैठक, ममता बैनर्जी की सीपीएम महासचिव, एमए बीबी से बात, अभिषेक बैनर्जी ने राहुल गांधी को मिलाया फोन। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, ममता की रैली में जाते वक्त हुगली में श्रीरामपुर में कार पर फेंके गए अंडे, कार का टूटा शीशा। बिहार में बेटी से बदसलूकी के एक और वीडियो वायरल होने पर संग्राम, किशनगंज में 6 महीने पुराने मामले का वीडियो आया सामने, एफआईआर दर्ज, जमे वाले पोस्ट पर एक्शन, एफआईआर। और यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब, शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से गढ़चिरौली में बाढ़, 100 से ज्यादा गांव का टूटा संपर्क, 525 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए। बाढ़ के इस भयानक माहौल के बीच में एनडीआरएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा, बीमार छात्रा की जान भी बचाई। पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते ओडिशा के कोरापुट में बाढ़, कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा। इंद्रावती जलाशय पानी छोड़े जाने के बाद 3 गेट खोले जाने के बाद कोटपाड़ में कई हिस्सों में स्थिति बेहद खराब, राहत कार्य जारी है। गरियाबंद में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिले के सभी प्रमुख नदियों के साथ साथ छोटे नदी नाले उफान पर हैं, घरों के बाढ़ का पानी घरों में घुसने से जनजीवन प्रभावित। सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच में बड़ा भूस्खलन और सिक्किम के रिम्बी गांव में भूस्खलन से बड़ा नुकसान। मिट्टी और मलबे की चपेट में आने से 7 घर जबकि बिजली विभाग के 6 क्वार्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त, कुछ घर और क्वार्टर अभी भी मलबे के साथ बह गया। भूस्खलन के बाद प्रशासन और स्थानीय टीमों ने प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया, अब तक 128 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। डीडीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील, गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह। यूपी के कई जिलों में प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश, खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला। सुपौल में कोसी का रौद्र रूप, कोसी बैराज से इस साल सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया। सुकमा में अदब तूफान का बड़ा असर, भारी बारिश के बाद शबरी नदी उफान पर स्कूल बंद। रांची में बारिश का कहर, 40 बच्चों से भरी हुई स्कूल बस पर पेड़ गिर गया, सभी बच्चे सुरक्षित। गरियाबंद में भारी बारिश बनी आफत, बाढ़ के पानी में नेशनल हाईवे 130C बंद, आवागमन ठप। नेपाल में कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ा, 31 गेट खोले गए, रेड अलर्ट जारी। बगहा में 24 घंटे में ज्यादा बारिश और निचले इलाकों में जलभराव, लोगों को परेशानी। बस्तर में 5 दिन में लगातार भारी बारिश, कई गांव शहर डूबे, जनजीवन प्रभावित। जमशेदपुर में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, बाढ़ के पानी के बीच में बच्चे फुटबॉल खेलते दिखे। प्रयागराज में 2 दिनों से भारी बारिश, बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दुर्गापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, मुख्य सचिव ने 17 जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक। गंडक, बागमती, कोसी नदी तंत्र से जुड़े हुए संवेदनशील जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और नदी किनारे गांव, पुल और संपर्क मार्गों के लगातार निगरानी के भी ऑर्डर है। हरदोई में बारिश बनी है, पर पेड़ और दीवार गिरने से एक बच्चे की इसमें मौत और इसमें 4 भैंसे भी बताया जा रहा है कि मर गए। हेमकुंड साहिब में फिर से बर्फबारी हुई, जबरदस्त ठंड के बीच में सफेद चादर से ढका दिखाई दिया पूरा इलाका। लगातार बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट, निचले इलाकों में बारिश का दौर। मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ और चुनावी तैयारियों पर बातचीत। गठबंधन इंडिया की बैठक 30 सितंबर को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठक है और गठबंधन इंडिया के सभी बड़े नेताओं के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद।
सीसी के खिलाफ विपक्ष में लामबंदी तेज, ममता बनर्जी की सीपीएम महासचिव एमए बीबी से बात। गणेश कुमार को हटाने की मांग पर आंदोलन तेज, सीजेपी को विपक्षी दलों का समर्थन, 2 अक्टूबर से मुंबई में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। आज कोलकाता में ममता की रैली, ममता की सभा से पहले ही पुलिस का बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता से 8 जानकारियां मांगेंगे। यूएन महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन पर भारत का तीखा पलटवार और फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल उठाए। पेटल गहलोत ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और दोहरा रवैया रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। इस दौरान उन्होंने 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को घेरा। इसके साथ ही चेतावनी दी कि सीमा पर आतंकवाद के गंभीर नतीजे होंगे। कहा पाकिस्तान के लोग जिसे खुद फॉर्म 47 सरकार कहते हैं उससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जिक्र किया पेटल गहलोत ने कहा कि ये मेरे देश का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। हुगली में टीएमसी नेता कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडे फेंके जाने का मामला, ममता बनर्जी की सभा में शामिल होने जा रहे थे इस दौरान घटना। एआईएमआईएम ने सपा कांग्रेस के बीच में रथ यात्रा को लेकर चल रही सियासी खींचतान पर कसा तंज, कहा कि कांग्रेस और सपा बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 700 करोड़ के मेडिकल उपकरण घोटाले में एक्शन, राजीव रंगीला गिरफ्तार, एसीबी के सामने किया सरेंडर। मेडिकल खरीद घोटाले में एसीबी की कार्रवाई, मुख्य कथित जो लाभार्थी राजीव रंगीला गिरफ्तार। जमुई पीड़िता के माता पिता का बयान, ना बोले कि सीएम ने अभिभावक की तरह मिलकर बेटी को हिम्मत दी है, कार्रवाई से संतुष्ट हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास में सेना का ऑपरेशन दृष्टि, 220 लोगों को नई रोशनी मिली और सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भी पहुंचकर लाभार्थियों से हालचाल जाना। कंधार में मेगा आई सर्जिकल शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मोतियाबिंद के अलावा रेटिना और ग्लूकोमा से जुड़ी हुई चुनिंदा जटिल सर्जरी की है, लोगों से सेना का शुक्रिया अदा भी किया। नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे बस अग्निकांड में 9 लोगों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, जनहित याचिका पर राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए, जवाब भी मांगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अब अहम फैसला, एडीजी से लेकर डीआईजी स्तर के 36 सीनियर पुलिस अधिकारियों को प्रभारी और नोडल पदाधिकारी के रूप में तैनात किया। सभी को 27 सितंबर तक निरीक्षण पूरा करने और डीजीपी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश, डीजीपी प्रीता वर्मा को अपने रिपोर्ट सौंपेंगे। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भजन क्लबिंग इवेंट का आयोजन, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल। भजन क्लबिंग कार्यक्रम में आनंद देते दिखे पीएम, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ढपली भी बजाई। जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर किया गया भजन क्लबिंग संध्या का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान पीएम न सिर्फ भजन में रमते दिखे बल्कि भजन गा रहे कलाकारों का हौसला भी बढ़ा।

0: मुंबई में लालबाग चौराहे की भव्य विदाई, जुहू चौपाटी पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन, आरती के बाद बप्पा को भावुक विदाई दी गई। विदाई यात्रा में बप्पा की प्रतिमा के साथ अनंत अंबानी भी नजर आए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद। पुणे में श्रीमंत भाव साहिब रंगारी गणपति का विसर्जन, पूजा अर्चना और आरती के बाद कृत्रिम तालाब में विसर्जित की गई प्रतिमा। बप्पा की विदाई के बाद मुंबई में समुद्र तटों पर सफाई अभियान, और अभिनेता अजय देवगन और अमृता फडणवीस ने बढ़ चढ़कर इसमें लिया हिस्सा। बड़ी हस्तियों के साथ हजारों स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुहिम में शामिल होकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, चाय की दुकान पर लाठी चाकू से हमला, अस्पताल में तोड़ा था। मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ, भतीजे की चाकू घोंप कर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर सियासत गर्म, बीजेपी नेता का आरोप कि हमलावर टीएमसी या नियो बीजेपी से जुड़े हो सकते हैं। बीजेपी के किशनगंज में 4 से 5 महीने पुराना एक वीडियो वायरल, युवती के साथ मारपीट और पूछताछ का मामला, अब एफआईआर दर्ज। पुराने वीडियो पर पुलिस का एक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार, 4 अन्य की तलाश में एसआईटी की छापेमारी। पश्चिम मेदनीपुर में सबंग में सड़क हादसे से हड़कंप, 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। टक्कर की तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, घायलों को बचाया, स्थानीय लोगों ने घायल सवार को अस्पताल पहुंचाया। गुजरात के दमोह में युवक की मौत पर बवाल, स्थिति को काबू में करने पहुंचे पुलिस बल पर ग्रामीणों ने किया हमला, घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तेलंगाना के कोठागुडेम में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान तलवारें लहराने के आरोप में 4 गिरफ्तार, लोगों में डर फैलाने के उद्देश्य से तलवार लहराई गई। दिल्ली में अलकनंदा इलाके में नशे में धुत कार ड्राइवर का आतंक, सोसाइटी के गेट और पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। दिल्ली के मॉडल टाउन में हल्दीराम की दुकान में लगी आग, 25 दमकल की गाड़ियों ने स्थिति पर कंट्रोल किया। ग्रेटर नोएडा में पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जनहानि की खबर नहीं। धौलपुर में एक दुकान में लगी भीषण आग, तेल के डिब्बों की वजह से तेजी से फैली लपटे, घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। गुजरात के भावनगर में पेट्रोल पंप के पास में स्कूटी में लगी आग, कर्मचारियों ने सूझबूझ के साथ बड़ा हादसा टाला। अहमदाबाद में स्पा सेंटर में लगी आग, मौके पर 8 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, केशव शिवाला गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम। जमशेदपुर में ऑटो हटाने को लेकर हुआ बवाल, किन्नरों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ की हाथापाई, सड़क पर ही हंगामे का वीडियो आया सामने, यातायात प्रभावित हुआ। असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित पिकअप वैन पलटकर स्कूटर सवार पर गिरी, 2 की हालत गंभीर। मेरठ में शॉपिंग करने आई युवतियों से छेड़छाड़, विरोध पर गाली गलौज की, सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए 2 आरोपी। बदायूं में सुनसान जगह पर युवक युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़, वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। वाराणसी में गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का मामला आया सामने, सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक का गैस शोरूम के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को रौंदा गया, कांच के जो शीशे हैं वो भी टूटे और लाखों का नुकसान भी हुआ। चरखी दादरी में 20,000 के रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, ईसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बमबाजी का वीडियो आया सामने, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके परेड निकाली। रांची में बारिश के बीच में बड़ा हादसा टला, 40 बच्चों से भरी हुई स्कूल बस पर गिरा पेड़, सभी सुरक्षित। इंदौर में अवैध दवा कारोबार पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 लाख की दवाइयां जब्त। बूंदी में धार्मिक जुलूस के दौरान बवाल, रूट को लेकर भिड़े 2 पक्ष, नारेबाजी के बाद पुलिस बल तैनात। मुंगेर में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका की करवाई शादी, गुस्से में दूल्हे ने वरमाला और सिंदूर फेंक दिया। एमपी के धार में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत। एमपी के भिंड में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, सिंध नदी में डूबे 3 बच्चे लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत ने एशियन गेम्स 2026 में 3रा गोल्ड मेडल जीता है, और महिला कबड्डी टीम ने कबड्डी के फाइनल में ईरान को 37-34 से हरा दिया। भारत को एशियन गेम्स में पुरुष मैराथन इवेंट में 44 साल के बाद मेडल मिला, और सावन बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड की टाइमिंग के साथ सिल्वर मेडल दिलाया। महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन कैटेगरी में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही। इस टीम में आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन और विदाशा विनोद का नाम शामिल। भारत के तिलोत्तमा सेन और विदाशा विनोद ने विमेन 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में बनाई जगह। तिलोत्तमा तीसरे तो विदाशा छठे स्थान पर। भारत के मेडल की संख्या 27 पहुंचे, इसमें 3 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। कांगो में बड़ा दर्दनाक हादसा, एक विमान क्रैश में 14 लोगों की मौत, जिसमें सेना के 2 सीनियर अधिकारी भी शामिल। सीनियर मिलिट्री अधिकारियों में मिलिट्री कोर्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल और आर्म फोर्सेस के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट शामिल है। कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि 2 जनरल अधिकारियों के अलावा डेलीगेशन के 12 सदस्य और क्रू मेंबर्स की भी मौत। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये प्लेन दक्षिण पश्चिमी किकविट से राजधानी किनशासा लौट रहा था और इस दरमियान कोई तकनीकी खराबी आई और ये विमान कांगो में क्रैश हो गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि क्रैश की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। अबाद आतंकी देश पाकिस्तान को यूएन में मिले करारे जवाब की यूएन के मन से। जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा और सिंधु के पानी पर गीदड़ भभकी दी, भारत ने बिल्कुल उसी मन से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के आरोपों पर भारत की प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा और यह कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार भारत के इस्तेमाल जो इस्तेमाल करता रहेगा। आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे, आतंकवादियों के लिए ना भागने की जगह होगी ना छिपने की जगह होगी, ये उन्होंने कहा। वहीं आतंकवाद पर सवाल को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तानी पत्रकार को ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी बोलती बंद हो गई।
1: दिस इज अ रिजीम ऑफ द आर्मी बाय द आर्मी एंड फॉर द
2: वॉटर मस्ट नेवर बी वेपनाइज्ड। यूएन में पाकिस्तान के झूठ की उड़ी धज्जियां। भारत ने शहबाज शरीफ को दिया करारा जवाब। लादेन से लेकर आतंकवाद तक पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हुआ। आतंकी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान की सरकार को सेना के हाथों की कठपुतली करार दिया।
1: दिस इज अ रेजिम ऑफ द आर्मी बाय द आर्मी एंड फॉर द आर्मी। देयर पपेट्स मे कम एंड गो बट लेट अस हैव नो इल्यूजन हु कॉल्स द शॉट्स।
2: यूएन के मंच का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापते हुए कश्मीर को जुगलर वैन यानी जीवन रेखा बताया था।
3: कश्मीर हैज एंड ऑलवेज विल बी पाकिस्तान्स जुगलर वैन।
2: शहबाज शरीफ पर पलटवार करते हुए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया और कहा कि अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा।
1: दिस is an integral and inalienable part of my country and will always remain so. But if we must talk about Kashmir, let us turn our attention to the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Ask the people of Rawalkot about the wanton killings, the brutal violence and the denial of basic rights that they have long experienced.
2: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिंधु के पानी को तरसते आतंकी देश पाकिस्तान के पीएम ने यूएन के मंच से भारत को गीदड़ भभकी देते हुए जंग की बात कही।
3: वाटर मस्ट नेवर बी वेपनाइज्ड, रिवर्स शुड नरिश नेशंस नॉट डिवाइड देम, देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप इम्पीड और डाइवर्ट पाकिस्तान्स शेयर ऑफ द वाटर्स विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर।
2: जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जंग की गीदड़ भभकी देता दिखा, वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ कह दिया कि अगर आतंकवाद का इस्तेमाल हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे और आतंकियों के लिए न भागने की जगह होगी न छिपने की।
1: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised and continued terrorism by Pakistan will have consequences. it will understandably call into question what were premised on friendship and goodwill.
2: वहीं भारत ने यूएन के मंच से दुनिया को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान के बार बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाएगा और इससे दुनिया को भी फायदा नहीं मिलने वाला.
1: We are confident that this assembly will recognize Pakistan and its policies for what they really are, not what its representative mendaciously projects it to be. Reiterating falsehoods year after year does not make them true. Pakistan's terrorism, deceit and duplicity will neither benefit it nor the world. I thank you, Mr. President.
2: यही नहीं, भारत ने दुनिया को यह बताया कि कैसे पाकिस्तान ने 9/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी. साथ ही यूएन के सामने भारत ने पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया. आज तक ब्यूरो.
0: यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा प्रहार किया. विदेश मंत्री ने कहा कि अब आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है.
4: Can you just tell us when your government will stop sponsoring terrorism in Pakistan?
5: A terrorist country is asking me that question?
4: They are rude.
5: Come on.
4: Can you just tell us when your government will stop sponsoring terrorism in Pakistan?
5: A terrorist country is asking me that question?
4: They are rude.
5: Come on.
0: अब मुंबई के जाने माने लालबाग चौराहा की बात, जिन्हें आज भव्य तरीके से विदाई दी गई है. गिरगांव चौपाटी पर लालबाग चौराहा को भव्य और भावुक तरीके से विसर्जित किया गया और इस दौरान कई श्रद्धालु मौजूद रहे. इससे पहले विसर्जन यात्राओं में लाखों श्रद्धालु ढोल ताशों के साथ पहुंचे.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुट।
3: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पीटी नहीं दिख रही है।
4: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे हम, भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
5: नो वीआईपी दर्शन, नो। एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने, भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
1: क्या चीज है?
3: वायरल है? चाहिए।
4: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे, बैठ
5: बैठ बैठ।
4: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम
1: सॉलिड। वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। एक घंटे से ज्यादा देर तक चली मंथन और जेपी नड्डा से भी मुलाकात। सीसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज। 30 सितंबर को दिल्ली में गठबंधन इंडिया की बैठक। ममता बनर्जी की सीपीएम महासचिव एमएबीबी से बात। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को मिलाया फोन। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला। ममता की रैली में से जाते समय हुगली के श्रीरामपुर में कार पर फेंके गए अंडे। कार का शीशा टूट गया। बिहार में बेटी से बदसलूकी की एक और वीडियो वायरल होने पर संग्राम। किशनगंज में 6 महीने पुराने मामले का वीडियो आया सामने। एफआईआर अब दर्ज। जमुई वाले पोस्ट पर एक्शन और एफआईआर। और यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का दिया करारा जवाब। शहबाज शरीफ की कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेट्रोल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। बुलेटिन की शुरुआत बिहार के किशनगंज से आई तस्वीरों के साथ करते, जहां पर एक लड़की से बदसलूकी का मामला सामने आया और घटना किशनगंज के दिघल बैंक थाना इलाके की है। यहां पर तुलसिया हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास में युवती को घेर कर पूछताछ की गई। घेरा गया फिर उसके साथ मारपीट की गई। यह घटना 6 महीने पुरानी बताई जा रही। हालांकि अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जमुई में क्या हुआ है पूरा देश देखकर सन्न है। अब एक और वीडियो आप देख लीजिए। ये किशनगंज का वीडियो है, 6 महीने का पुराना वीडियो है। 6 महीने तक ना पुलिस को पता न किसी दूसरे को पता। अब जमुई की घटना के बाद ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अगर आप जमुई की घटना के बाद क्रेडिट ले रहे हैं तो इस घटना के बाद जो सिस्टम पर सवाल उठते हैं उन पर भी आपको जवाब देना चाहिए कि वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस कुछ कार्रवाई कर सकती है, क्राइम रोक नहीं पाती। बिहार से लगातार महिलाओं से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आ रही। पहले जमुई की घटना पर बवाल मचा, फिर समस्तीपुर की एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई, इसके बाद बांका में तस्वीरों ने बिहार को शर्मसार कर दिया। अब किशनगंज से नई घटना सामने आई, इसके बाद सिर्फ सवाल ही सवाल है। सबसे पहले हम जम्मू केस की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कांड हुए। जमुई कांड की पीड़िता की पहचान उजागर करने का मामला गर्मा गया और आरजेडी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री के हैंडल से पीड़िता की तस्वीर शेयर कर दी गई थी और इसीलिए सीएम के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है।
1: जमुई में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सख्त एक्शन और मैसेजिंग के चक्कर में कुछ ऐसा कर गए कि बिहार में विपक्ष को बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल गया। हुआ ये कि सम्राट चौधरी जमुई पीड़िता और उसके परिजनों से मिलते हैं और मुलाकात की फोटो मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की जाती है, जिसमें पीड़िता और उसके परिजनों का चेहरा साफ साफ दिखाया जाता है। बस इसी बात को लेकर विपक्ष अड़ गया।
2: तो ये जो था ये तो सम्राट चौधरी है ना, उनके हैंडल से आया ना। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं और आपको समझ में नहीं आया कि बिना आपसे पूछे बिना आपकी जानकारी के एक्स पे कुछ भी लिख देगा कोई।

0: पर हमलावर है। आरजेडी सांसद मीसा भारती मुख्यमंत्री पर एफआईआर की मांग कर रही हैं। सीएम पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि सीएम ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में एफआईआर किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप एफआईआर नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से एफआईआर हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गईं, एफआईआर उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर एफआईआर हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो सीएम पर एफआईआर करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इनको तो इनके ऊपर बिहार पुलिस तुरंत पॉक्सो एक्ट लगाए। जमुई में या और कहीं भी घटना हुई है तो पुलिस ने कई लोगों पर 80-90 लोगों पर जो है पॉक्सो एक्ट लगाया है। अगर मुख्यमंत्री पर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा, कौन मानेगा पॉक्सो एक्ट को?
0: सम्राट चौधरी पर एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन मीसा भारती का जिक्र एफआईआर में जरूर है कि बिना जांच के किसी व्यक्ति को दोषी ना ठहराया जाए। आज तक ब्यूरो।
3: जमुई का पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला है और मुख्यमंत्री ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है।
4: तो कॉल आया था, आप लोग गए मिलने के लिए, क्या बात हुई और क्या कहेंगे?
5: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना, चाहे पढ़ाई हो या सुरक्षा हो, हर चीज़ के लिए वो आश्वासन दिए।
4: 19 तारीख की ये घटना है, आपको कब जानकारी हुई कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा सब हुआ?
5: इसकी शाम 7-8 बजे को मालूम हुआ सर, कुछ बाहर से जानकारी मिला तो पूछने के बाद फिर बेटी मेरी सारी बात बताई हमको सर।
4: अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है इस मामले में, उससे कितना संतुष्ट है आप?
5: हम पूरी तरह से संतुष्ट है सर, प्रशासन बहुत साथ दिया हम लोग को सर। हाँ, तुरंत कार्रवाई भी हुई है, 24 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई भी हुई है, और जो मेन अपराधी था उसका एनकाउंटर भी हुआ है सर।
4: लोग कह रहे हैं कि उसका हाफ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, फुल इनकाउंटर होना चाहिए, इसको लेके आपकी क्या राय है?
5: वो तो जनता का जो है सर, बस हम उसी के साथ चलेंगे, जनता से बढ़ के तो अभी वही है, जनता ही बढ़ गए हैं सर।
4: क्या
5: होना चाहिए सर, लेकिन फिर भी नहीं, हम प्रशासन के काम से बहुत संतुष्ट है सर।
4: फुल इनकाउंटर होना चाहिए
5: इसका तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन जो भी किए हैं सर हम उनसे संतुष्ट हैं, और बाकी उनको जो अच्छा लगेगा वो लोग तो कर ही रहे हैं, बाकी तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से मेरे केस में मेरा समाज, मेरा जमुई वासी, बिहार वासी और पूरा हिंदुस्तान एक साथ थे, बस चाहेंगे कि इसी तरह हमेशा साथ रहे, ताकि अपराधी भी डरे कि नहीं अब हिंदुस्तान भी और पूरा बिहार जमुई वासी सब एक है अपराधी के खिलाफ।
4: लड़की के पिता भी मेरे साथ हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है, कैसे जानकारी हुई कि ये इस तरह की घटना हुई है?
6: हमें 20 तारीख रात में जानकारी हुई, वो भी 8 बजे रात में। उस समय तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, 19 को भी पता नहीं चला, 20 को रात में पता चला। पता चलने बाद हम लोग प्रशासन के पास गए, से बातचीत हुई, उसके बाद 21 तारीख को उस पर कार्रवाई, केस मुकदमा हुआ।
4: इसका मतलब बच्ची के जो घूम के आई वो डर से, हमको लगता है कि आपको
6: मेरी बच्ची डर गई थी, और इस तरह का घटना किसी भी बच्ची साथ होगा, कोई भी बच्ची डर जाएगी। मेरी बच्ची का अभी बहुत छोटी है, अब बहुत डर गई थी।
4: पुलिस ने जो कार्रवाई की है अभी तक उसको किस रूप में देख रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं या और कुछ होना चाहिए इसमें?
6: पुलिस की कार्रवाई से हम बहुत संतुष्ट हैं। माननीय एसपी साहब।

0: से भी संतुष्ट हैं, डीएम साहब से भी संतुष्ट हैं, पूरे प्रशासन से संतुष्ट हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम संतुष्ट हैं, उनकी कार्रवाई से हम बहुत संतुष्ट हैं।
1: जो अपराधी पकड़े गए नंदन और हरिराम, उसको लेके क्या क्या कहेंगे और क्या चाहेंगे, कैसी सजा उसको मिले?
0: उसको सख्त से सख्त सजा मिले, न्यायाधीश जो सजा दे, लेकिन जो मिले जल्द मिले और सख्त से सख्त सजा मिले।
2: यूपी में चुनावी एक्शन के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात खत्म हो गई है, लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक यह बैठक की मुलाकात चली। इस मुलाकात में को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है, तो यूपी चुनावों की दृष्टि से इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। लगभग एक घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ मिले और उसके बाद जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की तस्वीर भी ये सामने आए जब वो मिले। तो यूपी में चुनावी रण की तैयारियां तेज हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर नेताओं की बयानबाजी के बाद अब नया नया मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा शुरू किए जाने के बाद अब आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कन्नौज मैनपुरी सेफई से यात्रा शुरू करने की बात कही, तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया।

0: एक और चर्चाएं हैं यूपी चुनाव में कांग्रेस एसपी के साथ लड़ने की, लेकिन बीते कुछ दिनों में दोनों दलों में तल्खी बढ़ती जा रही है। पहले सीटों के बंटवारे को लेकर बयानबाजी हुई, दोनों ओर से तीखे हमले हुए, लेकिन रायबरेली से शुरू हुई अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा के बाद ये लड़ाई अगले मुकाम पर पहुंच गई। कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के गढ़ से यात्रा शुरू करने की बात कही तो हमले और तेज हो गए।
1: वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर में। और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होती रही और फिर
2: शिवपाल यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहे रथ यात्रा कहीं से शुरू करे उसको उनको एक वोट जो है वो नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर?
3: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता हैं हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: दरअसल अखिलेश यादव ने जब गांधी परिवार के इस गढ़ को चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बताकर अपना रथ उतारा तो सबसे ज्यादा हलचल गठबंधन के अंदरखाने महसूस की जा रही है।
4: चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
0: कांग्रेस इटावा मैनपुरी जाती है या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन रायबरेली में अखिलेश की रैली को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान क्यों आया ये समझना भी जरूरी है। उसके पीछे की कहानी समझने के लिए रायबरेली में अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए जिसमें उन्होंने चुनाव को लोधी बनाम योगी चुनाव बता दिया।
5: हमारे विधायक राहुल लोधी बनाम योगी चुनाव हो गया है रायबरेली में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर।
0: तो जिस रायबरेली से अखिलेश की रथ यात्रा शुरू किया जाना कांग्रेस को रास नहीं आता दिखा, रायबरेली जिले की जिन सीटों पर इस बार कांग्रेस अपना दावा मजबूती से रखने का मन बना रही थी उसी रायबरेली की जमीन से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का नाम बताकर खेल कर दिया। रही सही कसर आशु मलिक जैसे अखिलेश यादव के करीबियों ने ये कहकर पूरी कर दी कि रायबरेली समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है।
6: ये रायबरेली जाने की वजह क्या चुनी गई, राहुल गांधी के गढ़ से आप लोग अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं?
7: देखिए समाजवादी पार्टी का पहले भी रायबरेली ऐसा नहीं है जो उसको गलत दिशा में ना ले जाइए, इतना जनता बदलाव चाह रही है इस वक्त और जनता तानाशाह सरकार से बहुत परेशान है।
6: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
7: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश समाजवादियों का गढ़ है।
0: दोनों ओर से बयानों का दौर तेज हो गया है। यूपी में चुनाव समर से पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच नया सियासी झगड़ा शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो।
8: अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 70,000 पन्नों की चार्जशीट अयोध्या पुलिस ने फैजाबाद की अदालत में दाखिल कर दी है। इसमें विस्तार से सारी बातें लिखी गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा मामले में गवाह बने हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है। 73,480 पन्नों के आरोप पत्र में पुलिस ने चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी बयां की है। करीब 3 महीने की लंबी जांच, आरोपियों से पूछताछ, कई सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद अयोध्या पुलिस ने ये चार्जशीट बनाई है।
1: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट में चंपतराय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है और उनको प्रमुख गवाह बनाया है। चंपतराय ने पुलिस को दिए बयान में साफ कहा कि 3 जून को जब पहली बार चोरी पकड़ी गई, 4 जून को अविनाश शुक्ला के पास से गणना में लगे कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मदद से 2.25 लाख रुपए बरामद हुए, तो उनको उनके ही एक तीर्थ क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी ने एक वीडियो भेजा। उस समय चंपतराय दिल्ली से अयोध्या ट्रेन में सफर कर रहे थे। 4 जून की रात में भेजे गए इस वीडियो को देखने के बाद चंपतराय ने अयोध्या पहुंचकर अगले दिन 5 जून को अनिल मिश्रा और गोविंद राव के साथ बैठक की, जिसमें चोरी के तमाम दूसरे सीसीटीवी भी दिखाए गए।
0: अयोध्या पुलिस ने चंपतराय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। जिस चंपतराय और अनिल मिश्रा को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। चंपतराय राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव थे और अनिल मिश्रा सदस्य थे। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती से लेकर कर्मचारियों की भर्ती तक सब इन्हीं की देखरेख में हुआ, लेकिन चढ़ावा चोरी में ये आरोपी नहीं बनाए गए हैं। जो अनिल मिश्रा और चंपतराय चढ़ावा चोरी के पहले दिन से निशाने पर थे, उन्हें पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बाइज्जत बरी कर दिया है। इन दोनों को मुख्य गवाह बना दिया गया है। विपक्ष इसी बात को मुद्दा बना रहा है कि 70,000 पन्नों की चार्जशीट में वो पन्ना कहाँ है जिसमें चंपतराय और अनिल मिश्रा का नाम है।
2: 70,000 पन्नों में एक नाम लिखने की जगह नहीं थी, जो सब लेके चंपत हो गया। उस चंपतराय की, राव की, गोपाल अनिल मिश्रा की, ये थोक वाले, ये होलसेल वाले हैं। इन्हीं की मिली भगत से तो भाजपा सरकारों ने किया है। ये सिर्फ चंदा चढ़ावा नहीं है, चढ़ावा चोरी नहीं, प्रसाद का करोड़ों करोड़ रुपए जो आए थे उसकी चोरी करने वालों का आरोप तो इन्हीं पे है। मैं तो रहने वाला हूँ अयोध्या, कमिश्नरी जो पहले होती थी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ अवध का। वहां हर आदमी की जुबान पे है। और ये इतने दिन रहा, पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं।
0: चंपतराय और अनिल मिश्रा आरोपी नहीं है तो फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किसने की? पुलिस ने चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी जिक्र किया है कि किस आरोपी के पास से क्या क्या बरामद हुआ है, किसने किस स्तर पर चोरी की, सब कुछ चार्जशीट के पन्नों में दर्ज है। अविनाश शुक्ला के पास 20 लाख रुपए, 1121 अमेरिकी डॉलर, सोने और चांदी के गहने मिले। अनुकल्प मिश्रा ने अपने पिता के नाम 55 लाख का मकान खरीदा, एक कार खरीदी, बड़े बड़े इवेंट किए। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम 20 लाख की जमीन खरीदी और उस पर 23 लाख खर्च करके मकान बनवाया। रमाशंकर मिश्रा ने बैंक खातों में करीब 20,92,000 नकद जमा किए, 12 लाख रुपए का प्लॉट, कैमरा और आभूषण खरीदा। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से करीब 8,48,000 रुपए नकद, बुलेट मोटरसाइकिल, अर्टिगा कार, आभूषण और उसके बेटे के नाम करीब 9.5 लाख रुपए की संपत्ति खरीद का दावा किया गया है। पुलिस ने अपनी तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी है। चंपतराय और अनिल मिश्रा साफ साफ बच गए हैं। अब पुलिस के दावों को फैजाबाद की अदालत में गवाहों और सबूतों के आधार पर परखा जाएगा। उसके बाद न्यायालय तय करेगा कि चोरी किसने की, किसके सानिध्य में की। अयोध्या से मयंक के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केले कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण में संदिग्ध हालत में उनकी मौत से हड़कंप मच गया और ये मामला कोतवाली वृंदावन इलाके के गुरु कृपा कुंज का है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बताया जाता है कि सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास साधक ने 4th मंजिल से कूद कर सुसाइड कर लिया। मृतक के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में सर्वोदय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। घटना हत्या है या आत्महत्या, हर एक पहलू से पुलिस मामले की जांच कर रही है।
4: 25 नौ को सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सर्वोदय अस्पताल में एक व्यक्ति घायल अवस्था में आके यहाँ पे एडमिट हुआ है। इस सूचना को संज्ञान लेते हुए तत्काल इसमें जांच की गई तो जानकारी हुआ कि दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण जो जबलपुर के रहने वाले हैं, ये केले कुंज से संबंधित गुरु कृपा कुंज आश्रम है, वहां पे ये रह रहे थे। आज सुबह 10:30 बजे फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
3: और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
1: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
0: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
2: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इसे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे, मत मिसलीड।
0: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है।
1: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
2: नो वीआईपी दर्शन, नो। एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है। 73,480 पन्नों के आरोप पत्र में पुलिस ने चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी बयां की है। करीब 3 महीने की लंबी जांच, आरोपियों से पूछताछ, कई सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद अयोध्या पुलिस ने ये चार्जशीट बनाई है। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। जिस चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव थे और अनिल मिश्रा सदस्य थे। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती से लेकर कर्मचारियों की भर्ती तक सब इन्हीं की देखरेख में हुआ, लेकिन चढ़ावा चोरी में ये आरोपी नहीं बनाए गए हैं। जो अनिल मिश्रा और चंपत राय चढ़ावा चोरी के पहले दिन से निशाने पर थे, उन्हें पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बाइज्जत बरी कर दिया है। इन दोनों को मुख्य गवाह बना दिया गया है। विपक्ष इसी बात को मुद्दा बना रहा है कि 70,000 पन्नों की चार्जशीट में वो पन्ना कहाँ है जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम है। चंपत राय और अनिल मिश्रा आरोपी नहीं है तो फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किसने की? पुलिस ने चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, लवकुश मिश्रा, रमा शंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी जिक्र किया है कि किस आरोपी के पास से क्या क्या बरामद हुआ है, किसने किस स्तर पर चोरी की, सब कुछ चार्जशीट के पन्नों में दर्ज है। अविनाश शुक्ला के पास 20 लाख रुपए, 1121 अमेरिकी डॉलर, सोने और चांदी के गहने मिले। अनुकल्प मिश्रा ने अपने पिता के नाम 55 लाख का मकान खरीदा, एक कार खरीदी, बड़े बड़े इवेंट किए। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम 20 लाख की जमीन खरीदी और उस पर 23 लाख खर्च करके मकान बनवाया। रमाशंकर मिश्रा ने बैंक खातों में करीब 20,92,000 नकद जमा किए, 12 लाख रुपए का प्लॉट, कैमरा और आभूषण खरीदा। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से करीब 8,48,000 रुपए नकद, बुलेट मोटरसाइकिल, अर्टिगा कार, आभूषण और उसके बेटे के नाम करीब 9.5 लाख रुपए की संपत्ति खरीद का दावा किया गया है। पुलिस ने अपनी तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा साफ साफ बच गए हैं। अब पुलिस के दावों को फैजाबाद की अदालत में गवाहों और सबूतों के आधार पर परखा जाएगा। उसके बाद न्यायालय तय करेगा कि चोरी किसने की, किसके सानिध्य में की। अयोध्या से मयंक के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक घंटे से भी ज्यादा तक चला मंथन, जेपी नड्डा से भी हुई मुलाकात। सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज, 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, ममता बैनर्जी की सीपीएम महासचिव एमए बेबी से हुई बातचीत, अभिषेक बैनर्जी ने राहुल गांधी को मिलाया फोन। वृंदावन में संत प्रेमानंद के आश्रम में शिष्य ने की खुदकुशी, चौथी मंजिल से कूद कर दी अपनी जान, हत्या और आत्महत्या के एंगल से भी जांच में जुटी है पुलिस। यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान के प्रोपोगंडा का दिया करारा जवाब, शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पटेल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में ढोंग करता है और रात में आतंकवाद फैलाता है। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड, पुरुष कबड्डी में भारत ने लहराया परचम, ईरान को 39-35 से हराया, भारत के खाते में कुल 28 मेडल।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कहते हैं युद्ध और राजनीति में एक चूक और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नासमझी ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, खतरा न्यूक्लियर रेस का, जिसमें अब ईरान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश कूद पड़े हैं और होड़ में है दूसरे मुल्क से पहले न्यूक्लियर बम हासिल करने की। आज रणभूमि में बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसके बारे में जिसे सुनते ही पूरी दुनिया में खलबली और सनसनी फैल गई। लेकिन पहले आपको बताते हैं रणभूमि में आज आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे रणभूमि स्पेशल में दुनिया में युद्ध के तमाम पुराने मोर्चों की बात करेंगे, साथ ही पाकिस्तान को भारत की फटकार की खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हूती के खिलाफ अब तीन देशों का मक्का अलायंस हरकत में आ चुका है, क्या हूती पर बरसे का मक्का अलायंस, और रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर चौंकाने वाली है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि नवंबर में अमेरिका फिर से ईरान पर बमबारी कर सकता है। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर में आपको बताएंगे हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान की 7 दिनों वाली शर्त क्या है और क्या अमेरिका इसे मानेगा। रणभूमि स्पेशल की चौथी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कि कीव पर रूस का एक और भीषण हमला हुआ है और हालांकि यूक्रेन ने भी रूस पर ताजा पलटवार किया है। रणभूमि स्पेशल की आखिरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, न्यूयॉर्क लेकर चलेंगे जहां पर भारत ने यूएन महासभा में पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी फटकार लगाई, एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज किया। रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर होंगे और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हूती की। हूती अब हर दिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद समेत कई शहरों पर हमले कर रहा है। उसकी तेल सप्लाई और पाइपलाइन पर हूतियों के हमलों की वजह से कई पाइपलाइंस को रिफाइनरीज को बंद करना पड़ा है। अब सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी हैं और सऊदी अरब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। इससे निपटने के लिए सऊदी अरब ने मक्का समझौते के बाकी दोनों मुल्कों यानी पाकिस्तान और तुर्की के साथ सेना प्रमुखों के साथ बैठक करने को तय हो गया। लेकिन क्या वो दोनों देश ईरान के समर्थन वाले हूतियों पर हमला करेंगे, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: सऊदी अरब में हूती मचा रहे कोहराम, सऊदी ने मिसाइल हमलों को किया नाकाम, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर बनाया एक नया प्लान, हूती मानने को तैयार ही नहीं है। बाब अल मंदिर पर कब्जे के बाद शहर शहर हमले करने का जो अभियान सऊदी अरब के खिलाफ उन्होंने छेड़ा है वो बीती रात भी जारी रहा। सऊदी अरब के आभा, जिजान और खामिस मुशैद पर हूतियों ने ड्रोन और मिसाइलों से कई हमले किए। आसमान में एक के बाद एक ड्रोन से हमले होते रहे। हूतियों का कहना है कि उसने बम बरसाकर सऊदी अरब को काफी नुकसान पहुंचाया। उधर सऊदी अरब का दावा है कि उसने खामिस मुशायद को निशाना बनाकर दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर बड़ा हमला नाकाम कर दिया है। लेकिन सच ये है कि हूती लगातार हावी होते जा रहे हैं। दुनिया जानती है कि उन्हें ईरान का समर्थन हासिल है, लेकिन इस बारे में जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से पूछा गया तो उन्होंने हूतियों से अपना पल्ला ही झाड़ लिया।
4: Houthi karşı mı kendisi marbut
5: Houthi? The Houthis are responsible for their own actions. They don't take directions from us. As those who are resisting in the region based on the situations that have been imposed on them, we have contacts with them. There is no systematic relationship. Hezbollah in reality.
3: Saudi Arab ki mushkilein kam karne ke liye kai khadi desh uske saath aa rahe hain. दूसरी तरफ फ्रांस ने भी जल्द ही सैन्य मदद भेजने का ऐलान कर दिया है।
6: Saoudite et qui sortait en mer Rouge dans ce qu'on appelle le site de Yanbu. Bon, il a été très abîmé par une attaque des Houthis. Nous nous engageons pour le sécuriser.
7: Avec quels moyens?
6: Et donc aujourd'hui, c'est la discussion que nous avons finalisée avec les Saoudiens. Nous allons envoyer des moyens militaires, c'est-à-dire des soldats, des radars, des systèmes de défense. Pour protéger ce site, pas nous engager dans quelques conflits, mais protéger ce site.
8: Pas d'aviation, des rafales.
6: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région, mais en tout cas, on se met en situation de protéger ce site parce que sortez il y a quelques semaines de là, chaque jour, plus de 5 millions de barils. Bon, donc c'est pas négligeable. Donc.
3: लेकिन सऊदी अरब को सबसे बड़ी उम्मीद मक्का समझौते वाले देशों से थी। अब जाकर तीनों देशों के सेना प्रमुखों की अहम बैठक हो पाई है। इस बैठक में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के सेना प्रमुखों ने हूतियों के हमले पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। इस बीच यमन के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील की है। इतना ही नहीं, जो हूती अपने आतंकी ग्रुप को छोड़ देंगे उन्हें एमनेस्टी यानी सार्वजनिक माफी दिए जाने का प्रस्ताव भी दिया है।
9: وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد ندعو ابناء شعبنا العظيم الى التعبئه العامه والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحه والامن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسميه والاسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنيه تعلن اليوم فتح باب العوده الامنه إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة في قانون.
3: जिस तरह के हालात फिलहाल बन रहे हैं, आने वाले दिनों में सऊदी अरब में घमासान और तेज हो सकता है। कई खाड़ी देशों ने सऊदी अरब का साथ निभाने का वादा कर दिया है। ऊपर से फ्रांस की सेना आने के बाद हूतियों के खिलाफ जब विनाशकारी अभियान शुरू होगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान क्या रुख अपनाता है। आज तक ब्यूरो।
0: और देखिए, लगातार हूतियों ने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है। उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर बड़े अटैक किए जा रहे हैं। इसी बीच सऊदी अरब के मदीना के पास तेल पाइपलाइन सुविधा पर भारी नुकसान की खबरें, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है। आइए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लगातार इन सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का पुख्ता हो जाती है तस्वीरें कि कैसे सऊदी अरब में मदीना के पास ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को, पंपिंग स्टेशंस को 11 सितंबर को हुए नुकसान के अंदर कैसे आप कह सकते हैं कि भारी नुकसान हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक हूती के हमले में पाइपलाइन का कामकाज पूरी तरीके से रुक गया है, जिसमें रोजाना 40 लाख बैरल तेल की सप्लाई बाधित हो गई है। मात्र दुनिया भर में होने वाली तेल सप्लाई का लगभग 4% है। लेकिन आप मानिए, कि कैसे इस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सैटेलाइट तस्वीरें क्या कहती है। देखिए 7 सितंबर और 13 सितंबर ये दोनों तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं आप समझ सके कि 11 तारीख को जो अटैक हुए हैं उससे पहले और उसके बाद की तस्वीरें कैसी हैं। देखिए आपको पहले हम दिखाते हैं मदीना की 17 तारीख की भी तस्वीरें हैं, 13 तारीख की भी तस्वीरें, 22 तारीख की भी तस्वीरें हैं, यानी हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले 7 तारीख की और उसके बाद 13 तारीख को आप देखिए कितना ज्यादा पंपिंग स्टेशन पर नुकसान पहुंचा। और एक पंपिंग स्टेशन नहीं है, कई पंपिंग स्टेशन पर इस तरीके के नुकसान पहुंचे हैं। देखिए 13 तारीख की तस्वीर आप देखिए कैसे आपको ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे हैं, हालांकि देखिए तस्वीरें क्लियर नहीं है। लेकिन 22 तारीख की तस्वीर में आप देखिए कि और भी नुकसान होने की चीजें पुख्ता हो जाती है, तस्दीक हो जाती है कि हाँ सऊदी को भारी नुकसान पहुंच रहा है। और शायद यही वजह है कि सऊदी इस समय बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि तमाम ऑयल रिफाइनरीज के स्ट्रक्चर पर इस तरीके के अटैक सऊदी के लिए एक मेजर कंसर्न पैदा कर रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर वो आ रही है वो अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना है कि सऊदी अरब अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला कर सकता है। ये जानकारी सितंबर 2026 के आखिरी में कांग्रेस को सौंपी गई है। गोपनीय दस्तावेजों से पता चला है कि यह आकलन ऐसे समय में सामने आया जब कांग्रेस ट्रंप प्रशासन के दौरान जुलाई 2026 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए नागरिक परमाणु सहयोग समझौते की समीक्षा की जा रही थी। उस समय यह रिपोर्ट कांग्रेस को दी गई जिसमें बताया गया कि सऊदी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर सकता है, और ये इसलिए क्योंकि अब ये होड़ लगातार बढ़ती जा रही है और खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने इसकी जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को दी है, जिसको लेकर अमेरिका के कई मीडिया हाउसेस ने भी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि सऊदी इतना ज्यादा क्यों अपने स्ट्रेटजीज में अपने कदमों में बदलाव कर रहा है। अगर आपको एक बार फिर से बड़ी वॉल पे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पिछले 5 दिनों में हूती और सऊदी अरब में कितने ज्यादा भीषण वार पलटवार हुए, किसका पल्ला भारी है, कैसे लगातार रिटेलिएट किया जा रहा है। 26 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, सऊदी अरब पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए गए, और ये हमले ना सिर्फ कोस्टल इलाकों में बल्कि रियाद तक किए जा रहे हैं। शायद यही कंसर्न है। रियाद में सऊदी अरब तुर्की और पाक सेना प्रमुखों की बैठक भी होगी, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए इसी के बाद सऊदी ने ये इनिशिएट किया कि जो मक्का पैक्ट है वो सुचारू रूप से उसको इंप्लीमेंट किया जाए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि तीनों देशों के बीच में उनके सेना प्रमुखों की बातचीत होगी। सऊदी अरब के अरामको ऊर्जा संयंत्रण पर हूती ने फिर से हमला करने की कोशिश की, ये 24-25 सितंबर की बात हम कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियाद पर भी हूती ने हमला बोला है, और लगातार उनका जो फोकस है वो रियाद ऑयल रिफाइनरीज उनके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। 23 सितंबर को सऊदी अरब के तुवाल और नजरान इलाके में भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए। इस समय हूती के पास जो मिसाइलें हैं ड्रोन से उनकी कैपेसिटी उनकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर तक है। यमन के मोचा शहर पर भी सऊदी अरब का हमला हुआ। हालांकि देखिए रिटेलिएट सऊदी जरूर कर रहा है लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। 31 सितंबर को बाबल मंदेब में हूती हमलावरों पर यमन सेना का हमला हुआ। कोशिश की जा रही है कि यमन की सेना को लगातार उनकी गवर्नमेंट को अपने साथ लेकर सऊदी अटैक करे, लेकिन इन अटैक का कोई बड़ा आप कह सकते हैं टेक अवे या कोई बड़ा इसका कोई बड़ा परिणाम नहीं निकल रहा। 21 सितंबर को भी यमन में हूती के 4 ठिकानों पर सऊदी अरब ने बमबारी की थी, और ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी लगातार रिटेलिएट कर रहा है, कोशिश कर रहा है एयर स्ट्राइक्स में, लेकिन उसका हल कुछ निकलता नहीं जा रहा। अब हूती और सऊदी अरब में युद्ध का सबसे बुरा असर बाबल मंदेब पे पड़ा है। अब आखिरकार वहां की ताजा हालात कैसे हैं ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि अब आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पिछले 10 दिनों में जहाजों की आवाजाही कैसी है। ये तारीख देखिए और वहां पे जहाजों का आंकड़ा देखिए। सबसे पहले आप देखिए 22 सितंबर को 24 जहाज निकल पाए थे, इसके बाद 23 सितंबर को 27, 24 सितंबर को 26 जहाज। ये देखिए ये है बाबल मंदेब जो हम आपको दिखा रहे हैं, रेड सी का इलाका करीबन, ये भी जो आप कह सकते हैं गलियारा है वो करीबन 20 से 25 किलोमीटर का ये गलियारा है, और दूसरी तरफ है यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये है बाबल मंदेब जहां पर हूतियों ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। ये हम आपको पिछले 10 दिनों की तारीखों के साथ साथ ये आंकड़े बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में 26 औसत जहाज टैंकर्स यहां से निकल पाए हैं, और ये सबसे बड़ा कंसर्न इस समय सऊदी के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देशों में और यूरोप के देशों तक ये कंसर्न पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय क्या ताजा हालात है। संजय मेस्टन सर, अभी के ताजा हालात देखकर और ये खबर देखकर कि सऊदी खुद अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये होड़ ईरान तक सीमित थी, लेकिन अब सऊदी जैसे देश भी अगर ऐसा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे घटनाक्रम, पूरी दुनिया का आप कह सकते हैं जो डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं।
7: बिल्कुल सुमित, देखिए आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन में यह भी बोला था, सऊदी की आज बहुत परेशानियां हैं। नंबर एक परेशानी तो यह है कि ईरान उनके ऊपर जब मर्जी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन और इराकी मिलिशियाज और हुतीस तो डालते जा रहे हैं, ईरान का पूरा सपोर्ट है। दूसरा है जो उसका ऑयल पॉइंट, ये दोनों चौक पॉइंट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और स्ट्रेट ऑफ बंदर अब्बास, ये दोनों बंद हो चुके हैं, जो स्टेट्स हैं बाबुल मंदर स्टेट, तो ये अगर ये बंद हो चुके हैं तो सऊदी का ऑयल तो निकल ही नहीं पा रहा है और उसकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यानबू भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो कहने का मतलब है ये अगर उनकी परेशानियां हैं, ये उनके स्ट्रेटेजिक कंसर्न हैं, तो न्यूक्लियर ऑप्शन वो क्यों जाना चाहता है? न्यूक्लियर ऑप्शन इसलिए जाना चाहता है कि स्टार्ट पॉइंट ये सबसे थ्रेट का है वो है ईरान, और अगर ईरान है उसको ये भी पता है कि उनको एक न्यूक्लियर वेपन चाहिए सऊदी अरेबिया को, और कैसे मिलेगा? उसमें मदद दो कंट्रीज कर सकती है, एक इसराइल और एक यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे कल प्रॉब्लम अगर होती है वापस ईरान के जरिए तो एक डिटरेंट हो जाएगा, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डिटरेंट ईरान।
0: सर आप उसमें एक डबल स्टेट को भूल गए, एक डबल स्टेट उसमें पाकिस्तान भी है जो भले ही ईरान का साथ भी दे रही हो, सऊदी का साथ भी दे रही हो और कभी भी पलट सकती है, उस डबल स्टेट के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।
7: नहीं, पाकिस्तान इसलिए नहीं करना चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान तो फंस जाएगा, क्योंकि उसका इमीडिएट नेबर तो ईरान है, तो पाकिस्तान को पता है कि वो इसमें नहीं फंस सकता। और ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट भी है वो भी मेरे को लगता है पाकिस्तान सिर्फ एट बेस्ट एक दो मिसाइल फायर करेगा हुतीस को डिस्लॉज करने के लिए, खासकर स्टेट ऑफ बाबुल मंदब से। उनके लिए दो चीज जरूरी है, ग्राउंड ट्रुप्स, और वहां पर हुती को पेरेम आइलैंड और मोका जो पोर्ट है उससे इवेक करने के लिए सिर्फ ग्राउंड ट्रुप चाहिए। क्या पाकिस्तान की सेना देगी? उसका जवाब है नहीं। तो ये जो इनका मक्का एग्रीमेंट है तो ये मेरे को लगता है इसमें कोई टेक अवे नहीं होगा, कोई इसमें टेक ऑफ पॉइंट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है तो ईरान तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। तो मेरे को लगता है पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, इसराइल डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसराइल और अमेरिका चाहेंगे ईरान को लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन अगर करना पड़ा है तो न्यूक्लियर वेपन वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, सऊदी अरेबिया कर सकता है।
0: बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय सोई। संजय सोई सर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद अब ये बाब अल मंदेब का जो इशू पैदा हो गया है, इसने तो यूरोप तक को डरा दिया, फ्रांस भी अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हो गया है, तो ये क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है, क्या पाकिस्तान सच में सऊदी की मदद करने के लिए तैयार होगा या सिर्फ एक पोस्टरिंग है? जब तक ये डिस्कशन होगा, जब तक बातचीत आगे बढ़ेगी, तब तक कोशिश की जाएगी देखिए सऊदी अपने आप ही निपटारा कर ले, अपने आप ही चीजें ठीक कर ले।
8: समझिए दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो मैं यूरोप वाली बात करूं कि यूरोप की हालत इस समय बड़ी खराब है। पहले वो रशिया से तेल लेते थे जो बहुत पास पड़ता था, सैंक्शन के बाद पाइपलाइन डैमेज होने के बाद उनका जो है तेल रशिया से आना बंद हो गया, फिर उन्होंने सऊदी और मिडिल ईस्ट से लेना शुरू किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, उससे इफेक्ट पड़ा, अब बाबुल मंदेब बंद होने से और तो उनका जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है वो डैमेज होने से, और जो यहाँ जो पोर्ट है वो यानबू पोर्ट होने के डैमेज होने से, अगर फिर यूरोप की तरफ भी तेल की सप्लाई खत्म हो जाएगी तो यूरोप फिर अमेरिका से जो ले रहा है वो 3 या 4 गुना महंगा पड़ता है।
0: बिल्कुल,
8: तो काफी यूरोप में पहली महंगाई आ रही है बहुत ज्यादा, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, यही कारण है कि आप देखिए एक मदद करने के तैयार हो रहे। दूसरी बात यह कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया का डिफेंस में काफी कोऑपरेशन की बात हुई है, पहले मोहम्मद बिन सलमान अभी भी गए थे, अगस्त में गए थे फ्रांस में, जहां उनकी डील हुई थी, वो रफेल बेचने के लिए भी तैयार है इनको, और बाकी भी इनके यानबू पोर्ट पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑयल सप्लाई को बरकरार रख रहे हैं। पाकिस्तान वाली बात, मक्का कॉर्ड, देखिए ये तो कुछ नहीं करेंगे, अभी भी जो बात निकल गया है जो मेरे जो लग रहा है कि सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग और बुराई करना बहुत गंदी बात है, हुती आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए,
0: यानी बयानबाजी से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करें। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा सर, क्योंकि आप बात कर रहे हैं हॉर्मुज की भी। जहां सवाल ये उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज सच में खुलने वाला है, क्या सच में कोई ऐसी डील करीब आ चुके हैं अमेरिका और ईरान जहां पर दोनों के बीच में युद्ध रुक जाएगा, जो स्थायी सीज फायर की नींव रख सकता है। न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के सामने पीस प्लान तो रख दिया, लेकिन अमेरिका मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने इस पीस प्लान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो क्या आने वाले दिनों में ईरान पर फिर से अमेरिका मिसाइल बरसाएगा? क्या फिर से ये भीषण और ज्यादा युद्ध होने वाला है? इन तमाम सवालों के लिए सबसे पहले आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं।
10: The seven-day timeline will start as soon as the United States accepts this plan.
11: हॉर्मुज खोलने के लिए आगे आया ईरान। अमेरिका को दिया 7 दिन का बड़ा प्लान। क्या ट्रंप ने खारिज कर दिया ईरान का पीस प्लान? तल्ख हैं रिश्ते, कैसे खत्म होगा घमासान? मिसाइलें और मुलाकातें एक साथ चल रही हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया। ना कोई डील, ना युद्ध खत्म होने के संकेत, लेकिन इस बीच बड़ा संदेश दिया है ईरान ने। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए 7 दिन की योजना पेश करने की बात कही। इस पीस प्लान के तहत हॉर्मुज को फिर से खोलने और उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव है। अभी हफ्ते भर पहले ही ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका तक अपनी 7 शर्तें पहुंचाई थी। अब उनका कहना है कि अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो 7वें दिन हॉर्मुज खोल दिया जाएगा और बातचीत फिर से शुरू कर दी जाएगी।
10: I can tell you if there is seriousness in the US side to come to a deal and reopen the Strait of Hormuz, everything is now prepared. They can accept this 7-day plan and at the end of which the Strait will be open.
11: संयुक्त राष्ट्र के मंच का ईरान ने भरपूर फायदा उठाया है।
12: मैं पासुख खुदमुन रो याफ्तेम।
11: ईरान ने शुरुआत में ही अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का मुद्दा उठा दिया।
10: The United States choose the opposite path. Aggression, threats, assassination, economic warfare and the blatant disregard for international law and the UN Charter. During the US-Israeli aggression against Iran, more than 5,000 people have been killed, including hundreds of women and children. They committed a grave crime and a flagrant violation of international law by assassinating Iran's supreme leader, along with other senior political and military officials. Residential areas, schools, hospitals, energy facilities, sports facilities, cultural sites, transport infrastructure and other civilian objects have been struck. There is no better
11: example of... अब गेंद अमेरिका के पाले में है और सारा मामला ईरान के प्रस्ताव पर आकर अटक गया है। ईरान ने जो शर्तें रखी थी उनमें लेबनान समेत बाकी इलाकों में हमले रोकने, ईरान की फ्रीज संपत्तियों को वापस करने, ईरानी तेल से पाबंदी हटाने और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। करीब 6 महीने के संघर्ष के बाद भी बेशक ईरान ने घुटने ना टेके हों, लेकिन अमेरिकी पाबंदी और अमेरिकी नाकेबंदी ने उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। जितना तेल निकल रहा है उतना बिक नहीं पा रहा, इसलिए चाहता वो भी है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकल जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें मानना अमेरिका के लिए मौजूदा हालात में इतना आसान नहीं होगा। वैसे अमेरिकी मीडिया तो दावा कर रहा है कि ट्रंप ने ईरान के 7 दिन वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप को भरोसा नहीं है कि ईरान उनकी मांगें पूरी करेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि नवंबर के मिड टर्म चुनाव के बाद ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप बड़े सैन्य अभियान को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं दिख रहे। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के पास मौजूद हथियारों को घटता भंडार है। अमेरिका इन हथियारों को दूसरी संभावित जरूरतों के लिए बचाकर रखना चाहता है। आज तक ब्यूरो।
0: और देखिए हॉर्मुज को लेकर ईरान ने अमेरिका को दिया है 7 दिन का प्रस्ताव। क्या है ट्रंप इसे स्वीकार करेंगे और उसके बाद बात करेंगे रूस ने की पर कैसे भीषण हमले किए और न्यूयॉर्क में भारत ने कैसे आतंकवाद पर लगाई पाकिस्तान को फटकार। इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रणभूमि स्पेशल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड।
13: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है।
14: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे हम, भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
15: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: इतना माही वे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार, सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आयवन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
9: टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
10: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
4: आई लाइक दिस ओनली।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: पे।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
5: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
4: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।
7: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
8: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
9: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
10: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
11: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
8: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
12: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
13: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर।
8: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हॉर्मूज का ताला खुलने वाला है, क्या ईरान इसमें चाबी लगाने वाला है। सवाल बड़े हैं क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हॉर्मूज को खोलने के लिए 7 दिन वाला प्रस्ताव वॉशिंगटन में दिया है, जिसे हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो प्रस्ताव आखिरकार है क्या। आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वो 7 दिन वाला प्रस्ताव है क्या और क्यों आखिरकार ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने मान लिया तो फिर शायद ये खोल सकता है। सबसे पहले आपको बताएं, पहला दिन अगर अमेरिका करेगा स्वीकार तो 7 दिन की समय सीमा शुरू हो जाएगी, यानी जैसे ही एक्सेप्टेंस अमेरिका की तरफ से आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आएगा, 7 दिन का ये प्लान इनिशिएट हो जाएगा, वो खुल जाएगा। क्या कहता है ये प्लान, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले 4 से 5 दिन तक, यानी 4 से 5 दिन के अंदर, पहले 4 से 5 दिनों में अमेरिका और उसके सहयोगी लेबनान में समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई को रोक देंगे, यानी ये सहयोगियों का मतलब इसराइल से है। दरअसल लेबनान को लेकर पहले भी ईरान ये कह चुका है कि वहां पर साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले रोके जाने चाहिए और इसके बाद 4 से 5 दिनों का समय दिया गया है ताकि ये हमलों को ना सिर्फ लेबनान में बल्कि सभी मोर्चों पर रोका जा सके, जिसका जिक्र खुद नेतन्याहू कह रहे थे कि उन्होंने 7 मोर्चों पर जंग लड़ने इस समय शुरू कर रखी है। अब 4 से 5 दिन तक दूसरा क्या ऑप्शन है, ईरान के तेल निर्यात पर पाबंदी हट जाए, यानी 4 से 5 दिन का वक्त ना सिर्फ अपने वॉर फ्रंट्स को रोकने के लिए बल्कि तेल निर्यात पर जो ईरान के पाबंदी है उसको अमेरिका हटा दे, ये भी 4 से 5 दिन में किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाएगा। अब अगला पेज क्या है, अगली बड़ी बात क्या थी, अब अगली बड़ी बात है कि 4 से 5 दिन तक कम से कम नौसैनिक नाकेबंदी को हटा लिया जाए, यानी जो गल्फ ऑफ ओमान में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अमेरिका के शिप मौजूद है उनको 4 से 5 दिनों तक पूरी तरीके से वहां से हटा लिया जाए। ये 5 दिन का, 4 से 5 दिन का समय इन 3 कदमों के लिए रखा गया। अब $12 अरब की फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति को डी फ्रीज कर दिया जाए, यानी 5 दिन में ये चौथा बड़ा कदम जो अमेरिका को उठाना होगा वो होगा जो डी फ्रीजिंग ऑफ ईरानियन एसर्ट्स, यानी $12 अरब की ये डी फ्रीजिंग एसर्ट्स अमेरिका उस पर से पाबंदी हटा देगा। अब छठे दिन क्या शुरू होगा, यानी 5 दिन तक इन 4 महत्वपूर्ण शर्तों को मानना होगा, फिर छठे दिन शर्तें पूरी होने पर हॉर्मूज को व्यवसायिक आवाजाही के लिए खोला जाएगा, यानी ईरान ये कहता है कि जब ये 4-5 दिनों के अंदर ये तमाम 4 शर्तें सुनिश्चित कर ली जाएंगी, इनको ईरान समझ जाएगा कि हाँ ये किया जा रहा है, तो फिर छठे दिन इन शर्तों के

0: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने के बाद सातवें दिन जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा वो होगा जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर बातचीत है वो आप आगे बढ़ाई जाए। तो अभी आपने देखा कि ईरान ने 7 दिन वाले प्रस्ताव पे क्या क्या बातें रखी थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ट्रंप ने ईरान के 7 दिन के इस प्रक्रिया वाले प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले मध्यवर्ती चुनावों से पहले, मिड टर्म चुनावों से पहले ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। और अमेरिका ने ईरान और इस कह सकते हैं कि ईरान के साथ इन बातचीत को लेकर, प्रतिबंध खत्म करने को लेकर इन तमाम शर्तों को मानने से इंकार कर दिया है। ईरान पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश अमेरिका करेगा, यहां तक यह भी खबरें मिल रही है। ना सिर्फ इस प्रस्ताव को ठुकराया गया बल्कि कहा जा रहा है कि मिड टर्म से पहले यानी नवंबर से पहले एक बार फिर से अमेरिका ईरान पर बड़े हमले कर सकता है। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, जल्दी जल्दी अगर आपसे पूछना चाहूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान ने फिर से एक बार कोशिश की कि देखिए बातचीत बन जाए, अमेरिका ने उसको दरकिनार कर दिया, अमेरिका नहीं चाहता कि इन तमाम शर्तों को माना जाए, तो आखिरकार ये युद्ध रुकेगा कैसे मिस्टर सर?
1: सुमित, ये जितनी भी शर्तें हैं, पहली बात ये वही शर्तें हैं जो MOU में पहले एक्सेप्ट की गई थी, दोनों साइड ने साइन किया था। ये ईरान ने अभी क्यों किया है, क्योंकि ईरान के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस उसके बाद लग गए थे और इकोनॉमिक सैंक्शन से इनकी इकोनॉमी में और जो एयरलाइंस पे सैंक्शन लगे हुए उससे फर्क पड़ा है, इसीलिए इन्होंने प्रस्ताव दिया है। अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा जब कोई नई चीज नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ बोल दिया था कि ये मिड टर्म इलेक्शंस के बाद ही ये लड़ाई खत्म होगी। इसका मतलब ईरान सोच रहा था कि शायद मिड टर्म इलेक्शन से यूनाइटेड स्टेट्स पे प्रेशर आएगा, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप इसको मानेंगे नहीं और इकोनॉमिक सैंक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, जिससे इकोनॉमिक हालात ईरान के और खराब हो जाए और वहां लोग सड़कों पे बाद में आने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये मेरे को इनकी स्ट्रेटेजी लग रही है। तो इन वन गो मैं बोलना चाहूंगा ये कामयाब नहीं होगा। अमेरिका, ये ईरान सिर्फ दिखाना चाहता है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन बॉल अभी किसके कोर्ट में है, अमेरिका के कोर्ट में।
0: बिल्कुल, हमारे साथ संजय सोई सर। संजय सोई सर, बॉल दोबारा से अमेरिका के कोर्ट में है, अमेरिका ही डिसाइड करेगा, लेकिन अमेरिका जो भी डिसाइड करेगा क्या उसमें हूती को हैंडल करना या बाकी चीजों को हैंडल करना ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि देखिए एक तरफ अगर ईरान पे दोबारा से हमले होते हैं तो फिर हूती और अग्रेसिव होगा, सऊदी और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर वो और ज्यादा अग्रेसिव होगा और ज्यादा बड़ा अटैक करेगा।
2: बिल्कुल, देखिए अमेरिका तो नहीं मानेगा, क्योंकि ये वही बात होगी कि जो चीज के पहले लड़ाई शुरू हुई थी, जो मांगे थी वो तो वही की वही रह गई, और उसके बाद में हॉर्मुज खोलने के चक्कर में जो ईरान की जितनी मांगे हैं, चाहे वो सैंक्शन की बात हो, लेबनान में हमले की बात हो, चाहे उनका ब्लॉकेट हटाना हो, उनका तेल बेचने वाली बात हो, उनका एसेट्स डीफ्रीज करने वाली बात है 12 अरब डॉलर की, ये सब बातें फिर अमेरिका को तो कितनी बेइज्जती वाली बात है ये चीज। मेरे ख्याल से ये ट्रंप अगर ये बात मान जाते हैं तो फिर तो समझिए कि पहलियों की साख नीचे तो इतनी जा चुकी है, उसके बाद तो बिल्कुल जिसके जमानत जब्त होने वाली बात हो जाएगी इलेक्शन में, वो सिचुएशन आ जाएगी, वो शायद इस समय में नहीं मानेंगे, क्योंकि बाकी देशों को भी फिर बढ़ावा मिलता है और ईरान की गुड्डी बहुत ज्यादा अप हो जाएगी। ईरान ये एक तरह से प्रोपेगेंडा के गेम में या परसेप्शन के गेम में ईरान बहुत आगे है। अब देखिए आज की तारीख में उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो कहते हैं हम तो बहुत सीधे साधे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ह्यूमन राइट्स हो रहा है, वो ये भूल जाते हैं कि आतंकवाद के जितने ग्रुप है उनको कौन पैसा दे रहा है, हमास को कौन पैसा दे रहा है, हेजबुल्ला को कौन पैसा दे रहा है, हूती को कौन ट्रेनिंग दे रहा है, ये सब तो ईरान कर रहा है। तो यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड खेल के हम तो शांति चाहते हैं, अमेरिका नहीं चाहता, ये बाल उनके पाले में।
0: लेकिन लेकिन सर बात तो सबसे बड़ी बात ये भी है, चलिए ईरान विक्टिम कार्ड खेल भी रहा हो, लेकिन अमेरिका जिसने तमाम चीजों की शुरुआत की थी आखिरकार इसको कब रोकने देगा, कब रुकवाएगा, कब आगे बढ़ेगा? क्योंकि इससे अमेरिका से ज्यादा पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में तो जंग जारी है, लेकिन एक और मोर्चा है जो लगातार सुलग रहा है। एक दिन पहले ही रूस ने लगातार यूक्रेन पर बम बरसाए और फिर यूक्रेन ने भी पलटवार कर दिया, लेकिन सच यही है कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के फिलहाल यूक्रेन के पास कोई सशक्त विकल्प नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने कीव ज़ापोरिज़्या रीजन पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। आइए आपको इस युद्ध के मोर्चे पर भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: तबाही की ये तस्वीरें

रीजन के एक वेयरहाउस की है। पूरा परिसर आग की लपट में घिरा हुआ है। काले धुएं का गुब्बार जैसे आसमान छू रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग को नियंत्रित करने में बचाव दल को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यूक्रेन पर रूस का यह हमला कितना विनाशकारी रहा होगा। जिस वेयरहाउस पर रूस ने बम बरसाए हैं उसे मैकडॉनल्ड कंपनी इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा रूस ने कीव में एक इमारत पर ड्रोन हमला किया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए। इस बड़े हमले में इमारत के कई फ्लोर जलकर राख हो गए। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां जल गईं और जलती हुई इमारत का मलबा चारों ओर फैल गया। यूक्रेन की राजधानी कीव और कीव ओब्लास्ट पर रूस ने जमकर कहर बरपाया है। इन हमलों को केरन 4 जेट ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। पूरी रात ड्रोन से अलग अलग शहरों में बम बरसते रहे और सायरन बजते रहे। अब जेपोरिजिया की इन तस्वीरों को देखिए, रूस की एयर स्ट्राइक से कई घरों में तबाही का तांडव दिख रहा है। ज्यादातर घर जलकर राख हो गए हैं। इस बार हमलों में रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों के अलावा सरकारी और निजी दफ्तरों, बड़ी कंपनियों के वेयरहाउसों के साथ साथ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर रूस के ताजा हमलों को साझा करने के साथ साथ यूक्रेन के पलटवार के वीडियो भी साझा किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए रूस की 2 तेल की रिफाइनरी पर हमला किया गया है।

0: रूस के ताजा हमलों के फौरन बाद जेलेंस्की ने रूस के शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट कर उन्हें नाकाम करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की समीक्षा भी की है। डिफेंस एक्सपर्ट ने एक आपात मीटिंग में एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी से जुड़े आंकड़े रखे और सैन्य रणनीति पर चर्चा की। जेलेंस्की ने इस हफ्ते यूरोप के कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की है और रूस के खिलाफ घेराबंदी की मुहिम पर काम तेज किया है। फिलहाल उनकी चिंता आने वाली सर्दियों में रूस के हमलों से होने वाली तबाही रोकने पर है। आज तक ब्यूरो।
1: और देखिए, ये वार पलटवार का खेल जारी है और इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि यूक्रेन ने भी रूस के क्रासनोदौर में एक बड़ा हमला किया है। हमले में 3 लोगों की मौत की खबरें भी आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन के इंडस्ट्रियल हब और राजधानी कीव पर अटैक कर रहा, वहीं अब कीव जो यूक्रेन है वो भी उस रूस के बड़े शहरों पर मॉस्को के साथ साथ बड़े हमलों को इनिशिएट कर रहा है। क्रासनोदौर में भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। सर मिस्टर सर, एक बात बताइए, ये यूक्रेन के पास रसद नहीं है, साजो सामान नहीं है, रूस लगातार बड़े अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के हमले यूक्रेन रूस पे कर रहा है वो रूस के लिए से ज्यादा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अब उसका सीधा टारगेट ऑयल रिफाइनरीज हैं।
2: और देखिए सुमित, साफ बात है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एक तो रेजिलियंस है पूरे देश की, और जो एक लोकल प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन चल रहा है, पूरा देश ड्रोन बनाने में लगा हुआ है, और वो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से उनके पास काफी इसमें सुपीरियरिटी है, और रूस में भी उतनी अभी सुपीरियरिटी ड्रोन में आ गई है। तो यहाँ दोनों वार पलटवार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ये ड्रोन की वजह से। लेकिन रशिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल बहुत मात्रा में है, और यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिलहाल भी अभी शायद एक प्रॉमिस तो किया, लेकिन ऑन ग्राउंड होता है कि नहीं, पैट्रियट मिसाइल जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए यूक्रेन में, वो भी एक लंबा मतलब उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन जो ग्राउंड पे अभी समस्या ये हो रही है कि ये पूरी विश्व में तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि अभी यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि अब वो तुरंत ये युद्ध को रोकने की चेष्टा करेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि ट्राइलेटरल टॉक्स होने की एक संभावना लग रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड ये रशिया की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि ये विंटर्स जो आ रहे हैं, आपने अभी जो बताया, वो विंटर्स में इनके ऊपर इतना ताबड़तोड़ हमला करो कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो जाए, उनकी राष्ट्रपति के खिलाफ। और यूक्रेन की स्ट्रेटेजी है कि जितने भी ये ऑयल रिफाइनरी है, देखिए इनकी जो वॉर मशीनरी है रूस की, उसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको फंडिंग ऑयल से मिल रहा है, और इसीलिए अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सैंक्शंस और भारत और चीन के खिलाफ भी उन्होंने घोषणा की है कि अब उनके पास लिवरेज है। तो दोनों की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, लेकिन अब मेरे को लगता है डिप्लोमेटिक तरीके से ये लड़ाई खत्म हो सकती है।
1: लेकिन सर सबसे एक बड़ा मेजर कंसर्न ये भी है कि चलिए दोनों के बीच में कुछ ऐसा समझौता बन जाए, लेकिन जो नाटो देश है या यूरोपियन देश है उनमें भी कंसर्न बन रहा है। संजय सोई सर, एक बात बताइए, जो अभी ताजा हालात हम देख रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं जर्मनी की, पोलैंड की या बाकी देशों की, वो तो ये अंदेशा दिखा रही है, वो तो ये आशंका जता रही है कि देखिए ऐसा ना हो कि ये युद्ध रुके और थोड़े साल के बाद, थोड़े समय के बाद नाटो वर्सेज रशिया का एक बार फिर से एक जंग हो जाए, बड़ी जंग हो जाए।
3: बिल्कुल सुमित जी, मैं अभी 10 सितंबर को लैटविया में गया था, रीगा कॉन्फ्रेंस जो नेटो की काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस है वो मैंने अटेंड की थी। जो आप ये विचार कह रहे हैं यही विचार वहां पर उद्घोषित किए गए थे कि रशिया अगर यूक्रेन में शांति होती तो बाकी देशों को बहुत बड़ा खतरा है, खासतौर से छोटे छोटे देश हैं, बाल्टिक कंट्रीज है, लैटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, रोमानिया, ये सब देशों पर खतरा। रूस लगातार इनमें ड्रोन्स के द्वारा भी एक इनकर्जन कर रहा है, आर्टिकल 5 से नीचे रहते रहते ड्रोन के द्वारा इनका टेस्टिंग द वाटर के रिएक्शन कैसे होता है, इनका एयर डिफेंस किस प्रकार से है, किस प्रकार से इनकी आपस में मदद है, ये सब देख रहे हैं। तो इस समय में जो उनकी विचारधारा चल रही है वो मैं आपसे शेयर करूं कि वहां पर उनकी विचारधारा है कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए ताकि वो रशिया से लड़ता रहे और रशिया वहां उलझा रहे और ये लोग अपने।
1: सर संजय सोई सर, सबसे बड़ी बात है, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है कि यूक्रेन को नाटो देश भी एक बफर जोन में बनाना चाहते हैं और रूस भी यही चाहता है कि एक बफर जोन क्रिएट हो जाए ताकि नाटो देश उस तक ना पहुंच सके और नाटो देशों को लगता है कि रूस उन तक ना पहुंच सके, इसलिए यूक्रेन को एक ऐसे बफर जोन में तब्दील किया जाए। अब बात करते हैं आतंकी देश पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान को यूएन में मिले करारे जवाब की भी एक खबर पूरे सुर्खियों में बनी हुई है। यूएन के मंच से जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छेड़ा उसमें सिंधु का पानी पर गीदड़ भपकी दी। भारत ने उसी मंच पर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने के आरोपों पर भारत के प्रतिनिधि ने पटेल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा और कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार भारत इस्तेमाल करता रहेगा, आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे और आतंकवादियों के लिए ना भागने की जगह होगी ना छिपने की जगह होगी। वहीं आतंकवाद पर सवाल को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी पाकिस्तान की पत्रकार को एक ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी बोलती बंद हो गई।
4: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised, and continued terrorism by Pakistan will have consequences. It will understandably call into question what were premised on friendship and goodwill. We are confident that this assembly will recognize Pakistan and its policies for what they really are, not what its representative mendaciously projects it to be. Reiterating falsehoods year after year does not make them true. Pakistan's terrorism, deceit, and duplicity will neither benefit it nor the world. I thank you, Mr. President.
5: Can you just tell us when your government will stop sponsoring terrorism in Pakistan?
6: A terrorist country is asking me that question?
5: They are
6: rude. Come on.
5: Can you just tell us when your government will stop sponsoring terrorism in Pakistan?
6: A terrorist country is asking me that question?
1: चले रणभूमि में आज वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है।
10: मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
11: नो वीआईपी दर्शन, नो। एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पूर्ण राज्य की बहाली को लेकर एनसी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक सीधे वेल में घुस गए, जहां नारेबाजी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात मार्शलों और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद विधायक विक्रम रंधावा को हवा में उठाकर जबरन सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विक्रम रंधावा बीजेपी के बहु विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पूर्ण राज के दर्जे पर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।
1: ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, तो जब बीजेपी ये बहाना इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टेटहुड के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेटहुड में आज अगर कोई रुकावट बनी हुई है, यही 29 एमएलए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली नहीं चाहते।
0: उधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार 2000 साल पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
2: जिस रेजोल्यूशन को ये ऐवान डिस्कस नहीं कर सकता, इससे पहले भी कहा स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली भेजा, हुआ कुछ नहीं हुआ। स्टेटहुड मैं पहले बता दूं, जम्मू कश्मीर का राइट है, जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत बन के रहेगी। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमिटमेंट अपनी गारंटियों पे पूरा उतरे हैं। मत मिसलीड।
0: बहरहाल स्टेटहुड के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, जहां पीडीपी भी अब्दुल्ला सरकार के साथ है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक घंटे से ज्यादा देर तक मंथन, जेपी नड्डा से भी मुलाकात। सीसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज, 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, ममता बनर्जी की सीपीएम महासचिव एमए बेबी से बात, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को मिलाया फोन। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, ममता की रैली से जाते वक्त हुगली के श्रीरामपुर में कार पर फेंके गए अंडे, कार का टूटा शीशा। यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगंडा का दिया करारा जवाब, शहबाज शरीफ के कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान दिन में करता है ढोंग और रात में फैलाता है आतंकवाद, आज रात विदेश मंत्री जयशंकर का भी संबोधन। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड, पुरुष कबड्डी में भारत ने लहराया परचम, ईरान को 40-34 से हराया, भारत के खाते में कुल 28 मेडल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। एक रिपोर्ट, एसआईआर पर सवाल और कई सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का करारा वार, और अब चुनाव आयोग की चौखट से निकला विवाद सीधे सियासत के अखाड़े में पहुंच गया है। अब सवाल सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया का नहीं रहा है, सवाल उस संस्था की विश्वसनीयता का भी है जो देश में चुनाव कराती है। दो चुनाव आयुक्त एसएस संधु और विवेक जोशी की आपत्तियों से जुड़ी रिपोर्ट सामने क्या आ गई तो सियासी तापमान अब पूरी तरीके से बढ़ चुका है। बिखरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट दिखने लगा है। ममता बनर्जी और लेफ्ट, यकीन करिएगा, ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ खड़े हो गए हैं। 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता की मौजूदगी की तैयारी है। राहुल गांधी सीईसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सभी लोग हमलावर हैं। लेकिन अब तस्वीर और दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी सीधे सीईसी ज्ञानेश कुमार के बचाव में उतर आ गई। एनडीए के सहयोगी भी स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं, यानी सवाल अब सीईसी बनाम विपक्ष का नहीं रहा तो बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष, ये एक तरीके से हो गया है। तो आखिर सीईसी के मुद्दे पर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग की बहस सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी सियासी लड़ाई अब क्यों बन चुकी है? क्योंकि दरअसल लड़ाई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन अब बीजेपी बनाम विपक्ष इस तरीके की लड़ाई हो रही है। क्या चुनाव आयोग पर उठे सवालों का जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से ही मिल पाएगा, या देश के सामने पूरी तस्वीर और पूरा सच भी कभी आ पाएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग पर उठे सवाल ने इंडिया गठबंधन को एक बार मजबूत एक साथ आने पर मजबूर कर दिया? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट देख लेते हैं।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमले का राजनीतिक एंगल और बड़ा हो गया है। मामला सिर्फ सीईसी बनाम विपक्ष का नहीं रहा। सीईसी पर विपक्ष के हमले का जवाब अब सीधे बीजेपी दे रही। बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से विपक्ष के आरोपों पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा गुस्सा ममता बनर्जी दर्ज करा रही है। वो सड़कों पर उतरकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही। ममता को लगता है कि एसआईआर की वजह से ही वो बंगाल में विधानसभा का चुनाव हार गई। ममता का दावा है कि शुभेंदु सरकार की पुलिस लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रही है।
1: তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তার গাড়ি টোটাল ভাঙচুর করেছে। তার গাড়িতে পুরো কাঁচ ভর্তিটা সারা বডিতে তাকে অ্যাটাক করেছে, তাকে পুরো ঘিরে রেখেছে। পুরো জিটি রোড থেকে শুরু করে উত্তর পাড়া থেকে শুরু করে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা মিডিয়া আমাকে বলুন, গণতন্ত্রের পক্ষে এটা উপলক্ষণ না অসলি সংকেত? তোমরা যদি জিতেই থাকো মানুষের ভোটে, তাহলে বিরোধী দলেদের কেন তোমরা মিটিং মিছিল করতে দিচ্ছ না? এমনিতেই তো পুলিশ পারমিশন দিচ্ছে না, ভোটের থেকে অর্ডার নিয়ে করতে হচ্ছে, তারপরেও তোমাদের এই জুলুমবাজি। তারা তো পুলিশকে উঠি ছেড়ে বিজেপি ঠান্ডা করা উচিত। পুলিশের উঠিটার তো একটা সম্মান আছে মানুষ।
0: दिलचस्प बात यह है कि जिस बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी रहे हैं, वही अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ साथ आ गए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सीपीएम महासचिव एमए बेबी के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और विपक्षी दलों की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। गुस्से की आग ने इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को एक मंच पर फिर से ला दिया है। 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। खबर है कि अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से इस मसले पर बात हुई है, लेकिन ममता को अपने ही घर में बीजेपी के मंत्री घेर रहे हैं।
2: ममता बनर्जी को बुलाते तो लोग बात करते, वो बात नहीं करती थी। आज मामला उल्टा है, इसलिए वो बात कर रहे हैं उनको कि बुलाया जाए। अब यहाँ रोल नहीं है तो वहाँ रोल प्ले करेंगे, लेकिन वहाँ भी कौन है, कहाँ है एनडी जोट, कौन कहाँ है, अब उसको ढूंढे जाके। पहले आंदोलन कोई भी कर सकता है, एक बार आंदोलन हुआ उसका नतीजे का निकला क्या मिला समाज को, वो नेता लोग कहाँ हैं, पहले उसको निकाल कर देखिए।
0: बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य तो एक कदम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए पद्म भूषण सम्मान की मांग कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये देश की लड़ाई है, इसलिए जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ललकारा।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट दे हैव डन टू दिस कंट्री। दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल। And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens.
0: लेकिन बीजेपी विपक्ष को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है और कांग्रेस समेत विपक्ष पर हार के बहाने बनाने का आरोप लगा रही है।
4: पहली बात, उस न्यूज रिपोर्ट में किसी भी इलेक्शन कमीशन का कोट है, हां या नहीं? नहीं तो किस आधार के ऊपर कोई बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह बोला है? किसी भी न्यूज के बारे में मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कहता हूं, बाकायदा संबंधित व्यक्ति को क्वेश्चन पूछा जाता है और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। वो स्टेटमेंट कोटेड है? नहीं। एक भी क्या कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट है कि सर्वसम्मत से निर्णय ना हुआ हो? नहीं।
0: हालांकि बीजेपी के पास अपने सहयोगियों के सवालों का जवाब नहीं है।
5: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं, बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
0: बिहार में एनडीए के एक और साथी ने जवाब मांगा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लिखा, एसआईआर से संबंधित विवाद पर जनता में काफी उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। विषय को एड्रेस करने की जरूरत है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी के सहयोगी मुख्य चुनाव आयुक्त के मसले पर सिरदर्द बढ़ा रहे हैं।
6: व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द इलेक्शन कमीशन, द डिफरेंस व्हाट वी आर वाचिंग इन द मीडिया, दैट व्हाट इज द रियल फैक्ट दैट हैज टू कम आउट बाय दिस मेंबर्स, बिकॉज दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन Autonomous body. Why it has happened?
0: या यूं कहें कि एनडीए में उठ रहे सवालों की झड़ी बढ़ती जा रही है। टीडीपी के देवरायालू ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए जब भी कोई सवाल उठाया जाता है तो उचित स्पष्टीकरण देना और पारदर्शिता बनाए रखना संस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगा। अब बीजेपी के सामने लड़ने की चुनौती सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष विपक्ष से नहीं रह गया। एनडीए के अंदर उठ रही आवाज बीजेपी के कान में चुभ रही होगी। फिलहाल तो सीईसी पर जो सवाल आयोग की चारदीवारी के अंदर थी वो सीधे सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक अखाड़े में पहुंच चुकी है, जिसकी बड़ी किश्त इंडिया गठबंधन की 30 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद दिखाई देगी। आज तक ब्यूरो।
7: पहले यह लग रहा था कि यह पूरा मामला चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाम विपक्षी पार्टियां ये बनता जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अब जब विपक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर आरोप लगाना शुरू किया है, मामला बीजेपी बनाम विपक्ष इस तरीके से बनता जा रहा है। और यह भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कहीं इस मुद्दे पर सफाई देने की कोशिश तो नहीं करी है। जिस हमने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी ने खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पूरे मामले को लेकर और कुछ रिपोर्ट को लेकर सवाल भी उठाए हुए हैं। तो ये मामला कहां तक जाएगा और विपक्षी एकता क्या इसी मुद्दे पर अब कायम रहेगी, तमाम सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुरुप्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। निखत अब्बास कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगी। पहली बार हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां 30 तारीख को काफी समय बाद एक साथ मिलकर एक यूनाइटेड एजेंडा बनाने की कोशिश करेगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में आएंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के तरफ से और राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी के प्रवक्ता भी चर्चा में आएंगे। हालांकि गुरुप्रकाश पासवान कुछ सवाल भी हम इस पैनल के सामने रखेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक सवाल आपके लिए मेरे तरफ से रहेगा। लेकिन तीन सवाल इस पैनल के सामने सबसे पहले मैं रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या एसआईआर पर उठे सवालों ने सीईसी को सियासी घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है? इससे पहले भी यह कहा जाता था कि सीईसी के खिलाफ जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक तरीके के हैं, सियासी आरोप है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद वो इस घेरे में आकर खड़े हो गए। दूसरा सवाल, सीईसी के बचाव में बीजेपी के उतरने से क्या मुद्दा बीजेपी बनाम विपक्ष हो गया है? और तीसरा सवाल, क्या ममता और लेफ्ट का एक मंच पर आना विपक्षी एकजुटता की एक नई शुरुआत है? कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी वो पहली राजनीतिक पार्टी के नेता थी जिन्होंने कहा था कि बंगाल के भीतर जो वोटर लिस्ट है उसको बदलना चाहिए क्योंकि सीपीएम उसमें गड़बड़ियां कर रही है। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी का सीईसी ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला हुआ है। दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक ममता बनर्जी ने एक बड़ा एजिटेशन प्लान किया था कोलकाता के भीतर, और उसी एजिटेशन में उसी मोर्चा में बात करते समय ममता बनर्जी ने कहा कि दरअसल ये ज्ञानेश कुमार नहीं है, वैनिश कुमार है। वैनिश कुमार यानी वोटर्स को गायब करने वाले। सीईसी का हर कारनामा रिकॉर्ड में मौजूद है और उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। तापस सेनगुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कानून का सामना करने पर बीजेपी साथ नहीं देंगे, ये भी उन्होंने कहा। ममता बनर्जी ने क्या कहा वो सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद तापस के पास चलेंगे।
1: তাদের দায়িত্ব পালন করবার আপনি তো আজ আছেন কাল নেই, কিন্তু যারা আজকে চাকরি বাকরি করেন পরিবার আছে মনে রাখবেন আপনাদের কিন্তু সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা আছে, মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা আছে। আজকে ভ্যানিশ কুমারকে শুধু টার্গেট করলে হবে না, ভ্যানিশ কুমার তো আছে তাকে তো সরতে হবে, সাথে সীমা খান্নাও আছে আর পেছনে আছে নারদ নারদ।
8: और बीजेपी।
7: लेकिन दूसरी बड़ी खबर, पहली बैठक होने जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ में बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों की एक बड़ी बैठक। दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई नहीं दी जा रही थी और विवादों के बीच अब चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तीनों चुनाव आयुक्त इस बैठक में उपस्थित रहेंगे, ज्ञानेश कुमार, एसएस संधु और विवेक जोशी, इनके बीच में यह बैठक होगी। इन दोनों आयुक्त ने यह भी कहा था कि 4 महीने में बैठक ही नहीं हुई है, बैठक का एजेंडा भी नहीं रखा जाता और मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी नहीं दिए जाते। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, इस बैठक के बारे में बताइए। चलिए बैठक ऐश्वर्या से भी बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि चुनाव आयोग की यह बड़ी बैठक होने जा रही है। दरअसल लगातार ये मांग हो रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से कई सवालों की सफाई मिलना जरूरी है और अभी ये आरोप और ये सफाई की मांग सिर्फ विपक्ष के तरफ से नहीं तो एनडीए के भीतर भी तीन राजनीतिक पार्टियों ने ये सवाल उठाए थे। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और उस पर पूरी सफाई देनी चाहिए। दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए कहा कि संस्थान को अपनी भूमिका साफ करनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। और एच डी कुमार स्वामी, उन्होंने भी इस बारे में अपनी भूमिका रखी और कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें इस पर अपनी भूमिका रखनी चाहिए, जो सवाल उठ रहे हैं उसकी सफाई देना जरूरी है, यह उनकी तरफ से भी कहा गया था। चर्चा की शुरुआत करते हैं गुरुप्रकाश पासवान, आखिरकार सवाल उठ रहे हैं, पहली बार बैठक हो रही है, आपके सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और सीसी ज्ञानेश कुमार के पक्ष में खड़ी होती नजर आ रही है, ऐसा क्यों?
9: नहीं देखिए साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी एक संस्थान के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में है। और मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी बात का जिक्र करना चाहता हूं। मैं यहां आपके स्टूडियो में बैठा हूं, ये स्टूडियो एक विधानसभा में है, मैं यहाँ का वोटर हूँ। इस विधानसभा का नाम है बांकीपुर विधानसभा और बांकीपुर विधानसभा वही विधानसभा है जो 30 वर्षों से ज्यादा समय से हम जीत रहे थे, हमारे वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष की विधानसभा है। और यहाँ हम पराजित होते हैं, हम उस पराजय को, जनादेश को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और आत्मंथन करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। यहां भी ऐसा हुआ था, यहां भी चुनाव आयोग नहीं चुनाव कराया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो अपने पराजय को पचा नहीं पाते हैं वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं, तो यह बात ऑन रिकॉर्ड रखना आवश्यक था। दूसरा, अरे भाई कोई भी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपस में डेलिब्रेशन होता है, आपस में डिसएग्रीमेंट होता है, आपस में कंसल्टेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, उसको रखा गया है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे लोकतंत्र की जो मजबूत स्तंभ है वो स्तंभ किसी एक संस्थान पे टिकी है तो देश का चुनाव आयोग है। अनुच्छेद 323 से लेकर के अनुच्छेद 325 चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को, स्वायत्तता को स्थापित करता है। 1995 आपको याद होगा साहिल जी, आप वरिष्ठ हैं, टीएन सेशन और एमएस गिल के बीच में इसी प्रकार से डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। आपको 2009 याद होगा, एन गोपाल स्वामी और नवीन चावला के बीच में इसी प्रकार के डिसएग्रीमेंट होते हैं। तो चुनाव आयोग के अंदर डिसएग्रीमेंट्स होने की परंपरा है। और यहां तक मैं बोलूंगा कि भाई एन गोपाल स्वामी और नवीन चावला कौन है साहिल जी? नवीन चावला वही व्यक्ति है जिसको लेकर के शाह कमीशन ने कहा था ही इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, और एन गोपाल स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक में गए थे। तो ऐसा भी दिन हमने देखा है, चुनाव आयोग ने देखा है और देश के लोकतंत्र ने मजबूती से उसको सहा है। हमारे देश का लोकतंत्र का जो संस्थान है वो स्वायत्त है, वो सशक्त है। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं साहिल जी, देखिए 2023 में इस देश में चुनाव आयुक्तों की, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता था? एक तरफा होता था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई आम सहमति नहीं थी। लेकिन 2023 में हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में नेता विपक्ष व्यूज समिति के पार्ट होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद आज हमारे ऊपर इस प्रकार के प्रश्न, देखिए मैं पुनः बोलना चाहता हूं, ये पैटर्न है। पेगासस पकड़ लीजिए आप, हिंडनबर्ग पकड़ लीजिए आप, रफाल पकड़ लीजिए आप, चौकीदार चोरे पकड़ लीजिए आप, ये सब दीज आर गोइंग टू फॉल फ्लैट। ये अपने मुंह की खाने वाले हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव मुद्दा नहीं है। तो घूम फिर करके चुनाव आयोग
7: तो किसी मीडिया रिपोर्ट
9: हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
7: गुरुप्रकाश जी,
9: हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं सर, 10 सेकंड दीजिए ना
7: जी।
9: हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं,
8: बोलिए बोलिए,
9: हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब मेरे पीजी डिपार्टमेंट में मेरे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बीच में कुछ असहमति हो जाती है तो पीजी डिपार्टमेंट खराब हो जाता है क्या? देखिए, आपके अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं है, पराक्रम नहीं है। चुनाव में आइए, लड़िए हमसे। नेता वो होता है जो बिल्कुल नीतियों पे लड़ता है। कोई नेतागिरी नहीं है, कोई नीति नहीं है। घूम फिर करके अंपायर गलत है।
8: माफ करिए, मैं आपको रोकूंगा। गुरु प्रकाश जी माफ करिए मैं आपको रोकूंगा। लेकिन देखिए कैसे होता है। अब तक चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस रिलीज निकाला गया था, पहला जरा फुल फ्रेम वो ब्रेकिंग चलवाइएगा, क्योंकि उस मीटिंग के भीतर क्या हुआ है वो जरा मैं पहले पैनल के सामने रखूंगा। बड़ी दिलचस्प बात है। अब तक चुनाव आयोग कह रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है ही नहीं, बेवजह इस पर बवाल किया जा रहा है। लेकिन अब करेक्शन कैसे शुरू हो गया देखिए, दबाव आ गया, उसके बाद करेक्शन किस तरीके से शुरू हुआ है जरा चलाइए एक एक करके। चुनाव आयोग की आज की मीटिंग में क्या हुआ है, 3 बजे का प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। पहला जो उन्होंने कहा है, इन केस ऑफ एनी पर्सन हुम नोटिस हैज बीन इश्यूड ड्यूरिंग द ऑनगोइंग SIR फॉर बीइंग अनमैप्ड एंड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, मतलब अगर किसी को नोटिस भेजा गया है तो BLOs उसके घर जाएंगे, विजिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद ECI नेट पर अपलोड करेंगे। ERO का जो भी डिसीजन होगा, सच पर्सन निड नॉट बी कॉल्ड फॉर हियरिंग एट ERO ऑफिस, मतलब ऐसे व्यक्ति को ERO के दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, BLO को भेज के उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कराए जाएंगे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में अगर किसी व्यक्ति को छुपाया गया है, अगर वो छूट रहा है या उसको नोटिस भेजी गई है। दूसरा डिसीजन, बड़ा डिसीजन है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स विल क्रिएट एडिक्वेट नंबर ऑफ हेल्प डेस्क, होल्ड स्पेशल कैंप्स फॉर द पीपल लिविंग इन नाइट शेल्टर्स, लेबर, पुअर पीपल, होमलेस एक्सेट्रा एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी ज्यादा हेल्प डेस्क खोलिएगा। दूसरा उनका डिसीजन है। तीसरा डिसीजन, द डिक्लेरेशन अटैच टू फॉर्म नंबर 6 फॉर SIR हैज बीन अपहेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर नॉन SIR पीरियड, द फॉर्म्स एप्लीकेबल एज पर द रूल्स, यानी सिर्फ SIR पीरियड के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म हमने उनके साथ में अटैच किया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन लेने पर पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन क्या फॉर्म नंबर 6 के साथ डिक्लेरेशन जरूरी है, यह सवाल अभी भी कायम रहता है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। चौथा फैसला जो इलेक्शन कमीशन में लिया गया है, फील्ड ऑफिसर्स हैव रोल बेस्ड एक्सेस टू ECI नेट, उनके पास एक्सेस है एज पर देयर स्टैट्यूटरी पावर्स। कमिटी हेडेड बाय डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इज इंक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर IIT NIIT विल रिव्यू द ECI नेट टू डबल चेक that it complies with the provisions of the acts and rules and submit report to the commission. यही बात SS संधू कह रहे थे, ऑडिट कराइए। अब देखिए रिपोर्ट छपकर आ गई है, कह रहे हैं कि उसका असेसमेंट किया जाएगा, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रिव्यू करेगा। ऑडिट होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन रिव्यू करने की बात की गई है। अपग्रेडेशन पोर्टल्स पे किए जा रहे हैं, बीन मेड बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम द स्टेट CEOs। गोवा के CEO ने 8 ईमेल भेजे थे फरवरी महीने में, अब जाकर कह रहे हैं कि अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाएगी। और उसके बाद, इन व्यू ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम CEO दिल्ली, द पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैव बीन एक्सटेंडेड, वो चलिए एक्सटेंड कर दिया है। आगे SIR हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, 20 इसमें SIR कंप्लीट किया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी को जो लेटर भेजा गया था उसके बारे में लिखा गया है, इट इज फर्दर रिइटरेटेड दैट द लेटर टू कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिसी मैटर ऑफ द कमीशन और IT डिविजन, बट रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ एन ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन टू ECI। द वर्क रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर्स इशूड बाय कंसर्न ऑफिसर्स वेर नॉट एक्चुअली इंप्लीमेंटेड आफ्टर द ऑर्डर्स ऑफ द टू कमिश्नर्स एंड ओवरसाइट ओवर द IT डिविजन बाय द DEC वॉज नेवर एक्चुअली विड्रॉन। आप जाकर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि एक अधिकारी के बारे में यह चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन वो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं किए गए, यानी आपत्ति उठाई गई थी, यह अब ऑन रिकॉर्ड चुनाव आयोग की तरफ से मान लिया गया है। इन द रीसेंट मंथ्स द कमीशन हैज टेकन न्यूमरस डिसीजन इंक्लूडिंग SIR अक्रॉस वेस्ट बंगाल में 30 अदर स्टेट्स वर इशूड फॉर द यूनानिमस अप्रूवल ऑफ द कमीशन, यूनानिमसली अप्रूव किया गया था। द फाइनल फिगर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टर्स विल बी नोन ओनली आफ्टर द फाइनल पब्लिकेशन इन रिमेनिंग 12 स्टेट्स ऑफ Phase 3, मतलब एक्चुअल नंबर क्या होगा उसके बाद पता चलेगा। और आखिर में यह बड़ी बात है, CEO गोवा हैज बीन डायरेक्टेड टू कंसर्न BLOs टू कंडक्ट हाउस टू हाउस विजिट फॉर द लेफ्ट आउट वोटर्स टू कलेक्ट देयर फॉर्म्स। 81 वोटर्स आउट ऑफ 97 हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म्स 8 महीने के बाद गुरु प्रकाश पासवान, और यह चलाते रहिएगा। रिपोर्ट के बाद में क्या बदला हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, दबाव आया उन पर, अब कोर्स करेक्शन की तैयारी चल रही है। इतने दिन तो कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब ये कहां से आ गया? गोवा के सीईओ 8 बार ईमेल भेज रहे थे। सवाल यहां पर उठता है गुरु प्रकाश जी।
9: नहीं तो साहिल जी, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, कोर्स करेक्शन का स्कोप नहीं रहता है क्या? पहले देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, पोलिंग बूथ पोल कैप्चर कर लिया जाता था, हिंसा होती थी, हत्याएं होती थी, अब नहीं होता है। पहले ईवीएम आया तो वीवीपैट नहीं था, अब वीवीपैट आया है। अरे भाई, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है ना, तो सुधार की गुंजाइश है, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। देखिए साहिल जी, आपको समझने की आवश्यकता है, 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ के देश में 14 डिसएग्रीमेंट को मार ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, एक सुनियोजित एक ये कहता हूं एजेंडा का हिस्सा है कि अगर चुनाव आप नहीं जीत पा रहे हो तो संवैधानिक संस्थाओं पर आस्था को कम करो। ऐसा नहीं होता है, केरला में सब ठीक रहता है, तेलंगाना में सब ठीक रहता है, हाल के दिनों से पहले पश्चिम बंगाल में सब ठीक रहता है, जहां ये लोग चुनाव जीतते हैं वहां बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल पारदर्शिता है। ये डिफीटिस्ट माइंडसेट है साहिल जी, आप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को, संवैधानिक संस्थाओं पे आस्था को कम नहीं कर सकते हो।
8: नहीं, आस्था कैसे कम होती है मैं बता रहा हूं। देखिए, ये प्रेस रिलीज जो आज का है ना, वो उसका उदाहरण है एक तरीके से। चुनाव आयोग के भीतर निखत अब्बास, आप भी इस प्रेस रिलीज पर सबसे पहले बताइएगा गुरु प्रकाश जी, और पॉलिटिकल मुद्दे पर तो हम अलग से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे हम दरकिनार करते हैं फिलहाल कुछ वक्त के लिए। भूल जाइए कि कांग्रेस पार्टी क्या आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी का उस पर क्या कहना है, मैं उसमें फिलहाल नहीं जाना चाहता। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जब SS संधु कह रहे थे कि इस पूरे ECI नेट का एक ऑडिट होना जरूरी है, तब किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, और ये बात 4 महीने पहले की है। आज एक साथ मीटिंग बुलाकर उसी मीटिंग में यह मान लिया जाता है कि रिव्यू किया जाएगा उसका, एक एक्सपर्ट को बुला के, यानी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट गलत नहीं था, यह बात उसमें साबित होती है। गोवा का सीईओ जब बार बार 8 बार ईमेल लिखकर कह रहा था कि भाई ये लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनको हम ऐड नहीं कर पा रहे, उस पर ध्यान दीजिएगा, किसी ने जवाब तक नहीं दिया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि भाई वो तो वहां के ERO की गलती थी, अब जाकर बोला गया कि उनके घर जाइए और उनके फॉर्म भरवाइएगा। पश्चिम बंगाल के भीतर ये बार बार आरोप लग रहे थे कि भाई लंबी कतारें उनको लगवानी पड़ रही है, क्या गलती है उस वोटर्स की कि जिनको वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ रहे हैं, अब यहां पर आदेश निकालकर कहा जा रहा है कि BLO उनके घर पे जाएंगे नोटिस मिलने के बाद, और वो जाके कलेक्ट करेंगे, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बदलाव कब हो रहा है? जब न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छप रहा है, जब दबाव बढ़ रहा है, जब अलग तरीके से चीजें सामने आ रही है। जब विपक्ष आरोप लगा रहा था तब आपको याद है ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा था इस पूरे मामले को लेकर, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से? मुद्दा यहां पर आकर रुकता है। गुरु प्रकाश जी, पहले आपकी तुरंत प्रतिक्रिया, उसके बाद निखत अब्बास जवाब देंगे।
9: नहीं नहीं, देखिए साहिल जी, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि भी आप फिर आप चला लेंगे, मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन को देख रहा था, एंड आई एम सॉरी टू से, जो आपका प्रारंभिक उद्बोधन था और जो आपका रिपोर्ट था वो बहुत ही अनफेयर था। ये इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के पक्ष में बीजेपी खड़ी है, अरे संवैधानिक संस्थाओं के पक्ष में देश खड़ा है। आज जो डिफरेंसेज आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, आपको आस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, अब आप कल को कहोगे नहीं सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है, ऐसे नहीं होता है। देश की लोकतंत्र शुड बी इम्यून टू चेंजिंग गवर्नमेंट्स। देश का लोकतंत्र, देश की डेमोक्रेसी कोई बीजेपी और कांग्रेस के आधार पर नहीं है। आम लोगों की आस्था देश के लोकतंत्र पर होनी चाहिए, संवैधानिक संस्थानों पर होनी चाहिए, और उन्हीं संवैधानिक संस्थानों के इंटेग्रिटी पर सवाल खड़ा करना दिक्कत इस बात से। और मैं पुनः बोलता हूं, आखिरी बात बोलता हूं साहिल जी, हर प्रोसेस इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। वीवीपैट आया, वीवीपैट की मांग हुई, इसमें ERO की मांग हुई है, ERO की इन्वॉल्वमेंट होगा, और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का तो पहले से प्रावधान है। SIR पे हम लोग पर्याप्त बहस कर चुके हैं, SIR की संवैधानिकता पे जस्टिस सूर्यकांत ने, जस्टिस बागची ने पहले ही बोला हुआ है, उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जानबूझ करके इंडियन
8: SIR की संवैधानिकता पे
9: इस प्रकार से
8: कोई सवाल नहीं है। गुरु प्रकाश जी, आपको भी पता है, आप मेरे डिबेट में कई बार आ चुके हैं, SIR संवैधानिक काम है, चुनाव आयोग का अधिकार है, ये बात तो हम मान चुके हैं कई बार, उस पर कोई दो राय नहीं है। हम प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जब प्रक्रिया को लेकर सवाल राजनीतिक पार्टियां उठा रही थी, तब उन्हें राजनीतिक दृष्टि से देखकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को तो उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए ना। उन्होंने कह दिया कि भाई गलत उठ कर रहे हैं आप, और आज कोर्स करेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक अखबार में रिपोर्ट छपकर आता है जो झुटलाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। मुद्दा यहां पर आकर खड़ा हो रहा है, मामला यहां पर आकर खड़ा हो रहा है। निखत अब्बास, पहले आप जवाब दीजिएगा, अभी देखिए प्रेस रिलीज निकला है, क्या आप मानती है कि अब धीरे धीरे कोर्स करेक्शन शुरू हो गया है? कोर्स करेक्शन शुरू हो गया है, मीटिंग हो रही है तीनों की, ये तस्वीर भी हम चला रहे हैं और हंसते हंसते स्माइल करते हैं तीनों, यहां पर नजर तो आ रहा है कम से कम।
10: व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात यह कि आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते फिरते हैं ना कि भारत में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उस महापर्व का ज्ञानेश कुमार ने भांडा खुद ही फोड़ दिया। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि बाकी दो आयुक्तों की बात सुनने के लिए देश की जनता को अखबार पढ़ना पड़ रहा है। अखबार की खबर से ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जो प्रेशर बन रहा है तो उस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे यही बात तो देश में एनओपी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती आई है। याद होगा साहिल भाई आपको, जब महादेवपुरा के लिए तो 1 लाख से अधिक वोटर्स के बारे में जो डिस्प्यूटेड वोटर्स जो एंट्रीज थी उस पर राहुल गांधी जी ने सब सवाल उठाए थे, तो यही ज्ञानेश कुमार थे जो कहते एफिडेविट दिखाओ। अरे आज जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है वो 14 आपत्तियां 10 महीनों में बताइए, और किस किस पर? साहिल भाई आपने कहा फॉर्म 6 वोटर के नाम जोड़ने पर, काटने पर। फॉर्म 6 क्या है? फॉर्म 6 आम जनता के लिए मैं आसान भाषा में बता दूं कि फॉर्म 6 जिससे नया वोटर जुड़ता है, नया वोटर जब 18 वर्ष का एक बच्चा है वो जा रहा है, नया वोटर खुशी खुशी वोट बनाने जा रहा है, उसको पता चलता है अरे अब तो मेरे मम्मी पापा पुरानी SIR की लिस्ट में थे नहीं थे, मेरे दादा दादी जी पुरानी SIR की लिस्ट में थे नहीं थे, वो हर्डल आपने उनकी प्लेट में थमा दिया कि जाओ अब तो हम Gen Z को वोटर ही नहीं बनाएंगे क्योंकि एक हर्डल भी डाल देते हैं। दूसरा मैं आपको बताती हूँ इत्तेफाक बहुत होते हैं इनकी सरकार में। एक ऐसा भी इत्तेफाक हो रहा है कि 2024 से जो स्पेशल समरी रिवीजन है, जो नए वोटर को जोड़ने की प्रक्रिया है, वो 2024 से इलेक्शन कमीशन ने रोकी हुई है। दो चीजें बता दी मैंने आपको जिससे एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये नए वोटर को, Gen Z वोटर को जो इनके खिलाफ आज खड़ा है क्योंकि वो नौकरी और सब वो सवाल पूछ रहे जो बाकी शायद लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, आज उनको ये वोटर बनाने पे बिल्कुल हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत सिंपल सी बात, अभी दिल्ली का बहुत बड़े बड़े उदाहरण है, दिल्ली में 47 लाख से ज्यादा वोटर्स है जो वोटर लिस्ट पर है ही नहीं, वोटर रोल पर है ही नहीं, उस पर कोई जवाब नहीं देते। आपने बंगाल का भी एग्जांपल दिया, 22 लाख से ज्यादा वोटर्स कह रहे हैं कि हमें वापस लिस्ट पे लो, अपने डॉक्यूमेंट उन्हें फर्निश करने पड़ रहे हैं। यहां पर आकर बीजेपी के प्रवक्ता ने तो कह दिया देखिए मेरा लिस्ट में नाम भी आया था और हमने वोट भी डाल दिया। भाई आपका आया था पर बंगाल के 22 लाख वोटर आज भी वेट कर रहे हैं। और मुझे बताइए ना, बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बताएं कि वो क्या है नया VIP मार्क BLO ऐप पर, ERO और ECI पर तो आपने जवाब दिया नहीं, अब बताइए BLO पर वो VIP मार्क।
8: सबसे पहले निखिल अब्बास फॉर्म नंबर 6 का मुद्दा, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक मिनट निखिल जी, एक मिनट, आज कांग्रेस, चलिए 10 सेकंड, लेकिन आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसी पर आज क्लेरिफिकेशन भी आया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। बोलिए।
10: अब आप देखिए जब ये सारी कॉन्स्पिरेसी हो रही है जहां पर नए वोटर को जोड़ा नहीं जा रहा, पुराने वोटरों के नाम काट दिए जा रहे, हर्डल्स क्रिएट करे जा रहे, तो फिर बात याद आ जाती है 2023 का जो दिसंबर में अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 140 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद करा था। क्यों आपने इम्यूनिटी दी है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को कि उनके खिलाफ कोर्ट में कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, किससे बचा रहे थे? आज जनता जवाब पूछ रही है साहिल भाई, ये सवाल देश की जनता, देश के वोटर से जुड़े हुए हैं, इनके स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाब दें।
8: दो चीजें लोगों को मालूम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे यह मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया है क्योंकि दोनों जज डिफर कर रहे थे इस मामले पर कि क्या बड़े बेंच के पास जाना चाहिए या उन्हें खुद फैसला करना चाहिए, जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति की जाती है उसमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार से एक और मंत्री और नेता विपक्ष रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का यह मानना था कि मंत्री आमतौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जाएगा, तो ऐसे में इसकी पारदर्शिता पर उनके मन में सवाल थे। हालांकि फैसला लेते समय उनको ऐसा लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना चाहिए, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा उस पर अपना फैसला होगा। लेकिन निखत जी, आपके पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी फॉर्म नंबर 16 को लेकर, जिसका जिक्र उस प्रेस रिपोर्ट में भी किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन ने उस बात की सफाई रखी है। उनका यह कहना है कि फॉर्म नंबर 6 में कोई बदल नहीं किया गया है, जो हम भी कह रहे हैं उसके साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच किया गया है, और डिक्लेरेशन फॉर्म जब तक आप नहीं भरते तब तक फॉर्म नंबर 16 एक्सेप्ट नहीं होता है, यह बात फॉर्म नंबर 6 एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन आज के क्लैरिफिकेशन में चुनाव आयोग ने यह कहा है कि डिक्लेरेशन अटैच टू फॉर्म नंबर 6 फॉर SIR हैज बीन अपहेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फॉर नॉन SIR पीरियड्स द फॉर्म एप्लीकेबल एज पर द रूल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 विल बी यूज्ड। यानी सिर्फ SIR के समय पे डिक्लेरेशन के बाद साथ में फॉर्म नंबर 6 एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको क्लेरिफिकेशन मिल गया फॉर्म नंबर 6 का, जो आपका कहना था कि नए वोटर्स जुड़ नहीं पा रहे हैं इसके।
10: मैंने जैसे पहले कहा, यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली दबाव में आने के बाद जब उन्हें लगा कि हाय अब तो हम बस्ट हो गए, वी हैव बीन बस्टेड, नाउ वी हैव टू कम आउट, बाहर आना पड़ेगा, देश की जनता को कुछ कुछ जवाब देने पड़ेंगे, खबर बड़ी बन रही है। आपको नहीं कह रही कुछ ऐसी मीडिया जो इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलती है उनको भी सवाल पूछने पर दिखाना पड़ेगा ना जब जनता तक बात जा रही है। आज बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, आज बात इससे बड़ी है। वो 14 ऑब्जेक्शन जो दो आयुक्तों ने उठाए थे, क्योंकि वो दो आयुक्त मैनिक्विन नहीं है, वो कठपुतली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बिठा दिया, बीच में ज्ञानेश कुमार जी को बिठा दिया और वो जवाब दे रहे हैं और बाकी दो कठपुतली की तरह बैठे हैं। पता चलता है कि उन्होंने तो 14 ऑब्जेक्शन 10 महीनों में दिए थे। अरे भाई, जब 14 ऑब्जेक्शन दिए थे तो उन 14 ऑब्जेक्शन के आपने लिखित में जवाब क्या दिए? देखिए ऐसा है ना साहिल भाई, लोकतंत्र में हम पर भरोसा कर लीजिए वाले डायलॉग से काम नहीं चलता। आपको जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता पूछ रही है, पूरा विपक्ष पूछ रहा है, राहुल गांधी जी पूछ रहे
8: हैं। नंबर 6 का दिया है, वही मैंने आपको पढ़कर बताया। और जो ऑब्जेक्शंस की बात आपने रखी है, आज तीनों आयुक्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तीनों आयुक्तों की मिलने के बाद, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, यह प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने रखा हुआ है। और उसमें भी उन्होंने यह कहा है कि इन द रीसेंट मंथ्स द कमीशन हैज टेकन न्यूमरस डिसीजंस इंक्लूडिंग एसआईआर अक्रॉस द कंट्री। द ऑर्डर फॉर एसआईआर इशूड ऑन 24/6/2025 फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज स्टार्टिंग विद बिहार फॉलोड बाय बंगाल एंड 30 अदर स्टेट्स वगैरह XYZ, द सेम हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वॉज इशूड विद यूनानिमस अप्रूवल ऑफ द कमीशन। यानी एक बार फिर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित कि जो भी फैसले लिए गए वो हमने साथ में मिलकर लिए गए। अब कौन से ऐसे सवाल है कि जो अनआंसर्ड है आपको लगता है? आज आपकी पार्टी ने मोर्चा भी निकाला था वहां पर।
11: नहीं, देखिए ये पूरे सिस्टम करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज है। ये सिर्फ एक खास व्यक्ति के पीछे नहीं, उसके पीछे कौन है? वो तो कठपुतली है, ज्ञानेश कुमार तो कठपुतली है, उसको तो बोला जा रहा है। कौन है सीमा खन्ना, उसके बारे में बात नहीं आ रही है। सीमा खन्ना के ऑर्डर से 1,33,00,000 लोगों के नाम पश्चिम बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिए गए थे। तब हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस बाक्षी है वो बयान देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि वोटर जो है बाद में छूट जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। तो चुनाव हो गया, 27,00,000 लोगों ने वोट दे दिए और अब उनके नामों पर जोड़ने में 12 साल लगे। आप सोचिए क्या अवस्था है देश की, जहाँ पे मिस कॉल से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, वहाँ वोटर कोड को, रजिस्टर्ड वोटर को वोट करने का अधिकार छीन करके चुनाव कराया जाता है, उस व्यक्ति को कुर्सी पर एक सेकंड भी बैठने का अधिकार नहीं है। इज द नॉट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफिसर ऑफ द इंडिया, ऑफिसर उन्होंने ऑमिट किया है, लोगों के वोटर अधिकार को ऑमिट किया है।
8: एक बात और क्लैरिफाई कर दीजिएगा स्वयं प्रकाश जी, एक बात और क्लैरिफाई कर दीजिए, बीजेपी का आरोप है कि आप संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए उसके उसके साथ पे वो खड़े होते हैं। आप क्या संस्था पर सवाल है या व्यक्ति पर सवाल है? स्पेसिफिक बताइए।
11: व्यक्ति पर सवाल है, स्पष्ट साहिब जी, व्यक्ति पर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू में नया चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होना चाहिए, नए बोर्ड का गठन होना चाहिए और इस प्रणाली को नए रूप से देश के सामने लाना चाहिए। देश की जनता क्या देख रही है, देश के बच्चे क्या सीख रहे हैं कि आप गठबंधन का गलत वोट देंगे?
8: उत्तर प्रदेश से हमारे साथ दो गेस्ट हैं, जरा जल्दी से उनसे प्रतिक्रिया लेनी है मुझे, क्योंकि अभी सबसे पहले चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के भीतर। अनुराग भदौरिया और राघवेंद्र द्विवेदी, 2,90,00,000 वोटर काटे गए हैं उत्तर प्रदेश के भीतर जो एसआईआर की प्रक्रिया रही है। अनुराग भदौरिया और राघवेंद्र द्विवेदी दोनों अपनी अपनी भूमिका रखिएगा, आप उससे संतुष्ट हैं? चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ अब ठीक है वहां पर, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे ना, वहां पर 30 तारीख को मीटिंग होने वाली है, यह भी एक सुर उठ रहा है कि भाई चुनाव में शामिल होना है कि नहीं होना है।

0: चुनाव चुनाव की एसआईआर की प्रक्रिया पे शुरू से ही डे वन से हम लोग सवाल उठा रहे थे और इन सवालों को बहुत तेजी से उठाया गया था। लेकिन एक सवाल जो आया, जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप टीएमसी और कम्युनिस्ट भी साथ आ गए, 30 तारीख को मीटिंग हो रही है, जब राष्ट्र की बात होती है ना, राष्ट्र एकता की बात होती है, तो राष्ट्रवादी लोग एक साथ खड़े दिखाई देते हैं क्योंकि राष्ट्र बचाने की जरूरत है। क्योंकि एक एक वोट जो अधिकार होता है, गरीबों का सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसका वोट। अगर उसका वोट अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो उसकी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। एक तरह से ये आजादी की लड़ाई समझिए आप, कि वोट की, वोट जो वंचित रह गए उनको वोट दिलाने की लड़ाई है ये, माने उनको वोट का अधिकार दिलाने की लड़ाई है, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी लोग एक साथ आए हैं। इसके पहले भी जब देश में आंदोलन हुआ था तो क्या सब एक साथ नहीं आए थे? राजगुरु, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद जी, रामकृष्ण बिस्मिल जी, वहां पे नूरबख्श जी, ये सब लोग शहीद हुए थे ना, सब एक साथ आए थे राष्ट्र बचाने के लिए। आज राष्ट्र बचाने की लड़ाई है, जिस तरह की आपने बात की। आप देखिए, सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, आप बताइए कि आपके यहां पे दो चुनाव आयोग जो है वो अलग, उनकी सहमति क्यों नहीं हो रही थी? आप क्यों एक माने अपनी क्या मोनोपोली चला रहे थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्यों आपने वहां पर डाटाबेस को सेंट्रलाइज किया था, क्यों फॉर्म 6 में आपने चेंज किया था, क्यों बिना अनुमति के आप यहां पे अधिकारी विदेश घूमने जा रहे थे? सवाल तो ये है ना, सवाल ये है कि नाम जोड़ना, नाम काटना, इस तरह की प्रक्रिया पे वो हमारे दोनों चुनाव आयुक्त तो उसमें संदेह जाहिर कर रहे थे, डाटाबेस की सुरक्षा को लेकर उन्होंने संदेह जाहिर किया था, प्रक्रिया पे सवाल उठाया था। तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप तो विपक्ष के साथ खड़े होते आके, आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता कब से बन गए भाई? चुनाव आयोग अपनी के लोग अपनी बात बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन जाती है तो चोर की दाढ़ी में तिनका साबित होता है, कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। क्योंकि ये क्यों बचाने के लिए आ रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, इनको क्या लेना देना, लेकिन ये जोर से बचाने आते हैं चुनाव आयोग के लिए और फिर एग्जाम्पल देने लगते हैं कि 1993-95 में भी हुआ था। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा है कि यहाँ पे वोट के अधिकार छीना गया है, पश्चिम बंगाल में देखा गया है, जिससे गोवा की घटना आपने बताई थी कि 97 लोगों को, मतलब ईआरओ 97 लोगों का नाम भेज रहा है।
1: और दोबारा सवाल पर आता हूं, भाई जरा उत्तर प्रदेश की बात करिए ना अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में 2,90,00,000 वोटर्स काटे गए हैं, आप एसआईआर की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं या नहीं है, नंबर एक। और एक ये भी बात हो रही है कि भाई चुनाव में उतरना है कि नहीं उतरना, अगर इतनी गड़बड़ियां हैं तो चुनाव क्यों लड़े? तो चुनाव लड़ेंगे बिन्दास होकर या नहीं लड़ेंगे, क्या क्या फैसला हो रहा है? क्योंकि 30 तारीख को मीटिंग भी होनी है इंडिया अलायंस की।
0: देखिए सवाल देखिए सवाल यह है कि जिस तरह की गड़बड़ियां हम तो शुरू से उठा रहे थे, जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश में मैंने सवाल उठाया था कि आपने जो वोटर में जो वोट गायब किया और उनको ये बता दिया गया कि ये अपने घर पे नहीं मिले या ये कहीं और जगह शिफ्ट हो गए, तो मैं पूछना चाहता हूं जो अपने घर पे नहीं मिले जो लोग, वो लोग कौन थे? 1,15,00,000 की घटना, 1,02,00,000 की बात आ रही थी, तो जो घर पे नहीं मिले या बाहर चले गए कौन है वो लोग? वो लोग अगर नौकरी पेशे के चक्कर में अगर कोई बॉम्बे नौकरी करने चला गया तो आता है ना अपने घर भाई, 6 महीने में, साल भर में आता है। अगर
1: चुनाव बॉयकॉट वगैरह नहीं होगा ना,
0: 2 महीने में खत्म करना चाहेंगे, 4 महीने में खत्म करना चाहेगा तो नहीं होता है, है? क्या बोला आपने?
1: नो बॉयकॉट वॉयकॉट कुछ नहीं है ना चुनाव का, चुनाव का बॉयकॉट वगैरह कुछ नहीं है ना, लड़ेंगे ना चुनाव, बॉयकॉट वगैरह कुछ नहीं है ना, चुनाव तो लड़ेंगे ना।
0: नहीं नहीं, अरे हम लोग संविधान और लोकतंत्र विश्वास करते हैं, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष हमेशा से लड़ता है। आपने क्या बोला था, आपने एक शब्द बोला था कि विपक्ष जो है राजनीति,
1: कांग्रेस से मत लड़िएगा फिलहाल।
0: नहीं नहीं, एक लाइन और, एक विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है,
1: ठीक है?
0: नहीं नहीं, विपक्ष राजनीति नहीं कर, नहीं नहीं, कांग्रेस और हम साथ साथ हैं, कांग्रेस और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सुन लीजिए साहिल जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, हम नहीं नहीं, एक लाइन और, एक लाइन,
1: राघवेंद्र जी,
0: राजनीति नहीं कर रहे इस पे, वोट तो अधिकार है, वो दिलाना नहीं, दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी बात, एक लास्ट लाइन है, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूँ बांकीपुर में आता है, सुनिए एक लाइन बांकीपुर में आता है। सवाल ये नहीं है, आज आने वाले दिनों में जहां जहां बैठोगे वहीं पे विपक्ष की जीत होगी, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, जो चुनाव एसआईआर के माध्यम से जो आप वोट चोरी कर रहे थे, सरकारें चोरी कर रहे थे, अब आपकी चोरी पकड़ ली गई है।
1: उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया ठीक हुई है, कोई दिक्कत है नहीं है
0: सरकार में, होगा
1: ठीक है, ठीक है, हो गया अनुराग जी। राघवेंद्र द्विवेदी, एक बार राघवेंद्र द्विवेदी आपकी प्रतिक्रिया,
2: चुनाव आयोग का प्रेस रिलीज भी आया, एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हुई, एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आज तक उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल जमीन पे से सड़क पे नहीं आए, एसी कमरे से बाहर नहीं आए, देखिए अभी मैं इलेक्शन कमीशन पे बोलूं तो ज्यादा समय लगेगा, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। भारतीय समाज पार्टी का ये मत है कि किसी

0: वाजिब मतदाता का मत नहीं कटना चाहिए। अगर कटा है, किन्हीं कारणों से कटा है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी को साक्ष्य लेके बैठना चाहिए कि भैया इनका मत कट गया है, इनका मत कैसे जुड़ेगा। देखिए, ये केवल आरोप इसलिए लगा रहे हैं ना कि इनकी जमीन खिसक गई है। इनको पता है कि 2027 के चुनाव में क्या स्थिति है। जो आगामी बैठक है, आप देखे होंगे इसके पहले भी इंडिया गठबंधन का कई बार बैठक हुआ, तालमेल नहीं बन पाया, चेहरे को लेकर नहीं बन पाया, तो ये सब डगे हुए कारतूस है। अब इनको ले देके बस एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखा है, उसी पे अपना चिकड़ा फोड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना वोट है, ना नेता है, ना जनाधार है। ये मुद्दा को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में आंकड़ा दिखाइए ना कि कितने लोगों का वोट कट गया।
1: अगर वोट तो कुछ घुसपैठिए मिले कि नहीं मिले उत्तर प्रदेश में? राघवेंद्र जी,
2: आपके पास
1: घुसपैठिए कुछ ढूंढे कि नहीं ढूंढे इलेक्शन कमीशन ने?
2: एक लाइन
0: देखिए, देखिए क्या है। अभी आप बार बार पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी से कि आप लोग चुनाव से बायकॉट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये असमंजस में है। ये जानते हैं कि चुनाव से बायकॉट कर देंगे तब भी हार
1: है। इसलिए छोटा सवाल मुझे गुरु प्रसाद जी से पूछना है, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक छोटा सवाल। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात गुरु प्रकाश, मेरे पास प्रेस रिलीज पड़ा हुआ है, उसी का जवाब स्पेसिफिक चाहिए। कैसे बदलाव होता है देखिएगा। चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में यह भी लिखा गया है कि फॉर ऑल कमीशन्स मीटिंग्स एजेंडा विल बी सर्क्यूलेटेड इन एडवांस एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स विल बी इश्यूड। यह भी उस रिपोर्ट पे लिखा गया था कि मिनट्स नहीं दिए जा रहे हैं। अब कह रही है चुनाव आयोग कि हम एजेंडा पहले सर्क्यूलेट करेंगे। आगे अप्रूवल ऑफ द कमीशन विल बी टेकन फॉर द फॉरेन ट्रिप्स, उस पर भी सवाल उठाए गए थे उसी रिपोर्ट में। और आखिर में ऑल डायरेक्शंस इश्यूड बाय द कमीशंस कमिश्नर्स टू द ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन शैल बी मेटिक्यूलसली कंपाइल्ड विथ। जितने सवाल उस रिपोर्ट पे उठाए गए थे, आज जाकर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम उस सब का पालन करेंगे। बैकफुट पर गया है चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार, मान लीजिएगा गुरु प्रकाश जी।
3: नहीं साहिल जी, पहले तो आपके शो पे जितना झूठा नैरेटिव फैलाया गया, ये कांग्रेस की कह रही थी कि भाई जेंजी का वोट नहीं है, जेंजी का वोट नहीं है, ऑन रिकॉर्ड जाकर के देखिएगा, झूठ बोलते हैं। जेंजी का टोटल 17.38 करोड़ वोटर है और सिर्फ जून 2025 में एसआईआर के बाद 2.5 करोड़ नए वोटर जुड़े हैं। तो जेंजी का वोट नहीं है, जेंजी का वोट नहीं है, झूठ बोलना। और एसआईआर के बाद पहले एक मौका था, अब चार मौके हैं, क्षमा चाहता हूं, 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर जो 18 के वो जा सकते हैं। अनुराग भाई, 37 सांसद जीत के आए हैं, नेताजी से बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है अखिलेश भैया ने, 37 सांसद जीत के आए हैं, तब चुनाव आयोग ठीक रहता है? चुनाव आयोग खराब है। 2014
1: क्या स्थिति होती है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आज की स्थिति में चुनाव आयोग अब कह रहा है कि अगर आपके पास नोटिस आया है तो बीएलओ आपके घर पे आएगा। सालों तक ये सवाल उठते रहे, पिछले कई महीनों तक ये सवाल उठते रहे कि क्यों लोगों को इतनी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स लेकर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उसके घर जाकर उस व्यक्ति के ये मामला सुलझाने की कोशिश होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि उन डिलीटेड वोटर्स को कुछ ना कुछ तो अधिकार मिल पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
5: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
8: तो कौन सी बनानी है?
9: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
10: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
12: Oof! ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स, जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट।
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने, भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
8: एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने अपने डिजिटल सिस्टम ईसीआई नेट को लेकर सफाई दी है। इसी के मुताबिक ईसीआई नेट एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी चुनाव से जुड़े जरूरी और कानूनी फैसले फील्ड में मौजूद अधिकारियों के पास ही रहते हैं। बीएलओ से लेकर एईआरओ, ईआरओ, डीईओ और सीईओ तक हर अधिकारी अपनी अलग आईडी और पासवर्ड से काम करता है। आयोग का कहना है कि दिल्ली में बैठे किसी अधिकारी के पास इनकी जगह वैधानिक फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ये सफाई उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें चुनावी डेटा के सेंट्रलाइजेशन और सिस्टम एक्सेस को लेकर चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की बात कही गई थी। यहाँ एसआईआर के दौरान 97 ऐसे मतदाता पाए गए जिन्हें अधिकारी पात्र मान चुके थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनके नाम वापस जोड़ने का विकल्प नहीं था। सीईओ गोवा के मुताबिक इन मामलों में बीएलओज ने घर घर जाकर अलग से प्रोसेस किया, कई नाम शामिल किए जा चुके हैं और बाकी मामलों पर काम जारी है। आयोग का कहना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटेगा नहीं। वही फॉर्म 6 के साथ मांगे गए अतिरिक्त डिक्लेरेशन पर भी इसी ने सफाई दी है। आयोग के मुताबिक इसे एसआईआर के आदेश में उसके मंजूरी के बाद शामिल किया गया था और फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: जहां एक दिन जन्मदिन की शाम 17 साल की नाबालिग के लिए खौफनाक रात में बदल गई। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने 21 सितंबर की पूरी कहानी बताई है। 21 सितंबर का दिन पीड़िता के लिए बेहद खास था क्योंकि उनका जन्मदिन था। वो अपनी बड़ी बहन को बताकर अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर के दर्शन के लिए गई थी। शाम करीब 6:45 बजे वो कालकाजी पहुंचे, मंदिर में दर्शन किए और बाहर आकर पानी और चिप्स लेकर स्कॉन मंदिर जाने से पहले आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर 7 से अंदर दाखिल हुए और एक बेंच पर बैठ गए। तभी वहां 30 से 35 साल की उम्र के 3 संदिग्ध लड़के पहुंचे। उन्होंने आते ही पीड़िता के दोस्त को पकड़ लिया और खुद को पुलिस वाला बताते हुए धमकाने लगे कि इस वक्त यहाँ आना मना है। आरोप है कि आरोपियों ने दोनों के फोन छीन लिए। जब पीड़िता ने विरोध किया तो मुख्य अपराधी, जिसे वे आसिफ कह रहे थे, उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर डराया और फिर तीनों ने चाकू के बल पर उसे जबरन अंधेरे की तरफ खींच लिया। पीड़िता ने अपनी रूह कपा देने वाली आपबीती में बताया कि किस तरह आरोपियों ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर बारी बारी से इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। वारदात के बाद आरोपियों ने उन्हें उनके फोन लौटा दिए, चुप रहने और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। पार्क से बाहर आकर सहमी हुई पीड़िता ने अपने दोस्त को सब कुछ बताया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमले का राजनीतिक एंगल और बड़ा हो गया है। मामला सिर्फ सीईसी बनाम विपक्ष का नहीं रहा है। सीईसी पर विपक्ष के हमले का जवाब अब सीधे बीजेपी दे रही है। बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से विपक्ष के आरोपों पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा गुस्सा ममता बनर्जी दर्ज करा रही है। वो सड़कों पर उतरकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जिस बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी रहे हैं, वही अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ साथ आ गए हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सीपीएम महासचिव एमए बेबी के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और विपक्षी दलों की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। गुस्से की आग ने इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को एक मंच पर फिर से ला दिया है। 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। खबर है कि अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से इस मसले पर बात हुई है, लेकिन ममता को अपने ही घर में बीजेपी के मंत्री घेर रहे हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य तो एक कदम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए पद्म भूषण सम्मान की मांग कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये देश की लड़ाई है, इसलिए जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ललकारा। लेकिन बीजेपी विपक्ष को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है और कांग्रेस समेत विपक्ष पर हार के बहाने बनाने का आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी के पास अपने सहयोगियों के सवालों का जवाब नहीं है।
1: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
0: बिहार में एनडीए के एक और साथी ने जवाब मांगा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लिखा, एसआईआर से संबंधित विवाद पर जनता में काफी उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। विषय को एड्रेस करने की जरूरत है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी के सहयोगी मुख्य चुनाव आयुक्त के मसले पर सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। यह यूं कहें कि एनडीए में उठ रहे सवालों की झड़ी बढ़ती जा रही है। टीडीपी के देवरायालू ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए जब भी कोई सवाल उठाया जाता है तो उचित स्पष्टीकरण देना और पारदर्शिता बनाए रखना संस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगा। अब बीजेपी के सामने लड़ने की चुनौती सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष विपक्ष से नहीं रह गया। एनडीए के अंदर उठ रही आवाज बीजेपी के कान में चुभ रही होगी। फिलहाल तो सीईसी पर जो सवाल आयोग की चारदीवारी के अंदर थी वो सीधे सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक अखाड़े में पहुंच चुकी है, जिसकी बड़ी किश्त इंडिया गठबंधन की 30 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद दिखाई देगी। आज तक ब्यूरो।
2: देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB संधु जी और जोशी जी आ गए। वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं, इट्स डन ब्रो, हो गया।
3: मान जाओ।
2: राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, नहीं तो नाजी युग जब खत्म हुआ था आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।
4: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक। आयोग ने कहा कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं। एसआईआर पर बयान फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध एकजुट विपक्ष। 30 सितंबर को दिल्ली में गठबंधन इंडिया की बैठक। बंगाल की रैली में ममता ने ज्ञानेश कुमार को कहा वैनिश कुमार। मिशन यूपी के लिए दिल्ली में महामंथन। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 घंटे से ज्यादा देर तक मंथन। जेपी नड्डा से भी मुलाकात। यूएन में भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया। शहबाज शरीफ की कश्मीरी राग पर भारतीय प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने कहा पाकिस्तान दिन में करता है ढोंग और रात में फैलाता है आतंकवाद। आज रात विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन भी। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। पुरुष कबड्डी में भारत ने लहराया परचम। ईरान को हराया। भारत के खाते में कुल 5 स्वर्ण समेत 28 मेडल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये बहस हम एक ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब चुनाव आयोग पर, जिसको कहते हैं चारों तरफ से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग के इर्द गिर्द जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच अब नजर सीधा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, और इसीलिए ये चर्चा आज हम कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां सक्रिय हो रही हैं। 2027 के लिए अखिलेश यादव का पीडीए रथ निकल चुका है। इस पीडीए यात्रा का मकसद है योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए रथ जिस रायबरेली से चला है उसके मायने ढूंढे जा रहे हैं। रायबरेली राहुल गांधी की संसदीय सीट है। इसे गांधी परिवार की खानदानी सीट भी माना जाता है, लेकिन 2009 से समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसका फायदा सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी को मिला है लोकसभा चुनाव में। रायबरेली से अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा शुरू होने के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह कहा कि हम कन्नौज और इटावा जाएंगे। सवाल है कि क्या ये इंडिया गठबंधन में सीट समझौते को लेकर खड़ी हो रही तकरार है। वैसे अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा था कि गठबंधन मजबूत है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल की कमी हो रही है? सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे पर दबाव की पॉलिटिक्स हो रही है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? वैसे 2022 में रायबरेली की उचाहार जो सीट है वहां से एसपी को टिकट पर जीते मनोज पांडे अब योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। बीते दिनों उन्होंने शिव महापुराण कथा कराई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। सवाल है कि क्या रायबरेली से अखिलेश की पीडीए यात्रा उस पूरे क्षेत्र में अपने आधार को नए सिरे से साबित करने की कोशिश है? हल्ला बोल में आज हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि रायबरेली से ही क्यों चला अखिलेश का पीडीए रथ। लेकिन बहस इस बात पर भी होगी कि बीजेपी के लिए भी अब ये जेडीयू का 60 सीटों पर लड़ने का दावा, एलजेपीआर की तरफ से चिराग पासवान यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो इधर एनडीए का क्या होता हुआ दिख रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट।
1: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
2: प्रजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर में, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
1: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
3: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
1: उधर अस्तुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
4: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
1: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
5: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
6: क्या नहीं बोलना है,
5: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
1: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
0: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरदीप सप्पल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राघवेंद्र द्विवेदी प्रवक्ता एसपीएसपी के, रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शादाब चौहान प्रवक्ता एआईएमआईएम के। त्यागी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, इधर जेडीयू वाले भी तो कह रहे हैं 60 सीटों पर लड़ेंगे, बिहार की पार्टी यूपी में लड़ रही है, चिराग पासवान वहां पर खूब प्रचार पर प्रचार कर रहे हैं, उनके दफ्तर से बार बार जानकारी आती है कि उनकी रैली यहां पर है, आज कवर कीजिए रैली वहां पर है, तो आप अपना देखिए ना, उनका कब तक लड़ाई देखते रहिएगा, खोजते रहिएगा।
6: जी अंजना जी बिल्कुल लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है जेडीयू वालों ने कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी और बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से ही सारी चीजें बैठकर बेहतर तरीके से निकाल ली जाएंगी। लेकिन अब उनका क्यों देख रहे हैं, आपने कहा तो अब बताइए क्या करें। मतलब ये रोते भी यही है, वो है ना कि दियों को खुद बुझाकर रख दिया, इल्जाम फिर हवाओं पर लगाकर रख दिया, इनसे अपने हालात संभाले नहीं जाते, हर शख्स ने शिकवा खुदा पर रख दिया। ये नाराज फूफा इस देश में कोई भी चुनाव हो, कोई भी इस तरह का विषय हो, आपस में ही नाराजगी शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं चुनाव खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, सीईसी खराब है, ईवीएम खराब है। अरे भैया आपका आपसी तालमेल खराब है, बहुत ही गड़बड़ है, कोई एक चुनाव देखिए। चलिए थोड़ा सा शुरू से करते हैं, जब 2023 में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, कहा गया अरे ये चिरकुट नेता जो होते हैं कांग्रेस वाले, अजय राय जी को कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, इनसे समाजवादी पार्टी पर जो है कमेंट ना करवाएं। फिर उधर से कमलनाथ जी ने कह दिया क्या ये अखिलेश वखिलेश समय बर्बाद करते रहते हैं। फिर बंगाल पहुंचे, बंगाल में ममता दीदी ने कहा अरे इनके पास जीरो सीट है, दो इनको मैं दे रही हूं, नहीं लड़ना मत लड़े साथ में, अलग हो गए। फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा ये तो लेफ्ट के साथ मिलकर भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अभी नाराज फूफाओं की तरह चुनाव का आगाज नहीं हुआ, स्थिति देखिए कैसे। इमरान मसूद कह रहे हैं जितना लेट हो रहा है सीट बंटवारे में उतना ही नुकसान हो रहा है, हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए और इसके अलावा अखिलेश को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसके बाद इकरा हसन कहती है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। उसके बाद जो नए नए असीम वकार कांग्रेस में आए हैं, वो नए नए असीम वकार इकरा हसन को कहते हैं कि वो नई नई नेता बनी है। हालात इतने खराब हैं, सर फुटव्वल है और सारी दुनिया की परेशानी, सारी दुनिया की जो दिक्कतें हैं वो सब कुछ बताते हो दूसरों पर। तो जाहिर है जब आपकी लड़ाई इतनी सर फूटते फूटते फूटते फूटते पब्लिक डोमेन में आएगी तो बात तो होगी ही और होनी भी चाहिए।
0: चलिए अब आइए, अब सप्पल साहब आप आइए, ये तो बीजेपी वाला कोई कह नहीं रहा है, अजय राय इस बात पर नाराजगी कह रहे हैं और ये कहना कि हम इटावा और कन्नौज जाएंगे, मतलब वो सीधा निकाल रहे हैं कि भाई आपकी खानदानी सीट जो थी उस पर समाजवादी पार्टी वाले वहां पर पहुंच गए हैं, इसलिए हम आपकी खानदानी सीटों पर जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर ये क्या दिखा रहे हैं आप जनता को?
7: शुक्रिया। अभी मैं शिवम जी को भी सुन रहा था। आपने ये तमाम आर्ग्यूमेंट 2024 के चुनाव में भी सुने होंगे बीजेपी से, यही भाषा थी, यही पिन पॉइंटिंग पिन चुभने की बात थी। अंत में क्या रिजल्ट आया? 43 और 35। अंत में क्या रिजल्ट आया कि जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी के अलायंस से वोट शेयर में भी आगे था। देखिए जमीन पे हकीकत बदल चुकी है। अभी भी अगर आप पुराने जुमलों से पुराने प्रिज्म से अगर नापनी कोशिश करेंगे तो वही हश्र होगा जो 2024 को आंकने में हश्र हुआ था। 400 सोच रहे थे, 240 पे अटक गए। सच क्या है? सच यह है कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में अपना काम कर रही है और समाजवादी पार्टी भी अपना काम कर रही है। जब अलायंस हुआ था 24 में, स्मूथ अलायंस चला था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी इशू ये नहीं है, अभी तो इशू है जो पूरा देश इस पर उद्वेलित है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के आंदोलन हुए, हर राज्य में हर उसके अंदर हुए कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। देखिए चुनाव की जो सैंक्टिटी है वो इनके राज में खत्म हो रही है, ये आरोप नहीं रह गए। अब शिवम बोल रहे थे आरोप हैं, अरे आप जितना जल्दी समझेंगे उतना कम आपका नुकसान होगा, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन है, अभी तक जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि आरोप हैं, अब तो सामने आ गया कि वो फाइलों के अंदर बंद सबूत हैं। तो इससे निपटिए, हम अपना काम करेंगे, गठबंधन काम करेगा और चुनाव का रिजल्ट आगे दिखेगा आपको, क्योंकि यूपी की जो सरकार है वो करीब करीब पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है, हर सेक्टर में कोलैप्स हो चुकी है। जो केवल और केवल जिस तरह से सेंटर में मोदी और शाह जुमलेबाजी करते हैं, स्टेट में योगी जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को जुमलों से मतलब नहीं है, वो दुखी हो, जॉब चाहते हैं, वो एजुकेशन चाहते हैं, वो विकास चाह रहे हैं।
0: चलिए इसका एक जल्दी से जवाब दीजिए। और चुनाव आयुक्त को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर, उसके इस्तीफे से कम पर विपक्ष नहीं मान रहा है, इस पर त्यागी जी आपको घेरा जाएगा, यूपी का चुनाव सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, इसके बाद तुरंत आ रही हूं फरासा।
6: थैंक यू जी, बिल्कुल बिल्कुल लिटमस टेस्ट होगा, हर चुनाव ही हमारे लिए लिटमस टेस्ट होता है। लेकिन सपल जी एक बात तो बताइए, ये कब तक अपने जीवन में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट

0: में डूबे रहोगे। मैंने नहीं कहा है, भाजपा ने नहीं कहा है, अजय राय कह रहे हैं ये खानदानी सीट। और ये सबसे पहले तो आप इस देश में 60-65 साल तक ये समझते रहते थे कि ये प्रधानमंत्री की कुर्सी खानदानी सीट है आपकी। जब वो चली गई और ये सवाल पूछा जाता है आपके नेता से कि वोट चोरी कैसे हुई, कहते नहीं नहीं वो मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी कि वो एंटी इनकम्बेंसी तो हर किसी के लिए काम करती है, इंदिरा जी के लिए भी काम की थी, फीलिंग से देश नहीं चलता ना भाई। दूसरी बात यह है, ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, रायबरेली हमारा है, इटावा हमारा है, मैनपुरी हमारा है, किसी का नहीं है भैया, जनता का है। और जनता ने हरा दिया था कन्नौज भी, और फिर से हरा देगी जनता। और जहां तक बात 2024 का विषय है, जाहिर है हां हमारी सीटें कम हुई लेकिन जीते हम ही। अब आगे आते हैं, अंजना जी मुझे एक चीज बताइए, इस देश में 2014 के बाद से 75 चुनाव हुए, 71 चुनाव हुए विधानसभा के, 3 चुनाव हुए लोकसभा के, उन चुनावों में से टोटल जो चुनाव हुए 41 जीते हम, 34 जीता विपक्ष। अगर इलेक्शन कमीशन खराब है, सीईसी में दिक्कत है, तमाम पूरी बॉडीज में दिक्कत है, हम वोट चोरी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 41 जीतेंगे और आप 34, कम से कम 50-55 कहीं तो पहुंचते।
1: इस पर तो उनका आर्गुमेंट है कि आप केरल थोड़ी जीत लीजिएगा,
0: तो वहां कोई दिक्कत नहीं है।
1: अरे इस पर तो उनका आर्गुमेंट है कि आप तमिलनाडु केरल थोड़ी जीत लीजिएगा जहां पर आपका अस्तित्व ही नहीं है, तो बीच बीच में आप इनको जिता देते हैं, ये कहना है।
0: अंजना जी ऐसे कैसे नहीं अस्तित्व तो हाँ भाई, एक अच्छा तो बीच बीच में मतलब 34 जिता दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 6 चुनाव का ही फर्क है, थोड़ा तो ज्यादा जीतना चाहिए। और बिल्कुल तमिलनाडु केरल भी हम एक दिन जीतेंगे, हम तो बंगाल में भी 3 पर थे लेकिन वहां पर भी जीते, हम तो दिल्ली 20 साल में नहीं थे हम वहां पर भी जीते, हरियाणा में रिपीट नहीं होते थे हम वहां पर रिपीट हो गए।
1: और चीज
0: सबसे बड़ी बात यह है, 2014, 2019, 2024 हम तीनों चुनाव इसी तरीके से जीते हैं, तमाम राज्य हम इस पर जीते हैं। और इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो है, आप केरलम जीत गए, तमिलनाडु एक नई पार्टी जीत गई, वहां पर फिर सन्नाटा, उत्तर प्रदेश में जो कि नहीं होने वाला अगर जीत गए फिर सन्नाटा, ऐसे आप सेलेक्टिव एमनीशिया के तहत नहीं आगे बढ़ सकते।
1: फराज किदवई साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, एक बार तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को भी दिखाइए, क्योंकि वहां पर बुलडोजर से फूल बरसा रहे थे अखिलेश यादव के लिए, वहां पर जो समाजवादी कार्यकर्ता वगैरह मौजूद थे। ये रायबरेली से ही क्यों चला अखिलेश यादव का कि ये रथ यात्रा चली, और ये इसका क्या मतलब है, ये बुलडोजर मतलब बुलडोजर का प्रचार आप लोग कर रहे हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे बुलडोजर का प्रचार वो कर रहे हैं।
2: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जहां तक रायबरेली की बात है तो मैं आपके दर्शकों के जरिए एक बात ये कहना चाहता हूं कि रायबरेली कोई अफगानिस्तान में नहीं है, रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि भारत में आता है, और हमको संविधान ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को यह अधिकार दिया है कि वो राजधानी कि वो रायबरेली से भी शुरुआत कर सकते हैं और अमेठी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी क्या है अंजना जी के शिवम त्यागी जी ने एक शेर सुनाया और वो तमाम बातें कर रहे थे, नाराज फूफा की उन्होंने बात की, मैं दो बातें कहना चाहूंगा, एक शेर मैं भी सुना दूंगा शिवम जी को कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। अरे भाई संजय निषाद जी, अंजना जी नाराज फूफा है कि नाराज जीजा है, वो भी कह रहे थे ना कि वी विल कंसीडर अदर ऑप्शंस अगर हमको सम्मान अगर हमारी कम्युनिटी को ओवरलुक किया गया या हमको सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई। ये वही संजय निषाद जो हैं वो नाराज फूफा बन जाते हैं जब 2024 में प्रवीण निषाद चुनाव हार जाते हैं और संजय निषाद जी कहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम इनको प्रवीण निषाद जी को इसलिए चुनाव में चुनाव हरवा दिया षड्यंत्र करके कि संसद में कहीं वो आरक्षण की आवाज ना उठा पाए। तो वो नाराज फूफा था या नाराज जीजा था ये भारतीय जनता पार्टी वाले कोई नहीं बताएंगे, और अनुप्रिया पटेल को क्या बोलेंगे, नाराज फूफी बोलेंगे, जो उन्होंने अभी 1-1.5 साल पहले कहा था ना कि जो क्या नाम है जॉब्स में, जो जॉब्स में जब ये ओबीसी अभ्यर्थियों वाला जो घोटाला कर रहे थे, 69,000 शिक्षक भर्तियों का घोटाला वाला जो हुआ था, तो उसमें अनुप्रिया पटेल जी को क्या बोलेंगे। और
1: फराज जी तो आपका मुख्य आर्ग्यूमेंट ये है कि इनके यहाँ भी लड़ाई चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है, यही कह रहे हैं।
2: हमारे हमारे
1: बताइए ना, जिस सीट पर आप लोग कंटेस्टेंट नहीं खड़ा करते थे, कांग्रेस पार्टी को आराम से जीतने देते थे, ऐसी रायबरेली अमेठी ऐसे तो गढ़ ही माना जाता है ना भाई गांधी परिवार का, वहां ऐसे क्यों शुरू किए, कुछ मकसद तो होगा।
2: नहीं सर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए
1: अजय राय कह रहे हैं कि हम कन्नौज पहुंच जाएंगे, हम इटावा पहुंच जाएंगे, तब
2: देखिए अगर अजय राय जी कन्नौज जाएंगे, अजय राय जी इटावा जाएंगे तो उनके जाने से समाजवादी पार्टी का फायदा होगा। वैसे ही जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली से जो ये कैंपेन शुरू किया है, तो रायबरेली नेता विपक्ष की लोकसभा सीट है जिसको इस देश जो इस देश के 65% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज पूरे भारत में अंजना जी इसका जाएगा।

0: रोहित जी, और चिंता करनी चाहिए तो इस बात की बीजेपी को करनी चाहिए कि बहुत, जो एक बार तस्वीरें दिखाई है, बहुत बड़ा वहां पर ये रैली करने में वो सफल रहे रायबरेली में, तो चिंता तो ये होनी चाहिए कितनी भारी तादाद में लोग आए हैं इस रैली में। वो तो आपस में उनको पता है कि उनको लड़ना है बीजेपी से, तो एक साथ ही लड़ना है। और अब से मैं आपको बता रही हूं, कम से कम 3-4 महीने तो हो चुके हैं, 3-4 महीने पहले ही मुझे एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने सीधा कहा था कि हम सीट शेयरिंग करेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्लैरिटी के साथ।
1: आदरणीय अंजना जी, मैं जिन बातों का उल्लेख करने जा रहा हूं, आपका निश्चित रूप से मतांतर होगा, आप खंडन कीजिएगा, लेकिन मुझे पूरा बोल लेने दीजिएगा। बचपन में पटना के गांधी मैदान में और बनारस में लंका पर भी हम लोग ओपी शर्मा का जादू देखे हैं, हजारों लाखों लोग आते थे देखने के लिए, सर्कस भी देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, लालू यादव की जोकड़ई सुनने के लिए भी लोग जाते थे, और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पहलवानी को देखने भी लोग जाते थे। देखने का मतलब वोट में परिवर्तित नहीं होता है। श्रीमान अखिलेश यादव जी जो पीडीए के रथ पर विद्यमान होकर उत्तर प्रदेश की गलियों में निकले हैं पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश की आइडियोलॉजी के प्रसार के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता उनके झांसे में नहीं आने जा रही है। स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, रायबरेली प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत गए हैं, राहुल गांधी को बार्गेन करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए गए हैं कि ठीक से रहिए नहीं तो फिर हम आपके क्षेत्र में ही सेंधमारी कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई आधार है क्या? और समाजवादी पार्टी के वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया कैंपेन को उत्तर प्रदेश की जनता भूली है क्या? श्रीमान अखिलेश जी को 27 में 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता रोकने जा रही है। अखिलेश जी की जो क्रिमिनल बेस्ड आइडियोलॉजी है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के 3 कार्यकालों को बिसाड़ने का काम नहीं किया है, और श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वर्ष 2012 से 2017 तक जिस प्रकार से गायत्री प्रजापति, उसी रायबरेली अमेठी के आसपास के एक विधानसभा क्षेत्र से गायत्री प्रजापति नाम के एक माफिया माइंडेड नेता को एमएलए बनाकर कैबिनेट मंत्री अखिलेश जी ने अपने कैबिनेट में बनाया था, यूपी भूला है क्या उन चीजों को? कभी नहीं भूला है उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी के सपने साकार नहीं होने जा रहे हैं। रायबरेली गए थे, राजनारायण जी से तो माफी मांग लिया होता कि राजनारायण जी आपने जो समाजवादी विचारधारा का बीजारोपण किया था, मैं और मेरे पिताजी तो परिवारवादी राजनीति में चले गए। राजनारायण जी का परिवार के बेटा बेटी पतोह पोता पोती नाती नातिन का नाम कोई जानता है? अखिलेश जी के जमाने में देखिए या स्वर्गीय मुलायम सिंह के जमाने में देखिए, पूरा परिवार का नाम जानता है। बलिया की बैरिया से शुरू कीजिए, जयप्रकाश अंचल उनके पिता भी विधायक हैं, उनके पिताजी शारदा प्रसाद अंचल मुलायम सिंह के कैबिनेट में मंत्री थे, सपा के संस्थापक थे। गाजीपुर आइए, साइकिल चोर मुख्तार के भाई समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल जो है एमपी हैं सपा से, जंगीपुर एक विधानसभा है, 30 सेकंड ले रहा हूं, गाजीपुर में वीरेंद्र यादव विधायक हैं, पहले उनके पिताजी कैलाश यादव एमएलए और मिनिस्टर होते थे, पिताजी के मरने के बाद माताजी विधायक हुई थी। आजमगढ़ चलिए, अतरौलिया सीट है, संग्राम यादव सपा के विधायक हैं, पहले बलराम यादव उनके पिताजी एमएलए और मंत्री होते थे, सपा के बड़े नेता हैं। अब आप आइए मऊ सदर, मुख्तार अंसारी चले गए साइकिल चोर, उनका बेटा अब्बास अंसारी विधायक है, सपा में शामिल हो चुका है। प्रयागराज आ जाइए, देख लीजिए क्या स्थिति है, प्रतापपुर एक सीट है।
0: हमको लगा कुलदीप सेंगर का भी नाम रोहित जी आप जरूर लीजिएगा। कुलदीप जी, हमको लगा कि जब आप जघन्य अपराधों में नेताओं का नाम ले रहे हैं तो कुलदीप सेंगर का भी नाम लीजिएगा, लेकिन आपकी लिस्ट में वो नहीं होगा। चलिए सुनिए ना, आप जब बात करें, आप जब कह रहे हैं भीड़ की बात कि नेताजी की पहलवानी देखने के लिए लोग आते थे, तो मुलायम जी कितने बार सीएम रहे खुद आप ही ने बताया है, और वही मुलायम सिंह यादव ना जिनको पद्म विभूषण दिया बीजेपी की सरकार ने।
1: बीजेपी की सरकार ने नहीं दिया, भारत सरकार ने दिया, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों मिला। आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, गौरव हैं बिहार की और महिलाओं की।
0: 10 सेकंड और
1: प्रधानमंत्री लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, राष्ट्रपति लेती हैं, सरकार लेती है, सरकार पूरे देश की है, जनता की सरकार है, ये समाजवादी पार्टी और नमाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। 10 सेकंड और, मैंने जो ये नाम गिनाए हैं पीडीए की आड़ में परिवार के संरक्षण के नाम गिनाए हैं, और मैंने कोई क्रिमिनल्स का नाम नहीं गिनाया है।
0: बस मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खाली सेंगर का भी नाम ले लेते और भी 2-4 जो है बीजेपी वाले उनका भी नाम ले लेते तो अच्छा रहता। फराज जी, चूंकि आपकी पार्टी पर बोला, तम 2 लाइन का रिबटल, फिर मुझे बाकी दोनों शादाब चौहान और उनके पास जाना है।
2: बस मैं 2 लाइन में ही बोलूंगा, इनसे बोलिए विपुल दुबे और बेदी राम के बारे में भी जरा बोलते जाएंगे कि जो कि पेपर लीक माफिया है, एनएसए उनके ऊपर लगा था, उत्तर प्रदेश एसटीएफ उनको ढूंढ रही थी, और उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेपर लीक में उनका हाथ था, और ये और इनकी पार्टी के जो समर्थक है उससे वो विधायक है, एमएलए है और अभी भी है, और उनके साथ गठबंधन में ये सरकार चला रहे हैं। पेपर लीक माफिया जिनके साथ हो
0: और पेपर लीक पर
2: कुछ नहीं बोलेंगे, ये
0: आंदोलित है इस वक्त इस देश के युवा
2: और इनके विधायक।
0: जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी
1: फराज साहब बहुत, अरे भाई, अरे फराज जी, जौनपुर से टिकट नहीं मिलेगा। सुनिए, एसबीएसबी के टिकट पर जब बेदीराम विधायक हुए थे तो श्रीमान अखिलेश यादव जी के गठबंधन में चुनाव लड़े थे, याद कर लीजिएगा।
2: अब
1: मूल बात पर आइए, मामला
2: तो
1: विचाराधीन है ना दोषियों। अरे सुनिए ना, अरे रुकिए भाई, कैसे हटा दीजिए, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, पुलिस जांच कर रही है, चोर आपकी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में ईमान वाले लोग हैं, और व्याकुल मत होइए जौनपुर से विधायक बनने के लिए, हमारी शुभकामना है आपके साथ, लेकिन मुश्किल है, अखिलेश जी परिवार को लड़ाएंगे वहां भी।
0: आप लोग तो बहुत ताकत लगाए, ओवैसी जी चिट्ठी लिख लिख के थक गए, ये सब तो छूने को तैयार नहीं है चिमटे से भी आप लोगों को।
3: देखिए अंजना जी, हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और इसीलिए हमने खुले मंच से कहा कि आओ मिलकर के बीजेपी को हराएं। लेकिन ये क्या है, ये एलीट ग्रुप जो है इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये कुर्सी की लड़ाई इनके लिए महत्वपूर्ण है, इनके लिए बीजेपी को हराना महत्वपूर्ण ही नहीं है। ये रोज बेटिंग करते हैं इनके नेता, ये इसको गाली देगा, कांग्रेस वाला उसको गाली देगा। आप बताइए कि महंगाई पर, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार पर कितने आंदोलन किए। आप बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी ने आखिरी बार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के विरुद्ध कब मोर्चा खोला था, मुझे कोई बता दे। ये लोग बोलने तैयार नहीं है, ये जनता निश्चित आंदोलित है, जनता बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन इनके अंदर अहंकार है, ये मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। अब बताइए, हमने कहा पीडीए में जब तक ए फॉर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होगा, वो गठबंधन झूठा है, और ऐसे ठगबंधन को उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट देने वाला नहीं है। 34 साल आप पर विश्वास कर लिया सर, लेकिन आपने धोखा दिया। बिहार में आपके भाई तेजस्वी यादव को यही अहंकार था, लेकिन उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट एमआईएम का था, कांग्रेस से अच्छा स्ट्राइक रेट एमआईएम का था। आज भी हम बार बार कर हमारे नेता ने कहा
0: जगह तो आपका जमाना जब्त हो गया था यूपी में, बिना मतलब का वोट काटने के लिए लड़ते हैं आप लोग चुनाव, और कुछ नहीं यूपी में।
3: अंजना जी, अगर किसी को लगता है कि हम वोट काटने वाले हैं तो कह रहे हैं कि ऑप्शन दे रहे हैं, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर हम हमारे वोट कटने का डर है हमारे से, तो आइए वोटों को जोड़ लीजिए। तो
0: सोचिए ना, जब ये 15 मिनट पुलिस हटा दो और ये सब बोलते हैं, तब सोचिए ना कि इसका क्या हाल होगा, कि आज आपको सबको ये अछूत की तरह ट्रीट कर रहा है पॉलिटिकली। तो वो सोचिए ना, जब उस समय बोलते हैं आपके नेता, उन लोग को बताइए कि सब ना बोला करें। राघवेंद्र जी, रायबरेली से अखिलेश का पीडीए रथ चल पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव वहां भी कह रहे हैं कि भाई हम गठबंधन में साथ में हैं।
4: देखिए अंजना जी, सवाल रथ और उनके जो है बग्घी का नहीं है, सवाल है कि पिछले कार्यकाल में ये क्या किए जनता के साथ। रंग बदलना आसान है, लेकिन कारनामे जनता भूल नहीं सकती है। ये सरकार को, बीजेपी को घेरते घेरते ये कांग्रेस पार्टी को हैसियत दिखा दिए कि देखो तुम्हारी रायबरेली में क्या हैसियत है, अगर ज्यादा छटपटाओगे तो रायबरेली में जो 2009 से तुमको हम एक जीवन दान दे रहे हैं अपनी पार्टी का प्रत्याशी न उतार के, तो यहां तुमको सीट भी नहीं देंगे। ये आईना दिखाए। अभी आज अजय राय जी जो आईना दिखाए, मैं तो कहता हूं अजय राय जी, अगर आपके पास पार्टी में हैसियत है, वास्तव में आपके पास कार्यकर्ता है, तो आप जाइए ना इटावा से एफआई करना लड़िए। देखिए, कैरियर पर बैठने वाली पार्टी केवल पार्टी कार्यालय में बैठ के प्रेस वार्ता कर सकती है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी के नेता हैं, और ये बात कल रायबरेली में स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव जनता के बीच भी जाएंगे तो उनको एसी वाला रथ चाहिए। जनता ये जानती है कि उनको एसी से बाहर निकलेंगे तो टाइफाइड हो जाएगा। अभी तमाम बातें हो रही थी, अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि रायबरेली पाकिस्तान में नहीं है। अरे भैया, पाकिस्तान में नहीं है तो आज तक आपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा, क्यों प्रत्याशी नहीं उतारे? अरे आपके पार्टी के कितनी बेइज्जत होगी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तत्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं अखिलेश वखिलेश, तब भी शर्म आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। कोई मुल्ला मौलाना आपके पार्टी के पत्नी को क्या कहता है, तब भी आपको शर्म आता है कि नहीं आता है? अरे आप शर्म क्या करेंगे, यादवों के लड़कों को पढ़ा के एसडीएम बनाते हैं और मुसलमानों के लड़कों को पढ़ा के आतंकवादी, ये आपकी असली चेहरा है उत्तर प्रदेश में उन्माद फैलाने का जो।
0: फराज जी, एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं त्यागी जी के पास जाऊंगी। फराज जी,
2: अंजना जी, इन्होंने अभी जो दो बातें कही है, पहली बात तो ये कि ओम प्रकाश राजभर जी को मैं भारत का डोनाल्ड ट्रंप बोलता हूं, जो कि कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे उनकी
0: अच्छा,
2: बात
0: बीच में इतना रूठ गए थे राजभर जी कि कुछ दिन तक जब तक उनकी बात नहीं मानी गई तब तक उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्ट डालना बंद कर दिया। जैसे उनकी बात मान ली गई फिर अगले दिन से फिर वही सुबह सुबह उठ के
2: तो इस हाँ अंजना जी इसीलिए मैं उनको भारत का डोनाल्ड ट्रंप बोलता हूँ। अभी देखिए आपके चैनल पे इन्होंने कुछ बोला है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुसलमान बच्चों को पढ़ा लिखा करके आतंकवादी बनाते हैं, ये बाइट सेफ की जाएगी। और जब ओम प्रकाश राजभर जी मुस्लिम मोहल्लों में वोट मांगने जाएंगे तो ये बाइट चलाई जाएगी। अब इस बाइट पर ओम प्रकाश राजभर जी माफी मांगेंगे आप देखिएगा। दूसरी बात अभी क्या बोल रहे थे कि क्या नाम है राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी अभी ये बोल रहे थे कि आईना दिखा, अरे आईना तो अंजना जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाया है जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का उन्होंने क्या बोला था डिस्टोपिया वाला, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि जिसमें सारी पावर्स खत्म कर दी जाती है, सिटीजन राइट्स नहीं होते। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया है, तो आप क्या बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में अंजना जी मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ना हेल्थ के सेक्टर में कोई काम हुआ है, ना एम्प्लॉयमेंट में कोई काम हुआ है, ना लॉ एंड ऑर्डर के उसमें कोई काम हुआ है। और जहां तक रही बात दलितों की तो दलितों के ऊपर भी सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं 20 सेकंड में बस एक छोटी सी बात अंजना जी कहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी बोलते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अभी 6 फरवरी 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छपी थी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वहां की 1230 जो सैंक्शन पोस्ट थी डॉक्टर्स वगैरह की उसमें 712 पदीर जो है रिक्त थे। बलिया के अस्पताल में अंजना जी लाइट चली जाती है उसके बाद में डॉक्टर्स बोलते हैं कि जनरेटर चलाओ, जनरेटर खराब होता है तो टॉर्च की रोशनी से मरीज का ऑपरेशन होता है या इलाज किया जाता है। तो यहां दो चीजें साबित हुई, एक बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, दूसरा अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा चुका है। ये क्या बात करेंगे, उत्तर पर कैपिटा इनकम में उत्तर प्रदेश देश में सबसे नीचे है,
0: ठीक है,
2: पावर्टी में बॉटम थ्री में उत्तर प्रदेश आता।
0: अच्छा, आपने बुलडोजर पे कुछ नहीं बोला, एक बार उस पर भी बोल दीजिएगा, बुलडोजर लेके काहे पहुंचे थे अखिलेश जी।
2: देखिए मैं एक बात को बोल अंजना जी, बुलडोजर का जो इस्तेमाल है बुलडोजर का इस्तेमाल सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ना कि हम बुलडोजर से किसी के इनलीगली घर नहीं गिराएंगे, ये भी हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट कई बार बोल चुका है। हम बुलडोजर से सही काम लेंगे, हम बुलडोजर से सड़कें बनाएंगे, हम बुलडोजर से अस्पताल बनवाएंगे, हम बुलडोजर से पार्क बनवाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम बुलडोजर से फूल भी बरसाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह घरों को दुकानों को,
0: चलिए इसी का जवाब दे दीजिए मिस्टर त्यागी। मिस्टर त्यागी वो कह रहे हैं कि फूल बरसाएंगे लोगों के लिए, सड़कें बनाएंगे, असल काम जो बुलडोजर का है वो करेंगे, घर गिराने के लिए नहीं।
5: थैंक यू। सबसे पहले ये कहा फराज किदवई जी ने कि वो राजभर जी जो है हिंदुस्तान के डोनाल्ड ट्रंप है, तो यथास्थिति देखते हुए तो अखिलेश यादव जेलेंस्की होंगे फिर, क्योंकि जिस तरीके के ट्वीट्स चल रहे हैं वो आपको जवाब है और वो कॉन्वर्जेशन भी लोगों को याद होगी। दूसरी बात ये भी है कि जो इन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जो हालात हैं देश में, राजभर जी ने भी और निषाद जी ने भी क्या क्या कहा, निषाद जी ने कहा कि विल लुक फॉर एन ऑप्शन, आपको विल लुक फॉर एन ऑप्शन और अखिलेश वखिलेश बराबर लगता है, आपको विल लुक फॉर एन ऑप्शन और खानदान की सीट पर प्रचार करने चले गए बराबर लगता है, दोनों बराबर लगते हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। और इसके अलावा निषाद जी ने तो यह भी कहा कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ही अंतिम फैसला लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सम्मानजनक सीटें हैं वो मिलेंगी। आपको ये और इमरान मसूद के तमाम बयान बराबर लगते हैं। दूसरी बात, ये रोजाना टीवी पर अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, अखबार जनता पढ़ती है, पिन पॉइंट करके 4 केसेस उठाकर आप यहां पर जो देश को बताने और भरमाने की कोशिश करते हैं वो चलने वाला नहीं है। क्राइम अगेंस्ट दलित में उत्तर प्रदेश से पहले केरला है भाई, चेक कर लेना आप। और दूसरी एक और बात, जिस पर कैपिटा की बात कर रहे हो वो आपके समय में 56,000 थी, आज 1,08,000 है। तीसरी बात, आप जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश में पूरा जीवन 4 बार, प्लीज रुकिए ना अभी, मैं रुकिए मैं आप एनसी, अरे भैया नहीं है, पर लाख डेटा निकाला जाता है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, कृपया करके फिर से गूगल कीजिए और वापस आइएगा अपने समय में। दूसरी एक और बात, 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जीवन भर में एक एक्सप्रेसवे बनाया उत्तर प्रदेश में, जहां 7,500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे थे वो 12,000 किलोमीटर हो गए, ये कह रहे नहीं नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है।
6: इसी उत्तर प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेजेस थे जिनको बिठाकर 88 कर दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं वो व्यवस्था भी खराब है। उत्तर प्रदेश में आपके समय में क्राइम का स्थिति यह थी जिसको बदलकर अप्रोक्सीमेटली 93% कम कर दिया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को घटा दिया, एनसीआरबी के डेटा के आधार पर जो एक भी गलत है वो बलात्कार 24% से कम हो गए, डकैती लूट 68% से कम हो गई, सारा बताइए ना। और ये अखबार पढ़ना एक पॉइंट बताना बंद करिए। मैं भी ऑपोजिशन के राज्यों में उठाकर 10 घटना अभी आपको सुना सकता हूं सामने रखिए जो कि हीनियस क्राइम्स है, बलात्कार है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस बात का, क्योंकि राज्य में ओवरऑल क्या फर्क हुआ उसको देखना जरूरी है। पिछली सरकारों में क्या हुआ, आज की सरकारों में क्या हुआ, और अंत में भाई कुल मिलाकर मामला यह है कि अगली बार से जब हिंदी की वर्णमाला उठाना तो थोड़ा सा संस्कार खुद तो नहीं सीखे लेकिन किसी और को सिखाना। जीजा फूफा को इतना लिटरली लेने की आवश्यकता नहीं है, फूफा को लेकर कहावतें हैं, जीजा को लेकर नहीं है, पता नहीं क्या नाराजगी रहती है। और एक और चीज कहना चाहता हूं अंत में, जहां तक सीट बंटवारे का विषय है, चाहे वो एनडीए हो, हमारे घटक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम शालीनता के साथ बैठकर भाषा की मर्यादा को सामने सम्मानजनक तरीके से रखकर तब जो है सारी चीजें करते हैं। आप आए दिन लड़ते हो भाई, सवाल जवाब क्यों नहीं होगा। और हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। और मैं आपसे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य, हर चीज पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। पिछले 10 साल में जो जबरदस्त परिवर्तन आया है वो किसी भी डेटा पर आप बराबर नहीं आ सकते। हाँ, और काम करने की आवश्यकता है, इसीलिए भाजपा और एनडीए चाहिए।
0: ठीक है, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए फराज जी, उसके बाद मैं सप्पल साहब के पास जाऊंगी।
2: अंजना जी, आप जरूर ये भी बताइएगा डिबेट के खत्म होने से पहले कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में इस देश का कौन स्टेट नंबर वन पर है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर दलितों को जाने से रोकने के 96% मामले उत्तर प्रदेश से हैं। अंजना जी ये भी इनको बता दीजिएगा। दूसरी बात मैं छोटी सी और एक बता देता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश संभाला है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कम होता जा रहा है। 312 सीटें मिली थी मोदी जी के नाम पर, उसके बाद में 255 हो गई मोदी जी के नाम पर, 72 सीटें लोकसभा में मिली थी, घट के 62 हुई, उसके बाद में घट के 33 हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इलेक्शन दर इलेक्शन कम होता जा रहा है। और 2027 के विधानसभा के चुनाव में अंजना जी इनकी सीटें 155 के अंदर रह जाएं।
6: ठीक है, थैंक यू। एक काम करते हैं ना, अभी कर लेते हैं, अंजना जी को फैक्ट चेक कराने की क्या जरूरत है, उनकी टीम को इतनी मेहनत क्यों करानी। क्राइम अगेंस्ट दलित में उत्तर प्रदेश में 1,00,000 दलित के ऊपर 36.6% FIR होती है, परस्पर केरला में
2: 34.1%।
6: धन्यवाद आपका, अगली बार तैयारी बेहतर। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे भाई क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, गजब बात हो गई, बेसिक चांस नहीं लगाना है क्या, गजब बात हो गई, फिर से गूगल करना, दोबारा से मेहनत करके आना। खैर, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बड़ी नाराजगी है इस हिसाब से, और उनका कहना है कि उनका ग्राफ तो गिरता ही जा रहा है, इस हिसाब से अखिलेश जी के ग्राफ को कहां रखे हम।
2: हाँ, मैं बता देता हूँ,
6: 24 में भी प्रधानमंत्री हम ही है भाई, रुकिए ना प्लीज। अरे बीच में क्यों बताना है, अपने समय में बताना ना, मैं अपने समय में बता रहा हूँ, आपके समय में तो नहीं बोला, बोल तो रहा हूँ फिर से। 14 हारे 17 हारे 19 हारे 22 हारे 24 में भी प्रधानमंत्री मेरी ही पार्टी के हैं। और सुनिए, 27 बिहार हो गए, ग्राफ बताने बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। जहां तक बात है, 17 में मुख्यमंत्री बने, 19 का हाल आपने देखा, 22 आपने देखा, आप वो गिरते हुए ग्राफ के हिसाब से भी अगर चीजें करते रहेंगे उसमें भी आपको 15-20 साल अभी इंतजार कम से कम करना पड़ेगा, जो कि हम हमेशा से रिटेलिएट करके चीजों को बेहतर करके वापस आते हैं।
0: अब गुरदीप सप्पल साहब को बोले दीजिए फराज जी, थोड़ा सा रुक जाइए गुरदीप सप्पल साहब, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस, यानी जो रिपोर्ट कार्ड है योगी आदित्यनाथ का, वो ऐसा है कि जनता एक बार फिर उनके साथ होगी। और क्राइम के मामले में वो कह रहे हैं कि वहां की आबादी देखिए, पर लाख करके जब आप देखेंगे तो अन्य छोटे राज्य में और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, क्राइम को कंपेयर करना सही नहीं है।
7: शुक्रिया, आपका सीरियस चैनल होना चाहिए, ये मनोहर कहानियों की डिबेट में उलझने की जरूरत नहीं है। अलग अलग बातें आ गई इतनी देर में कि अखिलेश जी ने रायबरेली में जाके क्यों किया। मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को कि 2024 के चुनाव में भी अखिलेश जी, राहुल जी, सोनिया जी की रैली रायबरेली में हुई थी 17 मई को,
0: तो आप अजय राय को,
7: और
0: बता
7: राहुल
0: दीजिए,
7: जी अखिलेश जी की रैली कन्नौज में हुई थी 10 मई को।
0: नहीं, अजय राय को ये बता दीजिए,
7: पूरी बात
0: नहीं, प्रदेश अध्यक्ष
7: अजय राय ने भी यही बोला है, अजय राय ने भी यही बोली है कि हम
0: कन्नौज हम चले जाएंगे।
7: हम तो ये कह रहे हैं ना कि 24 में भी यही तो मैं बता रहा हूं कि 24 में भी कन्नौज में 10 मई को राहुल जी अखिलेश जी की रैली हुई थी, सेम बात कह रहा हूं। बाकी रही अब ये बहुत नाराज फूफा की बात कर रहे हैं इतनी देर से, अरे नाराज युवा की बात करिए, युवा नाराज है। खुद सीएम योगी कहते हैं कि हमने 9.5 लाख लोगों को रोजगार दिया 9.5 साल में, और इस साल में बेरोजगार युवा की आबादी कितनी बढ़ी है, 4.5 करोड़। यानी 4.5 करोड़ युवाओं में से आप अपने हिसाब से केवल 9.5 को नौकरी दे पाए हैं। और अगर आप बात करते हैं कि जो दूसरे दावे हैं इनके, 23 में कहा था कि हम 3 करोड़ को नौकरी देंगे, अब नहीं दिए, अब फिर से कहने लगे हम 3 करोड़ को देंगे आने वाले समय में, आप नौकरी दे नहीं पा रहे हो। आपके यहां जो इन्वेस्टमेंट है वो आ नहीं रहा है, बोला 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया,

0: आप नौकरी दे नहीं पा रहे हो, आपके यहां जो इन्वेस्टमेंट है वो आ नहीं रहा है। बोला 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, अभी डाटा रिलीज किया तो करीब 4,300 करोड़ का कुल उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कुंभ पे बोल दिया कि हमारे यहां 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू कुंभ पे आ गया, जीएसटी के फिगर आए वो कुछ था ही नहीं। ये झूठ पे लगातार जो बोलते रहे उसमें कई बार आप जीत गए, ठीक है हम भी मान रहे हैं, लेकिन अब हाल की जो जीत है शिवम जी वो वोट चोरी से ही हो रहे हैं। और ये मत कहिए कि वोट चोरी नहीं हो रही है, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि शिवम भी उस समय बहुत सारे टीवी डिबेट में इतने ही जोश से डिबेट किए थे जब महाराष्ट्र के अंदर 70 लाख वोटर अचानक बढ़ गए और हम चुनाव हारे। 70 लाख वोटर, राहुल जी ने कहा कि एक हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर वोटर बढ़ गए, तो शिवम और इनके सभी साथियों ने कहा अरे आबादी बढ़ रही है नया वोटर तो आएगा, ठीक है। अब एक साल के बाद क्या हुआ है, वहां पे 2 करोड़ वोटर घट गए, यानी हिमाचल की आबादी के 3 करोड़ वोटर घट गए। अब 1.5 साल के अंदर या तो 70 लाख बढ़ना ठीक था या 2 करोड़ घटना ठीक था, दोनों तो एक साथ ठीक नहीं हो सकते ना। और यही आधार है वोट चोरी का कि हम बता रहे हैं कि अब जो आप इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना कि हम जीत रहे हैं, आप जीत नहीं रहे हैं, आप जीत को चुरा रहे हैं। और जब चुराएंगे तो फिर ये जो पूरा का पूरा जो भांडा है वो फूटने लगा है, अंदर से चुनाव आयोग के फूटने लगा है। और जो आप कहते हैं कि भाई हमारे यहां तो बहुत स्मूथली सब कुछ होता है, सब कुछ बड़ा स्मूथली है, अरे पूछिए जरा योगी जी से, क्या आपने पंकज चौधरी जो आपके अध्यक्ष थे उनका स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया कि यूपी का इलेक्शन योगी और डिप्टी सीएम दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आपने विड्रॉ कर लिया है। अमित शाह जी को कह दिया गया जो
1: बात अब नौकरियों की होनी चाहिए, युवाओं की होनी चाहिए। अब सम्राट चौधरी का मैं बिहार में इंटरव्यू कर रही थी, मैंने फर्स्ट उनके सामने रखा, 1 करोड़ नौकरी उन्होंने दी है, कहा है, लिखा है उस मैनिफेस्टो में। आ रहे हैं रोहित जी, आ रहे हैं, बिहार का नाम आते ही आपका हाथ उठ जाता है, रुकिए। 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में। आपको पता है 1 करोड़ नौकरी अगर 5 साल में देना है तो प्रतिदिन, मतलब 365 दिन एक साल में, प्रतिदिन कितनी नौकरियां देनी होंगी। जब ये हिसाब किताब मैंने पूछने लगा तो बोला कि गिनती आप कीजिए, हम तो नौकरी देंगे 1 करोड़। सवाल है कि कहां से होगा, क्या होगा, कहां कहां पर नौकरी लगेगी, टाइमलाइन, डेडलाइन कुछ तो आए।
2: अंजना जी, पार्टी के प्रवक्ताओं को रखा है ना इसीलिए आपको जवाब देने के लिए, हम देंगे ना, बस 10 सेकंड में उनका जवाब देकर आपके जवाब पर आ रहा हूं। स्टीवन लेविट्स्की ने एक किताब लिखी है हाउ टू किल अ डेमोक्रेसी। राहुल गांधी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मॉडस ऑपरेंडा पर चल रहे हैं, ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही नहीं हो सकता मेरे भाई। अप्रोक्सीमेटली 42 एप्लीकेशन पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट और रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में है, एक भी जगह आप साबित नहीं कर पाए हो, और अलग अलग राज्यों के विषयों को लेकर आप इस देश के कोर्ट में गए हो। कोर्ट खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, हाई कोर्ट खराब, सीईसी खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, फौज खराब, देश के संस्थान खराब, मीडिया खराब, कौन सही, राहुल गांधी भाई, नहीं हो सकता ऐसे। मैं मानता हूं कि एक डिपार्टमेंट में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई एक टेक्निकल एरर किसी भी वजह से हुआ, मैं जनरल बोल रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसकी पूरे देश की हर एक संस्था को सिर्फ बुराई बुराई गलत गलत गलत गलत करके, और वही स्टीवन लेविट्स्की की किताब की तरह कि किसी लोकतंत्र को कैसे खत्म करना है, सिर्फ इसी माहौल को बनाते चले जाओ। अब नौकरियों पर आते हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 9.5 लाख नौकरियां दी है, वो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 लाख और दूंगा। उत्तर प्रदेश में आज 90 लाख स्टार्टअप है जिनमें 1.4 करोड़ युवा काम करते हैं। जब हिंदुस्तान में खासतौर पर मोदी सरकार आई, इस देश में मात्र 350 स्टार्टअप्स थे, वहां युवा काम कर रहा है। इसके अलावा 9.5 लाख नौकरियां सरकारी दी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीएम इंटर्नशिप स्कॉलरशिप के, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के तहत अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 लोगों को स्किल्ड ट्रेनिंग दी। इसके अलावा स्किल्ड इंडिया डिजिटल हब में हमने अप्रोक्सीमेटली 9 लाख लोगों को अलग अलग स्किल ट्रेनिंग दी, वो सब लोग काम कर रहे हैं। और फिर मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं, हाँ हम नौकरी दे रहे हैं, हाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, हाँ युवाओं के लिए अलग रास्ते तलाश रहे हैं, हाँ हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इसी वजह से जीत रहे हैं और कोई वजह नहीं है। और आप इन सारी चीजों पर कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हार रहे हैं। कृपया करके इस देश के लोकतंत्र का इस तरह से मजाक मत बनाइए।
1: कोई भी चीज बोलो, आइए सप्पल साहब जल्दी से छोटा सा जवाब, फिर रोहित जी के पास जाऊंगा।
0: ये जो इतना बात बोल गए, अब आप एक ही चीज उठा लीजिए, पीएम इंटर्नशिप कितने करोड़ लोगों को 1 साल में देना था, कितने करोड़ को शिवम जी, और लोकसभा में डेटा दिया कि 5 करोड़ की जगह कुल 1,27,508 को ऑफर हुआ, जिसमें

0: में से कुल 3731 ने पूरी की इंटर्नशिप। ये लोकसभा में आपकी सरकार का डेटा है, अगस्त 26 का डेटा है, 6 अगस्त का
1: डेटा क्लियर डेटा कोड कर रहे हैं जो लोकसभा में दिया हुआ है।
0: देखिए देखिए पूरी बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए जहां तक चुनाव, ये जो कोर्ट केसेस की बात कर रहे हैं, SIR में वोट चोरी में जो कोर्ट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए वो उस आधार पे दिए जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट चुनाव आयोग दे रहा था। अब दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पे आपत्ति की, या पता लग गया देश को, सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी अपेक्षा है कि अब वो मंगाए फाइल और पता करे कि कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट दिए गए क्या वाकई वो डिस्कशन इलेक्शन कमीशन में हुआ था। यही तो हम बात कह रहे हैं, वो तमाम एफिडेविट आज इलीगल साबित हो रहे हैं और चीफ जस्टिस जो हैं जिनका एक बयान ने देश के अंदर पूरा आक्रोश पैदा किया था, उनके पास भी एक मौका है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की धाक को जमाने का। पता करें कि जो उनके पास चुनाव आयोग की तरफ से एफिडेविट आते थे जिसके दम पे उन्होंने चुनाव आयोग को सर्टिफाई किया था कि वो ठीक कर रहा है, वो सब फाइलों को बुलाकर अब जांच करें कि कितने फैसले थे जो सर्वसम्मति से हुए थे या बहुमत से हुए थे। आपने जो माहौल बना दिया है ना पूरे सिस्टम का, और आपको लगा कि किससे खुलेंगे नहीं, आपको लगा कि केवल RSS के लोग पूरे देश के अंदर है जो केवल आपका संकेत मान।
1: वक्त इतने की इजाजत दे रहा है, चर्चा अनंत हो सकती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: पार्टी हैज गॉन इन अलायंस विद द कांग्रेस पार्टी हैज सफर्ड मिजरेबली in popular support, with Congress party has lost popular support. अब ममता जी भी तो उनसे टूट के भागी थी ना, याद करिए, मुलायम सिंह का भी अलायंस था ना, उनसे टूट कर भागे थे ना, लालू प्रसाद जी का भी अलायंस था ना। तो ये जो इतने कांग्रेस हैं, चाहे वो तृणमूल हो या बाकी हो, ये सब तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ही रहे ना, बाद में अलग हुए। इसलिए आज हम इलेक्शन कमीशन के इस पूरे डिटेल स्टेटमेंट का बहुत ही स्वागत करते हैं, और इन्होंने साफ कहा है कि पूरे देश में SIR चल रहा है, कई जगह पूरा हो गया, कई जगह प्रक्रिया में है। उन्होंने ये भी कहा है किसी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आज के निर्णय में उन्होंने एक और बात कही है कि कुछ जगह पर समय को बढ़ाने का मांग था, उन्होंने उसको स्वीकार किया है। और एक बहुत बड़ी बात की है कि जिनको नोटिस दी गई है उन सभी जगह पर BLO खुद जाएंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार उनके लिस्ट में उसको इंक्लूड करेंगे, तो उनको आने की जरूरत नहीं है। तो सुविधा के नाते भी चुनाव आयोग ने बातें कही है। तो मुझे अपनी ओर से, पार्टी की ओर से कहना था, राहुल गांधी बार बार एक्सपोज काहे होते हैं, जितना विषय उठाते हैं सब में सरेआम पिटते हैं। मैं जान के कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं और मैं गिनती कराना चाहता हूं, चाहे वो राफेल की बात हो या बाकी बात हो, क्या क्या उठाते रहते हैं वो, जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती और उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कौन एक प्रकार से अनादर करता है वो राहुल गांधी खुद करते हैं। और उस दिन जो उनकी प्रेस हुई थी उसमें उनका यह भी संकेत था कि आवश्यकता पड़े तो कोर्ट की बात को भी नहीं मानना है, का संकेत वही था, मैंने सुना है उनको। तो ये सब उनका अपरिपक्वता दिखाई पड़ती है। मैं कांग्रेस के मित्रों को एक बात कहूंगा, कांग्रेस में पुराने लोग काफी हैं, उनको सिखाते क्यों नहीं, उनको समझाते क्यों नहीं। तो मेरे कुछ कांग्रेस के मित्रों ने मुझसे कहा बड़ी पीड़ा से, वो समझने को तैयार हो तब ना। तो मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आज ये कहना जरूरी है, ये है राहुल गांधी। तो फिर भी विपक्षियों से कहूंगा ज्यादा पर उन पर आज आलोचना नहीं करनी है, लेकिन कम से कम आप तो समझिए। और कृपया करके, विपक्षियों में बहुत सारे दल हैं, सब हारे हुए एक साथ चले आते हैं क्या? अरे मेहनत करिए, अपनी जगह बनाइए, जनता आपको वोट नहीं देती है तो उसका ठिकरा चुनाव आयोग पर मत तोड़िए। जनता नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है, उनके साथ चलना चाहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है, आर्थिक ताकत बना है, आज भी देखिए जितनी रेटिंग्स आ रही हैं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की, मैं किसका नाम, सब कह रहे हैं कि भारत का 7% एड ग्रोथ रेट आज दुनिया के लिए एक मील का पत्थर है, तो सभी कह रहे हैं। तो बाकी नहीं समझते हैं तो छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल तो बताइए।
3: एक सवाल सर ये भी है कि आज ये जो प्रेस नोट जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, तो उस प्रेस नोट में जो छठे नंबर का पॉइंट है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे अफसर थे जो कि डेपुटेशन पे।
4: तो प्रेस नोट आए चुनाव आयोग के, उसके बाद से बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिया। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: बार तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार सर एक दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: कैची है वायरल है
0: थैंक यू।
2: आप पर वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: उनादान परिंदे बैठ
1: बैठ बैठ।
2: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: बिजली का बिल पेड,
4: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
5: इतना माही वे।
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
6: असली शहद, असली स्वाद।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
10: In association with
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
13: चौल में घर छोटे होते थे, बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
14: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
13: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके, लोगों के घर टूटते हुए देखे हैं, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
5: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
6: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
8: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर सकते।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
9: चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भारत के युवा संविधान की रक्षा करेंगे, आपको एक्सपोज करेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे।
10: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के इन तेवरों के बीच कांग्रेस उनके खिलाफ सड़कों पर उतरी। उत्तर हो, पूर्वोत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूरब हो, देश के हर कोने में सीईसी के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। असम में गौरव गोगोई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते देखे गए। पटना और चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें फेंकी गई। चंडीगढ़, हैदराबाद और गुवाहाटी में पुतला दहन किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी माहौल बना सके। कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या बर्खास्तगी ना होने की सूरत में फिर से महाभियोग लाने का अल्टीमेटम दे रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नए आरोपों की झड़ी लगा दी। पार्टी ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया कि बीएलओ ऐप में वीआईपी वोटर कैटेगरी बना दी गई है।
11: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब रचना की संविधान की, तब एक बात बहुत स्पष्ट थी, उस पर बड़ा जोर दिया गया था कि बाकी सब कुछ भले छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वोट की कीमत सबकी एक जैसी होगी। सत्ता पर अब ऐसे संविधान विरोधी लोग सवार हो गए हैं कि उन्होंने वोटर को भी वीआईपी और साधारण की अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया।
10: कांग्रेस ने आज ये सवाल भी पूछा कि क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की आपस में बोलचाल बंद है। इस सवाल का आधार ये दावा बना कि 2025-26 में चुनाव आयोग में ट्रांसफर किए गए तकरीबन 50 अधिकारियों के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पर दस्तखत नहीं हो सके हैं। पार्टी ने आज चुनाव आयोग पर जेन जी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप इस दावे के साथ किया कि 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर रोल में जोड़ने की स्पेशल समरी रिविजन यानी एसएसआर प्रक्रिया जनवरी 2024 से नहीं हुई है। आज चुनाव आयोग पर दबाव एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से भी पड़ा है।
12: मुझे लगता है ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग खासतौर पर सीईसी की बनती है कि वो अपनी तरफ से पक्षों को मजबूती से रखें ताकि देश के एक भी नागरिक के मन में, मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
10: सीईसी के खिलाफ मचे हंगामे के बीच वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया, तो उधर सीजेपी भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ना होने पर जंतर मंतर पार्ट 2 की धमकी देने लगी है।
13: ज्ञानेश कुमार को मैं कहना चाहता हूँ कि सब दिन समय एक सरीका नहीं है, थोड़ा शर्म करो तुम कि देश के संविधान के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। अभी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञानेश को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करे, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं।
14: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
10: ज्ञानेश कुमार के बहाने विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगा है। पलटवार में बीजेपी राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठा चुकी है। वैसे जब से ज्ञानेश कुमार के नाम पर राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है, तब शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदर्शन में लखनऊ से पटना और कोलकाता तक इंडिया गठबंधन के साथ ही नजर नहीं आए। आज तक ब्यूरो

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 आयुक्तों की बैठक। आयोग ने कहा कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, SIR पर बयान फॉर्म 6 में बदलाव नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर तेज हुआ सियासी संग्राम। बीजेपी बोली संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल बार बार बेनकाब। 30 सितंबर को गठबंधन इंडिया के दिल्ली में बैठक। ममता ने ज्ञानेश पर बोला धावा। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन। पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात। जेपी नड्डा से भी बात। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। पुरुष कबड्डी फाइनल में भारत ने ईरान को हराया। भारत के खाते में कुल 4 स्वर्ण समेत 28। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज। बिहार, यूपी और झारखंड में भारी बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से अब कड़ाके की ठंड। और अब शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर तमाम तरह के विवादों के बीच आज चुनाव आयोग ने एक बड़ी बैठक की है। इस बड़ी बैठक के बाद तीनों ही चुनाव आयुक्तों की तस्वीर भी सामने आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी इस बैठक में शामिल रहे। और इस बैठक में तय किया गया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुख्य मुद्दा है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई भी लेना देना नहीं था। तो विवादों के बीच में जो प्रेस नोट है वो भी सामने आ गया।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: बीजेपी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है।
2: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज द मीटिंग दैट द इलेक्शन कमीशन हेल्ड विद द कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज नॉट रिगार्डिंग एनी पॉलिसी मैटर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नाइदर रिलेटेड टू एनी IT डिपार्टमेंट वर्क। ये इलेक्शन कमीशन के किसी पॉलिसी मैटर पर विषय नहीं था और न ही IT डिपार्टमेंट संबंधित किसी विषय को लेकर वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास गए थे। सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
3: तो राहुल गांधी जी, पहला सवाल है आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है। तीनों मेंबर्स बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए थे, निर्णय हुआ है। अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या EVM मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठिकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार पर हमलावर दिखाई दिए हैं और ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। अब से कुछ देर पहले, कुछ ही मिनट पहले राहुल गांधी का यह पोस्ट कि मोदी शाह ने ज्ञानेश को अंपायर बनाया। आज ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस नोट भी हुआ, उनकी एक लंबी बैठक हुई, तीनों साथ में भी आए, लेकिन चुनाव में उन्हें अंपायर की भूमिका दी गई। ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी का यह पोस्ट आया है। मैच जो फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह ने उन्हें एक ऐसा अंपायर बनाया है जो उनके लिए मैच फिक्स एक तरीके से करें। और हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, प्रेस नोट का आना, सभी चुनाव आयुक्तों का साथ होना, पूरे विवाद पर अपनी बात रखना, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इससे मामला शांत हो जाएगा। खासतौर पर कुछ देर पहले राहुल गांधी का पोस्ट अब क्लियर कर रहा है कि ऑपोजिशन का क्या एजेंडा या स्ट्रेटजी रहने वाली है।
4: देखिए, मैं जितना मुझे समझ में आता है, ऑपोजिशन जो है एकजुट होगा, यूनाइटेड होगा और एक के बाद एक हमला वो करते रहेंगे चुनाव आयोग के ऊपर। लेकिन चुनाव आयोग देखिए, जब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि आप सारे के अगर डिसेंट की बात की है तो डिसेंट कॉपी के ऊपर किया जाता है। डिसेंट जो है जब फाइल्स जाती है नीचे से ऊपर, तब डिसेंट के ऊपर सिग्नेचर्स किए जाते हैं। किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके का डिसेंट नहीं है। दूसरी बात जो चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर कराने का जो ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर आया था उस पे 12 स्टेट्स के अंदर एसआईआर की बात हुई थी। जो दूसरा ऑर्डर आया था एसआईआर में उसमें 19 स्टेट्स और यूटीज की बात हुई थी, उसके अंदर तीनों के तीनों यानी कि बोथ द इलेक्शन कमिश्नर्स और जो सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, उनके सिग्नेचर्स बकायदा थे। एक अहम मुद्दा जो और उठाया गया था वो ये है कि चिट्ठियां लिखी गई, नोट्स लिखे गए, बिल्कुल लिखे गए, लेकिन वो जो नोट्स लिखे गए थे वो किसी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस जो दो ईसीज हैं उनको लगे कि शायद किसी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हो रहे हैं, उनको लेके कैबिनेट सेक्रेटरीट को जो है वो नोट्स भेजे गए थे। और देखिए, तीनों के तीनों एक साथ आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का विवाद होता तो फिर क्या तीनों एक साथ बैठते? चुनाव आयोग डे वन से कह रहा है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो ईसीज को लगी, और ये तो देखिए डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हम और आप भी अगर बात करेंगे, जरूरी नहीं है आप मेरी हर बात से सहमत हो, मैं आपकी हर बात से सहमत हो, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं इससे तो यही साबित होता है कि कितनी इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन है। लेकिन अभी के लिए ये पिक्चर जो 1000 शब्दों से ज्यादा कहानी।
0: बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है। और आज दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में भी सियासी हलचल तेज है।
5: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: प्रजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं। पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर है। और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोला है।
5: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए, तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
5: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
5: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या बोलना है
9: उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
5: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात बिहार के, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब किशनगंज से एक बेटी के साथ

0: ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
1: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात बिहार के, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में घमासान मचा दिया है।
3: बदलते नहीं दिख रहे जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में सीएम सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि सीएम ऑफिस के कर्मचारी पर।
4: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
3: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
5: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
6: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
3: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
7: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
3: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर। आज तक ब्यूरो।
2: तो पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आज TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई, जिसे लेकर BJP और TMC आमने सामने है।
8: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की यह नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
9: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম সাবল এনেছে।
10: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড ইজ অ্যাটাক অ্যাসল্টেড বিটেন আপ। Women are also not left over. They are manhandled, molested, beaten up by the police along with the BJP workers. There is no democracy in the West Bengal state.
8: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
11: कुणाल घोष हमारे MLA তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, তার গাড়ি টোটাল ভাঙচুর করেছে, তার গাড়িতে পুরো কাঁচ ভর্তি, তার সারা বডিতে তাকে অ্যাটাক করেছে।
8: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि BJP सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी

0: मौत हो गई। अब बीजेपी नेता टी मसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं आज तक ब्यूरो।
1: मथुरा से आज एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिष्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
0: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
2: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
0: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
3: उन्हें जब से गुरुदक्षिणे लिए जब से मिलने नहीं दिए।
4: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
3: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणे लिए।
4: क्यों नहीं मिलने देते थे
3: वो? हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको 1-2 घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं फिर बता रहे हैं, तो बस दिन बीते कर देते रहे वो लोग।
0: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
5: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं तुम? रोज आओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका था तुम।
0: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है? पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा आज तक।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक रूप से भक्ति भाव में डूबे नजर आए और कार्यक्रम के दौरान खंजरी बजाते हुए ताल से ताल मिलाते हुए दिखाए थे। भजन क्लबिंग के कार्यक्रम में फिल्म हनुमान अंश के गायकों ने भी भक्तिमय माहौल बनाया।
6: जब जिद पे आ गई पार्वती,
7: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर आयोजित भजन क्लबिंग में फिल्म हनुमान अंश के मशहूर गानों ने अलग ही समा बांधा। पीएम मोदी के सामने फिल्म के सिंगर साधु तिवारी ने जब जिद पर आई पार्वती गाना गाया तो वहां मौजूद सभी लोग झूम उठे।

0: अब बात आतंकी देश पाकिस्तान को यूएन में मिले करारे जवाब के करते हैं। यूएन के मंच से जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छोड़ा, सिंधु के पाने पर गीदड़ भभकी दी, भारत ने उसी मंच से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई।
1: दिस इज अ रेजिम ऑफ द आर्मी बाय द आर्मी एंड फॉर द आर्मी।
2: दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हुआ। आतंकी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान की सरकार को सेना के हाथों की कठपुतली करार दिया।
1: दिस इज अ रेजिम ऑफ द आर्मी बाय द आर्मी एंड फॉर द आर्मी। देयर पपेट्स मे कम एंड गो बट लेट अस हैव नो इल्यूजन हु कॉल्स द शॉट्स।
2: यूएन के मंच का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापते हुए कश्मीर को जुगलर वैन यानी जीवन रेखा बताया था।
3: कश्मीर हैज एंड ऑलवेज विल बी पाकिस्तान्स जुगलर वैन।
0: द एशियन गेम्स में भारत का जलवा जारी है, जहां पर एक बार फिर भारतीय धुरंधरों ने अपने खाते में गोल्ड डाला है।
4: कबड्डी में भारत का डबल धमाल, दो गोल्ड जीत कर किया कमाल। मैराथन में सावन को रजत, शूटिंग में महिला टीम ने जीता सिल्वर। सुबह पहले भारतीय महिला टीम ने सोना जीत कर देश का मान बढ़ाया, फिर उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पुरुष कबड्डी टीम ने भी ईरान को मात देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही इस एशियन गेम्स में भारत के गोल्ड मेडलों की तादाद 4 पर पहुंच गई है।
5: ये खुशी का मौका है भारतीय कबड्डी के लिए, ये गौरव का दिन है भारतीय कबड्डी के लिए। कबड्डी से जुड़े जो लोग हैं उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा है कि उन्हें शायद कबड्डी के अलावा कुछ दिखता नहीं। आज वो बहुत खुश होंगे क्योंकि दो के दो गोल्ड जो भारत को मिल सकते थे कबड्डी के बैट से वो आ चुके। जी हां, चख लीजिए स्वाद इस वन पदक का, बहुत ही मीठा है, बहुत ही मीठा है।
4: भारतीय महिला टीम फाइनल में चैंपियनों की तरह खेली और उसने साबित किया कि 5 में से 4 एशियन गेम्स में उसके गोल्ड मेडल महज तुक्का नहीं है। भारतीय महिलाओं ने ईरान को फाइनल में 37 और 34 से मात दी।
6: ऑन द पोडियम विद द गोल्ड वेटिंग टू कम अराउंड देयर कलेक्टिव एक्स, ब्यूटिफुली डन। कबड्डी द मेंस इज नॉट द ओनली गोल्ड दैट वी आर एक्सपेक्टिंग।
4: जाहिर है कड़ी मेहनत के सफल होने और सपने के सच होने की खुशी के ये पल खिलाड़ियों के लिए जिंदगी भर संजोने वाले हैं।
7: हमने पूल के मैचेस में थोड़ा गलती की थी कि एक साथ 2-3 पॉइंट चला गया था, तो हमारा स्ट्रेटजी ये था कि फाइनल मैच में गए तो एक जाए, क्योंकि एक साथ 2-3 ना जाए, क्योंकि हमारे रेडर को स्कोर मिल रहा था, बोनस आ रहा था, तो हमारा टारगेट ये था कि एक पॉइंट जाए पर वहां से हम कवर कर पाए, और वही हुआ। हमारा इस बार वो गलती नहीं हुआ, 2-3 पॉइंट नहीं गया एक साथ।
8: हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी गोल्ड की, और इससे भी ज्यादा ये था कि हमने लास्ट ईयर भी हम गोल्ड लेके गए थे, तो गोल्ड मेडल को बरकरार रखना हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
4: भारतीय महिलाओं के बाद पुरुषों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में ईरान को 40 और 34 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। इससे पहले भारत के सावन बरवाल ने मैराथन दौड़ में सिल्वर पदक जीता। 1982 के बाद मैराथन में भारत के किसी एथलीट ने पहली बार कोई पदक अपने नाम किया है। शूटिंग में भारत ने शनिवार को भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा और महिला वर्ग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल हासिल किया। आज तक ब्यूरो।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: पापा
12: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
12: छक्का
11: सब कैशलेस हो गया है। ला भाई मेरा बैट।
13: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
11: चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
17: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: कैची है, वायरल है।
2: थैंक यू।
4: आप पे वो TMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
6: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
4: वो नादान परिंदे।
3: बैठ जा।
4: सर, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट।
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने, भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक दो टूटी ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठ, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
7: तो कौन सी बनानी है?
8: एकदम सॉलिड।
9: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
10: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी बोली संस्थाओं को बदनाम कर रहे कांग्रेस, राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को अंपायर बनाकर चुनाव मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग ने कहा कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर फॉर्म 6 में भी कोई बदलाव नहीं। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड, पुरुष कबड्डी फाइनल में भारत ने ईरान को हराया, भारत के खाते में अब तक 4 स्वर्ण पदक। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी बिहार झारखंड में भारी बारिश तो उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से अब कड़ाके की ठंड।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात मौसम के बदले मिजाज के साथ। देश के कई राज्य इस समय बारिश और बाढ़ की चपेट में है। आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ा हुआ है।
1: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों, बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए। दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की 3 प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
2: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गया। मान के चल 2-3 घर तो फूटी गए हैं। अब पानी फुल पर्याप्त भर एकदम।
3: रात में लबालब
2: रात में

0: सरकार से आदेश करो।
1: रात में का स्थिति रही से?
0: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
2: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवन, खाना पीना सब हराम हो गई हमारे
1: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
2: दीवार में पानी भर गया ना सब।
1: कितना नुकसान, कितना नुकसान हो गया?
2: सब समझदार सब खींच गए, घर कुरिया सब ओदरा धस कर।
3: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
4: यहाँ तीन जगह पर एनएचटीस पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
3: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
5: भले ही तूफान अभी धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से बारिश लगातार हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ और राज्यों का हाल।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहां तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की भी व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का

सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है,

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: कारिका पानी ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बार बार पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह कार वार भी डूब चुका है पानी में, ये काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगभग 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अलग अलग हादसों में 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 32 जिलों में बाढ़ का खतरा इस समय। वहीं बिहार के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

0: बिहार में फिर नदियां डराने लगी। बिहार में फिर बाढ़ का खतरा गहराया। नेपाल की बारिश से बिहार में टेंशन। बैराज से भारी पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में बढ़ी चिंता। कोसी गंडक उफान पर। मौसम की मार ने बिहार की मुश्किलें फिर बढ़ा दी। सुपौल की तस्वीरें देखिए, जहां कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज के 40 गेट खोले गए हैं। ऐसे में कोसी नदी के जलस्तर पर सबकी नजर है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब कोसी नदी पर भी दिखाई दे रहा है। ऊपरी इलाकों से पानी आने और बैराज से डिस्चार्ज बढ़ने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुपौल में प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
1: इस वक्त हम नेपाल के कोसी बैराज में हैं और कोसी बैराज में अब तक का इस साल का अधिकतम डिस्चार्ज 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और नेपाल प्रभाग में लगातार दो दिनों से मूसलाधार बारिश से ये जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के साथ ही सुपौल जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग और नेपाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और कोसी बैराज पे लगातार निगरानी में रखे हुए हैं। वही सुपौल जिला अधिकारी सावंत कुमार ने बताया कि इस साल का अधिकतम जलस्तर 2,54,000 क्यूसेक पार किया है और देर रात तक ये 3.5 लाख क्यूसेक तक जा सकती है, लेकिन जिला प्रशासन और जल संसाधन की विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से किया जाएगा। उसी बराबर से फिलहाल 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है जो बढ़ते क्रम में है और कोसी बराज का 56 में से 35 गेट को खोल दिया गया है और ये जो पानी उफलती धारा है ये बिहार के सुपौल सहरसा मधेपुरा होते हुए ये कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा में मिलेगी। तो ये इस तरह से नेपाल में लगातार दो दिनों की बारिश से जिस तरह से कोसी उफान पे आई है, इस साल का अधिकतम जलस्तर को पार किया है, तो जिला प्रशासन सहित जल संसाधन के विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है।
0: प्रशासन की कोशिश है कि पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते अलर्ट किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखना है। कोसी के बाद अब बात गंडक नदी की। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर गंडक के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से इस साल अब तक का सबसे ज्यादा पानी छोड़े जाने की जानकारी सामने आई है। पानी बढ़ा तो इसका असर निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा। कहीं घरों तक पानी पहुंच गया तो कहीं सड़कें जलमग्न हो गईं। बढ़ते पानी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी, वहीं प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है।
2: बहुत पानी भइल बा, डाँड़ भर।
3: आपको घर में पानी गइल बा कि नहीं?
2: डाँड़ भर पानी भइल बा।
3: चार पर में पानी बा। और परेशानी वरसानी होता ज्यादा?
2: वही ना, माने पानी में दिखते ना बा।
3: दिखते बा। कोनो जान माल के अति नहीं के बोल ना?
2: माने लइका फैका लेके पता नहीं भाई पानी
3: कहाँ जाता नहीं। अभी घरे रहे कि एने उने स्कूल पे
2: जाए? खाता नहीं जाला इतन को ओने को जवानी जाए।
3: कहाँ जा रहे?
4: घर पर।
3: घर पे क्या हुआ?
4: पानी को चल रहा।
3: कितना?
0: इसका असर बिहार तक भी दिख रहा है। ये बिहार के बगहा की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश का असर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दिखाई दे रहा है। लगातार पानी बरसने से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनने लगी है। कई जगहों पर सड़कें कीचड़ और पानी से भर गई हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी और जलजमाव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऊपर से नेपाल में हो रही बारिश और बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी, यानी आने वाले दिनों में नदियों का बढ़ता जलस्तर चुनौती बढ़ा सकता है। कोसी हो
5: विशेष में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: यहाँ पर कहीं भी मुझे दान पेटी नहीं दिख रही है। मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे।
9: नो वीआईपी दर्शन, नो। एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। हाँ। ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
13: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
17: जेके मैक्स पेंट्स।
16: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने, भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
7: तो कौन सी बनानी है?
8: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।
10: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
11: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
12: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
13: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
11: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
10: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
14: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
10: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार रोटी थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: अब पर वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
9: तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
10: Actually, sir, आपकी बेस्ट थी।
4: I like this only.
11: देश भर में SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB संधू जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में, एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी। हम ज्ञानेश जी को बात कहना चाहते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं इट्स डन ब्रो, हो गया, मान जाओ, राहुल जी की सलाह मान लो, इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, नहीं तो नाज़ी युग जब खत्म हुआ था, आपको मालूम है क्या हुआ था? न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे। ये दो शब्द गुप्ता जी को आप जाकर बता दीजिएगा, सुनते हैं आजकल बड़े फोन कर रहे हैं आप लोगों को।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: विशेष के बाद अब आगे देखिए अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय श्वेता सिंह के साथ
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी बोली संस्थाओं को बदनाम कर रही है। कांग्रेस राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को अंपायर बनाकर चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग ने कहा कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर फॉर्म 6 में भी कोई बदलाव नहीं। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी की बात। भारत को एक और गोल्ड, पुरुष कबड्डी फाइनल में ईरान को हराया, भारत के खाते में अब तक कुल 4 स्वर्ण पदक। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी बिहार और झारखंड में भारी बारिश तो हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से अब कड़ाके की ठंड।

0: लगाना है अगर दुनिया के चक्कर तो क्या सचमुच लगाएं बस मंदिर के 11 चक्कर?
1: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।
2: इस मंदिर का बहुत महत्व है, कोई भी वीजा के लिए मांगता है वो वीजा पूरी हो जाता है।
3: इधर 11 परिक्रमा करो, जो भी मांगो मिलेगा, मिलने के बाद आप आके फिर से 108 बार घूमना पड़ेगा।
0: क्या वाकई वीजा लगना हो जाएगा आसान क्योंकि वीजा अप्रूव करेंगे खुद भगवान?
4: ये मानता है कि जो भी बाहर जाना चाहता है तो हनुमान जी की परमिशन के बिना नहीं जा सकता।
5: हम लोगों ने वीजा लगाया था बाहर जाने के लिए और हमारा एक दो बार रिजेक्ट भी हुआ, लेकिन आफ्टर हम यहाँ पर आए और बहुत थोड़े ही वक्त में हमारी जिंदगी में चीजों में बदलाव आया था।
6: यहाँ पे सारी विश पूरी होती है।
0: आज देखिए अद्भुत आस्था की अविश्वसनीय अर्जी।

ईश्वर की शक्ति के आगे हर व्यक्ति नतमस्तक है, लेकिन क्या ईश्वर की इस शक्ति के सामने दुनिया की महाशक्तियां भी झुक जाती हैं? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जब हम दुनिया की महाशक्तियों की बात करते हैं तो हम उस दस्तावेज की बात कर रहे हैं जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं वीजा की। आप में से किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे देश जाने के लिए वीजा का आवेदन दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये कितनी टेढ़ी खीर है। लेकिन क्या ऐसे में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं? दरअसल हम देश के उन अनेकों वीजा मंदिरों की बात कर रहे हैं जहां पर लोग जाते हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं कि उन्हें कठिन से कठिन दिखने वाला वो वीजा मिल जाए। पर क्या ये वाकई संभव है? आज हम जानेंगे इसी बात को और आपको उन अद्भुत मंदिरों में लिए चलेंगे, उनमें से जिसका नाम सबसे प्रमुखता से चर्चा में आता है, उस चिलकोर बालाजी मंदिर में हैदराबाद में हम इस समय मौजूद हैं, जो प्रसिद्ध तो है वीजा बालाजी के नाम से, लेकिन क्या उनकी महिमा केवल वीजा तक सीमित है या उनकी शक्ति इससे कहीं अधिक अविश्वसनीय और अकल्पनीय है?

0: कहा जाता है सच्चे मन से अर्जी लगाई जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन आस्था की अर्जी लगाकर क्या कोई सात समुंदर पार विदेश भी जा सकता है?
1: इस मंदिर का बहुत महत्व है। कोई भी वीजा के लिए मांगता है वो वीजा पूरी हो जाता है।
2: मैंने वीजा अप्लाई किया था तो मैं इस मंदिर में आता था एंड सरप्राइजिंगली तब बहुत काफी जल्दी हो गया था पोस्ट कोविड एंड एवरीथिंग।
3: वीजा वाला जी
4: अर्जी हम लिखवाते हैं तो अर्जी में लिखा उन्होंने और उनकी मनोकामना तो तभी से ये फेमस हो गए वीजा वाले हनुमान जी के नाम से।
5: तो बहुत सालों से मैं देखती हूँ भक्त हर रोज आते हैं यहाँ पे अपना वीजा लगाने।
6: यहाँ की जो ओरा है, यहाँ की जो ऊर्जा है बहुत सकारात्मक ऊर्जा है।
7: हमारे कलयुग का प्रत्यक्ष दैवम जो है बालाजी भगवान।
0: क्या चिलकुर बालाजी में भक्तों की वीजा मुराद पूरी होने की गारंटी मिलती है?
8: जो वीजा में कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन इश्यू होता है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं वो पक्का क्लियर होते हैं।
0: विदेश जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है और वीजा पाने के लिए वीजा ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर उसी वीजा के लिए भगवान के दरबार में लंबी लाइनें लगें तो इसे अद्भुत आस्था का अविश्वसनीय रूप ही कहा जा सकता है। एक नहीं, हनुमान जी के अनेकों मंदिर को क्यों वीजा मिलने की गारंटी माना जाने लगा? क्यों हनुमान जी कई मंदिरों में वीजा गॉड कहलाने लगे?
9: मेरा बेटा भी अभी बाहर जा रहा है तो मैं जितनी बार भी वीजा, अभी हम बिजनेस वीजा पे भी जाते रहते हैं तो जितनी बार हम यहाँ आते हैं मांगते हैं और हमारी इच्छा हमेशा पूरी हुई है इनकी हनुमान जी की कृपा से हमेशा पूरी हुई है।
0: सवाल तो ये भी है कि हजारों साल पुराने मंदिर और मुश्किल से 100 साल पुरानी वीजा की रवायत के बीच क्या तालमेल है? सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले उस मंदिर की बात जिसकी लोकप्रियता देश के कोने कोने में वीजा बालाजी के रूप में मिलती है। हैदराबाद उस्मान सागर झील के पास चिलकुर बालाजी मंदिर। यहाँ हर रोज भक्तों की भारी भीड़ लगती है। लोग दूर दूर से बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर से जुड़ी तमाम मान्यताओं के बीच एक अद्भुत मान्यता ये है कि यहाँ विदेश जाने के लिए देश भर से भक्त वीजा की अर्जी लेकर आते हैं।
10: तो पूरी हो जाती है।
11: आपके किसी जानने वाले का हुआ है?
10: हुआ है, हमारे
11: बेटे का हुआ है। कहाँ जाना था उसको?
12: यूएस
11: जाना। पढ़ाई के लिए?
12: हाँ नहीं, पढ़ाई के लिए गया
11: तो यहाँ पर।
12: हाँ, लगाते के हो गया, 8 दिन में ही हो गया।
1: इस मंदिर का बहुत महत्व है। कोई भी वीजा के लिए मांगता है वो वीजा पूरी हो जाता है।
11: अच्छा,
1: इस मंदिर को बोलते हैं वीजा टेम्पल, वीजा गार्ड बोलते हैं।
11: उस पर हमेशा पूरा हो जाता है यहाँ पर?
1: हाँ, बिल्कुल पूरा हो जाता
0: है। अद्भुत है वीजा को लेकर ये मान्यता, जिसके कारण बालाजी महाराज को लोगों ने वीजा बालाजी के रूप में ही देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मंदिर की यही पहचान बन गई। हालांकि मंदिर की कई और अनूठी परंपराएं हैं जो इसे अद्भुत और अविश्वसनीय बनाती हैं। मंदिर में किसी तरह का दान पुण्य नहीं लिया जाता, इसीलिए यहाँ कोई दान पात्र ही नहीं है। मंदिर में फूल, नारियल या प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता। मंदिर में सीसीटीवी नहीं है। मंदिर में किसी तरह से वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाते, मंदिर के अंदर सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात नहीं है, मंदिर में कोई माइक या लाउड स्पीकर उपयोग नहीं किया जाता। मंदिर में इन अद्भुत प्रचलन की पूरी कहानी आपको आगे सुनाएंगे। पहले वीजा मिलने के विश्वास से जुड़ी अविश्वसनीय भक्ति के बारे में बताते हैं।
3: ये जो पर्ची है जिसमें आप लेकर 1 से 108 तक के नंबर देख रहे हैं, ये कोई सामान्य पर्ची नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी लोग यहाँ प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सबके हाथों में ये पर्ची है। कोई यहाँ पर जो मन्नत मन में लेकर आया है उसके लिए उसे 11 प्रदक्षिणाएं करनी है, और जिसकी मन्नत पूरी हो गई है, जिसकी इच्छा, जिसकी जो पूजा थी ईश्वर के सामने वो पूर्ण हो गई है, वो 108 परिक्रमाएं यहाँ पर करता है। हाथ में एक कलम और ये पर्ची लिए हुए टिक मारते हुए कि एक प्रदक्षिणा पूरी हुई और अभी और कितने बाकी हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आप सबको यहाँ पर देखेंगे। मंदिर में परिक्रमाओं की अद्भुत परंपरा है। मनोकामना लेकर जो भक्त आते हैं वो 11 परिक्रमा करके अपनी कामना भगवान तक पहुंचाते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए फिर 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। अब 108 परिक्रमा याद रखना कोई आसान काम तो है नहीं, सो उसके लिए पर्ची पर हर परिक्रमा के बाद एक नंबर काट दिया जाता है।
1: मांग के फर्स्ट 11 प्रदक्षिण करके फिर बाद में 108 प्रदक्षिण करते, जो भी 108 प्रदक्षिण कर, हाँ पहले 11 प्रदक्षिण करके वीजा के लिए मांगना चाहिए। वीजा पूरी हो गया, मन्नत पूरी हो गया, 108 जो भी 108 डाल रहे वो सब उनका वो मन्नत।

0: यानी अगर कोई मन्नत लेकर आया है तो वो 11 परिक्रमा लगाएगा और मनोकामना पूर्ण होने के बाद लौटकर मंदिर में 108 परिक्रमा लगाएगा। ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए उसे कोई दान दक्षिणा नहीं देना, बस प्रदक्षिणा करनी है, यानी 108 परिक्रमा।
1: मेरे फादर मदर ने वीजा लिया था हाँ। तो उस टाइम पे हमने 108 परिक्रमा किया था।
2: अच्छा हाँ। 108 उस टाइम करना होता
1: हाँ,
2: है।
1: उस टाइम
2: कहाँ का वीजा मिला था?
1: यूएसए का।
2: यूएस का अच्छा।
3: ये जो परिक्रमा की पद्धति है, हमारे एक स्वामी जी है पुजारी महाराज, हमारा बड़ा पिताजी है, ये लोग बोर खोद रहे थे तो पानी नहीं निकल रही थी, तो उधर खड़े होने के बदले में इधर आके घूमने शुरू करे, तो 11 परिक्रमा किए, वो जो बोर में से पानी आना शुरू किया।
2: अच्छा।
3: जो 11 परिक्रमा में नहीं रोके वो लोग, पूरा घूमते घूमते गए 108 हुआ। 108 होते ही वो बोर का जो रिग है वो स्टॉप हो गया, तो वो लोग आके बोले, जब रिग तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट रिपेयर इट इमीडिएटली, तो वो लोग आके बोले, बोलते ही इनो जाने तक फिर से रिग शुरू हो गया वो ऑपरेट करने का। तो मतलब भगवान परिक्रमा बस से करके बोल रहे हैं, जो भी भगवान सूचित किए हैं हम लोग भक्तों को बोलने शुरू किए, इधर 11 परिक्रमा करो, जो भी मांगो मिलेगा, मिलने के बाद आप आके फिर से 108 बार घूमना पड़ेगा।
0: कोई मनोकामना लेकर आता है और 11 परिक्रमाएं लगाता है तो ये 11 परिक्रमाएं प्रतीक हैं मानव शरीर की 11 इंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनके माध्यम से बाहरी संसार की जानकारियां दिमाग तक पहुंचती हैं। 5 है कर्मेंद्रियां, जिनके माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है, और 1 है उभयेंद्री, मन, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच सेतु यानी पुल का काम करता है। इस तरह इन 11 परिक्रमाओं का अर्थ होता है मन, वचन, कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पण। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तब श्रद्धालु 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। इसके पीछे भी अद्भुत आध्यात्मिक कारण है। ये 108 परिक्रमाएं भगवान विष्णु के 108 नामों के स्मरण का प्रतीक है। भक्त मनोकामना पूरी होने के धन्यवाद स्वरूप भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। परिक्रमा करते समय पत्थर के फर्श पर नंगे पांव चलना होता है और गोविंदा गोविंदा या बालाजी बालाजी का जाप मन में करते रहना होता है।
4: जो कामना करते हैं वीजा की तो मिलता है उनको,
5: देर सब जानने वालों में भी लगा,
4: बिल्कुल बिल्कुल लगा है।
5: अच्छा
4: जी जी हाँ।
5: तो पासपोर्ट लाके यहाँ पे देते हैं,
4: पासपोर्ट लाके यहाँ पे चढ़वाते हैं भगवान पे, बालाजी पे।
5: अच्छा,
6: टाइम लाइक इतना डिले नहीं होता है, एज सून एज जितना होता है जल्दी हो जाता है।
5: अच्छा।
6: फेथ के ऊपर है, आप कितना फेथ से यहाँ आए उतना फेथ से आपका काम हो जाता है, लेकिन हो जाता है।
5: कहते हैं वीजा बालाजी, कहते हैं
7: वीजा बालाजी 2001 में यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ जो पहले चोरी हो गई थी वो, उसके बाद हमारे पिताजी वहाँ से लेके आए तिरुपति से, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करवाए। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से जैसा तिरुपति हो गया, छोटा तिरुपति बन गया ये।
5: अच्छा।
7: तो जैसा तिरुपति में सेवा होती है वैसी सेवा करते हैं।
5: तो उसके बाद से मिलता है
7: दो हजार एक के बाद से।
5: आपने सुना है किसी का? यार
8: सुना है, हुआ है, हुआ है,
5: आपके घर में भी हुआ है?
7: हमारे तो फैमिली से कनेक्टेड है।
0: लेकिन मंदिर में वीजा की अर्जी लगाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई और मंदिर की महिमा क्या है?
9: हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि वीजा को लेकर ऐसी मान्यता सिर्फ चिलकुर बालाजी मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में कई और ऐसे धर्म स्थल हैं जहां भक्त इसी तरह मनोकामना लेकर और पासपोर्ट लेकर आते हैं और अद्भुत रूप में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, और अधिकांश मंदिर हनुमान जी के मंदिर हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के एक ऐसे हनुमान मंदिर में जहां श्रद्धालु कई बरसों से जल्दी वीजा मिल जाने की आस लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि वो एक सिद्ध मंदिर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं।

0: दक्षिण दिल्ली के नेब सराय में हनुमान जी का ये मंदिर वीजा हनुमान मंदिर के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है जो लोग वीजा एप्लीकेशन रिजेक्शन के कारण परेशान हो जाते हैं वो यहाँ आते हैं और हनुमान जी के सामने माथा टेकने के बाद फिर अपनी किस्मत आजमाते हैं।
1: मेरे फादर इन लॉ हैं, जो उन्होंने लगाया था वीजा के लिए, अप्लाई किया था और यहाँ पे उन्होंने अर्जी भी लगाई थी, तो उनका तो हो गया है और वीजा आ गया उनका तो।
2: हाँ जी, हमारी बेटी जा रही थी तो हम किसी ने हमें बताया कि ये मंदिर बहुत सिद्ध है।
3: हमारी बेटी, हमारी तमन्ना था कि उनका उनका वीजा हो जाए। हम यहाँ आए थे एक साल पहले और करीब एक दो महीने में हो गया।

0: मंदिर की मान्यता के अनुसार यहाँ भक्त आते हैं और अपनी इच्छा पर्ची के माध्यम से भगवान तक पहुँचाते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें जो नियम पालन करने होते हैं उनके बारे में भी सुनिए।
1: एक पेपर दिया जाता है उनको और एक लाल पेन और उसके अंदर श्री गणेशाय नमः और ओम हनुमते नमः लिखवा करके आपकी जो भी मनोकामना है वो आपने लिखनी है और नीचे लिखना है कि आपका दास जो भी आपका नाम है, जो लिखा हुआ है कागज वो हनुमान जी के सामने दिखाया जाता है। ऐसा फील किया जाता है कि जैसे वो पढ़ रहे हैं और सच में वो पढ़ रहे होते हैं, ये मेरा विश्वास है। और फिर उसके बाद में उनको एक कागज दिया जाता है जिसके अंदर दो दोहे हैं, किसकंदा कांड के और सुंदर कांड के। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। ठीक है, तो ये दो दोहे 11 बार पढ़ने हैं। 11 बार पढ़ने के बाद में एक बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करके आंखें बंद करके और फील करना है कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपने फील करना है कि आप बाहर चले गए हैं और यू आर सो हैप्पी। तो ऐसी फीलिंग के साथ में जब हम करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। 41 डेज आपने रेगुलर ये करना होता है।

0: मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि वीजा के अलावा भी यहाँ जो कोई जिस कामना के साथ आता है वो पूरी हो जाती है, लेकिन नियम वही रहते हैं, यानी पर्ची पर लिखकर अपनी मनोकामना भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना।
1: 2007 से है मैं, इसमें मनोकामना पूरी होती हैं, जैसे वीजा हो गया, गृहस्थ मनोकामना हो गई, कुछ नियम होते हैं मंदिर के, वो दिया जाता है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तब बाबा का श्रृंगार होता है, फिर आकर के वो श्रृंगार लोग करवाते हैं।
0: नेबसराय हनुमान मंदिर की ही तरह दिल्ली के कोनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी यही प्रथा है। मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर वीजा ऑफिस है। वीजा ऑफिस आने वाले लोग वहां से निकलकर हनुमान जी की शरण में आते हैं।
2: कोविड के दौरान 2020 में जब पूरी दुनिया में एकदम लॉकडाउन था और शटडाउन था, उस टाइम पे मैंने और मेरे भाई ने हम लोगों ने वीज़ा लगाया था बाहर जाने के लिए, और ड्यू टू मतलब जो उस टाइम पे कंडीशंस थी और बहुत सारे रिजेक्शंस आ रहे थे क्योंकि एकदम बहुत अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पे इकोनॉमी क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, तो हमारा एक दो बार रिजेक्ट भी हुआ, लेकिन आफ्टर हम यहाँ पर आए और बहुत बार आए और मान्यता भी है, तब हमें इतना पता नहीं था, हम बस आ जाते थे जब घर वाले लेकर आते थे कि चलते हैं, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर आए और बहुत थोड़े ही वक्त में हमारी ज़िंदगी में चीज़ों में बदलाव आया, तो हमें लगा कि एक वो भावना जो थी वो और आई थिंक स्ट्रांग होती चली गई तब से, और तब से हम जब भी इंडिया आने का हमारा होता है हम हमेशा आते हैं।

0: श्रद्धालुओं को आते जाते देखा जाता है, जो या तो पहले मंदिर में अपनी पूजा करने आ रहे होते हैं या फिर वीजा आवेदन के बाद उसकी स्वीकृति के लिए मंदिर जा रहे होते हैं।
1: जब मैंने वीजा अप्लाई किया था तो मैं इस मंदिर में आता था एंड सरप्राइजिंगली तब काफी जल्दी हो गया था पोस्ट कोविड एंड एवरीथिंग।
2: यहाँ पे सारी विश पूरी होती है, कुछ भी वीजा के भी नहीं, नौकरी की, शादी की, कुछ भी। डेफिनेटली लगता है।
3: यहाँ पे ऑफिस में आते हैं तो कई लोग आते हैं अपना बुकलेट साथ में लेके आता है, पासपोर्ट वगैरह भगवान के चरणों में लगाओ, उसके बाद में उनकी मानी जाती है, सुनी जाती है।
0: अब एक और हनुमान मंदिर में ऐसी ही मान्यता देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में भी एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जिसे वीजा हनुमान मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ लोग विदेश यात्रा के लिए वीजा संबंधित मनोकामनाएं लेकर आते हैं और पासपोर्ट रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
4: आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि आखिर हनुमान जी से ही लोग अपनी यात्राओं को लेकर प्रार्थना क्यों करते हैं। दरअसल हनुमान जी से वीजा की प्रार्थना करने के पीछे एक बहुत अद्भुत कारण है।
0: श्रद्धावान कहते हैं सबसे पहले त्रेता युग में हनुमान जी माता सीता का पता लगाने विदेश यानी श्रीलंका गए थे।
5: हनुमान जी ही गए थे तो सब ये मानता है कि जो भी बाहर जाना चाहता है तो हनुमान जी की परमिशन के बिना नहीं जा सकता और साथ में उसकी डेस्टिनी के अंदर भी होना चाहिए। यहाँ पर आपका फेथ काम करता है। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वहाँ पर अगर हमारा विश्वास होता है तो हमारा हर एक काम पूर्ण होता है। ऐसा ही नहीं है बाहर जाने का ही है कि हमें बाहर जाना है। अगर आपकी शादी संबंधित है या फिर आपकी जॉब संबंधित है या रिलेशन संबंधित है तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। और पवन पुत्र हैं और साथ में यहाँ पर वो प्लेन चढ़ा करके जाते हैं, हेलीकॉप्टर चढ़ा करके जाते हैं, उनको ये लगता है कि ये हम चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी।
0: इसके अलावा बचपन में हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए कई योजन की दूरी पार करके गए थे। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेने लंका से कई हजार किलोमीटर दूरी पार करके द्रोणगिरी पर्वत पर यानी आज के उत्तराखंड आए थे। तो हनुमान जी को इतिहास का सबसे बड़ा यात्रिक माना जाता है और यही कारण है कि श्रद्धालु हनुमान जी के मंदिर में विदेश यात्रा की मनोकामना लेकर सबसे अधिक उमड़ते हैं।

0: लेकिन हम आपको अब कुछ और मंदिरों की कहानी सुनाते हैं, जहां हनुमान जी ही नहीं बल्कि गणेश जी और माता के मंदिर में भी लोग विदेश यात्रा की सफलता के लिए पहुंचते हैं, और उन मंदिरों की प्रसिद्धि वीजा गॉड के रूप में हो चुकी है। तमिलनाडु के चेन्नई में भगवान गणेश का एक अद्भुत मंदिर ऐसा है, जहां विदेश जाने के इच्छुक लोग वीजा लगने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आते हैं। इसी कारण से इस मंदिर का नाम पड़ गया है लक्ष्मी वीजा गणपति मंदिर। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी रुकावटों को दूर करने वाला भगवान माना जाता है, तो लोगों को जब किसी तरह की समस्या खास तौर पर वीजा से जुड़ी हुई आती है तो वो इस मंदिर में पासपोर्ट सहित अन्य दूसरे कागजात लेकर आ जाते हैं और मुश्किलें दूर करने की प्रार्थना करते हैं।
1: There is a temple in Chennai that grants.
2: चेन्नई में एक मंदिर है जो वीजा दिलाता है। मैं चेन्नई के पर्वन टिंगल में मौजूद लक्ष्मी वीजा गणपति मंदिर के पास मौजूद हूँ।
1: Temple was built in the year 1985 and from the
2: यह मंदिर 1985 में बना था, और साल 2000 के बाद से जो भी भक्त यहाँ वीजा या विदेश यात्रा में मदद के लिए आते थे उनमें से ज्यादातर की इच्छाएं पूरी हुई।
1: Majority of their wishes have been fulfilled and therefore
2: इसीलिए अब इस मंदिर का नाम बदलकर लक्ष्मी वीजा गणपति मंदिर रख दिया गया है। यह मंदिर इसी बात के लिए मशहूर है, यहाँ भगवान की मूर्ति बहुत छोटी है, लेकिन लोगों के मन पर इस मंदिर का असर बहुत गहरा और लगभग फिल्मी जैसा रहा है। बहुत से

0: यहाँ वीजा, H-1B वीजा और विदेश में नौकरी के मौकों के लिए प्रार्थना करने आते हैं और उन सभी को वो मिला है जिसकी उन्होंने प्रार्थना की थी।
1: मंदिर के पास ही अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास, ये भी एक कारण है कि जो लोग अमेरिका का वीजा चाहते हैं वो मंदिर भी आते हैं और वीजा में कोई दिक्कत न आए इसके लिए भगवान गणेश से प्रार्थना भी करते हैं।

0: पंजाब के जालंधर शहर से कुछ किलोमीटर दूर तलहन गांव में गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब जी है। शहीद बाबा निहाल सिंह की पुण्य स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हैं। यहां भी दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यहां की मान्यता भी यही बताई जाती है कि भक्त विदेश यात्रा की अरदास लेकर आते हैं, यात्रा से पहले पासपोर्ट वीजा आदि की समस्याएं न आए उसके लिए यहां आकर माथा टेकते हैं। गुरुद्वारे में श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर खिलौने का हवाई जहाज चढ़ाते हैं। ये हवाई जहाज विदेश की हवाई यात्रा की शुक्राने के तौर पर होता है। कई लोग अपनी अरदास पूरी होने पर लौट कर आते हैं और खिलौना हवाई जहाज चढ़ाते हैं।
1: और मेरे ब्रदर ने बाहर जाना सीगा, ओदे लिए मांगया सीगा ते ओदे बस ओदे विच छुड़ाउण लगे हैं। पिछले मंथ गए आ ओ 5-6 तरीक नु।
2: अपनी मनोकामना हैगी महाराज अपने पूरे करन। मैं अपनी मदर नाल आया फर्स्ट टाइम, मदर भी मेरे आस्ट्रेलिया गए ने, ठीक है। ते मैं हुण बेटे नाल आया, अपनी वाइफ नाल आया वा। जे महाराज ने चाहे फिर ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਤ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ।
0: ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਨੂੰ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਅੜਚਨੋਂ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਾਮਨਾਏ ਲੇਕਰ ਆਤੇ ਹੈ।
3: ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਖਿਰ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਨੇਚਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਤਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮੰਨਤ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ
0: आम तौर पर बहुत से लोग अद्भुत मान्यता और विश्वास के कारण गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब को हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा भी कहते हैं।
4: बाहर बैठे भी सुखोंगे ना, जो तकलीफा दुख दूर होंगे मन्नत वाला है जी गुरुद्वारा। मेनू खुद नू 32-33 साल हो गया जी आउंदिआं नू, एवें आपां कहीए मन्नतां पूरीआं हुंदीआं, कोई नहीं दिखावा ग्रंथ साहिब है उहनां दे बस।
0: अरदास पूरी होने पर चढ़ाया गया खिलौना जहाज बच्चों में बांट दिया जाता है। हालांकि इस चलन को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक कमेटी समय समय पर प्रयास करती रहती है। गुरुद्वारे को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा इतनी है कि ये देश विदेश में चर्चित रहता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग रोज पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की अरदास लगाते हैं। विश्वास अनुभव से प्रबल होता जाता है और भक्तों का जमावड़ा बढ़ता जाता है। पर जरा सोचिए, इन धार्मिक स्थलों का इतिहास कितना पुराना है और वीजा का इतिहास क्या है? वीजा की जरूरत इन मंदिरों के इतिहास की तुलना में बिल्कुल नई है। इसीलिए जब मंदिर में पुजारी कहते हैं कि सिर्फ वीजा से ईश्वर की महिमा को मत जोड़िए, तो वो गलत नहीं कहते। प्राचीन काल में आज की तरह राष्ट्रीय सीमाएं नहीं थी, लेकिन राजा महाराजा अपने

0: राज्य की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे। इतिहास में सुरक्षित यात्रा के दस्तावेज का पहला जिक्र मिलता है हिब्रू बाइबल के नहेमिया अध्याय में, जो लगभग 450 ईसा पूर्व की बात है, जब फारस के राजा के एक अधिकारी ने दूसरे प्रांत में जाने की अनुमति मांगी तो राजा ने उन्हें एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाए। ये पत्र इतिहास का पहला सुरक्षित यात्रा पत्र माना जाता है। सदियां बीती, मध्यकाल में व्यापार बढ़ा। सिल्क रूट पर चलने वाले व्यापारियों के लिए अलग अलग साम्राज्यों से गुजरने के लिए ऐसे ही शाही फरमानों की जरूरत पड़ने लगी, लेकिन तब भी वीजा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। वीजा शब्द का जन्म लैटिन भाषा के शब्द चार्टा वीजा से हुआ, जिसका अर्थ होता है देखा गया दस्तावेज। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक आते आते यूरोप में रेलवे नेटवर्क फैल चुका था। लाखों लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। उस दौर में लगभग बिना किसी रोक टोक के यात्रा होती थी, लेकिन फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही देशों को डर सताने लगा कि विदेशी नागरिक जासूस या दुश्मन हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए सरकारों ने अपनी सीमाओं को सील करना शुरू किया। युद्ध के दौरान पहली बार पासपोर्ट और प्रवेश अनुमति यानी वीजा को पूरी तरह अनिवार्य किया गया। युद्ध खत्म होने के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस की ऐतिहासिक बैठक हुई। इस बैठक में पहली बार दुनिया भर में पासपोर्ट और वीजा के मानक नियम तय किए गए और यहीं से आधुनिक वीजा व्यवस्था का जन्म हुआ।
1: तो जब चिलकूर बालाजी मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और वीजा प्रणाली लगभग 1920 के दशक से शुरू हुई थी, फिर कैसे बालाजी का मंदिर वीजा अर्जी की परंपरा से जुड़ा?

0: चिलकुर बालाजी का मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि जिस जगह आज मंदिर है वहां 500 साल पहले भगवान वेंकटेश बालाजी के अनन्य भक्त रहा करते थे। भक्त आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश बालाजी के दर्शनों को जाया करते थे। एक बार उनकी तबीयत बहुत खराब होने के कारण वो दर्शन के लिए नहीं जा सके और बहुत दुखी थे।
1: वो भक्त उतना दूर नहीं जा सका तो भगवान स्वयं उसके स्वप्न में आए, आप इतने दूर आने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको आपके गांव में ही विराजमान हो गया हूँ, आप आके दर्शन कर सकते करके एक सांप के बिल के ऊपर खड़े होके बताए। तो अपना जो ग्रामवासियों को लेके जाके भक्त वो सांप के बिल को खोदने शुरू करे, जो जसब्बल बोलते हैं क्रोबार, वो अंदर जो भगवान की मूर्ति है उसको लगने के बाद एकदम सा रक्त आना शुरू करा, खून। तो जो खोद रहा था उसके ऊपर जो भगवान का आवेश होके, आप लोग मुझे घायल कर चुके हो, दूध का अभिषेक करो मैं अपने आप आऊँगा करके बोले। सो दूध लेकर आके डाले, वो शाम के बिल के ऊपर जो मिट्टी थी वो पूरा निकल गई, स्वामी के मूर्ति मिली, प्रकट हुई, इधर प्रतिष्ठा किए।
0: कहा जाता है कि भक्त की पुकार पर तब भगवान बालाजी वहां स्वयं चले आए और वहीं उसी स्थान पर उनका मंदिर स्थापित किया गया। भक्त के वंशज ही आज मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं। कहा जाता है कि 1980 के दशक में एक बुजुर्ग की सलाह पर कुछ छात्र यहां अमेरिका के वीजा की अर्जी लेकर आए। उनका आवेदन स्वीकार हो गया तो वो वापस यहां लौटे और 108 परिक्रमा की। धीरे धीरे इस कहानी का प्रचार होता गया, बड़ी संख्या में लोग वीजा की अर्जी लेकर आने।
1: 90s में जो है 95-96 में
2: उस समय विदेश जाने का बहुत क्रेज था। सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यही चाहते थे कि वे यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर एमएस करें। वे यहां आते थे और प्रदर्शना करते थे, फिर उन्हें वीजा स्टैंपिंग मिलती थी और फिर वीजा के लिए चिलकुर बालाजी मंदिर जाने की परंपरा जैसी बनने लगी और चिलकुर बालाजी बन गए वीजा बालाजी।
0: मंदिर प्रशासन का कहना है कि वो मंदिर की आस्था के मूल

0: की आस्था के मूल स्वरूप को ही प्रचलित रहने देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है और उसे एक रूप में बांधना यानी कि केवल वीजा बालाजी कहना उचित नहीं होगा। इसके लिए कुछ बड़े परिवर्तन भी करना चाहते हैं।
1: तो हम लोग उसका नामेंक्लेचर को अभी बदल रहे हैं। आज ही अब मैं बात देखे ना, अब मैं बता रहा था, एक्चुअली इफ यू हैड कम इन द मॉर्निंग वाज केवी क्राउड, बट स्टिल वी आर जस्ट चेंजिंग द नामेंक्लेचर, व्हिच इज आई हैव नॉट रिवील्ड इट टू एनीवन थ्रू मीडिया। वी आर कॉलिंग इट वीसा ओनली, बट विश्वरूप साक्षात्कारी बालाजी।
2: अच्छा,
1: वी फॉर विश्वरूप, सा मीन्स साक्षात्कारी।
0: वैसे इस मंदिर की जो सबसे अद्भुत बात हमें लगी वो ये कि यहाँ किसी भी तरह के दान दक्षिणा का चलन ही नहीं है।
3: हमारे पास भी एक छोटा डोनेशन बॉक्स हुआ करता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें धार्मिक संस्थानों पर सरकार के कंट्रोल से दिक्कत है। मेरे पिता डॉक्टर एमबी सौंदर्य राजन, जिनका 6 महीने पहले निधन हो गया, हम सबके लिए प्रेरणा थे। उनका कहना था कि अगर कोई मंदिर है एंडोमेंट एक्ट के मुताबिक, अगर उसकी सालाना कमाई 50,000 रुपए से ज्यादा है, सोचिए अगर किसी मंदिर की सालाना कमाई 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस मंदिर को कम्युनिटी नहीं चला सकती। सरकार जबरदस्ती एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर देगी, वही उस संस्थान को चलाएगा। इसलिए मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। हम कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे। जो भी सेवा हो रही है वह वहां बेची जाने वाली किताबों के जरिए हो रही है। वही किताब मंदिर के अंदर की सभी गतिविधियों के लिए कमाई का जरिया है।
1: All the activities inside the temple. That is what it is.
0: ईश्वर जब मन की मुराद पूरी करते हैं तो भक्त दक्षिणा नहीं बल्कि प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा के लिए यहाँ आते हैं। और वीजा तो केवल एक पहलू है, भक्त अनेकों इच्छाएं और प्रार्थना लिए चिलकुर बालाजी के समक्ष आते हैं।
4: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से, नो चढ़ावा की मनी दे देंगे, एक्स्ट्रा दर्शन या कुछ प्रसाद वगैरह नहीं, जो भी है
2: कभी नहीं, चढ़ावा
4: नहीं, कभी। ये जब से मान्यता शुरू हुई है तब से सब बंद है, या ना एंडोमेंट का कोई राज है कि आके एंडोमेंट का भी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जो है
5: पिछले 100 साल से सेवा कर रही है
2: जी।
5: बहुत चमत्कार है, बहुत प्रभाव है। जो भी मन्नत करते हैं वो पूरी हो जाती है।
2: अच्छा।
6: जो मान्यता मांगते हैं
5: किसी
6: वो पक्का पूरी होती है।
5: किसी को मान्यता करना वो कर सकता है।
2: कोई भी
7: हर कोई हर चीज हर मन्नत पूरी हो जाती
0: है। चिलकुर बालाजी को लेकर भक्तों के बीच कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन उन सब में सबसे ऊपर है भगवान के प्रति भक्तों की गहरी आस्था, जो उन्हें बार बार मंदिर की ओर खींच लाती है।
8: सच्चे विश्वास और अटूट आस्था के समक्ष किसी किंतु परंतु का कोई स्थान शेष नहीं रह जाता। भक्तों को विश्वास है अपने आराध्य पर, और यही कारण है कि परंपराएं निरंतर जारी हैं। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कशिश श्रीवास्तव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: मिल गया।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: विश्राम। भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: बिजली का बिल पेड,
3: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

अब बड़ी खबर आपको देते हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच में चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की है। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों ही चुनाव आयुक्त यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे। अब इस बैठक में तय किया गया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था।

0: मतभेद। तमाम तरह की बातों के बीच एक प्रिय बैठक हुई है। इस बैठक के बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया और इसमें एक तरीके से पूरा स्पष्टीकरण था और तमाम बातों का जो इससे पहले बातें सामने आई थी उन पर अपनी बात एक तरीके से रखी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 6 को लेकर चीजें क्लियर की। गोवा को लेकर बिहार समेत तमाम राज्यों में जो SIR चल रही है उस पर सहमति की बात कही।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: और चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद अब बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है।
2: ऑफ इंडिया सेज द मीटिंग दैट द इलेक्शन कमीशन हेल्ड विद द कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज नॉट रिगार्डिंग एनी पॉलिसी मैटर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाइदर रिलेटेड टू एनी IT डिपार्टमेंट वर्क। ये इलेक्शन कमीशन के किसी पॉलिसी मैटर पर विषय नहीं था और न ही IT डिपार्टमेंट संबंधित किसी विषय को लेकर वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास गए थे। सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई। और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
3: राहुल गांधी जी, पहला सवाल है आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है। तीनों मेंबर्स बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए थे, निर्णय हुआ है। अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच जाइए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या EVM मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठीकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: हालांकि कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
4: 1960 के नियम को बदले बगैर आप फॉर्म 6 लाए, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल में कई लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए, उनका वोट छीन लिया गया, तो वो गैर कानूनी तरीके से छीना गया। अगर वोट ही आपका गैर कानूनी तरीके से छीना गया बिहार और बंगाल में, क्या वो इलेक्शन कानूनी है? क्या वो इलेक्शन संवैधानिक है? क्या वो मैंडेट संवैधानिक है? बुनियादी सवाल है ये। इसका जवाब ना आपको नथुने फुला के रविशंकर प्रसाद भी नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहे साहब, जवाब दीजिए। तीसरा, आपने ECI नेट की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT IIIT IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECI नेट की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECI नेट करती है। एक कमेटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमेटी। अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार NDA के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में BJP के भीतर से आवाजें उठेंगी। ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
0: इस बीच राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल किया है। ज्ञानेश का इस्तेमाल आईएएस अधिकारी को भर्ती करने के लिए किया। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी अपने पोस्ट में ट्वीट में लिखा कि मोदी शाह ने ज्ञानेश को चुनावी अंपायर बना है और चुनावों में उन्हें मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस नोट आया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बाद ये उनका पोस्ट आया और उस नोट में उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि मोदी शाह ने ज्ञानेश को अंपायर बना है। इस बीच में केरल के मुख्य सचिव के दावे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने ज्ञानेश कुमार को घेरा है और केरल के पूर्व मुख्य सचिव जी थॉमसन ने दावा किया था, उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानेश कुमार ने उनसे 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था और थॉमसन ने यह भी दावा किया कि ज्ञानेश कुमार ने मंत्री बनाने तक की बात कही थी। तो जी थॉमसन के हवाले से ये बड़ा हमला अब कांग्रेस बोल रही है और आरोप इसमें यह है कि 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़ने की बात ज्ञानेश कुमार की तरफ से कही गई थी। और हमारे संवाददाता राहुल गौतम अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एक तो प्रेस नोट आया, उसके बाद वो एक तरीके से स्पष्टीकरण जो सारी चीजें, लेकिन वो थमता नहीं दिख रहा और उसमें एडिशन ही एडिशन होते चले जा रहे हैं। राहुल
5: बिल्कुल एडिशन पे एडिशन होते जा रहे हैं और आप देखिए अब राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि जो ज्ञानेश कुमार हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो सरकार के लिए बहाली कर रहे हैं, उसमें भर्तियां करवा रहे हैं। उनका इशारा जाहिर है जो केरला के जो पूर्व मुख्य सचिव हैं अजीत थॉमसन, उनकी तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा कि उनको रिवॉर्ड किया गया, उनको इस बात के लिए पदोन्नति देकर उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया क्योंकि वो बहाली कर रहे थे बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि और 30 तारीख को आप जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी बुलाई गई है, 29 तारीख को जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है वो भी इसी मुद्दे पर होगी। देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, तो कुल मिलाकर कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। कम से कम विपक्ष जो है वो कोशिश कर रहा है कि सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, इन तमाम चीजों के ऊपर घेरा जाए। और आप देखिए धीरे धीरे
0: राहुल इन आरोपों के संबंध में आधार क्या, मतलब एविडेंस के रूप में क्या कहा जा रहा है, क्या है उनके पास?
5: देखिए राहुल गांधी तो अपना ही एविडेंस बार बार गिनाते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जो वोटर्स हैं उनको डिलीट किया गया या जो जो महाराष्ट्र है वहां पर 63 लाख वोटों को जोड़ा गया, उनके पास तो अपने ही इतने आधार हैं। कांग्रेस पार्टी को लगातार उनका दावा करती है कि वो सत्य आधार है, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है। आपको ध्यान होगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी समय ठीक इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट आया था, एक जानकारी आई थी कि क्या राहुल गांधी की तमाम चीजें इलेक्शन एफिडेविट पर देंगे। तो देखिए ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगता है बहुत दिनों से कि देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालांकि ये बात लोगों में कितनी घर कर रही है यही अब लड़ाई है। कांग्रेस चाहती है कि हम इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं, लेकिन जाहिर है बीजेपी भी अभी तरफ से कोशिश कर रही है कि हम लोगों को ये बताएं कि देखिए ये हार के कारण ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, ये हार की खींच है। आप केरला में जीते हैं तो आप उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार नहीं बताते, वहां पर जो SIR हुआ उसके आपके खुद के नेता कहते हैं कि हम इसलिए जीते क्योंकि यहां पे SIR हो गया। तो कुल मिलाकर ये
0: राहुल एक सवाल ये भी है कि अब जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है, बाच की बैठक, तीनों ही चुनाव आयुक्तों का साथ में होना, तस्वीर सामने आना, सहमति की बात करना कि जो भी फैसले हुए सहमति के साथ में, क्या उस बैठक पर अब इम्पैक्ट पड़ेगा या आगे क्या कमजोर होगी इनकी आगे की रणनीति जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थी?
5: देखिए कम से कम उनकी तो कोशिश होगी कि कमजोर ना पड़े और जो ये नैरेटिव देश में बन रहा है या बनाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो जाहिर है उसी राह पर आगे चलेंगे। देखिए आपको एक बात समझना होगा राजीव, जो जो कम से कम विपक्ष है वो इस बात को लेकर मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इस बात को मानता है कि देखिए हम चुनाव हार नहीं रहे, हमको हराया जा रहा है। और केरला की बात करें, तेलंगाना की बात करें, बीजेपी कहती है जब आप जीतते हैं तब आप ये तमाम चीजें
0: नहीं
5: उठा रहे, जब आप जीतते हैं तभी आपको ये तमाम चीजें क्यों याद आती
0: है। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पापा,
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ
7: तो भरोसा है।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और राउंड टेबल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। लोकतंत्र का अंपायर चुनाव आयोग होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसी चुनाव आयोग को लेकर सियासत के खेल में समझिए पाले खिंच गए हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीसी ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा। अब इस मुद्दे को विपक्ष युद्ध स्तर पर मानो देश में उठा रहा है। मामला क्या है? मामला यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ काम करने वाले दो चुनाव आयुक्त जो पूरे फैसले लेने की प्रक्रिया में अहम है, क्योंकि तीन में से दो या तीनों का एक तरफ होने के बाद ही किसी फैसले पर मुहर लगती है। अब ऐसे में अगर ये दोनों चुनाव आयुक्त ये आरोप लगाए हैं, हालांकि वो मौखिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक बड़ी बात कही गई कि इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने दो मुद्दों पर, दो वक्त पर एक तरफा तरीके से विरोध किया ज्ञानेश कुमार के फैसलों का। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली रिपोर्टर जर्नलिस्ट का यह भी कहना है कि उन्होंने वो जो उनका विरोध था उसके नोट्स देखे हुए हैं। अब ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि वो इस्तीफा दे। क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जायज है? राहुल गांधी का पूरा तर्क बीते दिन क्या था? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी गायब हो गई है मोदी सरकार में शासन में आने के बाद 2014 में। ऐसे में राहुल गांधी का यह तर्क क्या विपक्ष के दावे को मजबूत करता है या कमजोर करता है, जिसमें वो ये दम भर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई है बीजेपी के खिलाफ। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन आज बड़ा सवाल जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि आगे का रास्ता क्या? क्या सिर्फ भ्रम और आशंकाओं के बीच चुनाव आयोग यूं ही चलता रहेगा, या फिर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जायज है? आज इसी पर हम बहस करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि यह मुद्दा आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि चर्चा तो खूब हो रही है भाई चुनाव आयोग में क्या है, क्या इससे चुनाव आयोग को भी ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, सरकार क्या करेगी, क्या सरकार साथ दे रही है ज्ञानेश कुमार का या उनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। जब जब आंदोलन हुआ है तो बीते दिनों धर्मेंद्र प्रधान से लेकर कई लोगों के इस्तीफे तक नौबत आई है, तो क्या वैसा ही दबाव फिर से बनेगा? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे राउंड टेबल में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ विवेक सलास जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और आशुतोष जी भी इस तरह से पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यह छोटी सी रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए।
2: लोकतंत्र की बाजी में चुनाव आयोग को सबसे बड़ा और निष्पक्ष रेफरी माना जाता है, लेकिन इस बार सवाल रेफरी पर ही है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ऐसा युद्ध छेड़ दिया है जिससे चुनाव आयोग के दफ्तर से लेकर देश की सड़कों तक खलबली मच गई है।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
2: अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर ज्ञानेश कुमार का विरोध कर रहे हैं, पोस्टरों पर कालिक पोती गई, एक ही मांग है सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी। इस विरोध के बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश कुमार के दो बड़े कार्यक्रम टाल दिए, एक मेरठ का तो दूसरा वाराणसी का। विपक्ष का दावा है कि ये बैकफुट पर आने की तस्वीर है और सीईसी विरोध के डर से पीछे हटे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे खारिज करते हुए साफ कहा है कि ये फैसला 21 सितंबर को ही ले लिया गया था और इसका मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है। सवाल सिर्फ दौरों का नहीं है, सवाल है उस विश्वास का जिसका कस्टोडियन चुनाव आयोग को माना जाता है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि 30 राज्यों में 13 करोड़ नाम काटकर नतीजों से छेड़छाड़ की गई। और अब द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जब आयोग के भीतर से ही 14 मौकों पर चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू की लिखित आपत्तियों का जिक्र सामने आया तो विपक्ष को अपना केस साबित करने का सबसे बड़ा हथियार मिल गया। आज के लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आयोग जनता के उस भरोसे को बचा पाएगा जिसकी उम्मीद उससे पूरा देश करता है, और क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जायज है।
1: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। अब देखिए, विपक्ष युद्ध छेड़ चुका है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए, क्या करेगी आपकी सरकार?
4: वैसे आपने हल्का स्टेटमेंट बोला, युद्ध कहां छेड़ चुके हैं। राहुल गांधी पहले कहते हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं। हाइड्रोजन बम तो युद्ध से भी बड़ी चीज होती है, और आखिर में निकला क्या, उसमें हाइड्रोजन गैस निकली। एक बार उन्होंने कहा था भूकंप आने वाला, सब कुछ हिल जाएगा, हमें लगता है उसका पत्ता भी नहीं हिला। और जो वो कह रहे हैं युद्ध की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आज तक किस विषय पर नहीं बोला है? शुरू करिए पिछले 10 साल में, राफाल गड़बड़ हो गया है, चौकीदार चोर है, LIC बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, HAL बर्बाद हो गया, SEBI में गड़बड़ हो गया, स्टॉक एक्सचेंज डूब गया, अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से मैनेज हो गया है, वैक्सीन खराब है, वैक्सीन का डाटा दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाओ, आर्मी गलत बोल रही है, बालाकोट में एयरफोर्स गलत बोल रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तक कोई ऐसी चीज बताई जिसके खिलाफ युद्ध ना छेड़ा। और तो और, भारत के समाज में सब कुछ गलत हो रहा है, वो स्मैश पैट्रियार्की हो रही है, भारत के धर्म में गलत है, संस्कृति में गलत है, एयरफोर्स गलत है, आर्मी गलत है, LIC गलत है, SEBI गलत है, सब कुछ गलत है, संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ गलत है, इकोनॉमी डेड है। अब इस डेड एंड वाली डेड मानसिकता से क्या अपेक्षा की जा सकती है? अब आते हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात।
1: आप रायता फैला रहे हैं, मुझे लगता
4: नहीं रायता नहीं, अब बिल्कुल फैक्ट।
1: देख बाकी चीजों पर आप चले गए, आप मुझे
4: बताएं। अभी तो मैंने इसी ने मैंने कहा पहले, हाँ, तो सिर्फ ये बोला। अब
1: चुनाव आयोग पर
4: जिस रिपोर्ट की बात हो रही है, आप पत्रकार हैं वरिष्ठ, आशुतोष जी पत्रकार रह चुके हैं, कोई भी रिपोर्ट जिसमें कोई ऑफिशियल कोट हो ही नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है उस फैक्ट की? अगर कोई ऑफिशियल कोट है देन इट इज कंसिडर्ड एज फैक्ट, एंड इफ देयर इज नो ऑफिशियल फैक्ट फिर होता है आपका एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है और इमेजिनेशन है। और अगर ये वाली बात कहें तो सेम अखबार ने कहा था RBI ने गोल्ड बेच दिया है, खंडन आ गया RBI का, नहीं हुआ है। और आशुतोष जी तो बहुत अच्छी तरह ध्यान होगा साहब, 4 अप्रैल 2012 को इसी अखबार ने कहा कि रायसीना हिल पूरी तरीके से घबरा गई थी और इंडियन आर्मी ने कू कर दिया था, कांग्रेस ने माना था, तो सनसनी के। मैं पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था, रक्षा मंत्री ने जवाब दिया था, संसद ने जवाब दिया, नहीं, आर्मी के एक ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि पूरी तरीके से फ्रिवलस खबर है। उसी प्रकार चुनाव आयोग ने एक स्टेटमेंट जारी किया,
1: चुनाव आयोग ने जारी,
4: नहीं भाई मैं कह रहा, चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी किया।
1: चुनाव आयोग डिनाई नहीं कर रहा है सर खबर को,
4: कहां डिनाई नहीं कर रहा है,
1: बिल्कुल उन्होंने कहा है कि असहमति हुई है और असहमति इस संस्था का काम करने का तरीका है, हिस्सा है, जैसा हर संस्थान में होता है।
4: जैसे मैं आपको बात बताता हूं,
1: उन्होंने डिनाई ही नहीं की है खबर।
4: हम आपको बात बताते हैं, आप हम लोग बैठे हैं यहाँ पे राउंड टेबल में, इस न्यूज रूम में, आप रात में जो ब्लैक एंड व्हाइट करती है, हाँ, या कोई खबर चलती, हाँ, है, डिस्कशन होता है कि नहीं?
1: बिल्कुल होता है।
4: या सब कहते हैं जी बस ये कॉमा फुल स्टॉप सा, नहीं, अपना अपना विचार देते हैं, लास्ट में तय होता। उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें नोट ऑफ डिसेंट है? नो। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे फाइल पे लिखा हो कि हमारा ये मंतव्य था? नो। अगर कम्युनिकेशन में लेटर लिखे जाते हैं साहब ये ऐसा था, इसमें ये था, वो कहीं पर भी ऑन फाइल में नोट ऑफ डिसेंट के रूप में नहीं लिखा हुआ, ये चुनाव आयोग ने साफ लिखा है। और आज तक एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें तीनों चुनाव आयुक्त ना रहे हो, बताइए, कोई भी ऐसी चीज रही हो जिसमें तीनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी सहमत, और प्रोसेस क्या होता है? देखिए रूल ये है कि यह बहुमत से निर्णय होगा, अगर दोनों चुनाव आयुक्त किसी मुद्दे पर अलग होंगे तो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कर ही नहीं सकता निर्णय। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार फिर, वो हाइड्रोजन बम से हाइड्रोजन गैस बनाने वाले रसायन शास्त्री महोदय ने और कुछ नहीं किया है, केवल फालतू में गैस बनाने का प्रयास किया, और कांग्रेस के सामने एक मजबूरी है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वो कहते हैं वोट चोरी हो गया। अंजना जी आपके प्रांत की मैं बात कर रहा हूं, ये 2010 में कांग्रेस के पास कितनी सीटें और कितना वोट था? 4 सीटें और 3.5% वोट और 234 पे जमानत जब्त। भाई साहब था क्या आपके पास जो चोरी हो गया? ये तो मैं आपके सरकार की बात कर रहा हूं। अब 2021 में बंगाल में 0 वोट, वहां वोट किसने चुराया था? तो प्रचंड बहुमत मिला था तृणमूल कांग्रेस को। तो अब ये समस्या,
1: दो काउंटर है मेरा, दो काउंटर है। एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी, अब इससे ज्यादा लिखित क्या हो सकता है? दूसरा, ये भी डिनाई नहीं किया है प्रेस नोट में, प्रेस नोट में ही खोल रही हूं आपके लिए और पहली ही लाइन पढ़ देती हूं जिसमें साफ साफ लिखा है कि रिटन नोट्स, खुद ही कह रहे हैं, रिटन नोट्स, ऑब्जर्वेशंस, टेक्निकल सजेशंस एंड इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस आर स्टैंडर्ड।
4: तो स्टैंडर्ड होता
1: ही कह रहे हैं।
4: अगर आप ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से एक प्रस्ताव में ये है, ये होना चाहिए, तो विचार होता है, अन्यथा फिर क्यों क्यों सब लोग बैठेंगे।
1: रिटन नोट्स नहीं है, ऐसा नहीं कहा है।
4: नहीं, रिट ऑन फाइल कोई नोट ऑफ डिसेंट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोट एंड नोट ऑफ डिसेंट, दोनों में अंतर है। यानी मैं अपना इस बात पे प्रतिवाद व्यक्त कर रहा हूं इस निर्णय के विरुद्ध नहीं। मैंने यह सुझाव दिया, जैसे उन्होंने क्या क्या आप फिर पढ़िए, सजेशंस, डिलिब्रेशन, ये तो होता ही है।
1: पर उन्होंने डिनाई नहीं किया ना सर, खबर डिनाई नहीं की है।
4: कहां खबर डिनाई नहीं किया?
1: अरे संधु साहब ने इलीगल और अनऑथराइज्ड कहा है, इलीगल और
4: ये कहां लिखा है बताएं, उन्होंने कोट किया संधु साहब?
1: ठीक है, जब आप
4: जी हमने मन से मान लिया संधु साहब कह रहे
1: हैं जी, अब आप मोर्चा संभालिए।
5: बड़ा अच्छा लगा कि मुद्दों पर बात करते करते आदतन जो भटकाव के लक्षण लाते हैं वो भटकाव के लक्षण लाए। मुद्दा तो अभी भी गौन है, इनको लगता है कि वो मुद्दा है ही नहीं, पर सच सबको पता है। न्यूज रिपोर्ट के बारे में इन्होंने आपत्ति जताई कि न्यूज रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है, और इनको ये पूरी आश्वस्त के साथ कह रहे हैं कहीं कोई डिसेंट नोट नहीं है। मतलब सुधांशु त्रिवेदी जी को, भाजपा के प्रवक्ता को, ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इनको ये जानकारी है, पर चुनाव आयोग इसको बाहर नहीं लाने की स्थिति में है। ऐसी बात है तो चुनाव आयोग को जो है पीसी कर देना चाहिए, तीनों एक साथ बैठ जाते। अब तो 3-4 दिन होने को है इस रिपोर्ट को भी आए हुए, तो अभी तक तीनों एक साथ बैठ करके इतनी बड़ी विश्वसनीयता का संकट पूरे देश के लोकतंत्र पर पैदा होने जा रहा है और आवाज नहीं आ रही अभी तीनों चुनाव आयुक्तों को। तीनों को एक साथ आकर जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, आपत्तियों की बात है, ये लिखित मौखिक नहीं है, लिखित औपचारिक तौर पर प्रक्रिया के तहत चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी तक को ये बात कही जा रही है। ये चुनाव आयोग के अंदर की बात नहीं, चुनाव आयोग से बाहर तक चुनाव आयोग को जाना पड़ा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को सुपर बॉस समझ रहा है, वो कानून से अपने को परे मान रहा है। और क्यों न माने भाई, याद कीजिए तो सांसद हैं, 2023 में ये दिसंबर 23 में जो डाली गई थी धारा जो 16, वो 16 धारा एक अलग से डाली गई जो बिल में नहीं था, नियुक्तियों के बिल में, और उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाई इनको सिविल और फौजदारी कोई भी तरह के कोई भी यदि बात आएगी तो उससे इनको इम्यून कर दिया जाएगा। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको इम्यूनिटी की जरूरत पड़ रही है? आप ऐसा कौन सा अपराध करने जा रहे हैं? ठीक है ना, ज्ञानेश कुमार से हम पहले से भी कह रहे हैं,
1: कब बने
5: ज्ञानेश, देखिए ये इसकी, लेकिन ये प्रक्रिया पहले से है,
1: ये चल रही है, ठीक है,
5: फरवरी में 25 में बने हैं, पर ये दिसंबर, दिसंबर में ही ये 2023 से ही ये प्रक्रिया है। और हम जो आवाज आज उठा रहे हैं, कोई आज आवाज नहीं उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और ये आवाज कांग्रेस पार्टी की सिर्फ नहीं है। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी की जरूर चर्चा इन्होंने की है। भाई एंटी इनकम्बेंसी इसका मतलब वाजपेयी जी वाली तो आप मानते ही नहीं है, साइनिंग इंडिया थी, फिर वाजपेयी जी क्यों चले गए? बात यह है कि उस समय चुनाव जो है निष्पक्षता के साथ होता था, सरकारें जाती थी, सरकारें आती थी, जो काम अच्छा करता था उसके साथ लोग होते थे, लेकिन जिस तरह पिछले 3-4-10 वर्षों
1: कितने
5: में
1: साल रहे?
5: आखिर गए ना, उनके विरुद्ध भी आए, उनके विरुद्ध भी आया, ठीक है, वो 25 साल रहे, वो 25 साल रहे, 29 साल रहे हों, 15 साल रहे हों, मुद्दा सिर्फ एंटी एकदम ठीक है, लेकिन गए, सब गए, लेकिन बात अब एंटी इनकम्बेंसी का सिर्फ उससे संबंध नहीं है जो ये बात तर्क दे रहे हैं। तर्क की बात है कि जो चुनाव आयोग ने अभी बात आपके सामने रखी है, सिर्फ 10 महीने में 14 आपत्तियां उन्होंने दर्ज की, और वो आपत्तियां लिखित में हैं, ये रिकॉर्ड में है, कैबिनेट सेक्रेटरी को उनको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। दूसरी बात, लास्ट जो सेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है वोटर आईडी को लेकर के, वोटर का जो डिलीशन और एडिशन होगा वो जो पहले ईआरओ करता था, ये तो कल का, ये भी रिपोर्ट दो एक दिन पहले आ गई गोवा वाले में, एक सप्ताह के अंदर 10 चिट्ठियां 8 चिट्ठियां लिखता है वहां का चीफ इलेक्शन जो अधिकारी है, ऑफिसर है, और वो उसके बावजूद 97 लोगों का वोट गोवा में काट दिया जाता है फरवरी में, ये तो ऑन रिकॉर्ड में है। तो इसका मतलब, इसका 10 सेकंड पीछे वो तो है भी नहीं, उसे चुनाव आयोग के तो बेचारे वो प्रवक्ता है नहीं, उनसे बेकार पूछते हैं। जब भी हम लोग चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो भाजपा के लोगों को। आखिर एक क्या बात है कि जब इतने बड़े विवाद का मामला आ रहा है, हम तो कहते हैं सुधांशु भाई को भी पूछना चाहिए कि भाई ये इस तरह की कोई विवाद की बात अखबारों में आई है, तो तीनों चुनाव आयुक्त को आना चाहिए,

0: प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या जो जो जो, जो जो जो चीजें
1: आप लोग क्यों नहीं मांग कर रहे? लास्ट लास्ट लास्ट लास्ट लास्ट लास्ट लास्ट जल्दी खत्म करा
0: क्या आपको एकदम कर ही रहा बनी लास्टे भट्टे लास्टे भट्टे चूंकि बात ही बाकी इनको क्यों इतना मैंने भा रहा है चुनाव आयोग का हर चीज। चुनाव आयोग से यदि प्रश्न किया जा रहा है तो ये लोकतंत्र के संदर्भ में प्रश्न है और अब तो चुनाव आयोग ने खुद प्रश्न किया। आपके शो में मैं दो दिन से तीन दिन से देख रहा हूं पिछले कई पूर्व चुनाव आयुक्त चाहे वो कुरैशी साहब हों ओपी रावत साहब हों या अशोक लवासा साहब इन सबने आकर के बात रखी कि इस तरह से जो सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय नहीं है वो सारे निर्णय जो है फेक है। एक साल से दो चुनाव आयुक्तों को फाइल तक नहीं दी जा रही है।
1: रावत जी
0: ये ऑन रिकॉर्ड में है।
1: रावत जी आशुतोष जी मैं आपको एक सिले ला रही हूँ। रावत जी का इन्होंने चर्चा किया। रावत जी ने कल मेरे शो पर कहा कि मैं तो सारा ओनस उन दो कमिश्नर्स पर डालता हूँ कि आप प्रेसिडेंट के पास जाइए। आप कैबिनेट सेक्रेटरी को आप कैसे जा रहे हैं उनके पास किस कैपेसिटी में जा रहे हैं? आप सरकार के नीचे तो है ही नहीं। आप राष्ट्रपति के पास जाइए और आप बताइए या फिर मीटिंग बुलाइए और उसमें आप दोनों मेजोरिटी से उसको वॉशआउट कीजिए कैंसिल कीजिए डिसीजन को। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए?
2: नहीं मैंने भी ओपी राउत का इंटरव्यू किया। हाँ। मैंने अशोक लवासा साहब का भी इंटरव्यू किया है। हाँ। सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि उन्होंने आज इन्फॉर्मेशन दी या कल इन्फॉर्मेशन दी या कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी नहीं लिखी। जो सवाल उन्होंने खड़े किए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर कोई जोशी साहब अगर ये कहते हैं कितनी फरवरी को 4-16 अप्रैल
3: कहाँ है वो कागज?
2: एक मिनट सर, हमने तो नहीं बोला आपके बीच
3: में।
2: 16 अप्रैल को
3: आधार क्या है?
2: 16 अप्रैल को एक साल से ना तो एजेंडा आ रहा था मीटिंग का और ना मीटिंग के बाद उसके मिनट्स आ रहे थे। तो जब एजेंडा नहीं आ रहा था और मिनट्स नहीं आ रहे थे तो सिग्नेचर कहाँ पे होंगे भाई? जब जैसे यहाँ बैठे बात कर रहे हैं कोई आदमी नोट्स ले रहा, नोट्स लेने के बाद वो चला जाता है और उसके बाद वापस लौटता, प्रोसेस ये होता, दिखाता भाई ये आप लोगों की बातचीत हमको किया था, हाँ तो ठीक है तो साइन कर दिए। जब मिनट्स नहीं आ रहे तो सिग्नेचर कहाँ से होंगे? सीधे सी बात है, ये तो सरकारी जो सरकारी महकमा जिस तरीके से काम करता है उसका प्रोसेस है। तो इसका मतलब सिग्नेचर तो नहीं होगा कहीं। महत्वपूर्ण सवाल इसमें जो है वो ये है कि 16 अप्रैल को आदेश जारी हो गया, कमीशन का अप्रूवल नहीं है। उसके बाद 24 अप्रैल को आदेश जारी हो गया, कमीशन का अप्रूवल नहीं है। उसके अलावा और आगे कई कई चीजें हैं, कमीशन का अप्रूवल नहीं है। तो कमीशन काम कैसे कर रहा था? किसके कहने पे काम कर रहा था?
1: नहीं पर कमीशन का अप्रूवल नहीं है ये तो मीडिया रिपोर्ट में दावा
2: नहीं है।
1: उनका कहना है उसका कहना है कि ये फैसला आ गया।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: हस्ताक्षर तीनों के हैं या नहीं है ये तो क्लैरिटी नहीं है।
2: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है साफ तौर पे, अभी तक डिनाई नहीं हुआ है। 16 अप्रैल ऑफिशियल कम्युनिकेशन इशूड विदाउट कमीशन अप्रूवल, 28 अक्टूबर ऑर्डर इन ESI's नेम विदाउट कमीशन अप्रूवल।
3: किस आधार?
2: एक 16 अप्रैल जोशी साहब, मैं नाम बता देता हूं, ऑफिसर्स ऑन फॉरेन ट्रिप विदाउट कमीशन अप्रूवल। 24 अप्रैल जोशी रिटरेट्स नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन विदाउट कमीशन अप्रूवल। मतलब बिना कम्युनिकेशन बिना कमीशन के अप्रूवल का मतलब क्या हुआ? अगर तीन में से
1: तो हम ये माने कि इसके आधार पर ये जोशी
2: सारे फैसले
1: क्या हम मिस्टर जोशी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट माने?
2: 100%
1: यही है ना।
2: अगर आप भी पत्रकार हम भी पत्रकार हैं, अभी तक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन या ज्ञानेश कुमार जी सीधे कह देते ये बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद है, फालतू है, फेक है, फर्जी है,
1: ठीक है।
2: और इसके खिलाफ अगर सुधांशु जी को लगता है कि यह वाकई में फेक खबर है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए इमीडिएटली। इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया खतरे में पड़ गई है और इससे भारत के लोकतंत्र को झटका लग रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक बात लोकतंत्र नहीं हो सकती। इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थ्रू
3: ये तो पत्रकार की लिखी रिपोर्ट है, वो तो शेखर गुप्ता एडिटर की रिपोर्ट
2: है। आप छोड़िए,
3: अरे सुनिए भाई, आर्मी ने कर दिया, इससे बड़ा खतरा लोकतंत्र कह रहे हो सकता है?
2: आप वाटरबाउटरी कर रहे हैं,
3: वहां तो नहीं कोर्ट में जाना चाहिए। गजब है साहब,
2: आप वाटरबाउटरी कर, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जाते
3: इस खबर?
2: आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट
3: में खबर निकाली थी?
2: मैं कह रहा हूं आप,
3: दूसरी बात
2: और दूसरी
3: आप वाटर बाउंड्री कर रहे हैं। 16 अप्रैल का ऑर्डर क्या सबूत है सिवाय इसके कि एक पत्रकार ने लिख दिया?
2: तो उस पे आप कह रहे हैं डिफेमेशन का मुकदमा करिए ना,
3: आप अपने
2: डिफेमेशन का मुकदमा करिए ना, किससे रोका आप?
3: सुप्रीम कोर्ट
2: जाइए, आप ही लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप ही कहते सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट?
3: अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना SIR पे, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया
2: ना,
3: तो बस आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए।
2: आप जाइए ना,
3: हम क्यों जाएं?
2: क्यों
3: आप गए थे? अब देखिए फिर बीच में बोलना, अब आगे सर वाटर बाउंड्री इसी को कहते हैं। SIR को लेकर विपक्षी दलों के एक नहीं अनेक प्रतिनिधि लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो

0: भी हो रहा है, बिल्कुल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, और वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21(3) के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में हो रहा है, मगर उसके बावजूद
1: सुधांशु जी, ये चेक्स एंड बैलेंसेस इसी लोकतंत्र में बनाना कि भाई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसले नहीं लेगा, दो उसके साथ चुनाव आयुक्त होंगे। अब अगर ये सामने आ रही है बात कि दो चुनाव आयुक्तों की बात ये सीसी नहीं मान रहे थे, आपके लिए चिंता की बात
0: नहीं भाई, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा विदाउट अप्रूवल एन इलेक्शन ऑफिसर हैज गॉन टू फॉरेन ट्रिप, हो ही नहीं सकता, वो अप्रूव ही नहीं होगा विदाउट अप्रूवल
2: होगा। अरे भाई आप मेरे को कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे को कह रहे मैं झूठ बोल रहा, मैं काउंटर भी ना करूं इस बात का
0: भाई। अब ये बीप आपकी बात मैंने शांति से सुनी।
2: अरे भाई आपको
0: मैंने बीप से भी पूछा कि नहीं पर्सनल नहीं,
2: आपने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं,
0: हां क्योंकि उसका कारण है बड़ी लॉजिक।
2: अरे भाई ये
0: तरीका आप बोलिए
1: बारी-बारी से जवाब ले लूंगी, लेट हिम कम,
0: कोई भी व्यक्ति समझ सकता है
1: एंश्योर।
0: अरे मूर्खतापूर्ण बात इसलिए विदाउट अप्रूवल मैं बोल रहा हूं,
2: देखिए मैं बोलूं आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं।
1: टॉपिक पे रहिए, टॉपिक
0: जब कोई फॉरेन टूर पे जाता है तो टिकट सरकार की संस्था से लिया जाता है, सरकार की संस्था तभी देगी जब अप्रूवल होगा।
2: अरे भाई कमीशन का
0: मतलब मूर्खतापूर्ण बात है,
2: कमीशन
0: विदाउट अप्रूवल कुछ फिर अपने
2: कमीशन का अप्रूवल का है।
0: अरे भाई
2: भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विवेक जोशी कह रहे हैं, मैं
0: कहा कह रहे हैं दिखाओ
2: विवेक जोशी,
0: अरे जो बोले विवेक जोशी बोले, अब देखिए आ गए अपनी हैसियत पे।
2: मैं कह रहा हूँ बोलिए ना विवेक जोशी, संधू झूठ बोल रहा है,
0: विवेक जोशी ने कहा बोला है, सबूत बोलिए कहा बोला है, एक पत्रकार ने लिख दिया कि बोला है।
2: मैं कह रहा हूँ अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोलिए विवेक जोशी झूठ बोल रहे हैं।
0: आज विवेक जोशी ने कहा बोला, क्या सबूत है बोलिए।
2: अरे भाई मैं पूछा बोलिए झूठ बोल रहे
0: हैं, आप बैठ के कहते हैं कि मैंने ये कहा तो आप अब
2: नहीं बोल
1: पाए, बारी बारी से
0: आप नहीं बोल पा, आप कोई सबूत नहीं दे पा रहे, किसी का कोर्ट नहीं। आप सुनिए आप क्या कह रहे हैं, सुनिए विदाउट कोर्ट पत्रकारिता का कोई मतलब होता है?
2: ऑथेंटिकेट
0: बोलिए बोलिए बोलिए,
2: मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ।
0: नहीं आपके ऑथेंटिकेट भाई, जिसमें
2: कर रहा हूँ ऑथेंटिकेट भाई,
0: आप कौन होते हैं ऑथेंटिकेट करने वाले? अब
2: मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ,
1: ठीक है? विकास विवेक से देखिए
0: सिर्फ लगातार हैकल करते रहेंगे और उसके बाद डिस्टर्ब करते रहेंगे, और मैंने
1: ये भी नहीं बीच में बोल रहे हैं।
0: फॉर्म सिक्स की बात आई, इन्होंने कहा कि, और ये अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला, हमने इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं दिया, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके देख ले, मैंने पहला सेंटेंस ये बोला है कि भारत के प्रपंच शिरोमणि राहुल गांधी जी की बात का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल कर रहा हूं, मैंने कहीं नहीं बोला मैं इलेक्शन कमीशन के डिपेंड में बोल रहा हूं। अब मैं बोलता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1960 का जो फॉर्म सिक्स था उसमें मदर फादर की बात नहीं थी, इसलिए ये बाद में जो एड किया गया ये गलत था। अब आप सुनिए, फॉर्म सिक्स में कोई चेंज नहीं किया गया, मदर फादर की जो इंफॉर्मेशन मांगी गई ये 1987 और 2003 में मांगी गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट में लिखा है कि 26 जनवरी 1987 से पहले जो पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, 1987 से 2003 के बीच में जो हुए हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि उनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति कम से कम भारत का नागरिक होना
1: चाहिए। नियम से होगा ना,
0: नियम से
1: सरकार करेगी, ये कानून है।
0: अरे भाई ये 2003 का नियम है भाई, ना कोई नियम, ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं।
2: अरे क्या अजीब बात कर रहे हैं,
0: फॉर्म सिक्स में आप बदलाव करेंगे?
2: 2003 का नियम है,
0: नहीं नियम
1: है।
0: और दूसरी बात सुनिए, मैं एक और बात कहता हूं, जो बात ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, 1960 में भारत का
1: नियम से होगा ना,
0: नियम से
1: सरकार करेगी, ये कानून है।
0: अरे भाई ये 2003 का नियम है भाई,
2: ना कोई नियम,
0: ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं,
2: नहीं है।
0: अरे क्या अजीब बात कर रहे हैं,
2: फॉर्म सिक्स में आप बदलाव करेंगे?
0: 2003 का नियम है,
2: नहीं नियम है।
1: और
0: दूसरी बात सुनिए, मैं एक और बात कहता हूं, जो बात ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, 1960 में भारत का पहला इलेक्ट्रो रोल कब बना? 1952। वोटिंग एज क्या थी? 21 साल। तो
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने अनेक्षर डाला है फॉर्म सिक्स में, चुनाव आयोग खुद कह रहा है
0: वो पावर के साथ है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: अनेक्षर डाला है, ठीक है, चलिए अजय उपाध्याय, अजय उपाध्याय जी
2: बोलेंगे।
1: अच्छा 5 सेकंड,
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने बिहार चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अगर कोई आदमी बेघर है,
0: चुनाव आयुक्त है कि नहीं, पहली बात बोलो, तीनों चुनाव आयुक्त है कि नहीं?
2: अरे
0: उन्होंने
2: क्या, उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि अगर कोई आदमी भिखमंगा है, बेघर है, अगर किसी जगह पे वो 3 दिन रहता है तो भी उसका वोट देने का अधिकार उसको होगा, और हम इंश्योर कराएंगे वोट दे, ना उसके माँ बाप का पता, ना उसका घर का पता, ना उसका एड्रेस का पता, सेम चुनाव आयोग तो भैया कह रहे हैं कि भैया मां बाप बताओ, बाप बताओ कहां से आए कहां

0: हाँ रहे, ये कार्ड दिखाओ, फलाना कार्ड दिखाओ,
1: थोड़ा इस पर
0: सेम ज्ञानेश कुमार
1: देखिए
0: क्या हो गया भाई, उस वक्त आप गलत बोल रहे थे, आज गलत बोल रहे हैं।
1: देखिए भाई साहब ने जो भी बात रखी हो, राहुल जी से इनको व्यक्तिगत दिक्कत हो सकती है और होना जायज भी है भाई, विपक्षी पार्टी है, सबसे ज्यादा प्रहार इनको झेलना पड़ा। मैं सुनिए
2: जवाब दिया,
1: अब उनको प्रपंच शिरोमणि कर रहे हैं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल पाखंडी पाखंड
2: षड्यंत्रकारी
1: शिरोमणि, मैं बीच में
2: नॉन बायोलॉजिकल
1: ओपन इन्वाइट कर रहे हैं,
2: बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा
1: बीच में बोलू,
2: नॉन बायोलॉजिकल
1: कोई भी षड्यंत्रकारी जो है नॉन बायोलॉजिकल शिरोमणि उनके बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा, पर एक बात को आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्म 16 को लेकर अलग से एनेक्चर जोड़ा, 6 को लेकर के अलग से जो है एनेक्चर जोड़ा गया और इसको लेकर के ही संधु ने लेटर पर्याप्त लिखी है और उसमें स्पष्ट कहा है कि ये बदलाव जो है अवैध है।
2: कहा
1: अरे भाई लेटर आप बात कीजिए,
2: दिखाइए ना, आप दिखाइए,
1: आपके तो ज्ञानेश
2: लेटर ही नहीं है,
1: मुक्त ज्ञानेश जी तो आप ही के हैं, मुक्त ज्ञानेश जी आप ही के हैं,
2: अरे आप बताइए ना,
1: मुक्त ज्ञानेश जी आपके हैं ना,
2: आप आरोप लगा रहे
1: हैं, ज्ञानेश जी का गुप्त जो है खुल के आ गया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अवैध और अनाधिकृत कहा, ये लेटर प्रोसेस में है, वो आ जाएगा, ये लेटर आ रहा है, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, दूसरी बात
3: बिल्कुल आना चाहिए, अगर पेपर है जो भी है और जो रावत साहब कह रहे हो क्या गलत कह रहे हैं, रावत साहब कह रहे हैं कि आप आइए ना पेपर दिखाइए,
1: पेपर नहीं है, पेपर दिखाइए और ये बात आप ठीक कर रही है, इस बात को मैं थोड़ा
3: मानते हैं,
1: इन दो लोगों की
3: जो ये बात कह रहे हैं ये सही है,
1: इन दो लोगों ने जो भी आपत्ति दर्ज की या उनके साथ जो भी, मैं तो कहता हूं कि उनके साथ भी अन्याय हो रहा है कि वो चुनाव आयोग में रहकर वो खुद अपने साथ अन्याय करा रहे हैं और देश के साथ अन्याय हो रहा है,
2: सारे निर्णय यदि
1: यदि
2: सारे निर्णय नहीं है, कोई आपत्ति नहीं,
1: वो खुद
2: करा रहे हैं,
1: एक हजार से नोट
2: नहीं
1: दी जा रही,
2: चुनाव आयोग ने
1: एक साल से
2: नहीं दी जा रही है,
3: लेकिन अजय जी इन दोनों को सामने आना चाहिए, जो रावत साहब कह रहे हैं सही है कि नहीं है,
1: एकदम आना चाहिए, उनको पहले ही डिसेंट नोट वहां पर डिफर करना चाहिए था और इलीगल है, यदि दो चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट तौर पे इस सहमत नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो जितने भी अभी तक नियम कायदे कानून बनाए गए इवन एसआईआर कराए गए सब अवैधिक, अवैध है, इलीगल है और ये राष्ट्रद्रोह का काम है, क्योंकि चुनाव आयोग के
3: सामूहिक
1: प्रक्रिया के तहत है, उस पर काम होना चाहिए था, और ये कांग्रेस का संबंध नहीं है, भाजपा और जेडीयू और भाजपा की बात नहीं है, ये देश की बात, देश की बात आनी चाहिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़नी चाहिए,
4: इसमें क्यों देश की बात पर, देश की बात पर,
1: इसमें क्यों दिक्कत,
4: बिल्कुल देश की बात होगी,
2: अभी बताते हैं,
4: अभी आ रहे हैं, देश की बात होगी, मेरा एक स्पष्ट मत नहीं है, चुनाव आयोग ने नोट जारी कर उसके 5 नंबर पॉइंट में स्पष्ट कहा कि हमने जो भी फैसला किया चुनाव आयोग में पिछले 10 महीने में या किसी साल में जब से वो चुनाव आयुक्त फरवरी 2025 से बने हैं, वो फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, कोई अगर एक रिपोर्ट जारी कर दे किसी भी अखबार में उस पर सब नाचने लगे, अच्छी बात है, नाचिए खूब बढ़िया से, नाचिए नृत्य करिए, लेकिन अगर मेरा एक उनका जो इतिहास है राहुल जी का लगातार चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक शक्तियों और संविधान के विभिन्न चीजों पर हमला करने का, उससे ये बताता है वो राज परिवार का एटीट्यूड है, उनको चुनाव आयोग से सैल्यूट लेने की आदत सी रही है, चाहे वो नवीन चावला को जिस तरह उन्होंने बनाया, गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को लिखा था इसको हटाइए,
2: बर्खास्त करने को लिखा,
4: उनकी पत्नी एक एनजीओ चलाती थी जिसमें कांग्रेस के सांसद पैसा डालते थे, इस कारण से हटाइए, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया, एमएस गिल जो चुनाव आयुक्त थे उनको मंत्री बना दिया, टीएन सेशन जो चुनाव आयुक्त थे उसमें एक ही होता था, राजीव गांधी ने जबरदस्ती 2 चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर देते थे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो राहुल गांधी जी के परिवार को शायद ये आदत लगी हुई है इस देश में शुरुआती दौर से कि चुनाव आयुक्तों, सीबीआई के चीफों, जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के, कि दीपक खन्ना, एचआर खन्ना लिख दिए एक डिसेंट नोट एडीएम जबलपुर केस में, तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, ये एटीट्यूड का सवाल है, तो राहुल गांधी चूंकि देश में लगातार 12 सालों से नकारे गए और देश के कई राज्यों में पश्चिम बंगाल में 1977 से कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं, 85 से गुजरात में सरकार में नहीं, 89 के बाद बिहार में सरकार में नहीं, उसी हाल में उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं और दिल्ली में शून्य पर बार बार निपटती रही, अभी पश्चिम बंगाल में शून्य हो गया, तो वो चुनाव आयोग जो जिसको आपने कहा शुरुआत में कि एम्पायर है लोकतंत्र का, उस पर हमला कर ये साबित करना चाह रही है कि मौजूदा जो व्यवस्था और सत्ता में लोग हैं वो चुनाव आयोग के सहयोग से हैं, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन चूंकि आरोप घूमकर हमारे ऊपर आता है, मौजूदा सत्ता व्यवस्था पर आता है, तो राहुल गांधी जी के पूरे मकसद पर, साजिश पर, लोकतंत्र के खिलाफ जो उनकी

0: साजिश है और जो वो इस लोकतंत्र में लगातार गड्ढा खोद रहे हैं और देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उस झूठ के खिलाफ उस झूठे गांधी पर हमला होगा और राहुल गांधी झूठा गांधी का नाम से प्रसिद्ध होगा।
1: ठीक है, छोटा सा जवाब देने से लास्ट
0: कविता नहीं है,
1: एक ईर के नेता पर हमला किया,
0: ए वीर तू भी लकड़ी काटाओ, ए फत्ते तू भी लकड़ी काटाओ, वीर वीर फत्ता नहीं चल रहा है।
1: अजय जी, राजनीतिक हार की हताशा में आप लोग हर संस्था को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए भाई, 12 साल से सत्ता से बाहर क्या रहे, अब तो जो मिले उसी पर ये।
2: देखिए बात जो है, ये आज का जो मुद्दा आपने रखा है, ये मुद्दा राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस पार्टी पर है ही नहीं, बस ये बहस आपने क्यों रखा है। दो चुनाव आयुक्त ने जो आपत्तियां दर्ज की, 14 आपत्ति पिछले 10 महीने में, उसको लेकर के एक प्रेस नोट जरूर आया, पर प्रेस नोट में 14 आपत्तियों की कोई चर्चा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग विश्वसनीय और मजबूत हो और तीनों की जो कानूनी दर्जा है उस कानूनी दर्जा के साथ काम करे। राहुल गांधी जी पर मान लीजिए किसी को भी पेट में दर्द हो, कुछ भी करे, कांग्रेस पार्टी पर यदि राजनीतिक कोई बहस होती है और उसमें कोई आरोप लगाते हैं, आप लगाइए। हम लोगों ने जरूर शंकाएं और सब चीजों को व्यवस्थित ढंग से चुनाव आयोग के सामने रखने का काम किया। आज चुनाव आयोग के दो मेंबर यदि उस पर बहस करने की स्थिति में आ गए और उसको यदि कोई कह रहा है कि वो नृत्य कर रहे हैं या मीडिया के लोग जो आज आप बहस कर रही हैं, अब कल मीडिया के साथी को कहा जाए कि आप लोग जो है नृत्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक भी है और लोकतांत्रिक विचार विमर्श और संवाद की प्रक्रिया के लिए भी उचित नहीं है। लोकतंत्र में हम सब रहते हैं और नागरिक का मौलिक अधिकार वोट का अधिकार है। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ वर्षों से आपने भी देखा, लंबे समय से आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, आपके दर्शक देख रहे हैं, कभी भी ये पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरह रायता फैलाया जा रहा है SIR के नाम पे, कभी कभी वोट डिलीशन के नाम पे, एडिशन के नाम पे, कभी कहीं अपील में चला जा रहा है, एक इतने बड़े लंबे मैंने लगभग लाखों लोगों का वोट काट दिया जा रहा है इन वक्त पर, दिल्ली में जिस तरह से रायता फैला हुआ है, चुनाव आयोग को क्या इसी के लिए रखा गया है? एक तरफा यदि कोई निर्णय हो रहा है तो वो निर्णय कहां से हो रहा है? और जिसको इसका जवाब देना चाहिए वो चुप है। चुप्पी क्यों है? स्पष्ट बात है, प्रधानमंत्री जी को आके
1: सबसे बड़ा इसका जवाब उत्तर प्रदेश में होगा जहां चुनाव होने वाला है। आप समझ रहे हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, मैं तो ये कहूंगा, देखिए एक समय ऐसा था जब हमारे भारत के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते थे कि इलेक्शन कमीशन जब तक है तो कहीं ना कहीं हमारा वोट भी जुड़ेगा। सुधांशु जी, आधे घंटे से बैठा हूँ, मेरा वो है ही नहीं, सॉरी मेरा वो सिस्टम ही नहीं है, मैं किसी के बीच में बोलूँ।
1: जब सरकार, सही बात है,
3: मैं अपने टर्न पे ही बोलता हूँ और आशा रखता हूँ कि मुझे कोई इंटरप्ट ना करे। प्लीज
0: देखिए, तो समझाइए,
3: चारों को समझाना पड़ेगा ना, फिर
0: आराम से बात सुन लिए, फिर से अभी हम बोलेंगे, फिर कूदेंगे।
1: ठीक है, बोल लेंगे, चलिए।
3: ठीक है, मैं तो नहीं बोला ना आपकी, देखिए एक समय था अंजना, जब इलेक्शन कमीशन को हिंदुस्तान की जनता सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा विश्वास करती थी कि हमारा वोट जो है बनेगा, हम वोट देंगे। 1958 से लगातार SSR की प्रतिक्रिया चल रही थी जिसको हम स्पेशल समरी रिवीजन बोलते हैं, और हर जनवरी में उसका जो प्रकाशन होता था कि कितने वोट हमने युवाओं के जोड़े, पहले 21 साल था अब 18 साल है, जैसे कि सुधांशु जी ने बताया और देश की जनता भी जानती है। जब से SIR की प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई है तब से ये SSR SIR के बाद क्यों बंद हो गया ये बताइए, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। आज इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, मैं उसका हवाला देते हुए आपको बताना चाहता हूं कि जो नए वोटर हैं जिसको आज हम जेंजी कहते हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है ये चुनाव आयोग। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को जो इनकी मिली भगत है एहसास हो गया है कि देश के युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। दूसरी गंभीर बात सुधांशु जी सुन लीजिए, ERO जो इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता, आयोग कहता है कि वोट जोड़ने और वोट काटने का अधिकार जो है वो ERO के हाथ में होता है, या आप आयोग कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी नहीं कह रहा है। और आयोग ERO जोड़ता कैसे है? ERO नेट के द्वारा, ERO नेट, वो ERO नेट कब से ECI नेट में हो बदल गया ये आज तक देश को नहीं पता अंजना जी। ERO नेट ECI नेट कैसे बदल गया, ये कैसे हुआ? और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 ये कहता है कि अगर आपको इस तरह का बदलाव करना है तो आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। आप तो संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, क्या अनुमति आप लोग ने दी? कैसे जुड़ गया? और
1: विवाद तो अभी तक नहीं है जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि 40 पोर्टल थे अलग अलग, सबको कंबाइन करके ECI नेट एक बनाया गया, उसी में ERO को और सबको ERO नेट में एक्सेस रहता है।
3: बहुत अच्छा सवाल किया, तो ERO नेट को आपने एक्सरसाइज, वो आपने SDM को क्यों नहीं दिया एक्सेस उसका?
4: गोवा का,
3: गोवा आपका एग्जाम्पल आया,

0: 74 वोट थे वहां पर या 97 वोट वोट थे, लगातार ईमेल हो रही थी, क्यों नहीं जोड़ा गया?
1: ठीक है, जल्दी से शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, क्या होना चाहिए?
2: इसमें
1: क्या होना चाहिए?
2: इसमें अब इलेक्शन कमीशन चल नहीं सकता, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, आज नहीं, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद आप देखिएगा, इसलिए
1: अच्छा लेटिम कम,
2: उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्थिति में आज इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है, कोई भी चुनाव करेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी
1: नहीं। किस प्रक्रिया के तहत इस्तीफा देंगे?
2: वो खुद देंगे इस्तीफा,
1: मतलब खुद नैतिक आधार पे देंगे।
2: आप देखिएगा, कुछ खुद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इम्पीचमेंट हो नहीं सकता, वहां भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आना चाहिए कि अगर जितना ज्ञानेश कुमार को डिफेंड करेंगे उतना ही पॉलिटिकली उनको डैमेज
1: करेगा।
0: नहीं, बिल्कुल एकदम इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि देश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में धांधली हो रही है। और हमारी आज तो चिराग पासवान जी ने भी कह दिया इस बात को
1: कि सामने,
0: हाँ बिल्कुल सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तीनों आयुक्तों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुधांशु जी आप तो उसको डिफेंड कर रहे हैं, आपको तो डिफेंड करना ही करना है इलेक्शन कमीशन को, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जरा बता दीजिए, और जितने भी 14 पॉइंट थे उसको डिनाई क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन, इस पे भी जवाब चाहता हूं।
3: सवाल सिर्फ वोट चोरी का नहीं है और ना ही बाकी जो प्रक्रिया पर प्रश्न है, सवाल है कि इस लोकतंत्र में चुनाव आयोग क्या है, निष्पक्ष, उसकी निष्पक्षता नहीं रहेगी तो फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब एक एक वोटर जो सही में वोटर है उसको अधिकार मिले। यदि 22 लाख लगभग वोट जो है काटे जा रहे हैं किसी चुनाव में, तो आप समझिए कि उस चुनाव की विश्वसनीयता पर कितना बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट में ही वो गया केस, 93% जो 1.5 लाख लगभग लोगों का वोट काटा बंगाल में, काटा तो है 37 लाख, लेकिन 1.5 लाख लोगों का ट्रिब्यूनल में क्लियर जो हुआ है उसमें स्पष्ट हो गया कि भाई जो है उसमें 93% सही लोग हैं, तो इन लोगों का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं?
1: ठीक है,
3: लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग की बात। दूसरी बात, लास्ट,
1: जल्दी जल्दी,
3: जिस तरह से आप प्रश्न कर रहे हैं भाई, ये कांग्रेस का सिर्फ प्रश्न नहीं है, और आज जो मुद्दा है ये तो चुनाव आयोग के अंदर का मुद्दा है। चुनाव आयोग के दो यदि चुनाव आयुक्तों ने बात रखी है तो उस पर तीनों को आकर के और करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। यदि कोई मीडिया रिपोर्ट गलत
1: कॉन्फ्रेंस कर देना
3: और विश्वसनीयता बढ़ेगी, इसमें
1: क्या दिक्कत है?
4: एक जब उसने नोट जारी किया है, साधारणतया चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जब कोई चुनाव का बड़ा वातावरण रहे, डेट बताना रहे, वो बहुत उत्साह से करता है, करेगा आगे,
1: मौका आएगा।
4: मैं उसके
1: सवाल उठ रहा है,
4: मैं उसके उसका तो हो नहीं प्रवक्ता। मेरा एक प्रश्न है कि बिहार में जब SIR शुरू हुआ करीब 22-24 साल बाद 2002 में हुआ था, और उसी आधार पर केंद्र में 2004 में इनकी सरकार भी बनी कांग्रेस, उसकी बात 20 साल बाद हुआ, अगर वोटर जोड़े गए, हटाए गए, दो प्रविष्टियां थी उसको दुरुस्त किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस SIR प्रक्रिया को 10 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पिटीशन के बावजूद और एक प्राइवेट मेंबर योगेंद्र यादव जारी रखा, SIR बंगाल में भी जारी रखा, देश में SIR हो, शुद्धिकरण हो वोटर लिस्ट का, वोटर को बिल्कुल वोट देने का अधिकार हो, लेकिन यदि बिना किसी सब्सटेंटिव प्रूफ के इस देश की सबसे बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्थाओं पर देश का विपक्ष का नेता मिट्टी पसारने का, गोबर कालिक पोतने का काम करे और उसके हाथ सबूत ना हो, तो अब इस देश में कानून की जरूरत है कि बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के आप संविधान की तमाम शक्तियों को धता बता रहे हैं, आपको सजा मुकर्रर होनी चाहिए। क्यों? आप एक सवाल समझिए, विदेश की धरती पर जाते, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, मेरा माइक बंद करा दिया जाता है, EVM बदल दिया गया, वो चला नहीं इनका, कैसे नकार हो? राजकुमार को नकार बर्दाश्त कहां, जनता ने नकार फेंका है, सुनना पे निपटाया है, बिहार से लेके बंगाल तक में ऐसे राहुल गांधी जी को पेट में गुबार उठा है, चुनाव आयोग पे लगातार अपनी हार नकार का ठीकरा वो फोड़ रहे हैं।
1: केरला तो जीते उसका है।
4: वो जीते हैं, वहां ठीक रहता है ना, वहां ठीक रहता है, वहां वोटर आईडी, वो उसके उन लोगों ने SIR को सही ठहराया, बयान दिया। आशुतोष जी एक आईना के एक हिस्सा पढ़ लेते, उनसे मुझे उम्मीद रहती, क्योंकि पत्रकार रहे, अगर वो अगर ये राग गाएंगे राहुल राग, तब ये देश की जनता पूछेगी आप उस देश के वोटरों का अपमान कर रहे हैं जिसने लगातार 3 बार इस देश में सरकार बनाई है, आप अपमान कर रहे हैं देश के जनतंत्र का लगातार, और ये ताली आपके गाल पर बजेगा जब फिर से आप चुनाव में जाएंगे। बिहार गए थे ना, हस्त्र 6 पे निपटा दिए गए थे आपको, 6-6 पे निपटा दिया है बिहार की जनता ने, शर्म नहीं आया?
1: सुधांशु जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक वक्त पर चुनाव आयोग को लेकर ये बात होती थी कि वो नेताओं पर नकेल कसने की तैयारी करते थे कि भाई नेता को अब डिक्लेयर करना होगा, उसके पास क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड डिक्लेयर, मतलब चुनाव को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, इस पर पूरा फोकस होता था। आज की स्थिति ये है

कि मैं चुनाव कवर करने जाती हूँ, मुझे बंगाल में अनेकों लोग मिले जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों का बन गया दो का नहीं बन गया। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनका एक ही परिवार में चार लोग का बन गया, दो का किसी वजह से काटा जा रहा है नाम। ये किसकी जिम्मेदारी?

0: का नहीं बन गया। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनका एक ही परिवार में चार लोग का बन गया, दो का किसी वजह से काटा जा रहा है नाम। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक भी वोटर काट कैसे सकता है चुनाव आयोग जो हकदार है?
1: अब मैं घुसपैठियों की बात नहीं, शांति से जवाब दे सकता हूं। मैंने एकदम शांति सबका सुना है और मैं अपेक्षा करूंगा कि कोई इसमें, अब बताइए सवाल किस पे नहीं आया? अडवाणी जी पे नहीं आया क्या? आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ पे नहीं आया क्या? इलेक्शन कमिश्नर के परिवारों पे भी पूछा गया है। आपको कागज तो दिखाना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे तो बड़ी विचित्र सी बात है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। वैसे कागज नहीं दिखाएंगे वाली आदत पुरानी, सीए में भी नहीं दिखाएंगे और राम मंदिर में भी नहीं दिखाएंगे, वक्फ बोर्ड में भी नहीं दिखाएंगे, वो एक अलग बात है। अब मैं बात करना चाहता हूं, यहां पे अखबार से शुरू हुई थी तो मैं अखबार की रिपोर्ट से कोट करके बताता हूं कौन राष्ट्रद्रोह कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने आर्टिकल लिखा बांग्लादेश की अखबार डेली स्टार में, मोदी हैज टू गो। भाई सब चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल क्यों लिखा गया? अब उसका कनेक्शन बताता हूं। 2024 के चुनाव में रिकॉर्ड जीत, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत का रिकॉर्ड किस लोकसभा का है? वो है असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते, राहुल गांधी से 3 गुना वोट। ये धुबरी नहीं नहीं जल्दी नहीं भाई, आप सब लोग बोले इसका जवाब मुझे देना है। नहीं नहीं अब मैं
2: स्टेट से लड़ेंगे ना, वो जो बड़ा साजिश का हिस्सा है, देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं।
1: अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं जवाब दे रहा हूँ,
2: मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूँ,
3: तिल मिलाए हुए हैं,
2: मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूँ।
3: अच्छा लग रहा है,
2: अब सुनिए,
3: गाली बजाने लायक भी
4: कीर्तन कीजिए,
2: जो हाल है आप,
1: अब सुनिए, असम की धुबरी सीट वो है जिसके बारे में असम के सीएम हेमंत शर्मा कह चुके हैं कि ये मिनी बांग्लादेश है। धुबरी बरपेटा करीमगंज में सबसे भारी डेमोग्राफिक परिवर्तन 25 साल में हुआ, वहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई। अब आइए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये सारे डॉट्स कनेक्ट करिए। वो वीडियो देखिए कि जब एसआईआर शुरू हुआ तो बांग्लादेश की सीमा पर सैकड़ों लोग खड़े और वो बता रहे हमें उस पार जाने दो और हम बांग्लादेश में फला जगह के रहने वाले हैं, और वो ये भी कह रहे हैं 4 बार वोट डाल चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, बांग्लादेश के एक सांसद अख्तर हुसैन ने, बांग्लादेश की संसद ने बोला कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई बंगाल में तो बहुत बड़ी समस्या होगी, हमारे बहुत सारे लोग वापस आने लगेंगे। अब इन 4 डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद, अब अगर अपने टन पे बोलिएगा, मैंने शांति से सुना है, 4 डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद अगर कोई ये कहे कि बगैर कागज दिखाए, बगैर परिवार की पृष्ठभूमि दिखाए किसी व्यक्ति को नया वोटर बनाना चाहिए, तो देश तय करे कि कौन राजद्रोह कर रहा।
0: राउंड टेबल में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कांग्रेस पर हमलावर और विपक्ष पर हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने विपक्ष ने गुमराह करने की कोशिश की और उनकी जो गुमराह करने की कोशिश थी वो एसआईआर पर वो बेनकाब हो गए हैं। एक लंबा चौड़ा उन्होंने भी पोस्ट ट्विटर पर लिखा है। एसआईआर पर आयोग ने जो फैसला लिया वो सर्वसम्मति से लिया गया, तो चुनाव आयोग पर प्रश्न थे और बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, रविशंकर ने भी बयान दिया, संबित पात्रा की तरफ से बयान है और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तो ट्विटर पर यह पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने आम आदमी को, पब्लिक को जो गुमराह करने का प्रयास किया वो एक्सपोज हो गए एक बार फिर से। चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवादों के बीच में चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की है जहां पर कई अहम फैसले लिए गए हैं।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा, वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक

0: में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह SIR या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं SIR पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
1: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। SIR में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECI नेट की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे, तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECI नेट की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECI नेट करती है। एक कमिटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी।
4: अपोजिशन पार्टी को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती, तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या EVM मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं, तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठीकरा क्यों फोड़ते हैं।
1: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और BJP पर जमकर निशाना साधा है।
3: 1960 के नियम को बदले बगैर आप फॉर्म 6 लाए, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल में कई लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए, उनका वोट छीन लिया गया, तो वो गैर कानूनी तरीके से छीना गया। अगर वोट ही आपका गैर कानूनी तरीके से छीना गया बिहार और बंगाल में, क्या वो इलेक्शन कानूनी है? क्या वो इलेक्शन संवैधानिक है? क्या वो मैंडेट संवैधानिक है? बुनियादी सवाल है ये। इसका जवाब ना आपको नथुने फुला के रविशंकर प्रसाद भी नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहे साहब, जवाब दीजिए। तीसरा, आपने ECI नेट की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे, तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECI नेट की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECI नेट करती है। एक कमिटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी। अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार NDA के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में BJP के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
5: BJP के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त का बचाव किया है। तो इस बीच में बड़ा अपडेट आपको देते हैं, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से स्टेटमेंट आई है इलेक्शन कमीशन के आज के बयान पर। उनकी तरफ से टिप्पणी है कि चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण से सभी भ्रम दूर हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता विश्वसनीयता पर भरोसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी अब भी बनी हुई है। नायडू की टिप्पणी, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नेताओं की जिम्मेदारी, एक तरीके से नसीहत भी उनका ऑपोजिशन के दलों के लिए। तो जो स्पष्टीकरण आज चुनाव आयोग की तरफ से आया, इस पर उनका कहना कि अब सभी भ्रम दूर हो गए। तो एनडीए के बड़ी आवाजों में से एक आवाज चंद्रबाबू नायडू, उनकी तरफ से ये टिप्पणी आ गई है और उन्होंने भी एक तरीके से अपनी साइड से तो क्लीन चिट पूरी दे दी है, चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी है और कहा भरोसा है, विश्वसनीयता है, निष्पक्षता इलेक्शन कमीशन की बनी हुई है और जितने भी भ्रम थे वो भ्रम दूर हो गए हैं। लेकिन अब नेताओं की जिम्मेदारी है संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान बना रहे। तबाद यूपी की सियासत की, जहां पर चुनावों से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी और आज दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो लखनऊ में भी सियासी हलचल स्थिति से।
1: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: प्रजा में क्या छूट है करें और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर में, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्डिंग फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
1: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
1: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
1: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या बोलना है
9: उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
1: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट
1: तो देते।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मैं करता हूँ ना,
13: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
14: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
14: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड। PNB, मेरा अपना बैंक।
15: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी बोली संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग ने कहा कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड, पुरुष कबड्डी फाइनल में ईरान को हराया, भारत के खाते में अब तक 4 स्वर्ण पदक। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

हेलीकॉप्टर को एक बेस पर या ज़मीन पर लैंड करना और एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड करना, ये थोड़ा सा एक अलग चैलेंज होता है।

0: जब जहाज जाता है समंदर में वो हिलता रहता है तीनों एक्सिस पे।
1: एक छोटा सा डेक जो हिल रहा होता है पानी में, यू हैव टू लैंड ऑन दैट।
2: फाइटर प्लेन को एक बहुत ही शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और उसी सिमिलर रनवे में आके लैंड कराना इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज।
3: प्रथम दायित्व लहरों पर निभाते हैं, पर देश की पुकार हो तो शौर्य के परों पर सवार होकर भी आते हैं।
4: हिंद महासागर में आपको जाना है, यू हैव टू सर्च 200-300 नॉटिकल माइल का एरिया।
5: यहाँ से बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया गया है सिविल पॉपुलेशन को।
6: कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू।
3: ये नौसैनिक हैं, पर जल से लेकर वायु तक छा जाते हैं। सीने पर विंग्स ऑफ वैलर लगाए ये प्रतीक्षा नहीं करते, ये लड़ाई को दुश्मन के घर में ले जाते हैं।
1: नेवी इज अ थ्री डायमेंशनल फोर्स, जल थल वायु, इसमें तीनों फोर्सेस के एलिमेंट्स मौजूद हैं।
7: नेवल एविएशन पर्टिकुलरली इज अ डिफरेंट चैलेंज।
6: भारतीय नौसेना में जो नेवल एविएशन आर्म है उसमें विभिन्न जहाज हम ऑपरेट करते हैं।
0: ट्रेन इसको इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि जो उसके साथ वर्स्ट कंडीशन हो सकती है उस कंडीशन से उसको कैसे बाहर निकालना है।
8: इंडियन नेवी का सबसे पहला स्क्वाड्रन है ये, इसीलिए हमारा नाम भी अगर आप देखें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है।
4: रोज एक नई चुनौती को हम फेस करते हैं, हर रोज एक नया मिशन हम फ्लाई करते हैं।

नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। भारतीय नौसेना के समुद्री रोल के बारे में आप जानते होंगे, किस तरीके से समुद्र की लहरों के ऊपर और उसके नीचे ये देश की रक्षा करते हैं, हमारी जल सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन आज हम आपको उस भूमिका के बारे में बताने वाले हैं जो कि जल नहीं बल्कि वायु से जुड़ी हुई है। जल थल वायु के सर्वशक्तिमान भारतीय नौसैनिकों की कहानी आज वंदे मातरम।

0: नौसेना के इन वीरों की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पहली बार नेवी में वायु शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई।
1: दक्षिणी हिंद महासागर है, उसकी एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सर्वेलेंस और सिक्योरिटी ऑफ दैट रीजन, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू, INS गरुड़ा दक्षिण नेवल कमांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 70 सालों से INS गरुड़ा इसी काम में जुटा हुआ है।
0: उस स्वर्णिम इतिहास से गौरवशाली वर्तमान का सफर एक ऐसे आत्मबल की दास्तान है जो हमारी सेनाओं की विशिष्ट पहचान है। भारतीय नौसेना के पास 9 नेवल एयर स्टेशन है और हम पहुंचे इनमें से सबसे पहले स्थापित INS गरुड़ा।
2: हम क्रेडल ऑफ नेवल एविएशन है, तो हम यहाँ ज़्यादातर लोगों का ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो आगे जाके फील्ड में और शिप पर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय हो सकें, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसे हम यूज़ में ला सकें।
0: INS गरुड़ा में हम सबसे पहले उस स्क्वाड्रन में गए जो सबसे पहले कमीशन हुआ था।
3: INS 550 इंडियन नेवी का फर्स्ट स्क्वाड्रन जो 1959 में कमीशन हुआ था, और जैसे कि आप अभी तक देख चुके हैं कि 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैव बीन फ्लोन बाय दिस स्क्वाड्रन, जिसमें कि आप फाइटर्स, चॉपर्स, सी प्लेन्स एज वेल एज MR एयरक्राफ्ट, हर तरह के एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट किया है इस स्क्वाड्रन ने।
4: एंड राइट नाउ अभी हमारा फिलहाल वी आर ऑपरेटिंग द डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट।
3: डॉनियर एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो शॉर्ट फील्ड लैंडिंग कर सकता है, पैरा जंप्स करा सकता है, इट इज़ यूज फॉर मैरिटाइम सर्वेलेंस, तो हमारे वाटर्स को सेफगार्ड करने के लिए हम सर्वेलेंस सॉटीज भी उड़ते हैं इसमें, इट कैन बी यूज फॉर कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, तो अगर आप जो चीज़ सोच सकते हो वो सारी चीज़ें ये एयरक्राफ्ट कर सकता है।
5: वॉट इज स्पेसिफिकली मोर चैलेंजिंग फॉर अ नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर इज दैट इन द वास्ट इंडियन ओशन रीजन, आपके हिंद महासागर में आपको जाना है, यू हैव टू सर्च 200-300 नॉटिकल माइल का एरिया वो एक वेसल ढूंढने के लिए विच माइट बी सस्पिशियस, विच माइट कॉज अ थ्रेट। रोज एक नई चुनौती को हम फेस करते हैं, हर रोज एक नया मिशन हम फ्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों को इनकम्पास करते हुए।
3: सी पे फ्लाइंग इटसेल्फ इज बहुत चैलेंजिंग, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल काइंड ऑफ फ्लाइंग ओवर लैंड, तो वो चैलेंजेस देख के हमने भी सोचा कि हम ज्वाइन करते हैं नेवल एविएशन।
0: INS गरुड़ा में मौजूद हर स्क्वाड्रन की अलग खासियत और अलग कहानी है, जैसे 336 जिसे फ्लेमिंग एरो कहते हैं, भारतीय नौसेना के सी किंग एयरक्राफ्ट हैं, इनका जो किरदार है, इनकी जो भूमिका है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, यानी कि समुन्दर की सतहों के नीचे दुश्मन की जो पनडुब्बियां होती हैं वो किसी तरह का खतरा हमारे जहाजों पर न रहे, उन्हें ढूंढकर नष्ट कैसे करना है उसमें पारंगत हैं। इन सी किंग्स का इस्तेमाल अब प्रशिक्षण के रोल में किया जा रहा है, ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
2: सी किंग 42 ब्रावो, ये जहाज एक फ्रिगेट जितना काम कर सकता है, इसमें अपना रडार है, इसका अपना सोनार है जिससे ये पनडुब्बी ढूंढ सकता है, ये पनडुब्बी ढूंढ भी सकता है और उसके अगेंस्ट मार भी कर सकता है अपने टॉर्पिडो और डेप्थ चार्जेस के साथ। एंटी शिप मिसाइल इस जहाज पे लग सकते हैं और वो उन पे भी मार कर सकता है। एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन जो है ये INS विक्रांत का इंटीग्रल पार्ट था। INS विक्रांत के डीकमिशनिंग के बाद इस जहाज स्क्वाड्रन को ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का दर्जा दिया गया, एंड आपको जान के खुशी होगी कि जब फर्स्ट नए विक्रांत पे लैंडिंग हुई थी तो हमारे स्क्वाड्रन के जहाज ने वो फर्स्ट लैंडिंग किया था।
6: नेवल एविएटर्स की तीन आयामी भूमिका है, टोही यानी मैरिटाइम रिकॉनिसेंस, पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और युद्ध पोत से आक्रमण।
7: ये जो लैब है इसमें चाहे दीवारों का रंग हो या फिर लाइट्स का जो रंग है उसे देखकर मेरे जैसे किसी आम व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा जैसे समुद्र के नीचे, लेकिन शायद वही कोशिश भी है कि समुद्र के नीचे वो शिप भी, सबमरीन भी, और उसके बीचों बीच वो पढ़ाई जो सबको कराई जा रही है।
8: ये जो दीवारें आप रंगीन देख रहे हो इन पे अंडर वाटर प्रोफाइल और ASW से रिलेटेड काफ़ी सारे पिक्चर्स को दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हम उनको काफ़ी सरलता के साथ ASW ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं।
7: ASW यानी एंटी सबमरीन।
8: यस मैम, ASW इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो ऑपरेशंस हैं उनके रिलेटेड हम उनको ट्रेन करते हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल्स जो आप इधर देख रहे हो सोना विंग एंड सोनो बॉयज़ के, इनके स्ट्रिप डाउन मॉडल्स के माध्यम से ट्रेनीज को ASW के सेंसर्स के बारे में अवगत कराया जाता है। पानी के अंदर जो साउंड है उसका जो माध्यम है वो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से चेंज होता है, तो इसके माध्यम से हम पता करते हैं कि किस डेप्थ के ऊपर एक लेयर है, सो सबमरीन कहाँ छुप सकता है पानी के अंदर। उसी के हिसाब से हम अपने ASW सेंसर्स को उस एरिया के अंदर डिप्लॉय करते हैं, हम संभावना देखते हैं कि सबमरीन कहाँ छुपा है। एक बार जब हमने सबमरीन पकड़ लिया उसकी रेंज और उसके हिसाब से हम ASW वेपन्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं लाइक सीकिंग के अंदर हमारे पास टॉर्पिडो एंड डेप्थ चार्ज हैं, हम उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड उसको निस्तेनाबूद करते हैं।
6: प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसका व्यावहारिक होना, और इसी क्रम में आता है स्क्रैम्बल, जो कहने के लिए हर पायलट और तकनीकी क्रू की रोज की कार्रवाई है ताकि वो आपात स्थिति के लिए तैयार रहे।
7: इस तरह के मिशंस के लिए जो हमारे पायलट्स निकलते हैं नेवी के, निर्धारित समय में कैसे आपको पहुंचना है जब मदद की गुहार लगाई जाती है वो समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक फ्लाइट पूरी करके वापस लौटे
9: सायरन सबको सुनाई देता है। इमीडिएटली एट द इमीडिएट मोमेंट द पायलट्स SAR पायलट एंड को पायलट दे गो देयर एंड दे मैन द एयरक्राफ्ट एंड दे गिव अ कॉल दैट वी आर स्टैंड बाय टू स्टार्ट, मतलब हम रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए। एंड जैसे ही हमें ATC से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हमें इंडिकेशन मिलता है वी स्टार्ट अप एंड देन वी आर लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट।
7: वो ब्रीफ कितनी देर में आप लोगों को मिल पाता है कि आप लोगों को क्या करना है, कहाँ भेजा जा रहा है?
10: मैम वो पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं जैसे स्क्रैम्बल हमें मारा जाएगा कि हमें क्या करना है, जिसे पायलट अपना खुद मैन करेंगे, ड्राइवर अपने जो ड्राइवर रहेगा फ्री ड्राइवर रहेगा वो अपना खुद प्रिपेयर रहेगा कि क्या करना है, सब पायलट इन्फॉर्म करते हैं और हम सीधा एयरक्राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं।
6: ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें हर वायुवीर सक्षम होता है, उपकरण अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक है।

0: भारतीय नेवी का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ALH, वायुसेना भी हमने देखा है, लेकिन जो नौसेना द्वारा इस्तेमाल होता है उसमें एक मैरिटाइम रेडार फिट होता है जिसके कारण यह अलग बनता है और ज़्यादा शक्तिशाली बनता है। ये जो ALH है मल्टी रोल है इसका और मल्टी मिशन यानी अलग अलग तरह के मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्वाड्रन 322 जिसे नेवी में गार्डियंस कहते हैं, ये ALH फ्लाई करते हैं। जो ALH आर्मी यूज करती है या जो एयरफोर्स यूज करता है उससे नेवी का कितना डिफरेंट है?
1: मैम, नेवी में और एयरफोर्स में रोल्स अलग हैं। नेवी में हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है शिप्स के साथ ऑपरेट करना और शिप्स के ऊपर लैंड करना। चलता हुआ शिप में लैंड करना एक अलग अपना चैलेंज है। इट्स मूविंग कंटिन्यूसली, सो स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए एंड हमको व्हील्स चाहिए होते हैं जिस वजह से, जो कि ज़्यादा लोड ले सकती हैं लैंडिंग का। लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट वेट को थोड़ा सा ऐड करता है।
0: मेक इन इंडिया का कितना फ़ायदा आपको लगता है?
1: मैम, बहुत फ़ायदा है। इन द सेंस ALH हेलीकॉप्टर इज द फर्स्ट वन, 2003 में आया था ये हमारे पास भारतीय नौसेना में और तब से लेकर अब तक 20 साल हो गए हैं। बहुत वर्सटाइल हेलीकॉप्टर है, बहुत रिलायबल हेलीकॉप्टर है। एडवांटेज हमारा ये है कि जब भी हमको कोई भी प्रॉब्लम आती है, HAL हमारा ऐसा लगता है कि हमारा अपना कंपनी है, सीधा उनके पास फ़ोन करो, उनसे पूछो कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं और तुरंत हमें सोल्यूशन मिलता है।
0: जो स्क्वाड्रन का नाम भी हम देख रहे हैं और जो उसका एक तरह से हम कहें कि आदर्श वाक्य जो उसका मोटो जो है वो और आपकी जो भूमिका है स्क्वाड्रन की वो किस तरीके से मेल खाती है?
1: स्क्वाड्रन का नाम है INS 322। हमें नेवी में गार्डियंस के नाम से जानते हैं। हमारा स्क्वाड्रन का मोटो जैसे आपने कहा है, सर्च फियरलेसली और रेस्क्यू वैलियंटली। हमारा प्राइमरी रोल हेलीकॉप्टर का, चाहे वो ज़मीन पे हो चाहे समंदर में हो, जब भी कोई भी कष्ट होता है, इफ़ एनीबडी नीड्स टू बी रेस्क्यूड, दैट इज़ आवर जॉब बोथ बाय डे एंड बाय नाइट।
0: कमोवेश वैसी ही जिम्मेदारी भारतीय नौसेना के स्क्वाड्रन 321 की भी है, जिन्हें गॉड्स ओन एंजल्स कहा जाता है। हम इस स्क्वाड्रन की भी खासियत समझने पहुंचे। चेतक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, आर्मी भी और नेवी भी। नेवी के लिए स्पेसिफिकली क्या अलग है?
2: आर्मी के जो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग है दे आर फ्लाइंग इन द माउंटेन्स एंड जो नेवी के एयरक्राफ्ट हैं वी आर फ्लाइंग ओवर द सी। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम सर्च एंड रेस्क्यू मिशन करते हैं एट सी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट वी आर फ्लाइंग फ्रॉम द शिप। तो शिप एक मूविंग प्लेटफॉर्म होता है एंड उस पर लैंड करने के लिए जो स्पेस है बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है जिसमें हमें हेलीकॉप्टर को लैंड करना होता है। इसके लिए काफ़ी रिग्रेस ट्रेनिंग एंड इट्सेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लैंड ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो वी कैरी आउट सम स्मॉल स्टोर एंड मेल ट्रांसफर जो हमारे फ्लीट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है।
0: अब हम आपको वो कार्रवाई भी दिखाते हैं जिसकी यहाँ बात की जा रही है। खुला समुंदर, विपरीत धारा और उस पर प्रशिक्षण का ये पहलू।

ये जो कार्रवाई आपको दिख रही है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि समुद्र के बीचों बीच था, उसे किस तरीके से रेस्क्यू करके निकाला जाता है, ये इनके प्रशिक्षण का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। पूरे इलाके में जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ऐसी आती है तो आम लोगों को, आम नागरिकों को बचाने के लिए, उन्हें समुद्र की इन लहरों से सुरक्षित निकाल लाने के लिए ये प्रशिक्षण अहम है। आप देखेंगे भी कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने पहले अपना हाथ हिलाया था और उसके बाद उसे वो रस्सी नीचे फेंकी गई, जिसे पकड़कर उसके सहारे फिर उसे रेस्क्यू किया गया है। समुद्र या नदी से रेस्क्यू की चुनौतियां बड़ी होती है। लगातार बहाव के कारण ठीक उसी जगह पर पहुंच पाने की चुनौती, बचाव के दौरान लहरों से लड़ने की चुनौती, हवाओं से मुकाबला, लेकिन हर आपदा में हमारे नौसेना के वीर देवदूत बनकर आते हैं।

0: पिछले सालों 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी उसमें हमारे सभी जहाज़ों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और जो लोग दीवारों के ऊपर छतों के ऊपर अटके हुए थे और इवन पेड़ों के ऊपर जो लोग वर वेटिंग फॉर रेस्क्यू देवर प्रोवाइडेड रिलीफ एंड उनको हमने यहां से इवैक्यूएट वहां से इवैक्यूएट करा के हम यहां पे लेके आए थे। पिछले चार महीनों में हमने 3 कैजुअल्टी इवैक्यूएशन अगाती से किए हैं। रात में ब्रह्मपुरम फायर हुआ था यहां पे, जहां पे एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, और उसके दौरान भी हमारे एयरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट किया था, और उस फायर प्लांट के ऊपर जो द वाटर ऑलमोस्ट 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर वाज ड्रॉप्ड ओवर द फायर साइट दस कवरिंग द मेकिंग अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी।
1: पर केवल राहत और बचाव नहीं बल्कि दुश्मन या किसी भी जल क्षेत्र में तेजी से सैनिकों को पहुंचाना भी चुनौतियों से भरा होता है।
2: जब डाइवर्स को पानी में ड्रॉप करना होता है उसका बेहद तेज तरीका होता है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आए और डाइवर्स को पानी में छोड़ते जाएं। इसे एक टेंट एंड जंप कहा जाता है क्योंकि ये ALH है जो बहुत नीची उड़ान भर रहा है, धीमी रफ्तार से आगे जा रहा है। चेतक हेलीकॉप्टर को जब हम इस लेवल पर उड़ान भरते हुए देखते हैं तो पानी में उतनी ज़्यादा लहरें नहीं उठती हैं, देखिए जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बेहद नीची उड़ान उड़ाते हुए और इन डाइवर्स को ड्रॉप करते हुए जो कि आगे अपने ऑपरेशंस को, अपने मिशन को अंजाम देंगे, ये कठिन है, जटिल है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के जरिए ये सफल होता है और प्रशिक्षण के जरिए भी। नौसेना के एविएटर्स की पेचीदा भूमिका, समुद्री पानी और वातावरण में उनके उपकरणों का रहना मेंटेनेंस के काम को भी काफी चुनौतीपूर्ण बनाता है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस का स्टाफ भी होता है उसका जो नाम है वो वायु से जोड़कर नहीं बल्कि उन्हें सेलर ही कहा जाता है। खारा पानी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है उपकरणों को अंदर।
3: मैम जो इसमें समुद्र में जब फ्लाइंग करते हैं हाँ। तो उस टाइम पे जब लैंडिंग के टाइम पे शिप जब मूव कर रहा होता है तो वेव्स जो है पानी का वो इसके एयरक्राफ्ट की बॉडी पे पड़ता है हाँ। जिससे क्या है आपका एयरक्राफ्ट का जो बॉडी है वो कोरोसिव होने का चांसेस रहता है, वो मॉइस्चर प्रोन इक्विपमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो उनका हमें बाद में डीमॉइस्चराइजेशन करना पड़ता है, हॉट एयरगन से उसको सुखाना पड़ता है एंड बॉडी का जो एयरक्राफ्ट का जो फ्रेम है उसका हम इसे फ्रेश वाटर से वॉशिंग करते हैं एवरी टाइम।
2: कोच्चि जैसी जगह पे, इन सारी जगहों पर या फिर रेस्क्यू के लिए जिन इलाकों में जाते हैं उसका तो सीधा मतलब है कि आप लोग पानी में ही फ्लाई कर रहे हैं सर।
3: मैम जैसा कि आप जानते हैं कि कोच्चि में जो मानसून है वो 8 महीने तक लगभग रहता है, 8 महीने तक बारिश का ही रहता है, तो यहाँ पे हम बारिश में फ्लाइंग अवॉइड नहीं कर सकते।
2: ये जो पूरा एयरक्राफ्ट हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट खुला हुआ है, अंदर का हिस्सा हम देख सकते हैं, क्या ये नॉर्मल मेंटेनेंस का हिस्सा है?
4: ये नॉर्मल मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जहाज को लाते हैं, जो इंस्पेक्शन हम फ्रंटलाइन यूनिट्स में नहीं कर पाते जिसके लिए डाउन टाइम ज़्यादा होता है, उसके लिए जहाज को यहाँ पर लाया जाता है। जहाज को हम बारीकी से इंस्पेक्शन करते हैं और जिन कंपोनेंट्स को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है इनको रिप्लेस किया जाता है। जहाज में स्ट्रक्चरल रिपेयर किया जाता है, केबल ऑडिट किया जाता है, केबल रिप्लेसमेंट किया जाता है। ये सब कार्य हम OEM के सपोर्ट के बिना अपनी इन हाउस एक्सपर्टीज से कर रहे हैं, जो कि हमारा एक प्रयास है आत्मनिर्भर भारत की ओर।
5: नेवल एविएशन में जो टेक्निकल पार्ट है वो हम उसके रूट्स हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
6: इंडियन नेवी में बहुत पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं और अभी के 4.5 जनरेशन वाले जहाज भी हैं, सो इस गैप को कवर करने के लिए हमारे टेक्निकल सेलर्स एंड ऑफिसर्स दोनों को तत्पर रहना पड़ता है।
1: छोटे से ब्रेक के लिए हमारी ये खास पेशकश जारी है वंदे मातरम।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: पापा
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ
6: टाटा
7: AIG है तो भरोसा है।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने, भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार रुलता बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
6: क्या चीज है, वायरल है?
5: थैंक यू।
7: आप पे वो BMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
8: मैं हूँ ना, मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
9: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
7: ओ नादान परिंदे, बैठ
6: बैठ बैठ।
7: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बाहर से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एक दम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: In association with E3

0: 3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
5: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
6: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
8: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी बोली संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग ने कहा कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड, पुरुष कबड्डी फाइनल में ईरान को हराया, भारत के खाते में अब तक 4 स्वर्ण पदक। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से

0: जैसे ही वो हेडसेट मैं पहनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं बाकी सब भूल जाऊँ।
1: पिछले 70 सालों से INS गरुड़ा इसी काम में जुटा हुआ है
2: कि हर तरह के ऑपरेशंस जितने भी इंडियन नेवी ने किए हैं उन सब में पार्टिसिपेट किया है।

ये सैनिक अनूठे हैं। इनमें समुद्र सी गहराई है, साहिल सा ठहराव है, लहरों सा आवेग है, वायु सी प्रवृत्ति है। जल थल वायु, यह सर्वत्र सक्षम है।

भारतीय नौसेना के वीरों की कहानी में अब आगे वो अभूतपूर्व प्रशिक्षण जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्र की लहरें ऐसे ही उठती हैं, ऐसे ही आता है तूफान, और इसीलिए यहाँ पर एक बेहद कठिन ट्रेनिंग के जरिए ये सभी गुजर रहे हैं। उसी परिस्थिति को यहाँ पर बनाया

0: स्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो एक नेवल एविएटर होता है वो समुद्र के ऊपर ही फ्लाई कर रहा होता है, वहीं से रेस्क्यू करना है, वहीं पर हो सकता है उन्हें पैराड्रॉप होना हो, तो इन लहरों से न तो उन्हें घबराना है, किस तरीके से अगर क्रैश हो जाए, अगर उसके जरिए उसके साथ वो इस पानी में गिर जाए तो किस तरह से वहां से खुद को बचाकर निकलना है, बाकी सामान को निकालना है, इन सारी चीजों की यहां पर ये ट्रेनिंग। ये हिलोरे मारता पानी, तेज हवाएं, कड़कती बिजली, पर समुद्र में इन परिस्थितियों की गुंजाइश असली है, इसीलिए इन सैनिकों को ये बेहद जटिल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है और कौन अंडरगो करता है ये ट्रेनिंग?
1: 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसका एनालिसिस में हमने ये कोशिश की थी क्यों एयरक्रू सब बाहर नहीं आया तो कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके तरह से हमने एक ट्रेनिंग मॉडिफाई किया था। वो मॉडिफिकेशन ऐसे है, एयरक्राफ्ट से बाहर सिर्फ निकलना नहीं है, पूरा इक्विपमेंट के साथ निकलना है और मैक्सिमम टाइम सर्वाइव करना है। उसके लिए हमने ये ट्रेनिंग शुरू की थी 2003 में, हमने ये शुरू किए थे प्रोजेक्ट का, ये कम्प्लीट हुआ 2013 में, कमीशन हुआ 2015 में, हमने ट्रेनिंग शुरू की। उसके बाद हम शुरू करते हैं विद नो वेदर कंडीशन के, मिनिमम डिफिकल्टी के साथ।

0: देख के ही ये जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक लगती है, पर पहली बार पानी के नीचे वैसे जाने में वाकई खतरनाक वाली फीलिंग आती है जितने भी ट्रेनिंग जाते हैं नीचे।
1: इनिशियल स्टेज में तो ये फीलिंग आती है, उसे डर लगता है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसका डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में उसे हम पहले शैलो वाटर में उसको कंफर्टेबल करवाते हैं, फैमिलराइज कराते हैं कि जैसे कि अंडर वाटर में उसकी चीज़ें कैसे लगेंगी। जैसे ही वो शैलो वाटर में कंफर्टेबल हो जाता है देन हम उसे डीप जोन में लेके जाते हैं।
0: गगनयान की ट्रेनिंग में भी आप लोगों का योगदान रहा?
2: या नेवी इज अ लीड सर्विस है गगनयान का रिकवरी मॉड्यूल प्रोग्राम में, सो सभी रिकवरी टीम का ट्रेनिंग इधर ही होगा। एस्ट्रोनॉट्स का भी सी सर्वाइवल ट्रेनिंग हम इधर ही करेंगे और सभी क्रू मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल का कंट्रोल एनवायरनमेंट टेस्टिंग यही फैसिलिटी में करेंगे। इधर प्रूव होने के बाद उसके एक्चुअल सी में हम टेस्ट करेंगे। सो पूरा गगनयान मिशन में WSTF एक पार्ट है और नेवी लीड सर्विस है रिकवरी में।
3: ऐसी भयंकर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना एक पहलू है, नेवी में फ्लाइंग की एक और कठिन चुनौती है और वो है नाइट फ्लाइंग।
0: नेवल एविएशन की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो उन सारी चीजों के लिए तैयार भी कराता है। अब ये एक बेहद अंधेरा सा कमरा आप देख रहे होंगे और इसका एक खास मकसद भी है, वो है रात के समय में फ्लाइंग। किन चीजों पर खास करके ध्यान दे रहे हैं?
4: जब हम नाइट फ्लाइंग की बात करते हैं, व्हेन द पायलट गेट्स सम गुड अबाउट ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग ही प्रोग्रेसेस इनटू नाइट फ्लाइंग गॉगल्स और नाइट फ्लाइंग विजन फ्लाइंग, जिसमें जब फुल डार्क नाइट कंडीशन होता है उस कंडीशन में विद दिस नाइट फ्लाइंग गॉगल्स इट आर्ग्यूमेंट्स द पायलट, जो उसका विजन है उसको एनहांस करता है, ताकि अगर पूरे जब मून का फेस बहुत ही कम है, एम्बियंट लाइट बहुत ही कम है, ही विल बी एबल टू सी थ्रू द नाइट फ्लाइंग गॉगल्स एंड डू इज बेसिक नाइट फ्लाइंग, एंड उसको पता नहीं चलेगा, वो इतना ब्राइट रहता है जैसे फ्लाई करता है, इट गोइंग टू गिव हिम अ लॉट ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, जैसे उसको पूरा दिखेगा लाइक अ डे।
0: इसमें एक चीज बहुत अहम है देखना, वो ये कि एक तरफ आप सामने देख रहे हैं लेकिन उसके साथ ही आप जब अपने इस पैनल को देखते हैं तो डिस्टेंस विजन का बदल जाता है।
4: करेक्ट। सो द जो अब गॉगल्स होता है पायलट फोकस टू द इन्फिनिटी, बहुत दूर के लिए फोकस करता है ताकि उसको दूर के चीज को अच्छे से दिखे। नाउ द पायलट ऑल्सो हैज टू लुक इनसाइड फॉर

0: लुक इनसाइड फॉर हिज पैरामीटर्स की जो उसका वैल्यूज जो स्पीड है बाकी जो पैरामीटर्स है सही आ रहा है कि नहीं. फॉर दैट द पायलट कीप्स हिज एनवीज इन अ सर्टन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू हिज आइस सो दैट वो अपने गैप से आपको उसको इंस्ट्रूमेंट भी दिखे एट द सेम टाइम जब वो थ्रू देखेगा उसको बाहर उसका मिशन भी वो कर पाएगा.
1: भले ही तमाम तरह के आधुनिक उपकरण आ जाए लेकिन नाइट फ्लाइंग जो होती है सूरज ढलने के बाद जो उड़ान भरी जाती है उसकी अपनी ही अलग चुनौतियां होती हैं और इस तरह से लगातार प्रशिक्षण के जरिए ही न केवल एक पायलट बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग जुड़े रहते हैं वो सब इसमें दुरुस्त होते हैं. हम आपको समझाते हैं कि एक नेवल एविएटर के लिए रात के समय उड़ान भरने के साथ कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं.

0: फ्लाइंग की क्या चुनौतियां होती हैं?
1: नाइट फ्लाइंग अगर आप इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, नॉर्मल पायलट्स जो बाकी लैंड के ऊपर फ्लाई करते हैं, उनके पास बहुत सारे विजुअल क्यूज रहते हैं, लाइट रहती है पूरे ज़मीन के ऊपर, बट जब हम समुंदर के ऊपर फ्लाई करते हैं वहाँ पे कोई लाइट नहीं रहती है। एंड इन केस ऑफ अ लिट अनलिट नाइट आपको समुंदर और आसमान में अंतर नहीं पता चलेगा। क्षितिज जिसे होराइजन बोलते हैं वो दिन में हमें क्लियरली दिखाई देता है, रात को सी मर्जेज इनटू द स्काई, तो उसमें डिसओरिएंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड एज नेवल पायलट्स हमें रात को लो फ्लाइंग भी करनी पड़ती है, 200 फीट, 500 फीट, सो उसमें चैलेंजेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
0: बहरहाल रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, जो एक टीम दिन रात इनका साथ देती है, इनके साथ डटी रहती है, वो है एटीसी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सबसे व्यस्त विभाग है जहां पर हम हैं। जितने भी विमान यहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, किसी भी मिशन के लिए निकल रहे हैं, एटीसी है जो सबको जानता है। लेकिन ये एक नेवल बेस होने के बावजूद यहां पर एक एयरफोर्स ऑफिसर हम देख रहे हैं सर, क्या इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज?
2: इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन मैम। आई एम अंडरस्टैंडिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स व्हिच आर कमिंग अप, माफी, रनवे रीसर्फेसिंग, एंड माय एक्सपीरियंस आई एम इक्वली शेयरिंग विद नेवी। So I'm very good working over INS Garuda. I'm finding it very comfortable. So probably you'll find more integration between the forces in the future.
0: क्या क्या करते हैं यहाँ पर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पूरी टीम की?
3: मैं यहाँ पे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टार कंट्रोलर है और एक यहाँ पे अप्रोच कंट्रोलर है। देर इज अ वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कोऑर्डिनेटिंग फॉर VVIP एंड VIP मूवमेंट्स ऑल्सो, विच आर नॉट ओनली फ्रॉम विद इन द कंट्री बट ऑल्सो फ्रॉम द फ्रेंडली फॉरन नेशंस।
0: बहुत जिम्मेदारी का काम है, मतलब हर एक उड़ान के लिए आप लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। एक तो ये कि उस जिम्मेदारी का एहसास कितना है और दूसरा उसके लिए माइंड कितना आप लोगों को स्ट्रांग रखना होता है।
3: जैसे ही वो हेडसेट मैं पहनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं बाकी सब भूल जाऊँ और सिर्फ मेरा यही नेतृत्व है कि मैं जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ के जा रहा है, किसी भी असिस्टेंस के लिए जा रहा है, उसको मैं घर वापस सही और सुरक्षा हालत में लेके आऊँ।
0: तो यहाँ की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर क्या है?
4: ये दिस इज ये एक रेडार कंट्रोल रूम है। यहाँ से जनरली जो एयरक्राफ्ट एंड एयर होते हैं उनको हम रेडार से कंट्रोल करते हैं। कुछ मेजर चीज़ें जो हमने यहाँ देखी हैं, 2018 में फ्लड्स हुए थे, इट वॉज ए मेजर इशू, एंड रिसेंटली देर वॉज ब्रह्मपुरम फायर। इन दैट वी रिक्वायर्ड, हमने जो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो कैपेबल हैं इन चीज़ों के लिए, हमने उनको भेजा, बट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब मेंटेन नहीं होते हैं, तो वो सिचुएशन अलग ही होती है जहां आपको मिशन भी कंप्लीट करना है, उनके बीच में उनको सेफ भी रखना है और एरिया इतना होता नहीं है कि जहां हम सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाए। सो वो अपने आप में एक डिफरेंट फील एट दैट टाइम।
0: क्योंकि हम नेवल एविएशन के हर किरदार को समझते परखते आगे बढ़ रहे थे, इस कार्रवाई ने भी हमारा ध्यान खींचा। आप एक बेफिक्र उड़ान तभी भर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि आपके पीछे एक पूरी की पूरी टीम है जो आपके लिए तैनात है, और ये जो टीमें हैं इनकी किरदार, इनकी भूमिकाओं को बहुत सोच समझकर और पूरी तत्परता से जिस तरह से तैयार किया जाता है।

0: है, हम इस क्रैश टीम कहें सर, इसके बारे में अगर हम समझें कि क्या इनकी भूमिका है, 24 घंटे तैयार रहते हैं सर?
1: कि मैम अगर किस कोई फ्लाइंग होनी है, बीट सिविल फ्लाइंग और मिलिट्री फ्लाइंग, सो अगर सीएफटीज हमारे पास नहीं है, अगर क्रैश क्रू नहीं है, तो फ्लाइंग नहीं हो सकती है, वो भले भले कहीं भी हो वो. सो जब भी फ्लाइंग चलती है, ये क्रैश क्रू है, दीज आर क्रैश फायर टेंडर्स, जो रेड कलर ट्रक्स है. सो दे मैन दिस फायर ट्रक्स, क्रैश फायर टेंडर्स थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइंग. दे मैन इट एंड दे आर ऑलवेज रेडी. द मोमेंट सम साइरन इज साउंडेड, द मोमेंट एटीसी से पता लगता है कि देयर सम इमरजेंसी व्हिच हैज हैपेंड, एयरक्राफ्ट इज कमिंग विद इमरजेंसी, द सेम टाइम दे विल मूव आउट, सब वहां से निकलेंगे एंड दे विल रिस्पॉन्ड टू दैट इमरजेंसी. यहाँ पे ये लोग एएफपीएस सूट है, विच इज अ वेरी हैवी सूट, वो पहन के अंदर सब बैठे रहते हैं. एंड वेन दे गो टू द सीन ऑफ, अगर कोई क्रैश हो जाता है, देयर इज अ फायर, देन दीज पीपल दे लिटरली गो इन टू द फायर, आग के अंदर जाके वो लोग बचा के लाते हैं, जो भी क्रू है, पैसेंजर है, उनको वो लोग बचा के लाते हैं. देन दे कैरी आउट द फायर फाइटिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट. एंड अनलाइक ए नॉर्मल फायर, एयरक्राफ्ट फायर में देयर इज एविएशन फ्यूल इन्वॉल्व, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फायर इज ह्यूज, बहुत बड़ा होता है. सो दे दीज पीपल दे फाइट दैट फायर.
0: तो आप सबके मोटिवेशन का लेवल समझ सकते हैं, वो स्तर समझ सकते हैं कि किस हद तक वो मोटिवेटेड रहते हैं, इसीलिए तैयार रहते हैं इतनी मुश्किलों के भीतर से जाकर भी बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए.

0: टैक्टिक्स और एयर नेविगेशन के लिए जो ये सिम्युलेटर है यहाँ पर 2020 में शुरुआत इसकी हुई और हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि दरअसल इससे किस तरीके से चीज़ें बेहतर होती हैं और सरल होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे हम समझ लेते हैं सर। एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताया जा रहा है?
1: जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग VR ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ट्रेनिंग कर रहा है। ये इन हाउस डिजाइन किया गया है डॉनियर एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल्स एवं एंटीना लेआउट के बारे में सीखने के लिए। ये एक ट्रेनी स्टेशन है, इस पे ट्रेनी रूट नेविगेशन बाय डे कर रहे हैं। ये फ्लाइट ट्रेनिंग डिवाइस CRM ट्रेनिंग यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग ट्रेनीज को इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एग्जैक्ट डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट का कॉकपिट लेआउट है। इसके सारे इक्विपमेंट और स्विचेस एज पर एयरक्राफ्ट इसमें फिटेड हैं। सो सारे ट्रेनीज एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करने से पहले इस FTD डिवाइस पे एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स और उनके रिस्पेक्टिव स्विच के पोजीशंस, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत वाइटल होते हैं, उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे सीखते हैं।
0: सिम्युलेटर क्या आसान कर देता है, समय कम लगता है, व्हाई अ सिम्युलेटर और असली उसमें क्यों?
1: इसका फायदा ये है कि सिम्युलेटर 24 घंटे चलाया जा सकता है। जो वीक ट्रेनीज हैं दे कैन लर्न एज मच एज दे वॉन्ट एंड इट सेव्स गवर्नमेंट द वैल्यूएबल मनी विच इज बींग स्पेंड ऑन फ्यूल।
0: जल में, थल पर, वायु में निर्बाध निरंतर जारी ही है इनके ऑपरेशंस। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
0: छक्का
1: सब कैशलेस हो गया है।
0: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ तू।
2: चार्ज हुआ यार,
3: बैट किसका है?
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: भीम पेमेंट्स ऐप की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। पाइए 500 रुपए तक का कैशबैक हर महीने, भीम ऐप से करो पे, इट्स द माही वे।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
5: क्या चीज है?
4: वायरल है? थैंक यू।
6: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
8: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
7: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: ओ नादान परिंदे, बैठ
7: बैठ बैठ।
6: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
9: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: बार एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach.
5: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवादों के बीच में चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की है, जहां पर कई अहम फैसले लिए गए हैं।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा, वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार की भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई, और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमेटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमेटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाएं तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठीकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने करीब 4 दशक तक दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की कूटनीति को करीब से देखा और समझा है। चीन से लेकर अमेरिका तक एक राजनयिक के तौर पर भारत की बात दुनिया के सामने रखी है। अलग अलग देशों के साथ बदलते रिश्तों को करीब से जाना और फिर 2019 में एक ऐसा मोड़ आया जब एक अधिकारी सीधे देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। आखिर ये कैसे संभव हुआ? आज कहानी दुनिया के बड़े मंचों पर भारत की आवाज रखने वाले एस जयशंकर की।
1: इस ग्लोबलाइज दुनिया में हम नहीं कह सकते ये आपका विषय ये नहीं है। मेरा इतना ही मैंने जवाब था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा।
2: नेशनल टेररिस्ट अटैक्स आर ट्रेस्ड बैक टू दैट वन कंट्री। UN's डेसिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट आर रिप्लीट विद इट्स नेशनल्स।
1: कि भारत की ताकत, भारत की टैलेंट, भारत की एक किस्म से भारत की फुटप्रिंट जो है अब ग्लोबल हो चुकी है। तो दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन में यही होता है कि देश जो हैं किसी के साथ कभी जुड़ते हैं, कभी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कभी नहीं करते, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
2: We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia.
0: संयुक्त राष्ट्र का बड़ा मंच, दुनिया के बड़े देशों की मौजूदगी और यहाँ भारत की बात रखने वाले एस जयशंकर का अंदाज लगातार चर्चा में है। शांत चेहरा, सधी हुई भाषा और मौका आने पर बिल्कुल साफ जवाब, यही उनकी पहचान बन चुका है। विदेश मंत्री के तौर पर कई मुश्किल सवालों का सामना करते हुए उन्होंने हर बार अपना अलग अंदाज दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत की बात दुनिया तक पहुंचाने वाले इस चेहरे की कहानी बेहद दिलचस्प है।
3: संयुक्त राष्ट्र का मंच दुनिया की निगाहें, और यहाँ जब भारत की आवाज गूंजती है तो एक चेहरा खास तौर पर सामने आता है।
4: नमस्कार From 1.4 billion people of Bharat.
3: एक ऐसी शख्सियत जिसने दुनिया के सामने भारत की कूटनीति का अंदाज बदला।
5: नाम है एस जयशंकर।
2: The relationship between India and the GCC is rooted in a rich tapestry of history.
6: We have very good relations with the V4.
3: S. Jaishankar, जो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, जो सवाल से बचते नहीं, सवाल पूछने वालों को उलझाते हैं। लेकिन जयशंकर की कहानी को सिर्फ उनके बयानों से समझना शायद पूरी तस्वीर देखना नहीं होगा। ये उस राजनयिक की कहानी है जिसने दशकों तक दुनिया को करीब से देखा।

0: अमेरिका को समझा, चीन को समझा, रूस को समझा, यूरोप की राजनीति और बदलते वैश्विक समीकरणों को करीब से जाना, और फिर जब भारत की तरफ से दुनिया के सामने बोलने का मौका आया तो सिर्फ विदेश नीति नहीं बताई, भारत का नजरिया सामने रखा। एस जयशंकर के व्यक्तित्व की सबसे खास बात है उनका आत्मविश्वास, उनकी भाषा में ठहराव है, चेहरे पर गंभीरता है, और जवाब देते वक्त ऐसा लगता है जैसे सामने वाले के सवाल से ज्यादा उन्हें अपने जवाब की दिशा पता हो। यही वजह है कि जब दुनिया भारत से सवाल पूछती है तो एस जयशंकर सिर्फ जवाब नहीं देते, कई बार सवाल पूछने वालों को भी आईना दिखा देते हैं।
1: If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it.
0: रूस यूक्रेन युद्ध हो, रूसी तेल का मुद्दा हो, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते हो, चीन के साथ सीमा विवाद हो, आतंकवाद का सवाल हो, या फिर पश्चिमी देशों की तरफ से भारत की नीतियों पर उठाए गए सवाल, जयशंकर का अंदाज लगभग एक जैसा रहता है, पहले भारत का हित, फिर दुनिया के सवाल।
2: और देश का हक है कि हमारे अंदरूनी बात पे टिप्पणी करना, पर अगर वो करे, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया, इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हम नहीं कह सकते ये आपका विषय ये नहीं है। मेरा इतना ही मैंने जवाब था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा, और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा, और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा, तो ये वन वे नहीं होगा।
0: लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भारत की ये मुखर विदेश नीति सिर्फ जयशंकर के व्यक्तित्व की कहानी नहीं है, इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और विदेश नीति को जमीन पर दुनिया के सामने रखने वाला एस जयशंकर जैसा अनुभवी राजनयिक। दोनों की भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही दिखाई देता है, दुनिया में भारत के हितों और प्रभाव को मजबूती से स्थापित करना। मोदी की राजनीतिक नेतृत्व क्षमता और जयशंकर का लंबा कूटनीतिक अनुभव, इन दोनों के तालमेल ने भारत की विदेश नीति को एक ऐसा चेहरा दिया है जिसमें संवाद भी है, रणनीति भी है, और अपने हितों पर स्पष्टता भी।
2: प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया और कहा कि हम जो हैं हम उस दिशा में जा रहे हैं, और आप अपने फौज को कहिए कि वहां फायरिंग न करें। तो वहां फायरिंग जो है वो रूस के साइड से हो रहा था, और उन्होंने उस समय फायरिंग रोक दिया। हमारे बच्चे जो हैं वहाँ गए, वहाँ से पिकअप हुए, वहाँ से बस में बिठा के वो उनको बाहर ले आए।
0: जयशंकर मानते हैं कूटनीति सिर्फ मुस्कुराकर हाथ मिलाने का नाम नहीं, कूटनीति कभी बातचीत है, कभी बातचीत के बीच खामोशी है, और कभी बहुत नपे तुले शब्दों में एक बेहद सख्त संदेश।
3: जिस हिसाब से कई बार ये बेधड़क ट्विट जिसे कहें और शार्प वन लाइन रिबटल्स वगैरह देते हैं, ये पर्सनल हैबिट इनकी ट्यूनअप हुई एज अ डिप्लोमैट। ओके, दसियों साल से डिफेंडिंग इंडियाज पोजीशन, तो वो एक बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड दिखाता है। बट इनके बातचीत में लहजे में वो भी दर्शाता है कि इंडिया की फॉरन पॉलिसी में एक डॉक्ट्रिन का शिफ्ट हुआ है, जो कि पहले हम नॉन अलाइंड या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युटी कह ले जाए, पर अब हम क्लियरली मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, और हम इस मल्टी अलाइनमेंट के लिए किसी से अपोलोजाइज नहीं करते। कभी इनका जो स्टाइल है कॉन्फिडेंट है, कई बार एग्रेसिव भी हो जाता है, लेक्चर सुनने के आदि नहीं है, ये तो पब्लिक फेस है एक देश का, भारत का, जो कि अपने को नेचुरल राइट में अब हम इस ग्लोबल स्टेज पे आ गए हैं।
0: विदेश मंत्री बनने के बाद जयशंकर की पहचान सिर्फ भारत सरकार के एक मंत्री की नहीं रही, वो भारत की बदलती विदेश नीति का सार्वजनिक चेहरा बन गए।
1: We have very good relations with the V4 countries, and we know that these are countries with a very strong, very distinctive capability. These are industrial economies, economies with great innovation and technology talent. And I think how the V4 come together is for them to decide, but we certainly welcome the opportunity to work with the V4 together.
0: आज की कहानी में जानेंगे एक अधिकारी आखिर देश का विदेश मंत्री कैसे बन गया, एक ढाबे पर हुई बातचीत ने उसकी जिंदगी की दिशा कैसे बदल दी, दुनिया के अलग अलग देशों में राजनयिक रहते हुए उन्होंने क्या सीखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जिंदगी में क्या बदला, और आखिर वो कौन सा फोन था जिसने एक राजनयिक को सीधे राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया।
2: स्क्वायर गार्डन में जो जो कार्यक्रम जो हुआ, मुझे अभी भी याद है कि उनके उनके ये इंस्ट्रक्शन थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा इवेंट चाहिए जिस जो वाशिंगटन तक पूरे दुनिया में सुनाई दे कि हम एक किस्म से दुनिया को मैसेज कर रहे थे, भले वो इवेंट न्यूयॉर्क में हो। तो इसकी जो तैयारी जो थी, इसको कैसे करना था, तो मैं कहूँगा कि हमारा कंफर्ट लेवल जो है उस विजिट के बाद ज़्यादा बढ़ा।
0: ये जयशंकर की कूटनीति का कमाल है कि आज भारत अमेरिका से भी बात करता है, रूस से भी रिश्ते रखता है, चीन के सामने भी अपनी सुरक्षा चिंताओं को मजबूती से रखता है, क्वाड में भी सक्रिय है, ब्रिक्स में भी मौजूद है, और विकासशील देशों की आवाज को भी दुनिया के बड़े मंच तक पहुंचाने की कोशिश करता है।
1: At stake here are very real issues, not just words and expressions. The future of peace and international security, of climate action and climate justice, of emerging technologies and development finance, of countering terrorism and strengthening supply chains, and of ensuring disaster resilience and preparing for pandemics, all depend on a will to cooperate.
0: सवाल कोई भी हो, मंच कोई भी हो, सामने वाला देश कोई भी हो, जयशंकर अक्सर जवाब को सिर्फ आज की घटना तक सीमित नहीं रखते, वो इतिहास का संदर्भ लाते हैं, पुराने आंकड़ों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हैं, और फिर उसी संदर्भ में भारत का पक्ष रखते हैं।
2: अगर मैं खुद अपने विदेश नीति का पिछले 70-80 साल के ऑडिट करूं, तो मुझे अगर कहीं कमी दिखाई देती है, ये दिखाई देती है कि हम लोग जो हैं अपने हित को सामने नहीं करते, कि कभी कभी हम, जैसे मैंने कहा कि इतने रोजी हैं कि भाई पहले चीन को, पहले आप पहले सिक्योरिटी काउंसिल में घुस जाइए, उसके बाद मैं आऊँगा, आपको कहने की क्या ज़रूरत थी। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री होता, मुझे तो अपने देश के बारे में सोचना है ना।
0: जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को सिर्फ फाइलों, बैठकों और बंद कमरों की बातचीत तक सीमित नहीं रहने दिया, उसे दुनिया के सामने एक सार्वजनिक संवाद का हिस्सा बनाया। एक तरफ मोदी की राजनीतिक दृष्टि और नेतृत्व, दूसरी तरफ जयशंकर का कूटनीतिक अनुभव और संवाद का अंदाज, इन दोनों के तालमेल में भारत की विदेश नीति की वो तस्वीर दिखाई देती है जिसमे भारत दुनिया से संबंध भी चाहता है, साझेदारी भी चाहता है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर। विदेश मंत्री के भाषणों में कूटनीति है, उनके जवाबों में रणनीति है, उनके शब्दों में भारत के हितों की प्राथमिकता है, और उनके अंदाज में एक ऐसा भारत दिखाई देता है जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, लेकिन अपनी पहचान और अपने हितों के साथ।
4: सर, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे देश हमारे अंदरूनी मामलों में बोलने की हिम्मत रख पा रहे हैं? हालांकि बहुत कड़ा रुख भारत की तरफ से रखा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला आया तो अदालत में होने के बावजूद जर्मन दूतावास से बयान आ गया, आपका अमेरिका की तरफ से बयान आया।
2: नहीं, देखिए ऐसा है, ये दूसरों के अंदरूनी विषय पर टिप्पणी करनी जो है ये कोई नई बात नहीं, ये लोगों की पुरानी आदत है, बुरी आदत है। खाली फर्क ये है, एक जमाना था लोग कहते थे और हम झेलते थे, अब वो जमाना बंद हो गया, जमाना बदल गया।
0: एस जयशंकर की कहानी सिर्फ एक राजनयिक की कहानी नहीं है, ये उस शख्सियत की कहानी है जिसने भारत की विदेश नीति को दुनिया के सामने एक नई आवाज दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ उस आवाज को दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई।
5: आज जिस शख्सियत की कहानी हम आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो कहानी सिर्फ एक विदेश मंत्री की नहीं है, ये कहानी उस अफसर की है जिसने करीब 4 दशक तक दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की कूटनीति को करीब से देखा, चीन को करीब से समझा, अमेरिका के साथ रिश्तों को संभाला, रूस के साथ भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाया और फिर 2019 में एक राजनयिक सीधे देश की राजनीति के फ्रंट फुट पर आ गया।

0: चलने का अंदाज, हाथ मिलाने का अंदाज, बात करने का अंदाज और सवालों के जवाब देने का अंदाज, एस जयशंकर की हर अदा में एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देता है। दुनिया के बड़े नेताओं के बीच कभी मुस्कुराते हुए, कभी गंभीरता से सुनते हुए और कभी बिल्कुल सीधे शब्दों में भारत की बात रखते हुए। करीब चार दशक तक दुनिया को करीब से देखने वाला ये राजनयिक आज भारत की विदेश नीति का एक जाना पहचाना चेहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलती भारतीय विदेश नीति को दुनिया के सामने रखने में एस जयशंकर की भूमिका भी अहम रही है। लेकिन ये अंदाज बना कैसे? एक शांत और सधे हुए राजनयिक की ये पहचान आखिर किन पड़ावों से होकर यहाँ तक पहुँची? एक वक्त था जब विदेश नीति की बातें आम हिंदुस्तानियों की रोजमर्रा की चर्चा का हिस्सा नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जयशंकर के भाषणों और जवाबों ने विदेश नीति को आम बातचीत का हिस्सा बना दिया।
1: देखिए, मोदी जी और जयशंकर जी की जो जुगलबंदी है फॉरेन पॉलिसी में, ये एक तरह का टू ट्रैक मॉडल बन गया है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। मोदी जी प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज लीडर टू लीडर केमिस्ट्री और बड़े जेस्चर्स और विजन, पर्सनल डिप्लोमेसी, राइट, बिग पिक्चर में लेके लीडर टू लीडर, वहां मोदी जी एक ट्रैक वो चलता है। उसके पैनल में जो ट्रैक चलता है वो मिनिस्टर जयशंकर का, जिसमें क्लियर कट भारत की जो ठोस हमारे इंटरेस्ट है उनको डिस्कस किया जाता है दूसरे देश के साथ, जिसके साथ भी हम एंगेज कर रहे हो, और हम अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन करते हैं बड़े क्लिनिकल मैनर में मिनिस्टर जयशंकर। तो ये दो ट्रैक साइमल्टेनियसली चल रहे हैं इस पॉलिसी में।
0: यही वो अंदाज है जिसने एस जयशंकर की सार्वजनिक छवि को बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि यह अंदाज आया कहाँ से? इसका जवाब उनकी जिंदगी के उन पड़ावों में छिपा है जहाँ पढ़ाई से लेकर विदेश सेवा तक हर कदम ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया।

0: 9 जनवरी को नई दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ, सुब्रमण्यम जयशंकर। पिता थे के सुब्रमण्यम, देश के जाने माने रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व नौकरशाह। जयशंकर ने जिस घर में आंखें खोली, वहां देश की सुरक्षा, दुनिया की राजनीति और भारत के राष्ट्रीय हित जैसे मुद्दों पर चर्चा होना असामान्य बात नहीं थी। यही पारिवारिक माहौल आगे चलकर उनके सोचने के तरीके का हिस्सा बना। लेकिन जयशंकर के सफर में एक दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था। रसायन विज्ञान में पढ़ाई के बाद उन्होंने IIT दिल्ली में केमिस्ट्री में मास्टर्स के लिए दाखिला लिया। यानी रास्ता पूरी तरह विज्ञान का था, लेकिन मन दुनिया की राजनीति में ज्यादा लग रहा था। साल था 1973। IIT दिल्ली में पढ़ाई के दौरान एक दिन एस जयशंकर कैंपस के ढाबे पर पहुंचे। वहां बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले के फॉर्म अभी भी मिल रहे हैं। बस यहीं से कहानी ने करवट ली। जयशंकर ने JNU का फॉर्म लिया और दाखिले के लिए आवेदन कर दिया। जयशंकर ने अपना रास्ता बदलने का फैसला कर लिया था। JNU में दाखिला हुआ और IIT की केमिस्ट्री से निकलकर जयशंकर पहुंच गए JNU की दुनिया में। यहां उन्होंने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। दुनिया की राजनीति, सोवियत संघ, चीन, भारत और दुनिया के रिश्ते, इन सब को समझने की उनकी दिलचस्पी अब पढ़ाई का हिस्सा बन चुकी थी। यही वो दौर था जब रसायन विज्ञान पढ़ने वाला एक छात्र धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने लगा। साल 2000 में जयशंकर को चेक गणराज्य में भारत का राजदूत बनाया गया। ये उस लंबे सफर का एक और अहम पड़ाव था। इसके बाद 2007 से 2009 तक सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त रहे और फिर आया उनके करियर का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, साल 2009। जयशंकर चीन में भारत के राजदूत बने। करीब 4 साल उन्होंने बीजिंग में भारत की तरफ से काम किया। ये वो दौर था जब भारत चीन के रिश्तों में व्यापार भी था, साझेदारी की संभावनाएं भी थी और सीमा को लेकर चिंता भी। चीन को करीब से देखने और समझने का ये अनुभव आगे चलकर उनकी विदेश नीति की सोच में बेहद महत्वपूर्ण रहा।
1: आप बताइए मुझे कितनी सच्चाई थी इसमें। ये बात तो तथ्य है कि आप लॉन्गेस्ट सर्विंग भारत के एम्बेसडर रहे। चाद हुआ था जिसे आपने सुलझाया था, वो कहते थे कि भाई अरुणाचल और अक्साई चिन, आपने कहा कि भाई वीजा चाहिए तो मैं छाप कर ही दूंगा पूरी तस्वीर भारत के नक्शे की। 2013 जहां से डेप्सांग प्लेटू का पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्या सचमुच में आपने उस समय कह दिया था कि प्रीमियर को आना है, पहले सेना पीछे हो जाए?
2: देखिए, ये पब्लिक में कहना उचित नहीं होगा।
1: जवाब मिल गया है सबको।
0: और इसी चीन प्रवास के दौरान 2011 में जयशंकर की मुलाकात तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। मोदी चीन के दौरे पर थे और जयशंकर वहां भारत के राजदूत। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ साल बाद यही राजनयिक मोदी सरकार में देश के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालेगा।
3: मैं पहली बार उनसे 2012 में मिला, उस समय मैं चीन में राजदूत था। और पहले में कुछ देखिए, कभी कभी होता है कि आप और मैं पहले मिलते हैं तो कहीं वो केमिस्ट्री बैठती कि लगता है कि कहीं कनेक्ट होता है।
0: साल 2013 में जयशंकर को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया। अब सामने था दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के साथ भारत का रिश्ता और अगले ही साल भारत की राजनीति में भी बड़ा बदलाव होने वाला था।
4: ২০১৪ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर जयशंकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की 2014 की अमेरिका यात्रा और उसके बाद 2015 में बराक ओबामा की भारत यात्रा इस दौर की बड़ी कूटनीतिक घटनाओं में शामिल है। 2018 में एस जयशंकर का विदेश सचिव के तौर पर कार्यकाल खत्म हुआ और मई 2018 में जयशंकर टाटा सन से जुड़े। ऐसा लग रहा था कि करीब 4 दशक का राजनयिक सफर अब एक नए मोड़ पर है, लेकिन अगला साल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला था।

0: 2013 में देश में लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहे थे और ठीक उसी वक्त एस जयशंकर की पोस्टिंग हो रही थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले देश अमेरिका में। सितंबर 2013 में जयशंकर को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। दिसंबर 2013 में उन्होंने वॉशिंगटन में जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उनके सामने आसान माहौल नहीं था। भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई संवेदनशील मुद्दे थे और इसी दौर में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े का मामला भी सामने आया।
1: मुझे लगता है मुझे न्याय मिलेगा मेरे ही मंत्रालय से, जो भी होगा। और ये कोई मैं कोई ये कंफर्म नहीं कर रही हूँ कि मेरे अगेंस्ट कोई चल रहा है विजिल, मैं तो सिर्फ मीडिया में बोल रही हूँ कि जो मीडिया में आया ये सारा। और मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह से मतलब ऐसे होगा कि मुझे न्याय नहीं मिले, लेकिन जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं जहां पे भी अपील कर सकती हूँ मैं वहां करूंगी अपील, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं क्यों चुप रहूं।
0: जयशंकर को भारत अमेरिका रिश्तों की इस मुश्किल स्थिति को संभालना था।
2: दिल्ली पुलिस में उन्होंने तो कंप्लेंट की है, वो जो कानून से जो करना होगा वो कर देंगे।
0: इस तनाव के बीच मार्च 2014 में एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने भारत के राजदूत के तौर पर अपना परिचय पत्र पेश किया। अब जयशंकर सिर्फ अमेरिका में भारत के प्रतिनिधि नहीं थे, उन्हें एक ऐसे रिश्ते को संभालना था जो आने वाले सालों में भारत की विदेश नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था। फिर आया साल

0: इधर भारत में पीएम नरेंद्र मोदी बन गए और उधर अमेरिका में बैठे भारत के राजदूत एस जयशंकर के सामने एक नई जिम्मेदारी आ गई, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली यात्रा की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचते हैं और जयशंकर इस पूरी यात्रा की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत, भारतीय मूल के लोगों से जुड़ा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री की यात्रा का पूरा कूटनीतिक माहौल। एस जयशंकर को समझना था अमेरिकी सत्ता के गलियारों को भी और भारत की नई सरकार की प्राथमिकताओं को भी।
1: मुलाकात तब हुई जब वो अमेरिका जाने वाले थे, वो जो आपको याद होगा वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाला विजिट, तो उस समय जो है वो बहुत बड़ी विजिट थी और उसकी बहुत तैयारी भी करनी थी, तो और एक नई किस्म की विजिट थी क्योंकि जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो कार्यक्रम जो हुआ, अभी तक ऐसा तब तक ऐसा कभी कार्यक्रम हुआ नहीं। पब्लिक डिप्लोमेसी को, कम्युनिटी डिप्लोमेसी को आप एक तो बड़े स्केल में कर रहे हैं, पर मुझे अभी भी याद है कि उनके उनके ये इंस्ट्रक्शन थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा इवेंट चाहिए जिस जो वाशिंगटन तक पूरे दुनिया में सुनाई दे कि हम एक किस्म से दुनिया को मैसेज कर रहे थे, भले वो इवेंट न्यूयॉर्क में हो। तो इसकी जो तैयारी जो थी, इसको कैसे करना था, तो मैं कहूँगा कि हमारा कंफर्ट लेवल जो है उस विजिट के बाद ज़्यादा बढ़ा।
0: इसके कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2015 में बराक ओबामा भारत आए। ओबामा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। भारत अमेरिका रिश्तों के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण दौर था, लेकिन जयशंकर को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ओबामा के भारत से लौटने के बाद उनकी अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। बराक ओबामा की भारत यात्रा खत्म हुए सिर्फ दो दिन हुए थे, दिल्ली में विदेश मंत्रालय के गलियारों में एक बड़ा फैसला होने जा रहा था। उस वक्त विदेश सचिव थी सुजाता सिंह, उन्हें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कार्यालय से एक मुलाकात के लिए बुलाया गया। मुलाकात हुई और उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाना चाहते हैं, यानी जो अधिकारी कुछ महीने पहले तक अमेरिका में भारत का राजदूत था, अब उस देश के विदेश मंत्रालय की सबसे बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलने जा रही थी।
2: इनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंप्रेस हुए होते रहे हैं। पहली इनकी मुलाकात शायद 2011 में आई थी, मोदी जी चाइना गए थे, वहां हुई थी, तो वहां पर इस समय चाइना में पोस्टेड थे, तो इन्होंने मोदी की विजिट को एक अच्छी खासी सक्सेसफुल विजिट मदद करके कंडक्ट करवाया था। दौरा था प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहली बार अमेरिका का, भी बहुत सक्सेसफुली जयशंकर ने कंडक्ट करवाया था, तो वो आई थिंक मोदी जी को इम्प्रेस करा इनकी सारी एबिलिटीज को देखते हुए। ये कहेंगे कि मेरिट पर इंडिया की पोजीशन को रखना, आगे ले जाना, मोदी जी की जो विजन है उसको कन्वर्ट करना, इंडिया की विजन दुनिया के पटल पे रखना, इन सब पर अच्छे खरे उतर रहे हैं मिनिस्टर जयशंकर।
0: और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प बात है, जयशंकर उस वक्त सिर्फ एक वरिष्ठ राजनयिक नहीं थे, वो चीन में भारत के राजदूत रह चुके थे, अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात 2011 में चीन में हो चुकी थी। मोदी सरकार के पास एक ऐसा अधिकारी था जिसके पास चीन का अनुभव भी था, अमेरिका का अनुभव भी और करीब 4 दशक की विदेश सेवा का अनुभव भी। 29 जनवरी 2015 को जयशंकर की विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति हुई।
1: डिप्लोमेसी, जब आप रिलेशनशिप रिश्तों की बात करते हैं, व्हाट इज इट? इट इज दैट आपका मेरा हित कहीं मिला हुआ है या एक ही दिशा में जा रहा है। तो अब चीन जैसा देश, अब चीन, आज का चीन कैसे बढ़ा, इस लेवल तक कैसे पहुंचा, क्योंकि उस समय अमेरिका का हित था कि चीन के साथ काम करें, क्योंकि उनकी जो उस समय जो मेन कॉम्पिटिटर जो थे वो सोवियत संघ था। तो दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में यही होता है कि देश जो है किसी के साथ कभी जुड़ते हैं, कभी

0: एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कभी नहीं करते, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और यह स्वार्थ नहीं, ये किस्म से मैं कहूंगा कॉमन सेंस।
1: इसके बाद करीब 3 साल विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों और बातचीत के केंद्र में जयशंकर रहे। भारत अमेरिका रिश्ते, भारत चीन संबंध, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और दुनिया के बदलते समीकरण। विदेश सचिव के तौर पर उनकी भूमिका सिर्फ मंत्रालय चलाने तक सीमित नहीं थी, उन्हें सरकार की विदेश नीति को दूसरे देशों तक पहुँचाना था और दूसरे देशों की सोच को भारत तक लाना था। लेकिन 2018 में उनका विदेश सचिव का कार्यकाल खत्म हुआ और मई 2028 में जयशंकर टाटा सन्स से जुड़ गए। करीब 4 दशक की सरकारी सेवा के बाद अब वो सरकारी नौकरी से बाहर थे। ऐसा लग रहा था कि उनका राजनयिक सफर एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही साल एक ऐसा फैसला आने वाला था जिसने जयशंकर को भारत की राजनीति के केंद्र में ला दिया।
2: एक दौर था जब भारत की कूटनीति को अक्सर बहुत नपे तुले, बहुत सधे हुए और बेहद औपचारिक शब्दों में सुना जाता था। आज भारत वही कूटनीति कहीं ज्यादा मुखर अंदाज में करता दिखाई देता है। सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब मिलता है, दबाव आता है तो भारत अपना पक्ष रखता है। दो देशों के बीच रिश्ते हों या दो युद्धरत पक्षों के बीच बदलते समीकरण, भारत अपने लिए हमेशा अपनी जगह बनाने की कोशिश करता दिखाई देता है। इस पूरी कहानी के बीच एक चेहरा बार बार सामने आता है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का।
3: देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया, दो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे न हमारा विवेक छोड़ेंगे। अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है। नम्रता पूर्वक इस विजय को जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित कर दें।
1: साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी जीत गई थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने जा रही थी।
4: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था और इस लिस्ट में एक ऐसा नाम था जिसने सबको हैरान कर दिया था, एस जयशंकर।
5: आई सुब्रमण्यम जयशंकर।
1: न उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, न वो किसी राजनीतिक दल के सक्रिय नेता थे, फिर भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली और 30 मई 2019 को उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर शपथ ली।
0: नहीं, मुझे पहले से कुछ बिल्कुल पता नहीं था, और जो जब मुझे बताया गया, फ्रैंकली आई वुड से टू से इट वाज अनएक्सपेक्टेड, माने शॉक नॉर्मली यूज इन अ नेगेटिव वे, बट इट वाज रियल सरप्राइज आई वुड से। तो मैं तो हैरान था, मैं हैरान था क्योंकि मेरे मन में ये कभी, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, मेरे खुद जो डिप्लोमेसी में होते हैं वो राजनीति को एनालाइज करते, वो खुद राजनीति में भाग नहीं लेते।
1: एक करियर डिप्लोमेट जो दशकों तक दूसरे देशों के साथ भारत की बातचीत करता रहा, अब खुद भारत सरकार का हिस्सा बन चुका था। जुलाई 2019 में राज्यसभा के सदस्य बन गए और अब उनके सामने सिर्फ राजनयिक जिम्मेदारी नहीं थी, अब संसद थी, राजनीतिक जवाबदेही थी और देश के लोगों के सामने विदेश नीति को समझाने की जिम्मेदारी भी।
0: विषय है आतंकवाद का, आतंकवाद की इंडस्ट्री बन चुकी है कि रिक्रूट करते हैं, खुलेआम रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फंडिंग करते हैं, वहाँ से लोग आते हैं वापस जाते हैं। इसका इसकी रणनीति क्या है कि आतंकवाद के दबाव में भारत जो है माने कॉन्फ्रेंस टेबल नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा। तो आप मैं तो उल्टा आपसे पूछूंगा कि हमने इतने साल ये बर्दाश्त क्यों किया और हमें करना चाहिए था।
1: इसके बाद जयशंकर की सार्वजनिक भूमिका और बड़ी होती गई। रूस यूक्रेन युद्ध, रूसी तेल, अमेरिका के साथ रिश्ते, चीन के साथ सीमा विवाद, आतंकवाद और पश्चिमी देशों के सवाल।
6: There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem?
0: On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved.
1: हर मुद्दे पर जयशंकर का एक खास अंदाज दिखाई दिया। सीधा सवाल, सीधा जवाब, कभी इतिहास का संदर्भ, कभी पुराने आंकड़े और कभी भारत के राष्ट्रीय हितों की बात।
7: We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to.
1: लेकिन विदेश मंत्री की भूमिका सिर्फ दुनिया के मंचों पर बोलने तक सीमित नहीं रही। काबुल का संकट हो, यूक्रेन में फंसे भारतीय हो, सूडान से निकासी हो या किसी दूसरे संकट में फंसे भारतीय नागरिक, विदेश मंत्रालय के सामने एक जिम्मेदारी हमेशा रही, भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना। यानी एक चेहरा दुनिया के बड़े मंचों पर और दूसरा चेहरा संकट के समय भारतीय नागरिकों के साथ। ...2024 में लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनी और जयशंकर को एक बार फिर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। अब तक एक राजदूत, विदेश सचिव और विदेश मंत्री के रूप में उनका अनुभव कई दशकों में फैल चुका था। और फिर साल 2026, दुनिया तेजी से बदल रही है। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और ग्लोबल साउथ, भारत को एक साथ कई देशों के साथ रिश्ते संभालने हैं और विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर लगातार इस कूटनीतिक संवाद का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री के साथ जब मैं विदेश सचिव था तब भी मैं जाता था, अभी भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है। बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो ऐसे उसकी ऐसे बात करते हैं कि भाई आपके लीडर, और कभी कभी प्रधानमंत्री को सीधा कहते हैं।
8: अच्छा, फॉरेन लीडर्स। हाँ,
0: फॉरेन लीडर्स जो है कि उनके लिए तो ये बहुत माने सचमुच कुछ अलग ही बात है। और मुझे लगता है कि इसका ग्लोबल मैसेजिंग है कि भारत की ताकत, भारत की टैलेंट, भारत की एक किस्म से भारत की फुटप्रिंट जो है अब ग्लोबल हो चुकी।
1: 2026 में भी विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड में अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया, ग्लोबल साउथ और दूसरे अहम क्षेत्रों से जुड़े उनके लगातार दौरे और संवाद दर्ज हैं। लेकिन जयशंकर की कहानी को सिर्फ तारीखों में समेटना मुश्किल है। 1955 में नई दिल्ली में जन्म, 1977 में विदेश सेवा और फिर 2019 में विदेश मंत्री, एक ऐसा सफर जिसमें हर पड़ाव अगले पड़ाव की तैयारी करता दिखाई देता है। और इस कहानी में एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व, तो दूसरी तरफ दशकों की कूटनीतिक समझ रखने वाले एस जयशंकर।
2: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: बिजली का बिल
10: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
11: इतना माही वे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठ जा। मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
6: एकदम सॉलिड।
5: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
7: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
2: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
3: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
4: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
5: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
1: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
1: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पाकिस्तान पर बड़ा हमला, यूएन महासभा में बोले सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा। चेतावनी देते हुए कहा जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी का आरोप संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई, और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमेटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमेटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठिकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: प्रजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर में, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या नहीं बोलना है,
9: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं न कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: हमला हुए छे तखन पुलिस छिलो ना, दाड़िये दाड़िये देखे छे जंगले राजत्व होच्छे, खुनेर चेष्टा होयेछे, पाथर डिम साबल एनेछे।
7: एवरी तृणमूल वर्कर ऑफ आवर साइड इज अटैक असॉल्टेड बीटन अप, वुमेन्स आर आल्सो नॉट लेफ्ट ओवर, दे आर मैनहैंडल्ड मोलेस्टेड बीटन अप बाय द पुलिस अलोंग विद द BJP वर्कर्स। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द वेस्ट बंगाल इसका।
5: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
8: कुणाल घोष हमारे MLA तृणमूल कांग्रेस नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचुर कर, तार गाड़ी ते पूरो कांच भर्ती का सारा बॉडी ते ताके अटैक कर।
5: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि BJP सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब BJP नेता TMSC पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
5: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
9: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
5: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
10: उन्होंने जब से गुरुदक्षिणा लिए जब से मिलने नहीं दिए।
11: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
10: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
11: क्यों नहीं मिलने देते थे?
10: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं फिर बता रहे हैं, तो बस दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
5: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
12: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं, तुम रोज जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका था तुम।
5: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा आज तक।
0: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
5: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
13: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गए, मान के चल दो तीन घर तो फूट ही गए। अब पानी फुल पर्याप्त भर एकदम
14: लबालब।
13: रात में तो यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
14: तो कोई प्रशासन के आदमी बनाए रही से अभी?
13: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही से।
1: घर से आस पास अब बड़ परेशानी है हमारा, ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
14: रात में काई स्थिति रही से?
1: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
15: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे, हवन खाना पीना सब हराम हो गई। हमारे
14: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
15: दीवार में पानी भर गया ना सब।
14: कितना नुकसान हो गया?
15: सब संभालदार सब फीज गए, घर कुलिया सब ओदरा धस कर दिया।
5: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
16: यहां तीन जगह पर NH30 पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ रही।
5: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
17: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात है
1: अभी तो इमीडिएट, आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहां कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: का पानी ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों में जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह से कार वार भी डूब चुका है पानी में। ये काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: पाकिस्तान पर बड़ा हमला, यूएन महासभा में बोले, सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा, चेतावनी देते हुए कहा जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी का आरोप संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म, दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा, वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पर चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय एक कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमेटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमेटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठिकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी यह घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियें रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: ध्वजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर है, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने

0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
1: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
3: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
4: क्या बोलना है
3: उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं, सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें, या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है, इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसे हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने।

0: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
1: हमला हुए छे तखन पुलिस छिल ना, दाड़िये दाड़िये देखेछे जंगले राजत्व होच्छे, खुनेर चेष्टा होयेछे, पाथर डिम शाबल एनेछे।
2: एवरी तृणमूल वर्कर ऑफ आवर साइड इज अटैक असॉल्टेड बीटन अप, वुमेन्स आर आल्सो नॉट लेफ्ट टू वर्क, दे आर मैनहैंडल्ड मोलेस्टेड बीटन अप बाय द पुलिस along with the BJP workers. There is no democracy in the West Bengal state.
0: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
3: कुणाल घोष हमारे एमएलए तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचुर कर, तार गाड़ी से पूरा कांच भर्ती, तार सारा बॉडी से ताके अटैक कर।
0: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब बीजेपी नेता टीएमसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं आज तक ब्यूरो।
4: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
0: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
5: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
0: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
6: उन्हें जब से गुरुदक्षिणे लिए, जब से मिलने नहीं दिए।
7: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
6: नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणे लिए।
7: क्यों नहीं मिलने देते थे
6: वो? हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको, एक घंटे दो घंटे रुको। पर अभी आते हैं फिर बता रहे हैं, तो बस दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
0: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
8: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल के गया, हमारा महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं तुम? रोज आओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका।
0: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा आज तक।
4: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
0: बारिश ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की 3 प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
9: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गए, मान के चल 2-3 घर तो फूट ही गए। अब पानी फूल पर्याप्त तो भरे एकदम। रात में यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
10: तो कोई प्रशासन के आदमी मनाए रही से अभी?
9: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही
11: से। पर घर से आसपास अब बड़ परेशानी है हमारा। ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
10: रात में काई स्थिति रही से?
11: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
12: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवा, खाना पीना सब हराम हो गया।
13: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
12: दीवार में पानी भर गया ना सब।
13: कितना नुकसान हो गया?
12: सब संभालदार सब फिज गए, घर मन ओदरा से, घर कुरिया सब ओदरा धस कर
0: गया। अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
14: यहाँ 3 जगह पर NH30 पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पे ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ रही।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जलस्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह सुकमा, आज तक।
4: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहां तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये उड़ीसा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की भी व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है।

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा सेवन फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों में जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह कारवार भी डूब चुका है पानी में। ये काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: पाकिस्तान पर बड़ा हमला, यूएन महासभा में बोले, सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा, चेतावनी देते हुए कहा जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी का आरोप संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई, और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमेटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमेटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाएं तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाएं तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठीकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: प्रजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर में, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या नहीं बोलना है,
9: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गईं, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें, या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है, इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने है।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম শাবল এনেছে।
7: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড ইজ অ্যাটাক অ্যাসল্টেড বিটেন আপ উইমেনস আর নট বি আর অলসো নট লেফট ওভার দে আর ম্যানহ্যান্ডেল মোলেস্টেড বিটেন আপ বাই দি পুলিশ অ্যালং উইথ দি BJP ওয়ার্কার্স দেয়ার ইজ নো ডেমোক্রেসি ইন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস কনসার্ন।
5: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
8: कुणाल घोष हमारे MLA तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचूर कर दिया, तार गाड़ी ते पूरा कांच भोटती का सारा बॉडी ते ताके अटैक कर दिया।
5: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि BJP सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब BJP नेता TMSC पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
9: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।

0: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
1: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
0: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
2: जब से गुरुदक्षिणा लिए जब से मिलने नहीं दिए,
3: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
2: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
3: क्यों नहीं मिलने देते थे
2: वो? हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं फिर बता रहे हैं, तो बस दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
0: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
4: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छा लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं तुम? रोज जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका था तुम।
0: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है? पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा, आज तक।
5: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
0: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
6: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गया, मान के चल दो तीन घर तो फूटी गए। अब पानी फूल पर्याप्त तो भरे एकदम।
7: रात में लब लब।
6: रात में यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
7: तो कोई प्रशासन के आदमी मनाए रही से अभी?
6: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही थी।
8: घर से आस पास अब बड़ परेशानी है हमारा, ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
7: रात में का स्थिति रही से?
8: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
9: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवन, खाना पीना सब हराम हो गई हमारे
7: घर में भी, पूरा सामान वगैरह डूब गया,
9: दीवार में पानी भर गया ना सब।
7: कितना नुकसान हो गया?
9: सब संगलदार सब भीज गए, घर मन ओदरा से घर कुरिया सब ओदरा ध्वस्त कर दिया।
0: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
10: यहाँ तीन जगह पर एनएचजी पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
5: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जांचपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है।

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: तारिका, पानी ऊपर तक आ गया है। ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह कार वार भी डूब चुका है पानी में। ये काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दुनिया के सबसे बड़े मंच से जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। यूएन महासभा में बोले, सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा। चेतावनी देते हुए कहा, जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी का आरोप, संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक। आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं। एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन। पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज। यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की, जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा, वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पर चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमिटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाएं तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठीकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनावों से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: प्रजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं। पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर में। और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखा

0: सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
1: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
2: क्या नहीं बोलना है,
1: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है, इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने है।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম সাবল এনেছে।
7: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড ইজ অ্যাটাক অ্যাসল্টেড বিটেন আপ উইমেন আর নট বি আর অলসো নট লেফট ওভার দে আর ম্যানহ্যান্ডেলড মোলেস্টেড বিটেন আপ বাই দি পুলিশ অ্যালং উইথ দি BJP ওয়ার্কার্স।

0: no democracy in the West Bengal Wisconsin.
1: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
2: कुणाल घोष हमारे एमएलए तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचुर कर दिया, तार गाड़ी से पूरा कांच भर्ती का सारा बॉडी से ताके अटैक कर दिया।
1: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब बीजेपी नेता टीएमसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं आज तक ब्यूरो।
3: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
1: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
4: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
1: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
5: उन्हें जब से गुरुदक्षिणा लिए, जब से मिलने नहीं दिए।
6: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
5: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
6: क्यों नहीं मिलने देते थे?
5: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं। हाँ। फिर बता रहे हैं तो वैसे दिन बीत कर देते रहे वो लोग।
1: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
7: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं, तुम रोज जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका।
1: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा, आज तक।
3: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
1: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
8: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गया, मान के चल दो तीन घर तो फूटी गए। अब पानी फूल पर्याप्त तो भर एकदम
9: लबालब।
8: रात में तो यहीं कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
9: तो कोई प्रशासन के आदमी बनाए रही से? अभी
8: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही थी।
10: घर से आस पास बड़ परेशानी है मला, ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है। सरकार से आदेश करो।
9: रात में का स्थिति रही से?
10: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
11: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवन, खाना पीना सब हराम हो गई हमारे
9: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया।
11: दीवार में पानी भर गया ना सब।
9: कितना नुकसान हो गया?
11: सब संगलदार सब फीच गए, घर मन घर कुरिया सब ओदरा धस कर।
1: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
12: यहाँ तीन जगह पर NH30 पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
1: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है। कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
3: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहां तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की भी व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: गाड़ी का पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह कार वार भी डूब चुका है पानी में, काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: पाकिस्तान पर बड़ा हमला, यूएन महासभा में बोले, सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा, चेतावनी देते हुए कहा जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी का आरोप संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पर चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई, और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे, तो प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है, एक कमिटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती, तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं, तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठिकरा क्यों फोड़ते हैं।
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी यह घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है, और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: ध्वजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंतगढ़ में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंतगढ़ है, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता हैं हमारे लिए तो आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर अस्तुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या नहीं बोलना है,
9: क्या क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब आज बिहार की जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने है।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম সাবল এনেছে।
7: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড ইজ অ্যাটাক অ্যাসল্টেড বিটেন আপ উইমেন আর নট বি আর অলসো নট লেফট ওভার দে আর ম্যানহ্যান্ডেল মোলেস্টেড বিটেন আপ বাই দি পুলিশ অ্যালং উইথ দি বিজেপি ওয়ার্কার্স দেয়ার ইজ নো ডেমোক্রেসি ইন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস কনসার্ন।
5: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
8: कुणाल घोष हमारे MLA तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचूर कर दिया, तार गाड़ी ते पूरो कांच भोटी का सारा बॉडी ते ताके अटैक कर दिया।
5: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि BJP सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब BJP नेता TMSC पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
5: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
9: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
5: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
10: उन्होंने जब से गुरुदक्षिणा लिए जब से मिलने नहीं दिए।
11: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
10: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
11: क्यों नहीं मिलने देते थे?
10: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं फिर बता रहे हैं, तो बस दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
5: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
12: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ कहाँ रहने हैं, तुम रोज जाओ हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सकते हो तुम।
5: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा आज तक।
0: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
5: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
13: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गया, मान के चल दो तीन घर तो फूट ही गए। अब पानी फुल पर्याप्त भर एकदम।
14: रात में लबालब
13: रात में तो यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
14: तो कोई प्रशासन के आदमी बनाए रही से? अभी
13: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही
1: थी। घर से आस पास अब बड़ परेशानी है हमला, ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
14: रात में का स्थिति रही से?
1: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
15: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे, हवन खाना पीना सब हराम हो गई। हमारे
14: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
15: घर में पानी भर गया ना सब।
14: कितना नुकसान हो गया?
15: सब संभालदार सब फिट गए, घर मन घर कुरिया सब ओदरा धस कर दिया।
5: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
16: यहाँ तीन जगह पर एनएचजी पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
5: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
17: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहां तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई हैं। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात है
1: अभी तो इमीडिएट, आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस है। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहां कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: कारिका पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है। कुछ नहीं, कुछ नहीं,
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है, आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह कारवार भी डूब चुका है पानी में, काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: पाकिस्तान पर बड़ा हमला, यूएन महासभा में बोले सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा, चेतावनी देते हुए कहा जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी का आरोप संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पर चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई, और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय एक कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमिटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठिकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है, और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: सजा में क्या छूट है, करें और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंतगढ़ में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंतगढ़ है, और जसवंतगढ़ में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही है और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या नहीं बोलना है,
9: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब आज बिहार के जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूक

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गईं, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं न कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने है।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম শাবল এনেছে।
7: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড ইজ অ্যাটাক অ্যাসল্টেড বিটেন আপ উইমেনস আর অলসো নট লেফট ওভার দে আর ম্যানহ্যান্ডেল মোলেস্টেড বিটেন আপ বাই দি পুলিশ অ্যালং উইথ দি BJP ওয়ার্কার্স দেয়ার ইজ নো ডেমোক্রেসি ইন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস কাউন্সিল।
5: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
8: कुणाल घोष हमारे MLA तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचूर कर दिया, तार गाड़ी ते पूरो काज भर्ती का सारा बॉडी ते ताके अटैक कर चे।
5: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि BJP सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई।

0: बीजेपी नेता टी मसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
0: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
2: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
0: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
3: उन्होंने जब से गुरुदक्षिणा लिए जब से मिलने नहीं दिए।
4: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
3: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
4: क्यों नहीं मिलने देते थे?
3: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं फिर बता रहे हैं, तो बस दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
0: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
5: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ कहाँ रहने हैं, तुम रोज जाओ हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका था तुम।
0: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा, आज तक।
1: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
0: ये अर्नब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अर्नब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
6: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गया, मान के चल दो तीन घर तो फूट ही गए हैं। अब पानी फुल पर्याप्त भर एकदम। रात में यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
7: तो कोई प्रशासन के आदमी बनाए रही से?
6: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही
8: से। घर से आस पास अब बड़ परेशानी है, मला ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है। सरकार से आदेश करो।
7: रात में काई स्थिति रही से?
8: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
9: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे, हवा खाना पीना सब हराम हो गई। हमारे
7: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
9: दीवार में पानी भर गया ना सब।
7: कितना नुकसान हो गया?
9: सब संभालदार सब भीज गए, घर मन घर कुरिया सब ओदरा धस कर।
0: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
10: यहाँ तीन जगह पर एनएचटीएस पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरकुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
1: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहां तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की भी व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहां कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है।

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: का पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है। कुछ नहीं, कुछ नहीं,
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह कार वार भी डूब चुका है पानी में, काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: पाकिस्तान पर बड़ा हमला, यूएन महासभा में बोले सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा, चेतावनी देते हुए कहा जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी का आरोप संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पर चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई, और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमेटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमेटी।
4: अपोजिशन पार्टी, इसको मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठिकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है, और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: प्रजा में क्या छूट है करें और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर में, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर अस्तुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझ कर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या
9: बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: हमला हुए छे, तखन पुलिस छिलो ना, दाड़िये दाड़िये देखे छे, जंगले राजत्व होच्छे, खुनेर चेष्टा हुए छे, पाथर डिम साबल एने छे।
7: एवरी तृणमूल वर्कर ऑफ आवर साइड इज अटैक असॉल्टेड बीटन अप, वुमेन्स आर नॉट बी आर आल्सो नॉट लेफ्ट ओवर, they are manhandled, molested, beaten up by the police along with the BJP workers. There is no democracy in the West Bengalis country.
5: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
8: कुणाल घोष हमारे MLA तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचुर कर তার গাড়িতে পুরো কাঁচ ভর্তি, তার সারা বডিতে তাকে অ্যাটাক করেছে।
5: পশ্চিম বঙ্গাল মে সিয়াসত কে রক্ত চরিত্র কি এক তসবীর মিদনাপুর সে ভি আই, জহাঁ সড়ক পর দিন দহাড়ে লাঠি অর চাকু সে হামলা কিয়া গয়া। CCTV ফুটেজ সে দেখা যা সকতা হ্যায় কি দোনো পক্ষ এক দূসরে কো মারনে পর আমাদা হ্যায়। বতায়া যা রাহা হ্যায় কি BJP সোশ্যাল মিডিয়া কা কার্যকর্তা সুবহ চায় পিনে আয়া থা, জহাঁ উস পর চাকু অর লাঠিয়ো সে হামলা কিয়া গয়া, জিসমে উসকি মৌত হো গয়ি। अब BJP नेता TMSC पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
5: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
9: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
5: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
10: उन्हें जब से गुरुदक्षिणे लिए जब से मिलने नहीं दिए।
11: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
10: नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणे लिए।
11: क्यों नहीं मिलने देते थे
10: वो? हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं फिर बता रहे हैं, तो बस दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
5: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
12: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं तुम? रोज आओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका।
5: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है? पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा आज तक।
0: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
5: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
13: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गए, मान के चल दो तीन घर तो फूट ही गए। अब पानी फूल पर्याप्त तो भरे एकदम।
14: रात
13: में यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
14: तो कोई प्रशासन के आदमी बनाए रही से अभी?
13: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही से।
1: घर से आस पास अब बड़ परेशानी है हमारा, ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
14: रात में काई स्थिति रही से?
1: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
15: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवा, खाना पीना सब हराम हो गया,
14: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
15: दीवार में पानी भर गया ना सब।
14: कितना नुकसान हो गया?
15: सब संभालदार सब भीज गए,
16: घर मन ओदरा से,
15: घर कुलिया सब ओदरा धस कर।
5: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
17: यहाँ तीन जगह पर एनएचटी पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ रही।
5: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा आज तक।
18: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की भी व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहां कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: गाड़ी का पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा सेवन फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों में जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह कार वार भी डूब चुका है पानी में। काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: पाकिस्तान पर बड़ा हमला, यूएन महासभा में बोले सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा। चेतावनी देते हुए कहा जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज, बीजेपी का आरोप संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक, आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पर चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई, और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमेटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमेटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच जाइए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाए तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठिकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: प्रजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर में है? और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर अस्तुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या नहीं बोलना है,
9: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर

0: पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि सीएम ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में एफआईआर किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप एफआईआर नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से एफआईआर हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई एफआईआर उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर एफआईआर हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो सीएम पर एफआईआर करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है उनका राज कहीं न कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर आज तक। ब्यूरो, पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। टीएमसी नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने।
5: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: हमला हुए तो पुलिस छिलो ना दाड़िए दाड़िए देखे जंगले राजत्व हो खुन चेष्टा हो डिम सबल एने
7: तृणमूल वर्कर ऑफ आवर साइड इज अटैक असोल्टेड बीटन अप वुमेन्स आर नॉट बी आर ऑल्सो नॉट लेफ्ट टू वर्क दे आर मैनहैंडल्ड मोलेस्टेड बीटन अप बाय द पुलिस अलोंग विद द बीजेपी वर्कर्स देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द वेस्ट बंगाल इसका।
5: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
8: कुणाल घोष हमारे एमएलए तृणमूल कांग्रेस नेता तार गाड़ी टोटल भंगचुर कर तार गाड़ी ते पूरो कांच भर्ती तार सारा बॉडी ते ताके अटैक कर चे।
5: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब बीजेपी नेता टीएमसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं आज तक ब्यूरो।
0: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
5: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के

0: दौरान उसकी मौत हो गई।
1: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
0: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
2: उन्होंने जब से गुरुदक्षिणा लिए जब से मिलने नहीं दिए।
3: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
2: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
3: क्यों नहीं मिलने देते थे?
2: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं। हाँ। फिर बता रहे हैं तो बस दिन बीत कर देते रहे वो लोग।
0: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
4: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं, तुम रोज जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका था तुम।
0: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा, आज तक।
5: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
0: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की 3 प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
6: यहाँ से देख लो घर पूरा तहस नहस हो के मान के चल, दो तीन घर तो फूटी गए। अब पानी फूल पर्याप्त भर एकदम
7: लबालब।
6: रात में तो यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
7: तो कोई प्रशासन के आदमी मनाए रही से? अभी
6: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही से।
8: हमारे घर से आस पास अब बड़ परेशानी है हमारा, ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
7: रात में काई स्थिति रही से?
8: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
9: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवन, खाना पीना सब हराम हो गई हमारे
7: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गए,
9: दीवार में पानी भर गए ना सब।
7: कितना नुकसान हो गए?
9: सब संभालदार सब भीज गए, घर कुरिया सब ओदरा ध्वस्त कर दिया।
0: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
10: यहाँ तीन जगह पर एनएचटी पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ रही।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल झगरकुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जलस्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
5: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जांचपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है।

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: का पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा सेवन फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों में जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह कार वार भी डूब चुका है पानी में। ये काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दुनिया के सबसे बड़े मन से जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। यूएन महासभा में बोले, सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा। चेतावनी देते हुए कहा, जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी का आरोप, संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक। आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं। एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन। पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज। यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की, जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा, वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण।
3: अतः यूपी की सियासत के जहां पर चुनावों से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
4: प्रजा में क्या छूट है करें और फिर वोट मिलना नहीं है, वोट मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंतगढ़ में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंतगढ़ है और जसवंतगढ़ में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी और इसलिए होगी, इन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
5: पाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता हैं हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस SP गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
6: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी BJP के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
7: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
8: क्या नहीं बोलना है,
7: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बिहार के जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं, सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गईं, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें, या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है, इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने है।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম শাবল এনেছে।
7: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড ইজ অ্যাটাক অ্যাসল্টেড বিটেন আপ উইমেনস আর নট বি আর অলসো নট লেফট ওভার দে আর ম্যানহ্যান্ডেল মোলেস্টেড বিটেন আপ বাই দি পুলিশ অ্যালং উইথ দি BJP ওয়ার্কার্স দেয়ার ইজ নো ডেমোক্রেসি ইন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস কাউন্সিল।
5: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
8: कुणाल घोष हमारे MLA तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचूर कर दिया, तार गाड़ी ते पूरो काज भर्ती का सारा बॉडी ते ताके अटैक कर दिया।
5: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि BJP सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब BJP नेता TMSC पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
9: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
5: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
10: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
5: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
11: उन्हें जब से गुरुदक्षिणा लिए जब से मिलने नहीं दिए।
12: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
11: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
12: क्यों नहीं मिलने देते थे?
11: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोल देता है कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं। हाँ। फिर बता रहे हैं तो बस दिन बीत कर देते रहे वो लोग।
5: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
13: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं, तुम रोज जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका तुम।
5: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा, आज तक।
9: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
5: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों, बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए। दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
14: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गया, मान के चल दो तीन घर तो फूट ही गए हैं। अब पानी फुल पर्याप्त भर एकदम।
15: रात में लब लब। आप सब कहाँ रहे?
14: रात में तो यहीं कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
15: तो कोई प्रशासन के आदमी मनाए रही से? अभी देखे
14: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही थी।
1: घर से आस पास अब बड़ परेशानी है, मतलब ये पूरा चारों खूंट पिचिंग बनवाना है। सरकार से आदेश करो।
15: रात में काई स्थिति रही से?
1: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
16: दूसरा घर पड़ोसी घर आज सूते रहे हवन, खाना पीना सब हराम हो गया। हमारे
15: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
16: घर में पानी भर गया ना सब।
15: कितना नुकसान हो गया?
16: सब संभालदार सब भीग गए, घर मन घर कुरिया सब ओदरा भस्कत।
5: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
17: यहां तीन जगह पर एनएचटीस पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कोई यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
5: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
18: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहां तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहां कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है।

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: का पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों में जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह से कार वार भी डूब चुका है पानी में। ये काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दुनिया के सबसे बड़े मंच से जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। यूएन महासभा में बोले, सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा। चेतावनी देते हुए कहा, जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी का आरोप, संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक। आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं। एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन। पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज। यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की, जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा, वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पर चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमिटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी।
4: अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाएं तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठीकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: प्रजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंतगढ़ में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंतगढ़ है, और जसवंतगढ़ में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही है और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या बोलना है
9: उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब आज बिहार के जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं, सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें, या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं न कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने है।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম শাবল এনেছে।
7: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড

0: molested, beaten up by the police along with the BJP workers. There is no democracy in the West Bengal Wisconsin.
1: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
2: कुणाल घोष हमारे एमएलए तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचुर कर तार गाड़ी से पूरा कांच भर्ती का सारा बॉडी के ताके अटैक कर।
1: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब बीजेपी नेता टीएमसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं आज तक ब्यूरो।
3: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
1: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
4: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
1: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
5: उन्होंने जब से गुरुदक्षिणा लिए जब से मिलने नहीं दिए।
6: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
5: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
6: क्यों नहीं मिलने देते थे?
5: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं। हाँ। फिर बता रहे हैं तो बस दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
1: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
7: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं, तुम रोज जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका था तुम।
1: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा आज तक।
3: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
1: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। अर्नब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं

0: बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की 3 प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
1: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गया, मान के चल 2-3 घर तो फूट ही गए। अब पानी फुल पर्याप्त भर एकदम। रात में यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
2: तो कोई प्रशासन के आदमी बनाए रही से? अभी
1: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही से।
3: घर से आस पास अब बड़ परेशानी है, मला ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है। सरकार से आदेश करो।
2: रात में का स्थिति रही से?
3: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
4: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे, खाना पीना सब हराम हो गई। हमारे
2: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
4: दीवार में पानी भर गया ना सब।
2: कितना नुकसान हो गया?
4: सब संभालदार सब भीज गए, घर मन घर कुरिया सब ओदरा धस कर।
0: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
5: यहाँ 3 जगह पर NH30 पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरकुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है। कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
6: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जांचपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की भी व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है।

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: का पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है। कुछ नहीं, कुछ नहीं,
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नाली जाम हो चुका है।
4: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह से कार वार भी डूब चुका है पानी में, काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दुनिया के सबसे बड़े मंच से जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। यूएन महासभा में बोले, सीमा पार से अप्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा। चेतावनी देते हुए कहा, जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी का आरोप, संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक। आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं। एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन। पीएम मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज। यूपी, बिहार और झारखंड में भारी बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संबोधित किया और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें उन्होंने कही, वो भी हम आपको बताते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर उन्होंने करारा प्रहार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक की, जहां पर कई अहम फैसले लिए गए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं एसआईआर पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है।
2: सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई, और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।
0: गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। एसआईआर में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी।
3: आपने ECINET की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT, IIIT, IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ECINET की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECINET करती है। एक कमिटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमिटी।
4: अपोजिशन पार्टी, इसको मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच चाहिए, मेहनत करिए, जीतिए। केरला में तो हम नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती? तो आप जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, चाहे वो आपका कमीशन के ऑफिसर्स हो या वोटर लिस्ट हो या ईवीएम मशीन हो। जब आप हार जाएं तो हंगामा करते हैं। तो राहुल गांधी बार बार अपनी नाकामी, अपनी पार्टी की कमजोरी का ठिकरा क्यों फोड़ते हैं?
0: बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी ये घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
5: तब यूपी की सियासत के, जहां पर चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है, और दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में से सियासी हलचल तेज दिखी।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: में क्या छूट है करें और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर है और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड होगी और होती रही और फिर होगी और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल भूत बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर अस्तुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या नहीं बोलना है,
9: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब किशनगंज से एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर से बिहार में कोहराम मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 2.5 से 3 साल लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं, सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें, या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है, इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे लेकर BJP और TMC अवाम ने सामने है।
5: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
6: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম শাবল এনেছে।
7: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড ইজ অ্যাটাক অ্যাসল্টেড বিটেন আপ উইমেনস আর নট বি আর অলসো নট লেফট ওভার দে আর ম্যানহ্যান্ডেল মোলেস্টেড বিটেন আপ বাই দি পুলিশ অ্যালং উইথ দি BJP ওয়ার্কার্স দেয়ার ইজ নো ডেমোক্রেসি ইন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস কান্সার্ন।
5: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
8: कुणाल घोष हमारे MLA तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचुर कर तार गाड़ी ते पूरो काज भर्ती का सारा बॉडी ते ताके अटैक कर।
5: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि BJP सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब BJP नेता TMSC पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: मथुरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है।
5: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
9: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
5: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
10: उन्होंने जब से गुरुदक्षिणे लिए जब से मिलने नहीं दिए।
11: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
10: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणे लिए।
11: क्यों नहीं मिलने देते थे?
10: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं। हाँ। फिर बता रहे हैं तो बस दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
5: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
12: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ रहने हैं तुम, रोज जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं, जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका था तुम।
5: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा आज तक।
0: देश के कई राज्य समय बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र लेकर पहाड़ों तक में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
5: ये अर्नब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। अर्नब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए। दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
13: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गए, मान के चल दो तीन घर तो फूट ही गए हैं। अब पानी फुल पर्याप्त भरे एकदम। रात में यहीं कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
14: तो कोई प्रशासन के आदमी मनाए रही से अभी?
13: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही से।
1: घर से आस पास अब बड़ परेशानी है हमारा, ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
14: रात में काई स्थिति रही से?
1: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
15: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवा, खाना पीना सब हराम हो गया,
14: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
15: दीवार में पानी भर गया ना सब।
14: कितना नुकसान हो गया?
15: सब संभालदार सब भीज गए, घर मन घर कुरिया सब ओदरा ध्वस्त कर दिया।
5: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
16: यहाँ तीन जगह पर NH30 पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कोई यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
5: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
17: तूफान अर्नब भले ही अब धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और कई कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहां तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की भी व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है

0: मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: का पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बड़ा बड़ा पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
4: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों जाम हो चुका है।
3: पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
4: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है और पूरी तरह से कार वार भी डूब चुका है पानी में। ये काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: यूपी के कई शहरों में 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। अलग अलग हादसों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 32 जिलों में बाढ़ का खतरा है। बिहार की बात करें तो 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी है।

0: बिहार में फिर नदियां डराने लगी। बिहार में फिर बाढ़ का खतरा गहराया। नेपाल की बारिश से बिहार में टेंशन। बैराज से भारी पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में बढ़ी चिंता। कोसी गंडक उफान पर। मौसम की मार ने बिहार की मुश्किलें फिर बढ़ा दी। सुपौल की तस्वीरें देखिए, जहां कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज के 40 गेट खोले गए हैं। ऐसे में कोसी नदी के जलस्तर पर सबकी नजर है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब कोसी नदी पर भी दिखाई दे रहा है। ऊपरी इलाकों से पानी आने और बैराज से डिस्चार्ज बढ़ने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुपौल में प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
1: इस वक्त हम नेपाल के कोसी बैराज में हैं और कोसी बैराज में अब तक का इस साल का अधिकतम डिस्चार्ज 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और नेपाल प्रभाग में लगातार दो दिनों से मूसलाधार बारिश से ये जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के साथ ही सुपौल जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग और नेपाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और कोसी बराज पे लगातार निगरानी में रखे हुए हैं। वहीं सुपौल जिला अधिकारी सावंत कुमार ने बताया कि इस साल का अधिकतम जलस्तर 2,54,000 क्यूसेक पार किया है और देर रात तक ये 3,50,000 क्यूसेक तक जा सकती है, लेकिन जिला प्रशासन और जल संसाधन की विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से किया जाएगा। उसी बराबर फिलहाल 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है जो बढ़ते क्रम में है और कोसी बराज का 56 में से 35 गेट को खोल दिया गया है और ये जो पानी उफलती धारा है ये बिहार के सुपौल सहरसा मधेपुरा होते हुए ये कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा में मिलेगी। तो ये इस तरह से नेपाल में लगातार दो दिनों की बारिश से जिस तरह से कोसी उफान पे आई है, इस साल का अधिकतम जलस्तर को पार किया है, तो जिला प्रशासन सहित जल संसाधन के विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है।
0: प्रशासन की कोशिश है कि पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते अलर्ट किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखना है। कोसी के बाद अब बात गंडक नदी की। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर गंडक के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से इस साल अब तक का सबसे ज्यादा पानी छोड़े जाने की जानकारी सामने आई है। पानी बढ़ा तो इसका असर निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा। कहीं घरों तक पानी पहुंच गया तो कहीं सड़कें जलमग्न हो गईं। बढ़ते पानी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी, वहीं प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है।
2: बहुत पानी भइल बा डाँड भर।
3: आपको घर में पानी गइल बा कि नहीं?
2: डाँड भर पानी भइल बा।
3: चार करोड़ पर और परेशानी वर्षानी होता ज्यादा?
2: वही ना, माने पानी में दिखते न बा।
3: दिखते बा कोनो जान माल के अति नहीं के बोल ना,
2: माने लइका फैका लेके परेशानी बा। पानी
3: कहाँ जाता नहीं, अभी घरे रहे कि एने उने स्कूल पे जाए?
2: खाता नहीं जाला इतन को ओने को लेवानी जाए।
3: कहाँ जा रहे हैं?
4: घर पर।
3: घर पे क्या हुआ?
4: पानी फूटा था।
3: कितना?
0: इसका असर बिहार तक भी दिख रहा है। ये बिहार के बगहा की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश का असर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दिखाई दे रहा है। लगातार पानी बरसने से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनने लगी है। कई जगहों पर सड़कें कीचड़ और पानी से भर गई हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी और जलजमाव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।
5: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।